जितेंद्र ने लगभग 200 हिंदी फिल्मों में काम किया। इनके अलावा कुछ और ही कलाकार होंगे जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में फिल्मों में काम किया। जितेंद्र ने हवा हवाई गर्ल नाम से मशहूर श्रीदेवी और जया प्रदा के साथ भी कई फिल्में की। लीजिए पेशे खिदमत है उनकी फिल्म का एक और गीत।

जितेंद्र ने गुलजार साहब के साथ परिचय, किनारा और खुशबू फिल्मों में भी काम किया जिनके गाने सुपर हिट रहे। लीजिए दोस्तों, पेशे खिदमत है उनके ये सुपरहिट गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

0: एक ऐसे अभिनेता थे जो एक ही बार में आपका सारा ध्यान अपनी ओर खींच सकते थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने हिंदी फिल्म बिरादरी में ग्लैमर को जोड़ा और देश के कोने कोने से प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अशोक कुमार जी की। चलिए उनकी ही फिल्म का ये गीत सुनते हैं।
1: आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम इंजन, डब्बू तुम कोयले का डिब्बा,
2: टुन्नू मुन्नू लीला शीला, मोहन सोहन जादो माधो, सब पैसेंजर सब पैसेंजर,
1: रेडी एक

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक। बीच वाले स्टेशन बोले

बिहार गांव में मेला भीड़ झमेला टूटी दीवार टट्टू सवार रेलगाड़ी रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर तालेगांव मालेगांव मालेगांव तालेगांव वेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर सोलापुर सोलापुर सोलापुर सोलापुर कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल मछलीपट्टम दिमलीपट्टम दिमलीपट्टम मछलीपट्टम ओंगोल नट गोल नट गोल ओंगोल कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद सोतनूर पोतनूर सोतनूर पोतनूर बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक

अशोक कुमार जी ने सिल्वर स्क्रीन पर राज किया और अपने करिश्माई स्क्रीन उपस्थिति से लाखों दिलों पर राज किया। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

लाल गांगुली, जी हाँ, जो बाद में भारतीय सिनेमा के दादा मुनि बने। अशोक कुमार जी का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को बिहार के भागलपुर में कुंजीलाल गांगुली और गौरी देवी जी के यहाँ हुआ था। चलिए उनकी फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन चरित्र अभिनेताओं में से एक थे। चलिए उनकी फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

दोस्तों, चाहे भूमिका कैसी भी हो, नकारात्मक किरदार हो या हीरो का किरदार, अशोक कुमार जी ने सभी के साथ बड़ी सहजता से न्याय किया। चलिए पहले उन्हीं की फिल्म का ये गीत सुनते हैं, फिर मैं कुछ और जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए उनकी ही फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

आप हैं आरजे समीर के साथ दोस्तों, और आज के कलाकार प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अशोक कुमार जी की। तो अशोक कुमार जी एक शानदार अभिनेता होने के साथ साथ होम्योपैथी की प्रैक्टिस भी करते थे, है ना मजेदार बात। और वो अक्सर उन बीमारियों का समाधान कर दिया करते थे जिनसे डॉक्टर निपट नहीं पाते थे। आइए इसी बात पे हो जाए उनकी फिल्म का एक और गीत।

हम बात कर रहे हैं अशोक कुमार जी की, जिनका असल नाम कुमुदलाल गांगुली था। आपको पता है दोस्तों, वो एक बेहद अच्छे चित्रकार भी थे।

फिल्मों में मौका मिलने से पहले अशोक कुमार जी बॉम्बे टॉकीज में लैब असिस्टेंट की तरह काम करते थे। फिल्मों से उनका परिचय पूरी तरह से एक संयोग था। उन्हें बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन की फिल्म जीवन नैया, जो कि 1936 में बन रही थी, उसमें मुख्य भूमिका मिली। आइए इसी बात पर उनकी एक और फिल्म का सुरीला सा गीत हो जाए।

पहली बड़ी हिट थी अछूत कन्या। इस फिल्म ने गांधी जी की बिना किसी वर्ग या जाति विभाजन की विचारधारा को प्रसारित किया था। तो हो जाए उनकी फिल्म का एक और गीत।

दोस्तों अशोक कुमार जी भारतीय सिनेमा के पहले एंटी हीरो थे, मतलब वो सबसे पहले अभिनेता थे जो हीरो के रोल्स करते करते एक बार विलेन का रोल भी कर बैठे और उसमें भी उनकी एक्टिंग शानदार रही। मैं बताता हूं वो कौन सी फिल्म थी जिसमें उन्होंने एंटी हीरो का रोल किया। तब तक एक गीत हो जाए।

ज्ञान मुखर्जी जी 1943 में एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था किस्मत। अशोक कुमार जी ने उसमें एक जेब कतरे का रोल निभाया जो कि बाद में प्यार में पड़ जाता है। दोस्तों, ये पहली भारतीय फिल्म थी जिसने 1 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो टेक्निकली अशोक कुमार जी करोड़ क्लब स्थापित करने वाले पहले अभिनेता थे। तो लीजिए एक और गीत उनकी फिल्म का।

0: उसके बाद अशोक कुमार जी बॉम्बे टॉकीज में ही निर्माता बन गए। क्या दोस्तों आपको पता है, देव आनंद साहब को पहला ब्रेक जिद्दी फिल्म में 1948 में इन्होंने ही दिया था।
1: बाजू।

0: रहते हैं प्यारे।
1: दोस्तों, अशोक कुमार जी ने 1949 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था महल, और उस फिल्म में उन्होंने एक प्रतिभा को इंट्रोड्यूस किया जिसने 1950 के दशक में बॉलीवुड में तूफान ला दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मधु बाला जी की। तो मधु बाला जी को इंट्रोड्यूस करने में अशोक कुमार जी का ही हाथ था।

दोस्तों अशोक कुमार 1980 के दशक में टेलीविजन स्क्रीन पर भी एक जाना पहचाना चेहरा बन गए थे। क्यों, आपको याद है ना, हम लोगों की वो एंकरिंग जो अशोक कुमार जी काला रंग का चश्मा पहनकर किया करते थे।

1988 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो भारत सरकार द्वारा किसी भी फिल्मी हस्ती को दिए जाने वाला सबसे ऊंचा सम्मान है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 1998 में पद्म भूषण अवार्ड भी मिला। तो दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: नमस्कार आदाब, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त आरती और आप सुन रहे हैं SN रेडियोस और रेडियो तांतिया भील 90.8 FM पर मेरा और आपका मनपसंद प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, शायरी सिर्फ कागजों पर उतरे हुए लफ्ज नहीं होते, बल्कि वो जज्बात हैं जो हम अक्सर कह नहीं पाते। कभी जिंदगी सवाल बनकर सामने खड़ी हो जाती है तो कभी खामोशी हमारी हमसफर बन जाती है। आज की शाम इन सवालों और खामोश एहसासों के नाम करते हैं। तो चलिए दिल की धड़कनों को थोड़ा सा थम कर चलने को कहते हैं और शुरू करते हैं आज का ये हसीन सिलसिला। आज के प्रोग्राम की खसूसी बात यह है कि आज के प्रोग्राम में हम एक बिल्कुल ही नई किस्म की गुलूकारों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसमें सूफिया कलाम भी है। तो आप कह सकते हैं ये फ्यूजन गजल्स हैं। आई होप आपको पसंद आएंगी। तो शुरू करते हैं। शेर हाजिर है। कभी उदास आंखों में रहता है वो चेहरा रात दिन, उस चेहरे पे नूर हो ये जरूरी तो नहीं। सफर में साथ चलते हैं यहाँ कितने ही लोग, हर एक हम सफर ही हो ये जरूरी तो नहीं। या फिर फिजा में रंग बिखरे हैं तुम्हारी याद के, फिजा में रंग बिखरे हैं तुम्हारी याद के, हर एक रंग में तू ही हो जरूरी तो नहीं। कभी खामोशियां भी तो बहुत कुछ कहती हैं, हर एक बात लफ्जों में हो जरूरी तो नहीं। तो आइए दोस्तों ये खूबसूरत सी गजल सुनते हैं जिसका मिसरा है हर एक ख्वाब मुकम्मल हो जरूरी तो नहीं, मोहब्बत में सभी खुश हों जरूरी तो नहीं। मुलाहिजा फरमाएं।

उसको रुखसत तो किया था, मुझे मालूम ना था। सारा घर ले गया, घर छोड़ के जाने वाला। एक मुसाफिर के सफर जैसी है सबकी दुनिया, एक मुसाफिर के सफर जैसी है सबकी दुनिया। कोई जल्दी में है तो कोई देर से जाने वाला। दोस्तों, जगजीत सिंह साहब की रूहानी आवाज में ये गजल सुनिए। अब खुशी है।

बात लब पर आई मगर रुक गई थी, कोई हया से निगाहें झुक सी गई थी। वो अदा से दुपट्टे को मुंह में दबाना आफते जान है उनका मुस्कुराना। सर्द रातों में चमकते हुए ख्वाब आते हैं, सर्द रातों में चमकते हुए ख्वाब आते हैं। उनकी यादों के मौसम बेहिसाब आते हैं और उनका सितम ढा के फिर खुद ही रूठ जाना। आफते जान है वो उनका मुस्कुराना। लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत सी गजल सुनिए और बह जाइए प्यार के डूबे हुए एहसास में।

0: दोस्तों, ये रूठ ना मनाना तो बस इश्क की अदा है। दोनों की ही इसमें जीत है, ऐसी ये सजा है। आपने कभी उस प्यार करने वाले आशिक की लड़ाई सुनी, जहां उसका उलाहना और शिकायतें सिर्फ इसलिए हैं कि उसको और भी प्यार किया जाए। प्यार और ज्यादा प्यार पाने की जद्दोजहद में वो अपने महबूब से हक से शिकायत करता है, जिद करता है और कहता है, पास अपने बिठा लीजिए, हाथ मेरा थाम लीजिए, ऐसे नहीं मानूंगा, अब रूह में समा लीजिए, ऐसे नहीं मानूंगा। लफ्ज़े शिकायत आज मेरे होंठों पे धरे हैं, लफ्ज़े शिकायत आज मेरे होंठों पे धरे हैं, पर आपकी नजरों में तो पैमाने भरे हैं। तो फिर नजरों से पिला दीजिए, ऐसे नहीं मानूंगा। तर्के वफा की बातें, वक्त कहने की बातें, तरके वफा की बातें, फक्त कहने की बातें, बिन आपके कटती नहीं ये तन्हा रातें। गजल सुनिए, आंखों से मना लीजिए, ऐसे नहीं मानूंगा, होठों से चुरा लीजिए, ऐसे नहीं मानूंगा। शक फरमाए।
1: लफ्जों का आईना।

तू चला गया तो ये सांसें चलेंगी कैसे। तू चला गया तो ये सांसें चलेंगी कैसे। दिल के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ूंगा कैसे। जिंदगी भर तेरी चाहत में तड़पूंगा कैसे। तू बता दे कि मैं अब जी पाऊंगा कैसे। अगर तूने मुझे अब यूं ही रुलाया तो मिट जाऊंगा। तेरे बिन मेरी जान मैं बिखर जाऊंगा। उम्र भर इन तन्हा रातों को बिताऊंगा कैसे। प्यार इतना तो बता दे मैं जी पाऊंगा कैसे। तू चला गया तो ये सांसें चलेगी कैसे। दिल के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ूंगा कैसे। दोस्तों ये सूफियाना कलाम सुनिए। दिन रात तड़पता हूँ दिन रात जलता हूँ। तू दूर हुई जब से दिल टूट गया तब से। तू दूर हुई जब से रुख बदल गया तब से। ये सूफियाना कलाम।

0: Station for the past 12 years now, and मैंने आज तक आई मीन सिंस 2007 मैंने डॉक्टर के पास नहीं गया हूँ एज ए पेशेंट. सो दैट्स माय लिमिटेड बैकग्राउंड. सो आई कैन आई डोंट वांट टू गो ऑन एंड ऑन.
1: सो दोस्तों आपने जाना कि रविशंकर साहब बेंगलुरु से हैं. बेसिकली वो कन्नड़ परिवार से बिलोंग करते हैं लेकिन बहुत ही प्यारे इंसान हैं. उन्होंने हमारे आज के कलाकार जो एक गीतों का प्रोग्राम होता है उसमें भी पार्टिसिपेट किया और आध्यात्म के बारे में आज हमारे से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं. तो चलिए सर, मुझे बात आध्यात्म की करनी है, बात स्पिरिचुअलिटी की करनी है. सो रवि सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लेट अस नो व्हाट एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी मीन्स फॉर यू. आध्यात्म से आपका क्या मतलब है सर?
0: ओके, मैं इट्स एन अननोन एंटिटी. कोई भी आज तक ठीक से उसके बारे में पूरा नहीं समझ गया है, ऐसा है, मैं मानता हूँ.
1: ओके,
0: इट इज लाइक बट टू हैव फेथ इन समथिंग दैट गिव्स पावर, एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस. विश्वास देता है और थोड़ा पावर भी देता है, मन का वो पावर देता है. एंड आई फील इट गिव्स एनर्जी ऑल्सो. कोई इट गिव्स बेहतर फीलिंग का वो विश्वास देता है हमारे लिए. दैट्स आध्यात्मिक जीवन मेरे मानना है वो.
1: एब्सोल्युटली, और एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट सर. आध्यात्म का वही मतलब होता है जैसा रविशंकर सर ने बताया. दोस्तों विचार करने की जरूरत है. ये एक ऐसे सब्जेक्ट है जो बहुत सब्जेक्टिव है, मतलब सबके अपने अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं इस बारे में. जैसे कुछ लोग मानते हैं अध्यात्म का मतलब है आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ अवर ओन सोल, हु आर वी, कौन है हम, उसी तरीके की चीजें. तो थैंक यू सो मच सर. आगे बढ़ते हुए I'll present this प्यारा सा भजन. इसकी प्रस्तुति है, प्यार से इसको सुनते हैं और मनन करते हैं, सोचते हैं.
2: जरूरी नहीं कि हर समय लबों पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति से कम नहीं जब इंसान इंसान के काम आए.

तो रविशंकर सर, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, ये दो शब्द हैं, धर्म और आध्यात्म। सर ये

0: एक ही चीज है या अलग अलग है? इज देयर अ डिफरेंस और आर दे द सेम?
1: आई थिंक इट्स डिफरेंट बिकॉज आई टॉट सोशोलॉजी एंड इन सोशोलॉजी वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ रिलीजन. सो देर इज एन सोशोलॉजिस्ट बाय नेम एमिली डर्कीम. सो ही डिफाइंस रिलीजन इज बिलीफ इन द सुपर नेचुरल पावर.
0: ओ
1: सो सुपर नेचुरल पावर. सो रिलीजन वो धर्म क्या है? आज जो हम धर्म का रूप देख रहे हैं वो थोड़ा सा अलग सा था वो अर्लियर. जब मानव जात आरंभ हुआ सिविलाइज सोसाइटी थोड़ा थोड़ा होने लगा. बिफोर तो अनसिविलाइज सोसाइटी था. सो थोड़ा थोड़ा बाद में सिविलाइज बना के वो चेंज करने लगा. सो उसके ऊपर और डेफिनेशन देता है कि इट्स एनीथिंग दैट इज बिलीफ इन सुपर नेचुरल पावर इज नोन एज रिलीजन. एंड अर्लियर देर वॉज नो गॉड एज सच. सो जो भी एनिमल मिलता था या स्पेशल ट्री होता था कॉमन ट्री होता था उसको लोग पूजा करते थे. सो लाइक बानियान ट्री मे बी और यू नो कोकोनट ट्री और सम कॉमन एनिमल दैट वाज अवेलेबल. तो पीपल यूज टू वर्शिप दोस थिंग्स. एंड आध्यात्मिक इज टोटली विदाउट दीज थिंग्स वन कैन बी स्पिरिचुअल. एंड इन रिलीजन विदाउट रिलीजन ऑल्सो वन कैन बी स्पिरिचुअल. एंड स्पिरिचुअलिटी इज टोटली लाइक यू सेड इट्स सब्जेक्टिव. सो दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स.
0: ओके, ऑल राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और दोस्तों, इस बात को समझने की आवश्यकता है, रविशंकर सर दरअसल सोशियोलॉजी पढ़ा हुआ है उन्होंने, और उसको वो पढ़ा भी रहे, तो सोसाइटी में किसी भी तरीके की जो एक ट्रेंड बनता है, फिर वो चाहे आध्यात्म के बारे में हो, धर्म के बारे में हो, मतलब रिलीजन के बारे में हो, या स्पिरिचुअलिटी के बारे में हो, उसके कुछ रीजंस होते हैं और उसकी कुछ हिस्ट्री होती है। रवि सर ने वही बताया, देर वॉज अ टाइम वेन प्रैक्टिकली देर वॉज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ एनी गॉड। उस वक्त लोगों को विश्वास चाहिए था, ट्रस्ट चाहिए था, तो उन्होंने कुछ अच्छे पेड़ जैसे बैनियन ट्री, पीपल का पेड़ हो या बरगद का पेड़ हो, इसी तरह या फिर केले का पेड़ हो, उसको अच्छा मानकर, पवित्र मानकर उसकी पूजा करनी शुरू की। तो वहां से रिलीजन शुरू हुआ, अध्यात्म उसका अलग एक रूप था। तो ये अगेन सोचने का विषय ज्यादा है, डिस्कशन का विषय ज्यादा है, तो आप जो सोचते हैं प्लीज हमें बताइए, जिससे कि हम लोग इस बारे में कुछ और बेहतर समझ सकें। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हुए एक प्यारे सा भजन सुनते हैं।
2: प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं।

0: बहुत सुंदर।
1: रवि जी, अभी हमने बात करी धर्म की, रिलीजन की, तो आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी की, तो क्या कोई पर्सन बिना रिलीजन के भी स्पिरिचुअल हो सकता है क्या? देखिए, देयर इज अ डिफरेंस, है ना, स्पिरिचुअल होना और रिलीजियस होना, इन दोनों में फर्क जानने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए। तो अगर कोई इंसान रिलीजियस ना हो तो क्या वो स्पिरिचुअल हो सकता है?
2: हाँ, जरूर हो सकता है। लाइक एज आई एक्सप्लेन, वन कैन बी स्पिरिचुअल विदाउट रिलीजन। मेरा पर्सनल केस में बताता हूँ। पहले मैं जब मैं समझने लगा जीवन के बारे में, हमारे पिताजी तो रोज पूजा करते थे, उसके पास के मिलता था, वो कैसे पूजा करता है, नैवेद्य देता था, वो सब उसके लिए मैं इंतजार करता था, क्योंकि नैवेद्य हो तो फल और शक्कर होता था, उसके लिए मैं इंतजार करता था। बाद में एक घटना हुआ हमारे घर में, हमारा पिताजी तो इतना भक्त थे भगवान का, उसको हार्ट अटैक हो गया। टेम्पल में ही हार्ट अटैक हो गया। आई वॉज टीनेजर एट द टाइम, एंड सोचने के लिए मेरे पास उतना ध्यान नहीं था। उसको देख के मेरे ऊपर बहुत प्रभाव हो गया और नेगेटिव प्रभाव हो गया। आई वॉज टोटली इम्पैक्टेड बिकॉज एज आई मेंशन, हमारा माता जी नहीं थे, सो बचपन से ही वो मेरा, जब मैं 4 साल का था उस वक्त ही वो गुजर गई। और माई फादर वॉज एवरीथिंग फॉर मी बिकॉज ही टुक केयर ऑफ 7 children, you know, single-handedly. So that person suffered because of even though he was so devotee of God, he had a heart attack in the temple, and that impacted me, and I left going to God, and I left everything. I didn't even did namaskar also to God. I forgot everything. But I was good. My belief is be good and serve good to the people, and you keep your mind and heart clean and do the service to the people. Whoever needs any help, you help them. Usko sahay kijiye, so uske liye madad kijiye. So aise karne se, man saaf rakhne se, wahi religion hota hai, wahi spiritualism hota hai. Achha insaan bana achha hota hai, aur achha kijiye, bura mat sochiye. मैं आज तक irrespective of the status or designation or caste or religion, I treat everyone equally. Whatever I say after the practice, without theory. I mean, I don't speak theory, only theory. I do practice that even to this day, even at this moment also. So that can be religion. So you need not follow any religious thing. Irrespective of all these things, one can be good. And that is religion according to me, and that is spirituality according to me.
1: दोस्तों, आपने सुना, रवि जी ने अपनी पर्सनल जिंदगी का एक उदाहरण बताया, उनके पिताजी का उदाहरण बताया, और वो किस तरीके से धर्म से यानी कि रिलीजन से दूर हुए, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को संभाला, आध्यात्मिक की तरफ बढ़े और स्पिरिचुअलिटी को अपनाकर किस तरीके से जिंदगी को खूबसूरत बनाया। ये फर्क बहुत जरूरी है जानना हमें। कितने ही तमाम साधुओं से, कितने ही तमाम महात्माओं से हम ये सब ज्ञान सुनते हैं, लेकिन हमारे आपके जैसे किसी इंसान से जब ये चीज पता चलती है एग्जाम्पल के साथ, तो हमें लगता है कि ठीक है ना, हम भी तो इन्हीं की तरह है, तो फिर इसी चीज को हम क्यों नहीं अपना सकते। तो रवि जी से ये सीखते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और पेश करता हूं, प्रस्तुत करता हूं ये प्यारा सा भजन।
3: भगवान की प्राप्ति पूजा हवन से नहीं की जाती, बल्कि विनम्रता, दया भाव

0: बहुत ही सुंदर भजन। रविशंकर सर, आपकी डेली रूटीन में एवरी सिंगल डे आपका आध्यात्मिक प्रैक्टिस क्या है? हाउ डू यू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी एवरी डे?
1: ओके, जैसे मैंने बताया, मैं तो इतना ट्रेडिशनल पर्सन नहीं हूं, लेकिन मैं कल्चरली आई फॉलो एवरीथिंग, बिकॉज मैंने देखा हमारे पिताजी को, यू नो, ही वॉज डूइंग द राइट टाइप ऑफ पूजा, सो हर क्रिया वो उन्होंने पालन किया। आई लाइट ए लैम्प इन फ्रंट ऑफ द टेम्प, आई मीन वी हैव ए स्मॉल यू नो गॉड्स प्लेस, सो देयर आई लाइट ए लैम्प एंड डू लिटल बिट ऑफ आई चैंट गणेशा, एंड हमारा घर का गॉड तो लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी है, सो उसका श्लोक है, उसको श्लोक वो मैं पढ़ता हूँ, रोज पढ़ता हूँ, अब तो आई हैव मेमोराइज द होल थिंग एंड आई कैन डू दैट, सो दैट आई डू दैट, बट अदरवाइज आई गो टू यू नो देयर इज अ गॉड बाय नेम सुब्रमण्य, सो सुब्रमण्य टेम्पल ट्यूसडे, टुडे ऑल्सो आई वेंट टू सुब्रमण्य टेम्पल, सो दैट्स, and beyond that I don't practice much of those things, but I follow cultural aspects, not deep into those you know godly things, so but like I mentioned earlier, I want to do good to the people, whoever is in need, that's my everyday. I am helping some one or the other person in one way or the other way, that's my belief.
0: All right sir, I get your point sir. This is extremely, extremely important, दोस्तों, इस बात को समझने की आवश्यकता फिर से बहुत ज्यादा है कि आप किस तरह से एवरी सिंगल डे अपनी प्रैक्टिस को करते हैं। तरीका कोई भी हो सकता है, अपनाया जा सकता है। आज रविशंकर सर ने एक प्यारा सा तरीका बताया है, हम उसे भी अपना सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए ये प्यारा सा भजन प्रस्तुत करता हूं, इसका आनंद लीजिए।
2: कोई इंसान जब बुरी भावना से कोई काम करता है तो दुख उसका वैसे ही पीछा करते हैं जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के कदमों का पीछा करते हैं।

0: कॉन्सेप्ट, एक बिल्कुल ही नया तरीका, एक बिल्कुल ही नया विधा रवि सर हमें बता रहे हैं। रवि सर ने बहुत मेहनत करके हिप्नोसिस सीखा और उसको किस तरीके से आध्यात्म की तरफ, मेडिटेशन की तरफ लगा रहे हैं, जोड़ रहे हैं। और जैसा रविशंकर सर ने बहुत प्यारी बात कही, जो कि मुझे बहुत ही प्यारी लगी, कि प्रार्थना में कुछ ना कुछ सेल्फिश मोटिव आ जाता है, हम ऊपर वाले से कुछ ना कुछ मांगते हैं। तो मेडिटेशन और प्रार्थना में ये फर्क होता है। पीछे कहीं पर मैंने एक कोट पढ़ा था जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगा। रविशंकर सर, आपको बताता हूं, मैं मंदिर गया, वो कोट कुछ इस तरीके से था, मैं मंदिर गया तो आज भगवान ने मेरे को ताना मारा, मतलब द गॉड एक्चुअली टीज्ड मी।
1: ओके।
0: रोज चले आते हो कुछ ना कुछ मांगने के लिए, कभी मिलने भी आया करो। डू यू गेट इट सर?
1: Yeah, I got it. So that's why I'm going now.
0: So, दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि भगवान से कभी मिलने भी जाइए, हर समय मांगने मत जाइए। तो इसको कहते हैं मेडिटेशन और प्रार्थना में अंतर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये प्यारा सा भजन प्रस्तुत करता हूं, इसे सुनते हैं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है।

0: बहुत सर, बहुत सुंदर। रविशंकर सर, क्या आप मानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्म से हम अपनी मेंटल टेंशन कम कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं? डू यू बिलीव इन दिस सर?
1: हाँ जरूर जरूर। सो वो क्या है, मेडिटेशन करने से रोज का वो जो टेंशन रहता है उसके उसको जरूर कम कर सकते हैं हम। क्योंकि थोड़ा टाइम देना है, 24 आवर्स में आजकल पीपल दे आर रनिंग अवे फ्रॉम द रियलिटी। सो सम बहुत आई हैव सीन सो मेनी पीपल who are not at peace, so they are struggling in life to get what economic, there is a saying hamare zindagi mein money is not the only thing, so money is not the only thing and people are focusing only on the money now, so because of the they are stressed up. So economic zone is only part of our life. There is social life, there is spiritual life, there is cultural life. You have to celebrate, you have to eat also. I have so many people, they don't eat properly. So you must have seen and I have seen people eating while watching the mobile phone or doing the work and eating. So we have to eat everything with five senses. You have to look at the food, you have to smell, you have to enjoy the aroma of the food, you have to touch the food, you have to taste the food, and you have to consume the food. Unfortunately, these are all getting stressed up, and meditation and other things will give you control. By doing so, you can enjoy your life, you can be relaxed, and you can focus on your own personal life and your family people also. That's my belief.
0: My God, beautiful. बहुत ही प्यारी बात कही रविशंकर साहब ने। दोस्तों, इस बात को समझने की बहुत सख्त जरूरत है, और ये गौर कीजिएगा, चारों तरफ हमें दिखाई दे रहा है। रविशंकर साहब ने एक बात कही कि हम ढंग से खाना भी नहीं खा रहे हैं, वी आर नॉट ईटिंग प्रॉपरली, जो कि हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज इस प्रकृति ने, इस नेचर ने या फिर गॉड ने बनाई। हम फोन देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, कर क्या रहे हैं हम? मुझे तो ऐसा लगता है, आध्यात्म की बात करूं अगर, तो हम अन्न का, यानी कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसका हम अपमान कर रहे हैं। वी आर इंसल्टिंग द फूड बाई लुकिंग इन टू अवर मोबाइल एंड ईटिंग इट। द गॉड हैज गिवन अस, द नेचर हैज गिवन अस सो मेनी ब्यूटिफुल फ्रूट्स, ब्यूटिफुल वेजिटेबल्स, कितना सुंदर सुंदर खाने के लिए, खूबसूरत दोस्तों, कलरफुल, ब्यूटिफुल। लुक एट द शेप ऑफ आवर लेडी फिंगर, लुक एट द शेप ऑफ आवर ब्रिंजल, लुक एट द शेप ऑफ मैंगो, कितने सुंदर है वो, और हम उनको देख नहीं रहे हैं। वेयर एज वी हैड बीन गिवन आईज टू वॉच दीज फ्रूट्स, वी आर वॉचिंग अवर मोबाइल। हाउ सैड इज दैट?
1: यस सर।
0: फिर इसके बाद हम स्पिरिचुअल होने की, आध्यात्म होने की, धार्मिक होने की और रिलीजियस होने की बात करते हैं। हम भगवान का तो अपमान कर रहे हैं, उसकी बनाई हुई चीजों का अपमान कर रहे हैं, अपनी चीजों को यानी कि मोबाइल का तो हम सम्मान कर रहे हैं, तो हम आध्यात्म कहां से हो गए? विचार करिए। आज रविशंकर सर ने एक बहुत बड़ी बात हम लोगों को समझाई है। प्लीज सोचिए आगे बढ़ते हुए, इस प्यारे से भजन को भी सुनिए और सोचिए। जीवन में कुछ पाना है तो झुकना सीखिए। कुएं में उतरने वाली बाल्टी झुकती है तभी पानी लेकर आती है।

0: रविशंकर सर, अभी आपने वैसे मुझे बताया, फिर भी मैं आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि जो यंग जनरेशन अभी आ रही है, जो कि ये मोबाइल देखते हुए खाना खाने वाली, उनको आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ क्यों आए? बिकॉज उनको हर चीज के लिए क्यों चाहिए? दे नीड बेनिफिट्स, बेनिफिट्स एंड बेनिफिट्स. सो व्हाट बेनिफिट्स दे विल गेट इफ एट ऑल दे विल कम टू स्पिरिचुअलिटी?
1: Yeah, of course, it's a challenging question. At the same time, maybe जवान था, maybe teenage में था, जैसे मैं बोला, there is a saying in Kannada. So, of course, I cannot. गाली गुद्दो वाइसु we say. गाली गुद्दो वाइसु means a young man can even he can punch the air. So that's the confidence he has got. So nobody can punch the air. It's an illusion. So youngsters are in illusion. So जो दिखाई नहीं देता है वो भ्रम भ्रमे करते हैं. भ्रम भ्रम के लोग में है वो, भ्रम के लोक में है वो. सो एंड दे शुड बी मेड अवेयर ऑफ रियलिटीज ऑफ द लाइफ एंड देन लिविंग इन इन्फैचुएशंस एंड इल्यूजन्स. सो वी आर ऑल चेजिंग समथिंग, वी आर ऑल चेजिंग समथिंग एंड एट द सेम टाइम दे शुड बी अट्रैक्टेड. Once we explain them what is the benefit they can get out of these things, they will come. I have seen, मैंने बहुत बोला जो मैं अटेंड किया रेकी एंड हिप्नोसिस, दे 7 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 16 साल का,

0: बच्चे लोग वहां पर थे, हमारा गुरुजी से बातचीत की वो, एंड दे आस्क ब्यूटिफुल क्वेश्चंस, एंड गुरुजी वाज सो हैप्पी दैट पीपल हु आर यंगस्टर्स, नॉट लाइक फ्रस्ट्रेटेड यंगस्टर्स, दे वर ऑल लर्निंग. सो एंड देर इज ए पाथ इन यू नो स्पिरिचुअलिज्म एंड मेडिटेशन वेयर दे कैन हैव कंट्रोल एंड दे कैन अचीव मोर ऑल्सो, बिकॉज द होल सिस्टम इज स्ट्रेस्ड अप. एजुकेशन इज सो स्ट्रेस्ड अप टूडे, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो इन द सेम डिपार्टमेंट. I can easily say today when we were young, we started to school at 10 o'clock in the morning and we were back by 4:30, and we enjoyed by carrying only three to four books. Today it's load. They are going to mountaineering, so they are going like mountaineering,
1: right?
0: And morning 7 o'clock they have to get up and they have to rush to the school, going in the bus. We walked to the school, we enjoyed, we cut our shoes, and we our pants and shirts were torn by playing and all. Today there is no such thing. Today people are running around, and they are running around everything. When you enter teenage, that's the same thing. When you enter workflows, that's the same thing. Sorry, sir. So that's a process today. That's a stressful process. So we have to enlighten them. So inform them in a proper way why they should follow this and what is the benefit they are going to get. So once they know the benefit, whoever it is, whatever it is, if the benefit is there, people will come. People will definitely follow the path. And this is the path.
1: Beautiful, so beautiful. आज की नई generation के लिए एक बहुत ही ज्यादा powerful message है दोस्तों, समझने की जरूरत है. जैसे रविशंकर सर ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि यंग जनरेशन तो ऐसी होती है दैट दे कैन पंच द एयर, हवा में भी मुक्का मार सकते हैं. बट सोच के देखिए ना, क्या हवा में कोई मुक्का मार सकता है? इज इट पॉसिबल? लेकिन आउट ऑफ शेयर देयर पावर, आउट ऑफ देयर शेयर यू नो पैशन, उनका ऐसा लगता है दे कैन डू इट, बट दैट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. रियलाइजिंग इट इज अ ग्रेट ग्रेट पावर. बहुत खूब रवि सर, आगे बढ़ते हुए चलिए एक प्यारा सा भजन हम अपने दोस्तों को सुनवाते हैं.
2: बोलो की कड़वाहट फिर भी चल जाती है, मगर भगवान के घर में मन की कड़वाहट की कोई जगह नहीं.

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। एक म्यूजियम से शुरू हुई कहानी, क्यूरियोसिटी की पावर। दोस्तों, कभी आप किसी ऐसे म्यूजियम गए हैं और वहां किसी एक छोटी सी लाइन ने आपको कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस किया है जिसने आपकी सोच बदल दी हो? कभी एक छोटी सी कहानी ने आपको रोक कर सोचने पर मजबूर किया हो? आज मैं आपको एक ऐसे स्टोरी टेलर के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी जिंदगी का डायरेक्शन एक म्यूजियम में पड़े हुए एक सच से बदल दिया। नाम है अरविंद विजय मोहन। उनकी कहानी सिंपल सी लगती है, लेकिन मैसेज बहुत गहरा है। एक वक्त था जब उनका इंस्टाग्राम भी बाकी लोगों की तरह था, ट्रैवल के फोटोज, लग्जरी प्लेसेस, खूबसूरत विजुअल्स, सब कुछ अच्छा था पर मीनिंगफुल नहीं। फिर एक दिन वो जर्मनी के एक म्यूजियम में गए, मर्सिडीज म्यूजियम। वहां उन्होंने पढ़ा मर्सिडीज नाम एक्चुअली एक छोटी सी लड़की का नाम था। एक फादर ने अपनी बेटी के नाम पर कार का नाम रखा था। एक बिजनेस डिसीजन के पीछे एक इमोशनल कहानी थी, और बस यहीं से उनकी सोच बदल गई, पूरा यू टर्न ले लिया समझो। उन्होंने महसूस किया हर चीज के पीछे एक कहानी जरूर होती है। हर ब्रांड, हर बिल्डिंग, हर इन्वेंशन किसी इंसान की एक कहानी ही तो है। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है उनकी क्यूरियोसिटी की जर्नी। उन्होंने डिसाइड किया कि इंस्टाग्राम पर सिर्फ फोटोज नहीं डालेंगे, कहानियां बताएंगे। और आज उनका कंटेंट सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होता, वो इंसाइट होता है, मीनिंग होता है। वो हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बना देते हैं, ब्रांड्स को ह्यूमन बना देते हैं, और फैक्ट्स को इमोशनल बना देते हैं। और सबसे खास बात, वो हर कहानी के बाद एक सवाल छोड़ देते हैं। हम अपनी कहानी कैसे बता रहे हैं, सोच कर देखिए। क्योंकि सच ये है, हर इंसान एक ब्रांड ही तो है, हर इंसान की एक स्टोरी है। पर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उस स्टोरी को समझते हैं और कुछ नहीं। अरविंद कहते हैं स्टोरी सिर्फ बताने के लिए नहीं होती, स्टोरी डायरेक्शन देती है। अगर आप अपने पास्ट को समझ लेते हैं तो आप अपने फ्यूचर को डिजाइन कर सकते हैं। सोचिए, अगर मर्सिडीज सिर्फ एक कार होती बिना किसी कहानी के, क्या वो इतनी आइकॉनिक होती? अगर कोई लीडर सिर्फ डेजिग्नेशन होता बिना स्ट्रगल की कहानी के, क्या लोग उसे कनेक्ट करते? नहीं। हम फैक्ट से इंप्रेस नहीं होते, पर कहानी से कनेक्ट जरूर होते हैं। और यही यही अरविंद का कोर मैसेज है। क्यूरियोसिटी को जिंदा रखो, सवाल पूछते रहो, सरफेस के थोड़ा नीचे देखो। और इंस्टाग्राम एक रिमाइंडर है, और उनका इंस्टाग्राम एक रिमाइंडर है कि दुनिया बोरिंग नहीं है। हमारी नजर बोरिंग हो जाती है, जब हम देखना सीख लेते हैं तो हर चीज में कहानी मिल ही जाती है। एक बिल्डिंग, एक नाम, एक पुराना सा बोर्ड, सब में हिस्ट्री छुपी हुई है। और शायद इसीलिए
उनके फॉलोअर्स सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं करते, वो सोचने लगते हैं। दोस्तों, आज का सवाल मेरा आपसे है, आपकी कहानी क्या है? आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं? अगर आज कोई आपकी बायोग्राफी लिखे तो उसमें सिर्फ डेजिग्नेशन होगा या कोई जर्नी भी होगी, कोई किस्सा भी होगा? क्यूरियोसिटी सिर्फ नॉलेज नहीं देती, क्लैरिटी देती है, और जब क्लैरिटी आती है तो इंसान ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। याद रखिए, जिंदगी में सिर्फ जीना नहीं, ऑब्जर्व करना सीखिए, क्योंकि कहानियां हर जगह हैं, बस देखने वाली नजर चाहिए। देख के देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: इंसान प्रोडक्ट नहीं खरीदता, कहानी खरीदता है। इसलिए 20 रुपए की कॉफी घर पर नहीं पीता, 200 रुपए देकर कैफे में बोलता है। यहाँ वाइब अलग है भाई।

नरेटिव का जाल, मीडिया सच नहीं सच का फ्रेम दिखाता है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है सच क्या होता है? और जो हम कहते हैं वो सच होता है या सच का सिर्फ एक हिस्सा होता है? मीडिया हमेशा झूठ नहीं बोलता, लेकिन मीडिया सच को कैसे दिखाता है वही असली खेल है। इसको कहते हैं फ्रेमिंग। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हेडलाइन आए, प्रोटेस्टर्स ने सिटी को ब्लॉक किया, और दूसरे आए, सिटीजंस ने जस्टिस डिमांड की। इवेंट सेम है, लोग सेम है, रोड वही है, बस शायद शब्द बदल गए, फ्रेम बदल गया, और आपका रिएक्शन भी आई एम श्योर बदल गया। यही कल्चरल मैनिपुलेशन का पहला बीज है, सच को छुपाना नहीं, सच को एंगल देना। एजेंडा सेटिंग, जो दिख रहा है वही इंपॉर्टेंट है। 1970 में कम्युनिकेशन रिसर्चर्स ने एक थ्योरी दी, एजेंडा सेटिंग थ्योरी। मीडिया लोगों को यह बताता है कि सोचना है, मीडिया लोगों को यह बताता है कि किस बारे में सोचना है। और अगर 10 दिन तक टीवी पर सिर्फ क्राइम दिखाया जाए तो लोग कहेंगे देश अनसेफ है, चाहे क्राइम रेट स्टैटिस्टिकली कम हो रहा हो। अगर 15 दिन तक इकोनॉमी की ग्रोथ हेडलाइन बने, लोग कहेंगे देश तो प्रोग्रेस कर रहा है, चाहे उनके घर का बजट टाइट ही क्यों ना हो। हम अपनी रियलिटी एक्सपीरियंस से कम, मीडिया के रिपीटेशन से ज्यादा बनाते हैं। अब थोड़ा सिनेमा की बात करते हैं। सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, सिनेमा कलेक्टिव इमेजिनेशन को डिजाइन करता है। हॉलीवुड ने 1940s एंड 50s में अमेरिकन सोल्जर को हीरो बनाकर वॉर को मॉरल ड्यूटी के रूप में प्रेजेंट किया। कोल्ड वॉर के दौरान विलेन का एक्सेंट अलग होता है, कलर ग्रेडिंग डार्क होती है, म्यूजिक टेंस होता है, आपका दिमाग स्लोली डिसाइड करता है कि ये लोग थ्रेट हैं। आपने कभी कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किया, फ्रेम ने आपके लिए जरूर डिसाइड किया। इंडिया में भी 70s 80s के दौरान एंग्री यंग मैन का राइज हुआ। सिस्टम करप्ट है, हीरो सिस्टम से लड़ता है, ऑडियंस क्लैप करती है। ये सिर्फ फिल्म नहीं थी, ये पब्लिक फ्रस्ट्रेशन का सिनेमैटिक आउटलेट था। सिनेमा इमोशन को आइडियोलॉजी में बदलने का सबसे सटल तरीका होता है। सबसे साइलेंट वेपन रिपीटेशन। मैनिपुलेशन लाउड नहीं होती, वो रिपीट होती है। एक इमेज को 50 बार देखिए, वो नॉर्मल लगने लगेगी। एक स्टीरियोटाइप को बार बार सुन लीजिए, वो जोक बन जाएगा, फिर ट्रूथ बन जाएगा। सच और कहानी का सच डिफरेंस ही नहीं रहता है। 1990 के एड्स याद कीजिए, फेयरनेस क्रीम इक्वल्स टू सक्सेस। शादी के रिश्तों में गोरी प्रेफरेंस, ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं थी, ये ब्यूटी स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग थी। और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्शन एस्पिरेशन बन गया। कल्चर को चेंज करने के लिए लॉज नहीं, विजुअल्स रिपीट किए गए। और अब आते हैं हमारा सबसे फेवरेट और सबसे नया एजेंडा, सोशल मीडिया एल्गोरिथम मैनिपुलेशन। अब आज मीडिया सिर्फ टीवी स्टूडियो में तो नहीं है, वो आपके हाथ में है हर समय। लेकिन यहाँ एक नया प्लेयर है, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि आप क्या देखेंगे। अगर आप एक पॉलिटिकल व्यू देखेंगे, आपको 20 और मिलेंगे। अगर आप एक आउटरेज क्लिप देखेंगे, आपको एक्सट्रीम वर्जन्स मिलेंगे। इसको कहते हैं एको चेंबर। आपको लगता है दुनिया आप जैसे सोच रही है, असल में एल्गोरिथम आपको फिल्टर बबल में रख के दुनिया दिखा रही है। आपको लगता है आप इन्फॉर्म्ड हैं, असल में आप एक क्यूरेटेड रियलिटी में जी रहे हैं। मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट, एक पॉलिटिकल थिंकर ने टर्म दिया था, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। इसका मतलब पब्लिक को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया जाता, कभी नहीं। पब्लिक को स्लोली कन्विंस किया जाता है कि जो हो रहा है वही सही है। रिपीटेटेड एक्सपर्ट पैनल्स, रिपीटेटेड ग्राफिक्स,
रिपीटेटेड नरेटिव्स, कहानियां, किस्से, लोग रेजिस्ट नहीं करते, लोग अग्री करने लगते हैं। कल्चर को फोर्स से नहीं, फ्लो से बदला जाता है। विलेन बनाना, हीरो बनाना, मीडिया किसी को भी विलेन बना सकती है, किसी को भी हीरो बना सकती है, वो भी रातों रात। क्लोजअप शॉट्स, सीरियस बैकग्राउंड म्यूजिक, सिलेक्टिव फुटेज, और हीरो सॉफ्ट लाइटिंग, बैकग्राउंड में अपलिफ्टिंग स्कोर, पॉजिटिव कमेंट्री। ह्यूमन ब्रेन स्टोरी टेलिंग का अडिक्ट है, हम फैक्ट्स नहीं स्टोरीज कंज्यूम करते हैं, और जो स्टोरी कंट्रोल करता है वो परसेप्शन कंट्रोल करता है। सबसे बड़ा सवाल, तो क्या मीडिया हमेशा गलत है? नहीं, मीडिया पावरफुल है, ताकतवर है, और पावर न्यूट्रल होती है, उसे कैसे हो वो मैटर नहीं करता। प्रॉब्लम तब होती है जब व्यूअर क्रिटिकल नहीं होता, सवाल नहीं पूछता, अपनी सोच नहीं इस्तेमाल करता। जब हम हेडलाइन शेयर कर देते हैं बिना सोर्स तक चेक करे, जब हम वायरल क्लिप पर रिएक्शन दे देते हैं बिना कॉन्टेक्स्ट देखे। कल्चरल मैनिपुलेशन तब सक्सेसफुल होता है जब ऑडियंस पैसिव हो। दोस्तों, सच को झूठ बनाना मुश्किल है, लेकिन सच को फ्रेम करके आधा सच बनाना आसान है। आज जब आप न्यूज देखें, फिल्म देखें या इंस्टाग्राम की रील देखें, एक सवाल जरूर पूछेगा, मुझे क्या दिखाया जा रहा है और क्या नहीं दिखाया जा रहा। क्योंकि नरेटिव का जाल तब टूटता है जब देखने वाला जागता है। जाग कर देखिए।

कोई और कंपनी पैनिक करती, जीनियस ब्रांड बोल उठे, देखिए ये पानी पर तैरता है। लेसन, बिजनेस में मिस्टेक भी फीचर बन सकती है।

बोरोलिन, एक हरी डिब्बी, एक देसी दास्तां। दोस्तों, आज मैं आपको किसी ग्लैमरस कॉस्मेटिक ब्रांड की कहानी नहीं सुनाने वाली। ना कोई फिल्मी इंडोर्समेंट, ना कोई फ्लैशी एड कैंपेन। आज की कहानी एक छोटी सी हरी टिन की डिब्बी की है, जो शायद आपके घर में जरूर

जरूर होगी, और अगर नहीं है तो कभी ना कभी तो जरूर रही होगी। नाम है बोरोलीन। हाँ, वही बोरोलीन जिसकी खुशबू आते ही बचपन की याद आज भी ताजा हो जाती है। शुरुआत 1930 में अंग्रेजों का दौर था। साल 1930, इंडिया अभी आजाद नहीं हुआ था। बाजार में ज्यादातर फॉरेन प्रोडक्ट्स ही मिलते थे। देसी चीजें बनाना एक हिम्मत का काम था। तब कोलकाता की एक व्यक्ति गौर मोहन दत्ता, इन्होंने डिसाइड किया कि एक इंडियन एंटीसेप्टिक क्रीम बनाई जाए। उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की, जीडी फार्मास्यूटिकल्स, और वहां से पैदा हुई बोरोलीन। नाम भी इंटरेस्टिंग है, बोरो आया बोरो एसिड से, जो इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है। ओलीन आया लिनोनिन से, जो स्किन को नरम बनाता है। मतलब नाम के अंदर ही फॉर्मूला छिपा है भाई। सिर्फ क्रीम नहीं, स्वदेशी सोच। उस टाइम बोरोलिन सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं थी, वो एक मैसेज थी, अपना बनाओ अपना लगाओ। फॉरेन क्रीम्स के सामने एक देसी जवाब, सिंपल ग्रीन डिब्बी, सीधा सा डिजाइन, कोई एक्स्ट्रा शोशा नहीं। और शायद इसी सिंप्लिसिटी ने लोगों का दिल जीत लिया सालों तक, शतकों तक। वो पहचान वाली खुशबू, आपने नोटिस किया है, बोरोलिन की एक खास स्मेल होती है, थोड़ी मेडिसिनल, थोड़ी कंफर्टिंग। कई ब्रांड्स टाइम के साथ फ्रेग्रेंस चेंज कर देते हैं, पर बोरोलिन ने अपनी ओरिजिनल खुशबू ऑलमोस्ट वही रखी है, क्योंकि वो समझ गए थे प्रोडक्ट सिर्फ स्किन पर नहीं लगता, यादों पर भी लगता है। दादी की संदूक में, माँ के पर्स में, स्कूल के बाद घुटने की चोट पर, हर जगह एक ही क्रीम, बोरोलिन। बिना शोर के पॉपुलर हुई बोरोलिन। आज के जमाने में ब्रांड बनाने के लिए सोशल मीडिया रील्स, इन्फ्लुएंसर्स, एड्स, सब कुछ चाहिए। पर बोरोलिन का असली एडवर्टाइजमेंट क्या था आप जानते हैं? लोग, एक घर से दूसरे घर तक, एक माँ से दूसरी माँ तक, वर्ड ऑफ माउथ। जब प्रोडक्ट सच में काम करता है तो लोग खुद ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। मुश्किल दौर में भी साथ दिया। 1947 का पार्टीशन बिजनेस के लिए टफ टाइम था, पर बोरोलिन का प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लोगों को उसकी जरूरत थी। छोटी सी कट, फटी हुई स्किन, सर्दी में फटी हुई एरिया, बोरोलिन हर घर का एक परमानेंट मेंबर बन चुकी थी। पैकेजिंग जो बदली नहीं। एक और इंटरेस्टिंग बात, मार्केट में इतने सारे नए एंटीसेप्टिक क्रीम्स आए, मॉडर्न ट्यूब्स, ग्लॉसी पैक्स, स्टाइलिश ब्रांडिंग, लेकिन बोरोलिन आज भी अपनी हरी टिन में ही मिलती है। क्यों? क्योंकि कभी कभी चेंज करना ग्रोथ नहीं होता, कभी कभी कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। वो टिन सिर्फ कंटेनर नहीं है, वो आइडेंटिटी है। सोचिए, अगर आपसे कोई पूछे घर में एंटीसेप्टिक क्रीम है, अक्सर जवाब होता है हाँ बोरोलिन है। ये होता है ब्रांड रिकॉल, जब प्रोडक्ट कैटेगरी का नाम ही ब्रांड बन जाए। बंगाल में तो बोरोलिन लोग घर का हिस्सा मानते हैं, शादी के सामान में, ट्रैवल बैग में, विंटर के टाइम बेडसाइड टेबल पर, सभी जगह जानी जाती है। 100 साल का सफर, लगभग एक सदी होने को आई है। ना अग्रेसिव मार्केटिंग, ना कोई सेलिब्रिटी फेस, सिर्फ एक चीज, भरोसा। और शायद इसीलिए बोरोलिन एक एग्जाम्पल है कि ब्रांड लाउड होने से नहीं, रिलायबल होने से बनता है। दोस्तों, कभी कभी सबसे सिंपल चीजें सबसे ज्यादा टिकती हैं। हरी भरी डिब्बी, एक सिंपल फॉर्मूला और एक देश की यादें। बोरोलिन सिर्फ क्रीम नहीं, वो कंटिन्यूटी है, वो रिमाइंडर है कि असली वैल्यू पैकेजिंग से नहीं, क्वालिटी से आती है। तो अगली बार जब आप बोरोलिन लगाएंगे,
सिर्फ स्किन हील नहीं होगी, शायद थोड़ी सी मेमोरी भी रिफ्रेश हो जाए। लगा के देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: नए ब्रांड्स, पैकेजिंग ग्लॉसी, एड फ्लैशी, इन्फ्लुएंसर रेडी। पुराने ब्रांड्स, हम 80 साल से खड़े हैं, तुम इंस्टाग्राम संभालो, हम भरोसा संभालते हैं।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हम सफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर आएंगे। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा रेडियो शो जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है संगीत की दुनिया का सरगमी रंग। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज का एपिसोड बेहद खास है और बेहद संगीतमय है, क्योंकि हमारी स्टूडियो गेस्ट हैं डॉक्टर शिखा कुलश्रेष्ठ, एक ऐसी प्रतिभाशाली कलाकार जिनका सफर संगीत, शिक्षा और क्रिएटिविटी, इन तीनों का एक खूबसूरत संगम है। डॉक्टर शिखा ने न सिर्फ पीएचडी इन म्यूजिक वोकल है, जिनका शोध राजस्थानी मांड गायकी पर केंद्रित रहा, बल्कि प्रयाग संगीत समिति से संगीत प्रभाकर, दयालबाग से पोस्ट ग्रेजुएशन और विक्रम यूनिवर्सिटी से एमएड जैसी उपाधियां इन्होंने अपने नाम की हैं। वो एक बेहतरीन स्टेज परफॉर्मर भी है, कई कॉम्पिटिशन में टॉप रैंक हासिल कर चुकी है और कई सिंगिंग इवेंट्स में जज के रूप में भी अपनी पहचान बना चुकी हैं। साथ ही मिलेनियम टीटी कॉलेज अकलेरा में सीनियर लेक्चरर के रूप में यंग माइंड्स को शेप कर रही हैं। आज हमसे हम जानेंगे उनका बचपन, उनकी म्यूजिकल जर्नी, उनके फेवरेट सिंगर, और हाँ, बीच बीच में हम उनसे खूब खूबसूरत लाइंस भी सुनेंगे, लता जी से लेकर आशा जी और उनके फेवरेट मेल सिंगर तक। तो तैयार हो जाइए सुरों, यादों और इंस्पिरेशन से भरी एक सोलफुल मुलाकात के लिए। शिखा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार आलोक जी, सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शिखा कुलश्रेष्ठ आप सभी को अपना प्यार भरा नमस्कार करती हूँ।
1: तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले शिखा जी, थोड़ा सा अपने श्रोताओं को अपना छोटा सा परिचय दें, आपकी शुरुआती जिंदगी कैसी थी, कहाँ आपकी पैदाइश है, अभी आप कहाँ रह रही हैं, कुछ अपने बारे में हल्का फुल्का बताइए शुरुआत के दिनों के बारे में।
2: हाँ जी, मेरा जन्म हुआ था अलीगढ़ में, यूपी में अलीगढ़ शहर है, वहां पर मेरा जन्म हुआ था। हाँ जी, हाँ। और क्या है कि मेरे फादर जो है वो रेलवे में थे, तो उनकी पोस्टिंग तो कहीं अलग अलग शहरों में होती रहती थी, ट्रांसफर होते रहते थे, तो मैं कई जगह रही हूँ, इसीलिए एमपी, राजस्थान, यूपी, सब जगह, सारे मतलब कई जगह पर रह चुकी हूँ मैं। तो मेरी जो सबसे पहले नागदा में ही मेरी एजुकेशन शुरू हुई थी, मैंने मतलब नर्सरी में मैं नागदा थे हम लोग। उसके बाद में फिर डैडी का ट्रांसफर हुआ तो हम लोग बयाना, फिर भरतपुर आए। भरतपुर में हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम रुके, 10 साल के करीब हम लोग रुके थे। फिर उसके बाद मेरे डैडी का ट्रांसफर हो गया आगरा में, फिर हम लोग, मेरी पूरी एजुकेशन फिर आगरा में हुई। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई, मैं कोटा आ गई, अभी मैं कोटा में ही हूँ।
1: बहुत खूबसूरत, अलीगढ़ तो बड़ा फेमस जगह है, और मुझे तो इसलिए बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप अलीगढ़ की पैदाइश है, क्योंकि शायद आपको नहीं पता होगा मेरी भी अलीगढ़ की पैदाइश है। अच्छा, तो मुझे अच्छा। बहुत मजा आया, हालांकि हम राजस्थान में रहे ज्यादा।
2: हाँ जी, मेरी मेरी दादी का घर वही है।
1: ओके ओके,
2: हाँ, मेरी दादी का घर वही है, तो इसलिए मैं, मेरी पैदाइश वही की है।
1: चलिए बहुत बढ़िया, ये तो अलीगढ़ से शुरुआत हो गई अपनी बातचीत की, सब अच्छी बात ही क्या है। अच्छा, तो शिखा जी अब ये बताइए कि क्या आपके परिवार में संगीत का माहौल था, या ये लगाव आपने अपने आप विकसित हुआ, ये कैसे हुआ धीरे धीरे, तभी फैमिली का माहौल भी?
2: हाँ हाँ, मेरे मेरे मेरी फैमिली में संगीत का माहौल था। मेरी मदर बहुत अच्छा गाना गाती है।
1: अच्छा।
2: और शायद मैंने उनसे ही सीखा था बचपन से, मतलब बचपन में थोड़ा गुनगुनाती थी मैं, उनको सुनती थी, तो तब मैंने सीखा था उनसे। और थोड़ा थोड़ा मुझे याद है कि सबसे पहले मैंने शायद उनका यशोमती मैया से बोले नंदाला, ये वाला गीत सुना था उनसे और वो ही मैंने सीखा था उनसे, मेरी मदर ने मुझे सिखाया था ये गाना।
1: तो आपकी मदर गाती थी ये, बहुत ही सुनकर मजा आ गया और उसी उन्हीं से उन्हीं की विरासत आपको मिली है। तो चलिए, ये तो चूंकि बात ही यशोमती मैया के गाने से हो गई है तो हम यहाँ एक गाना सुन लेते हैं आपकी मदर को याद करते हुए, एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं, उनके टाइम का कोई गाना सुनते हैं, है ना, आगे चलते हैं।

0: हाँ, तो वेलकम बैक शिखा जी। आपकी शैक्षणिक उपलब्धियां भी काफी प्रभावशाली है। सबसे पहले हमें बताइए कि संगीत में आपकी औपचारिक या फॉर्मल एजुकेशन किस तरह से शुरू हुई, क्या क्या किया आपने?
1: जैसे कि मुझे म्यूजिक का शौक बचपन से ही था, तो फिर उसको देखते हुए मेरे मदर फादर ने सोचा कि उसको कुछ म्यूजिक में ही कराया जाए। तो सबसे पहले मैंने ये प्रभाकर में ही मुझे एडमिशन दिलवाया था। तो डिस्टेंस कोर्स होता है ये, तो हाँ, तो इसमें जैसे होता है सर कि पहले जूनियर डिप्लोमा होता है, सीनियर डिप्लोमा, फिर प्रभाकर की डिग्री होती है। तो इस तरह से मेरा स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद मैंने 11th 12th में ही म्यूजिक लिया, फिर आगे फिर चलता गया। फिर मैंने BA में म्यूजिक लिया था, MA म्यूजिक वोकल से किया मैंने, उसके बाद PhD किया।
0: अच्छा, PhD भी म्यूजिक से ही किया आपने?
1: जी
0: ओके, ग्रेट।
1: जी म्यूजिक से PhD किया मैंने, म्यूजिक वोकल से। जी
0: अच्छा, वंडरफुल। तो आपका ये जो PhD का रिसर्च टॉपिक है शायद राजस्थानी मांड गायकी, तो ये
1: जी
0: क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। आपने क्या किया, किस तरह से PhD में इस पे काम किया?
1: मैं जैसे मैं आपको बताया कि मैं भरतपुर में रही थी छोटी से, अम्बुजा। तो मुझे शुरू से ही राजस्थानी लोकगीतों का बहुत शौक था, बहुत लगाव था उससे मुझे। फिर जब मैं MA में आई ना, तो हमारे हमारे एक सेमेस्टर जो होता था वो डिसर्टेशन का होता था। तो डिसर्टेशन में हम लोगों को टॉपिक लेना था, तो मैंने अपनी मैम से पूछा, मैम क्या टॉपिक ले सकते हैं मैम? तो मैम ने कहा, बताओ तुम्हें कोई किसी किसी चीज में इंटरेस्ट है, कोई म्यूजिक में? तो मैंने बोला कि मैम मुझे राजस्थानी लोक संगीत में है इंटरेस्ट। तो फिर मैम ने बोला कि राजस्थानी लोक संगीत का पूरा ना लेके कोई एक शैली लेते हैं। मैंने कहा, मैम आप सजेस्ट करिए क्या ले सकते हैं। तो मैम ने मुझे ये सजेस्ट किया कि मांड गायकी पर आप कुछ करो। फिर मैंने उस टाइम पे डिसर्टेशन वर्क किया था उस पर, फिर उसी को मैंने आगे PhD

0: हाँ तो शिखा जी, अब ये बताइए, हम थोड़ा सा आपके फेवरेट सिंगर्स के बारे में बात करेंगे और चीजों के बारे में बात करेंगे, तो आपके फेवरेट फीमेल सिंगर्स कौन हैं? लता जी, आशा जी में से किसकी गायकी आपको ज्यादा इंस्पायर करती है, कुछ इसके बारे में बताइए खुल के हमें।
1: लता जी, आशा जी दोनों ही मेरी फेवरेट सिंगर्स हैं। और उसके अलावा मुझे कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक जी और साधना सरगम जी, इनके गाने भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्रभावित करते हैं इनके गाने भी मुझे। जी
0: अच्छा,
1: जी जी
0: गीता दत्त कैसी लगती हैं आपको?
1: गीता दत्त, ओहो बहुत ही बहुत, मतलब उनकी तो बात ही अलग है।
0: जब अपने जमाने में वो गाती थी तो किसी जमाने में वो भी टॉप की सिंगर थी,
1: जी जी बिल्कुल
0: लता जी उस
1: बिल्कुल
0: टाइम
1: बिल्कुल
0: आई
1: मैं,
0: आई थी।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनके गाने भी मैं गाती हूँ, उनकी बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं गाती हूँ उनको।
0: अच्छा, आप थोड़ा सा सहज हो जाइए, और अगर हमारे श्रोताओं को आप लता जी का कोई दो लाइनें सुनाइए, कोई मुखड़ा सुनाइए, जो भी आपकी इच्छा हो वो सुनाइए, फिर हम आशा जी का भी सुनेंगे आपसे, और सहज होके बिल्कुल आराम से सुनाइएगा।
1: जी जी जी जी बिल्कुल।

0: मेरे पैसे का था सॉन्ग।
1: हाँ, और सुनाइए कोई आशा जी का सुना दीजिए।
0: आशा जी की गजल, आशा जी की गजल सुनाऊंगी,
1: गजल सुनाएंगे। अच्छी गजल
0: हाँ, जो
1: सुनाइए।
0: मेरी मेरी
1: और फिर
0: फेवरेट गजल है।
1: कोई आशा जी का जो आइकॉनिक एनर्जेटिक लाइंस वाला भी सुनेंगे
0: जी
1: आपसे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।

0: इश्क के आइए बैठिए जानी जो शौक से लीजिए जी इश्क के
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे पता है आप बिना म्यूजिक के गा रही हैं और साउंड भी थोड़ा ईयरफोन से उतनी मजा नहीं आता, लेकिन बहुत बढ़िया मजा आ गया। और अगर ये म्यूजिक के साथ होता तो बस वाह क्या बात होती। लेकिन शिखा जी आप ये बताइए कि आपका आपका फेवरेट मेल सिंगर कौन है, पुराने दौर का हो या नए दौर का हो, और किसी मेल सिंगर का भी कोई फेवरेट गाना हो तो गुनगुनाइए, और भले एक बुखड़ा गा दीजिए एक अंतरा भी गा दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है।
0: जी, मुझे पुराने सिंगर्स में ही रफीज मोहम्मद रफी जी और किशोर जी, ये दोनों सिंगर्स के सॉन्ग बहुत पसंद है, तो मैं मोहम्मद रफी जी का एक गीत सुनाना चाहूंगी।
1: हाँ हाँ बताइए।
0: तुम जो मिल गई हो तो ये लगता है ये जहां मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है जहां बैठो ना दूर हमसे, देखो खता न हो, बैठो ना दूर हमसे, देखो खता न हो, किस्मत से मिल गए हो

0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मजा आ गया, बहुत अच्छा। और रफी जी का तो ये आइकॉनिक सॉन्ग है जिसको सुनने में हम लोगों को बहुत मजा आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड।
1: धन्यवाद
0: चलिए चलिए, बहुत
1: धन्यवाद
0: बहुत शुक्रिया आपका। और फिर हम आपकी गायकी बारे में, जरा इंटरव्यू खत्म हो जाए तो हमारे रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर साहब का मैसेज आया है कि हम लोग कुछ आपसे बात भी करना चाहेंगे इसके बारे में। चलिए,
1: जी।
0: तो आपके संगीत के सफर में अब ये बताइए, फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है? क्योंकि ये एक ऐसा काम है संगीत का, जो डिवोशन का काम होता है संगीत, तो इसमें
1: जी
0: ऐसा नहीं हो सकता कि बिना फैमिली के सपोर्ट के ये आगे बढ़ा पाए। स्टेज पे भी जाना पड़ता है आपको, प्रोग्राम्स में भी जाना पड़ता है, तो बताइए किस तरह से चलता है सारा काम?
1: बिल्कुल, फैमिली मुझे पूरा सपोर्ट करती है। मेरी मदर इन लॉ भी मुझे पूरा सपोर्ट कर रही है। मेरी बच्चे तो बच्चे भी कर ही रहे हैं, और हस्बैंड का
0: अच्छा,
1: तो हाँ, हस्बैंड तो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं कि मुझे बाहर भी लेके जाना है कभी कोई परफॉर्मेंस के लिए, तो वो भी जाते हैं मेरे साथ। और जब तक मेरा परफॉर्मेंस रहता है वहां पे, मैं हूँ वहां पर, तब तक मेरे साथ ही रहते हैं, हर जगह मुझे लेके जाते हैं।
0: वेरी
1: और
0: गुड।
1: हाँ, और मदर इन लॉ भी कभी मुझे कभी मना नहीं किया कहीं भी जाने के लिए। किसी भी टाइम हो, कुछ भी हो, मैं चली जाती हूँ आराम से। मुझे मतलब कुछ भी, घर में भी चिंता नहीं होती कि मुझे कुछ काम करना है। मेरे दिमाग में अगर कोई ऐसे सपोर्ट करने वाला, मैं दिमाग में नहीं रहता है कि आपको घर के भी
0: वाह,
1: काम संभालने हैं, अरे भाई ये काम रह गया, ये काम रह गया, उस चीज की मुझे चिंता नहीं रहती है।
0: तो अब ये बता, आपके हस्बैंड भी गाना गाना गाते हैं क्या? ये बताइए, आप दोनों
1: जी
0: मिलके गाना गाते हैं?

0: क्या?
1: नहीं,
0: नहीं,
1: नहीं,
0: अच्छा
1: हाँ,
0: यूट्यूब में ठीक
1: नहीं,
0: आते हैं।
1: उनको शौक
0: अच्छा,
1: नहीं है गानों का। हाँ,
0: ओके, सुनने
1: सुनने
0: का
1: का
0: शौक
1: शौक है। अच्छे श्रोता है वो, श्रोता
0: है। अच्छा,
1: बहुत
0: श्रोता है।
1: अच्छे हैं,
0: वेरी
1: श्रोता तो बहुत ही अच्छे हैं।
0: अच्छा, वेरी
1: हाँ
0: गुड, वेरी गुड, वेरी
1: जी,
0: गुड, वेरी गुड। तो उनका कोई फेवरेट गाना कौन सा, उनको पसंद कौन सा गाना है? कोई फेवरेट गाना है उनका जो आपसे कहते हैं भाई सुनाओ मेरे को वो गाना सुनाओ आज, तो ऐसा कोई है?
1: ऐसे कोई गाना, हाँ उनको ना पसंद है, तेरे बिना जिया जाएगा,
0: अच्छा
1: वो उनको पसंद
0: अच्छा
1: है।
0: तो गुनगुनाना चाहेंगी? आगे अपन बातचीत जारी
1: जी
0: रखते हैं
1: जी
0: उसके बारे में।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं
0: हाँ,
1: गुनगुनाना चाहती हूँ।
0: सुना दी, सुना दी, सुना दी।

अरे वाह, आपने हस्बैंड के नाम पे तो बड़ा अच्छा गाना सुनाया भाई, बड़े मन से गाया ये गाना। सबसे अच्छा यही गाया। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब इस मोड़ पे रुक के हम मेरे ख्याल में यही गाना देश पे सुन लेते हैं, हमारे रेडियो पे भी चलाते हैं इसको प्ले करते हैं। चलिए।

0: अच्छा शिखा जी, अब ये बताइए कि संगीत के अलावा आपके और कौन कौन से हॉबीज हैं, किस तरह से रिलैक्स करती हैं और क्या क्या करती हैं, किस तरह से इंस्पायर होती हैं अपना आगे का काम करने के लिए? अच्छा
1: मुझे म्यूजिक के अलावा मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, और हाँ, और मुझे क्राफ्टिंग का भी शौक है। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं जरूर करती हूँ। दोनों काम ऐसे हैं कि मुझे बहुत पसंद है।
0: अच्छा,
1: जी, बिल्कुल।
0: तो कुछ कुकिंग के बारे में बताइए, कौन सी फेवरेट रेसिपी है आपकी, क्या क्या बनाती हैं आप?
1: वैसे तो सभी सारी चीजें ही बना लेती हूँ मैं, लेकिन फेवरेट में आप कहेंगे तो मुझे मतलब लोगों को पसंद है मेरे हाथ के जो सब्जियां या कुछ भी डिश, तो जैसे मेथी मलाई मटर, कटहल की सब्जी, कटहल
0: अरे
1: की
0: वाह
1: सब्जी
0: वाह
1: यार,
0: वाह, कटहल की सब्जी
1: कटहल
0: मेरी भी फेवरेट
1: की
0: है।
1: सब्जी। जी बिल्कुल, आप आइए कभी तो आपको खिलाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कभी आएंगे तो आपके हाथ के खाएंगे। हमारे समीर जी से भी कहेंगे कि आप चलिए कटहल की
1: जी
0: सब्जी खा
1: जी
0: के आते, ये भी
1: बिल्कुल।
0: यूपी वाले हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, समीर जी भी
1: अच्छा
0: यूपी वाले हैं, तो
1: हाँ,
0: बिल्कुल
1: यूपी वालों को तो कटहल पसंद है।
0: कटहल पसंद है, बिल्कुल
1: हाँ
0: पसंद
1: जी, बिल्कुल।
0: है। सही है, चलिए चलिए, तो बहुत बढ़िया। अच्छा, आजकल थोड़ा सा हम अब आजकल के जो म्यूजिकल सिनेरियो है स्टेज शोज का, उस पे आते हैं, बातचीत करते हैं। तो आजकल छोटे बड़े शहरों में बड़े सारे म्यूजिकल ग्रुप्स हो गए हैं, कराओके क्लब्स हो गए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आपका ये जो म्यूजिक के प्रति मोहब्बत है, प्यार है लोगों का, इसको कैसे देख रही है आप? क्यों शुरुआत हुई है और इस तरह बढ़ता जा रहा है, क्या होगा इसका, कुछ इसके बारे में क्या सोचती हैं आप?
1: हाँ, कराओके क्लब और म्यूजिक क्लब्स में क्या होता है कि सब लोग, सारे संगीत प्रेमी जो मिलते हैं आपस में, एक तो सबका मनोरंजन होता ही है, और क्या, जो जैसे कभी कोई स्ट्रेस में है या कुछ है तो उससे ना स्ट्रेस फ्री भी हो जाते हैं म्यूजिक से। और जो मतलब जिनके अंदर मन में गाने की इच्छा है बहुत ज्यादा, तो वो है ना अपनी इच्छा को भी वहां पर आकर अपना पूरा कर लेते हैं। और सिंगर्स का ना इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है, बार बार परफॉर्म करते हैं, सीखने को भी मिलता है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, दूसरों से भी सीखने को मिलती है, तो कौन कैसा गा रहा है, हमें किससे किससे क्या चीज सीखनी चाहिए, वो चीज भी हमें मिलती है वहां पर। तो बस मैं मतलब मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज की शुरुआत हो गई है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि सभी तरह के लोग आ जाते हैं फिर गाने के लिए भी ना। तो ठीक है, जिसको शौक है, बिल्कुल शौक है, ठीक है, शौकिया तौर पर गा लिया वो करते हैं जैसे, और कुछ बहुत अच्छे भी आते हैं, दोनों तरह के ही लोग आते हैं। पर हाँ, ये है कि लोगों को एक ना प्लेटफॉर्म मिल गया है। अच्छा
0: सही बात है। देखिए, वैसे तो मैं अगर इसको देखूं कि म्यूजिक जो है हमारे घरों और बाथरूम से निकल के स्टेज तक पहुंचा दिया है लोगों ने,
1: जी, बिल्कुल
0: जिस
1: बिल्कुल।
0: तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेटेंट सिंगर थे, बिल्कुल दबी हुई प्रतिभाएं थी, वो भी सामने आ
1: हाँ
0: गई
1: हाँ
0: हैं। और लेकिन कभी कभी ये भी लगता है कि कुछ बहुत ज्यादा होता जा रहा है। आज की डेट में जयपुर में 22 तारीख को कम से कम 4 शोज हैं, जितने यहाँ वो है ऑडिटोरियम से, सब में कोई ना कोई शो है और सबके इनविटेशन है। अब बड़ी दिक्कत हो जाती है कि किसमें जाए,
1: कहाँ
0: कैसे
1: जाए,
0: जाए, क्या करें।
1: बिल्कुल।
0: तो और कई बार क्या होता है कि सिंगर्स वही घूम फिर के, वही जयपुर के 10 15 20 50 सिंगर्स हैं, वो घूम फिर के कभी इस ग्रुप में गा रहे हैं, कभी उस ग्रुप में गा रहे हैं, तो वही चलता
1: हाँ,
0: रहता है। कभी कभार कोई वो होता है, और फिर ऑनलाइन तो सारे चलते ही रहते हैं। तो
1: हाँ, मतलब
0: ये है, तो बात है। चलो आप, हाँ आप बताइए, कुछ कह रहे थे आप?
1: दोनों ही चीजें है ना, अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो होते हैं वो दोनों ही चीजें होती हैं हर फील्ड में, वो चीजें होते हैं।
0: सही बात है। तो आप कैसे फ्यूचर में देखती हो आप अपने सिंगिंग कैरियर को, किस डायरेक्शन में जाता हुआ देखती हैं आप, कुछ बताइए इसके बारे में।
1: फ्यूचर में मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा अपने सिंगिंग को थोड़ा और डेवलप कर दूँ, और परफॉर्मेंस अभी अपने कोटा में देती हूँ, बाहर भी जाकर दूँ, ये चीज सब प्लान कर रहे हैं हम लोग भी।
0: चलिए चलिए, बहुत अच्छा। तो चलिए, आपकी फ्यूचर के सिंगिंग कैरियर की जो ब्राइट कैरियर होने वाला है, उसके लिए रुक के एक गाना सुन लेते हैं और फिर बातचीत को जारी रखते हैं। अब हम करीब करीब आखिरी पायदान पर आ गए हैं।

0: और आखिर में शिखा जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगी यंग सिंगर्स, स्टूडेंट्स और म्यूजिक लर्नर्स के लिए? कोई स्पेशल मैसेज देना चाहें, कुछ उनको संदेश देना चाहें तो बताइए।
1: जी बिल्कुल, मैं संगीत प्रेमियों से और युवा सिंगर से मैं कहना चाहती हूँ कि म्यूजिक को बहुत प्यार करें। म्यूजिक को और उसके मतलब म्यूजिक ही ऐसी ऐसा फील्ड है कि उस मतलब आपके स्ट्रेस को भी दूर कर देता है, खुशी भी देता है, हर चीज भी देता है आपको। और म्यूजिक, लेकिन म्यूजिक ना रियाज मांगता है, रियाज को कभी मत छोड़ो, रियाज हमेशा करते रहना चाहिए उसका। और अपनी जो आवाज है उस पर मतलब कहना चाहूंगी कि आत्मविश्वास को बना के रखे अपने ऊपर। और जो कभी कुछ गलतियां भी हो जाती हैं अपने से, तो गलतियों से डरे नहीं, उसे सीखने को मिलता है। अगर हम कुछ गलती करते हैं तो उसको सुधार कर उससे कुछ सीखने को ही मिलता है। तो हमेशा ये भी ध्यान रखें और रियाज को कभी भी ना छोड़ें, रियाज करते रहें हमेशा।
0: चलिए, बहुत बढ़िया बात कही आपने। और मैं इसमें ये बात भी जोड़ देता हूँ श्रोताओं, कि जहाँ आपको स्ट्रेस फ्री करता है वो मिलते हैं, आपको इससे नए दोस्त भी मिल जाते हैं,
1: जी
0: बहुत
1: बिल्कुल,
0: जान
1: दोस्त ही
0: पहचान
1: मिलते हैं।
0: आपकी
1: हाँ
0: बढ़ती है, आपकी एरिया बहुत बढ़ जाता है। जब
1: बिल्कुल
0: आप कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं या स्टेज शोज में जाते हैं तो नए सिंगर्स मिलते हैं, फिर उनसे बहुत अच्छी अच्छी दोस्ती हो जाती है, प्यारे प्यारे लोग मिलते हैं। और सब लोग चूंकि सब ये संगीत के दीवाने होते हैं, तो उनमें एक आपस में एक भावनात्मक तो जुड़ाव भी हो
1: जुड़ाव हो
0: जाता
1: जाता
0: है,
1: है, जुड़ाव हो
0: जुड़ाव
1: जाता है,
0: एक
1: वो बिल्कुल
0: बड़ा
1: हो
0: प्यारा
1: जाता है।
0: होता है। और दूसरा है, और ये भी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स कह रहा हूं, कि जब हम संगीत के बारे में बात करते हैं, जो दुनिया में नेगेटिव चीजें हैं, है जो नकारात्मक चीजें हैं, एक दूसरे की बुराई करना, भलाई वो करना, वो
1: जी
0: सबसे भी हम दूर होते जाते हैं। तो
1: बिल्कुल
0: संगीत अपने आप में इतना प्योर है, इतना जेनुअन चीज है, कि जब हम संगीत की बात करते हैं या संगीत से जुड़े रहते हैं, तो हम दुनिया की हर नेगेटिव एनर्जी से दूर हो जाते हैं। तो श्रोताओं, संगीत के नाम पे बस यही है कि शिखा जी, आज बहुत बातें करके आपसे मजा आया, तो हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो वाह, क्या खूबसूरत बातचीत रही आज। डॉक्टर शिखा कुलश्रेष्ठ जी ने न सिर्फ अपने संगीत सफर की झलकियां हमारे साथ बांटी, बल्कि अपनी मधुर आवाज से हमारा दिल भी जीत लिया। शिखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर हमारे श्रोताओं के साथ ये म्यूजिकल जर्नी शेयर की।
1: जी
0: हम दिल से कामना करते हैं कि आपकी सुरों की ये यात्रा यूं ही आगे बढ़ती रहे और आप आने वाली जनरेशन की को भी इसी तरह से इंस्पायर करती रहे। दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे एक नई पर्सनैलिटी, एक नई कहानी और कुछ नई धुनों के साथ। तब तक सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो शो जिंदगी के रंग गीतों के संग। नमस्कार।
2: और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ जिंदगी के रंग गीतों के संग इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, और मैं हूँ आप सभी के बीच में आपकी रेडियो साथी आरजे भावना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हमेशा आप सभी के बीच में हाजिर होती हूँ लेकर समुदाय के चर्चा में एक नया विषय, और आज भी एक नए विषय के साथ में मैं आरजे भावना हाजिर हूँ आप सभी के बीच में लेकर ये बहुत ही खास और बेहतरीन जानकारी जो है नशा मुक्ति भारत अभियान पर। और आज के इस चर्चे के विषय में चर्चा में शामिल होने हमारे साथ मौजूद हैं ब्रह्म कुमारी से ज्योति बहन। ज्योति बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में, कृपया अपना परिचय दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय झाबुआ से मैं ब्रह्मा कुमारी ज्योति बहन, जो कि विगत 25 वर्षों से झाबुआ आदिवासी क्षेत्र में आध्यात्मिकता के द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हूँ।
0: दोस्तों, तो आपने जाना ज्योति बहन का परिचय, इन्होंने अपने बारे में बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण जानकारियां दी, और अब हम चर्चा के विषय पर आते हैं। तो ज्योति बहन, आप ये बताइए कि नशा मुक्ति भारत अभियान के लिए क्या कहना चाहेंगी हमारे श्रोताओं से?
1: आज का हमारा विषय है, जो कि भारत सरकार और ब्रह्मा कुमारी के MOU से एक बहुत सुंदर अभियान चल रहा है, नशा मुक्त भारत अभियान। इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि जो झाबुआ जिला है, हम सभी को ज्ञात है कि इस झाबुआ जिले में नशा बहुत मात्रा में फैला हुआ है। हम ये कहेंगे कि सुबह की शुरुआत और पूरे दिन का अंत अर्थात रात तक अधिकतर मनुष्य आत्माएं शराब में डूबी हुई रहती हैं, तंबाकू पाउच का सेवन करती हैं, और इस गिरफ्त में आज के छोटे छोटे बच्चे भी अछूते नहीं रहे हैं, वो भी इस गिरफ्त में आते जा रहे हैं। सर्वप्रथम हमें ये जानना है कि हम सभी परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान है, और परमात्मा ने हम सभी को एक बहुत सुंदर उपहार दिया है, और वो उपहार है हमारा शरीर। वैज्ञानिकों ने हमारे शरीर का आकलन करके इसकी कीमत लगाई है, जो है 220 करोड़ रुपए। आपको एक उदाहरण से समझाते हैं कि आज यदि हम एक 10 लाख की मारुति कार खरीदते हैं तो भी हम उसका कितना रखरखाव करते हैं, उसमें पेट्रोल डालना है तो पेट्रोल ही डालते हैं, समय प्रति समय उसकी सर्विसिंग कराते हैं। ऐसे नहीं कि आज हमारे पास पेट्रोल नहीं है तो हमने डीजल डाल दिया, नहीं, हम उस गाड़ी का बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन परमात्मा इतना दयालु है, इतना कृपालु है, और उन्होंने हमें 220 करोड़ रुपए का ये शरीर दिया है। आज मनुष्य आत्मा ने उसकी क्या हालत बना ली है। आज का मानव अपने शरीर के अंदर शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, गुटखा आदि डालकर अपने शरीर को डस्टबिन अर्थात कचरे का डब्बा बनाते जा रहा है। आज परमात्मा के सामने भी इन चीजों का भोग अर्थात नैवेद्य कभी नहीं लगाते हैं। परमात्मा के सामने भी हम बहुत सुंदर चीजों का भोग रखते हैं, और हम परमपिता परमात्मा को रोज याद करने वाले, अपने घर में हमने उनकी तस्वीरें लगा रखी हैं, लेकिन हम अपने शरीर में कितना गंदगी डाल रहे हैं, और उसके कारण जो है शरीर इतना कमजोर होता जा रहा है।
0: जी बहन जी, मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी आपसे कि ठीक है नशे की वस्तुएं हैं, लेकिन इंसान नशे का शिकार होता ही क्यों है, या फिर अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, कृपया इसके बारे में बताइए।
1: अब हमें ये जानना होगा कि व्यक्ति नशे का शिकार क्यों होता है। आज तक हमने जितना भी सर्वे किया या जो जो नशीली चीजों का सेवन करते हैं उनसे यदि हम पूछते हैं तो उनका एक ही उत्तर होता है कि दीदी, हम बहुत छोटे थे और हमारे दोस्तों ने हमें ऑफर किया कि पाउच खा लो या तंबाकू खा लो या थोड़ी सी शराब पी लो या गांजा ले लो, और हम उन्हें ना नहीं कह सके। और एक बार हमने बाल्यावस्था में ही उस चीज को लेना शुरू किया और धीरे धीरे हम जो है उसके आदि बन गए हैं।
0: जी जी मैम, बहुत ही बढ़िया आपने जानकारी दी। अब एक और सवाल था हमारे मन में कि आखिर ये नशा किन किन चीजों से हो सकता है या फिर किन किन चीजों से होता है, कृपया इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: तो नशा सिर्फ शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का ही नहीं है। आज एक और नशा इस समाज को अपनी गिरफ्त में लेते जा रहा है और वो नशा है मोबाइल का भी नशा। आज यदि हम देखते हैं कि कई घर परिवारों में सुनने के लिए मिलता है, दीदी बच्चा खाना नहीं खाता है और उसको जैसे हम मोबाइल दे देते हैं वो आराम से जो है मोबाइल देखता जाता है और भोजन करता जाता है। बच्चा रो रहा है, हमने उसको मोबाइल दे दिया। तो क्या आज हम अपने बच्चों को, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, हम उसको कैसा जीवन हम खुद ही प्रदान कर रहे हैं? तो वर्तमान समय की यह पुकार है कि हम सभी 24 घंटे में से घड़ी दो घड़ी आध्यात्मिकता को अपने जीवन में शामिल करें, आध्यात्म के द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं और आध्यात्म से ही हम सभी का जो जीवन है वो परिवर्तन हो सकता है। आज हमने अपने जीवन में कई परिवर्तन किए हैं जिसके लिए हम सोचते हैं कि हम विकास की ओर जा रहे हैं, लेकिन एकांत में बैठकर के यदि हम घड़ी दो घड़ी चिंतन करें तो हम अपने आप से यदि बातें करें या अपना आत्मविश्लेषण करें तो हमें ये पता चलेगा कि हम विकास की ओर नहीं बल्कि आज हम विनाश की ओर जा रहे हैं।
0: जी मैम, हमने सूक्ष्म रूप से ये जाना है कि नशे के कारण क्या क्या हो सकते हैं। अब हम संपूर्ण रूप से जानना चाहेंगे कि आखिर ये नशे के कारण क्या क्या है और इसका निराकरण कैसे किया जा सकता है या फिर इसके निवारण क्या है, कृपया इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: नशे के कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, जैसे किसी घर परिवार में बच्चों को स्नेह नहीं मिलता है और इस कारण जो है बच्चा अपने आप को अकेला महसूस करता है, तो वो जब बाजार में जाता है तो वो सुंदर पाउच यदि किसी पान की दुकान पर लगे हुए हैं तो उनकी ओर वो अपने आप आकर्षित होता है और एक बार यदि वो खाना शुरू करता है तो वो उसको बड़ा अच्छा लगने लगता है और वो उसका आदि हो जाता है। कहीं कहीं व्यापार में असफलता है या कहीं किसी को अपने प्यार में धोखा मिलता है तो भी हमने देखा है कि व्यक्ति जो है शराब का या सिगरेट का सहारा लेते हैं, या फिर आर्थिक परेशानियां हैं या व्यक्ति कोई बीमार है वो भी जो है फिर इस नशे की तरफ बढ़ता है और वो नशा जब करते हैं तो थोड़ी देर उनको बड़ा अच्छा लगता है लेकिन फिर जैसे ही नशा उतर जाता है तो फिर वही स्थिति होती है, फिर वो नशा करने लगता है, इस प्रकार वो इस चीज का आदि हो जाता है।
0: जी मैम, अभी आपने आध्यात्मिकता के बारे में बताया तो क्या आप ये बता सकती हैं कि आध्यात्मिकता का प्रयोग करके नशे से दूरी कैसे बनाई जा सकती है, इसका क्या रोल हो सकता है इसमें, कृपया इसके बारे में बताएं।
1: देखिए, नशे से दूर होने के लिए जैसे व्यक्ति कहता है आज मेरा शराब पीने का मन है या कह कहता है कि आज मेरा सिगरेट पीने का मन कर रहा है, तो सबसे पहले हमें जो है अपने मन को पावरफुल अर्थात शक्तिशाली बनाना होगा और मन शक्तिशाली दवाइयों से नहीं बनेगा, उसके लिए हमें थोड़ा आध्यात्मिकता की ओर मुड़ना पड़ेगा। तो जैसे कि ब्रह्मा कुमारीज में खास हम सिखलाते मेडिटेशन, जैसे एक डिस्चार्ज मोबाइल की बैटरी है और जैसे हमने उसको पावर हाउस से कनेक्ट किया तो हमारे मोबाइल की बैटरी रिचार्ज होने लगती है और मोबाइल हमारा कार्य करने लगता है। इसी प्रकार हमारा शरीर एक मोबाइल है और इसके अंदर एक बहुत सुंदर सिम है, वो है आत्मा, और इसके अंदर जो मन है वो बैटरी है। परमात्मा से अपने मन को कनेक्ट करना उसकी एक बहुत सुंदर विधि है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन से हम परमात्मा से सीधा कनेक्ट होकर के धीरे धीरे अपने मन को पावरफुल बनाते, मन को शक्तिशाली बनाते हैं। दूसरा, हम नशे को दूर करने के लिए दूसरा हम सहारा लेते हैं बुद्धिमत्ता का विकास। मान लीजिए हमारे पास में कोई व्यक्ति आता है सिगरेट पी करके आता है तो हम उससे घृणा करते हैं, आपके पास से बदबू आ रही है, आप दूर हो जाइए, मेरे पास मत बैठिए। या कोई व्यक्ति शराब पी कर आया तो हम उससे नफरत करते हैं, आपने बहुत शराब पिए, आप हमारे पास मत बैठिए। नहीं, हमें उनसे सबसे पहले स्नेह से प्यार से उनके साथ में पेश आना है कि देखिए आप शराब को कम कीजिए, सिगरेट को पीना कम कीजिए, और धीरे धीरे जैसे उसके बुद्धि में ये उतरेगा कि मुझे इससे दूर होना है। और मान लीजिए अगले दिन एक व्यक्ति एक दिन में 10 सिगरेट पीता है, लेकिन उसने अगले दिन 9 सिगरेट पी, उसने एक सिगरेट कम पी है, तो हमें उसको प्रोत्साहित करना है, शाबाश, वेरी गुड, आज आपने बहुत अच्छा किया, आपने एक सिगरेट को कम किया। इससे उसके अंदर उमंग उत्साह आएगा कि ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे फिर इस नशे को छोड़ने का प्रयास करेगा और उसमें सफलता मिलेगी। तीसरा, नशे को दूर करने के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ, जो कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी से भी हम निशुल्क ही प्रदाय करते हैं, जिसमें सिगरेट, तंबाकू और शराब को छोड़ने के लिए होम्योपैथिक दवाई देते हैं। और चौथा प्रकार है, कुछ घरेलू उपाय भी है, छोटे छोटे नुस्खे बनाकर उसका प्रतिदिन कई दिनों तक नियमित सेवन करने से भी हम नशे को पूर्णतया छोड़कर एक बहुत सुंदर शांतिमय जीवन बना सकते हैं। जो व्यसन का आदि व्यक्ति, उसको आत्मिक स्नेह की बहुत आवश्यकता है, लेकिन जैसे वो मेडिटेशन करता है तो उसको आत्मिक स्नेह के साथ साथ परमात्मा के प्रति भी वो आकर्षित होने लगता है। और जो जो मनुष्य आत्मा नशे का आदि व्यक्ति परमात्मा की ओर आकर्षित होता है, तो धीरे धीरे उसका जो ये नशा है वो छूटने लगता है, उससे एक रूहानी नशा, एक आध्यात्मिक नशा चढ़ने लगता है कि मुझे श्रेष्ठ कर्म करना है, अपने जीवन को श्रेष्ठ जीवन बनाना है, श्रेष्ठ कर्म करना है।
0: जी मैम, आपने अभी अभी कुछ घरेलू नुस्खे के बारे में बताया, तो हम जानना चाहेंगे और साथ ही जो हमारे श्रोता सुन रहे होंगे वो सभी भी जानना चाहेंगे कि आखिर कौन से वो घरेलू नुस्खे हैं जिसका इस्तेमाल करके हम नशे से दूर हो सकते हैं या फिर नशे को खुद से दूर किया जा सकता है। तो प्लीज मैम, वो घरेलू नुस्खे के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: हाँ, नशे को छोड़ने के लिए हम सौंफ, मिश्री, अजवाइन, तिल्ली, इन चारों को बराबर मात्रा में लेकर के अच्छा मिक्सर में पीस के उसका चूर्ण बना के और उसका दिन भर में 4 या 5 बार उसका सेवन करें, तो जो बार बार जो व्यक्ति का मन करता है मुझे गुटखा खाना है, पाउच खाना है या शराब पीना है, तो वो जो है धीरे धीरे उसका जो है मन उधर से हटने लगता है। दूसरा, एक अदरक का टुकड़ा, अदरक को छील कर उसका ऐसा स्लाइस बना करके भी व्यक्ति मुंह में रख करके उसको चूसता रहे, चबाता रहे और उसका रस अंदर लेता रहे, तो भी जो है पीने की या जो गुटखा खाने की वो धीरे धीरे तमन्ना जो है वो कम होने लगती है।
0: जी मैम, आपने बहुत ही बढ़िया और अहम जानकारियां दी हमारे श्रोताओं को नशे को लेकर, और साथ ही हमारे झाबुआ जिले के जो श्रोता सुन रहे होंगे वो शायद इसे समझ भी रहे होंगे कि नशा कितना खतरनाक है और हमारे दैनिक जीवन में, हमारे शरीर पर और आर्थिक जीवन में उसका क्या क्या नुकसान हो रहा है। तो इसे वो सुनेंगे, समझेंगे और साथ ही हम आशा करते हैं कि वो नशे से आज ही दूरी बनाना शुरू करेंगे। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे श्रोताओं को इतनी अहम जानकारियां प्रदान की, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो दोस्तों, आज आपने जाना नशे से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसी परेशानियों से अगर आपको सामना नहीं करना है तो कृपया नशे से दूरी बनाए। नशा कोई अच्छी चीज नहीं है, नशा एक बहुत ही गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है और वो बीमारी हमारी जान भी ले सकती है। इसलिए कृपया नशे से दूरी बनाए और जितना हो सके खुद को इससे दूर रखें और भी लोगों को समझाएं कि नशा न करें। नशा मुक्त रहेंगे तभी तो स्वस्थ जीवन जिएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
3: मंगल पांडे।
4: सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सन 57 की जय कहानी, कहानी जय है बड़ी पुरानी। मंगल पांडे वीर बड़ा था, अंग्रेजों से खूब लड़ा था, देश भगत था वह बलिदानी। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सन 57 की जय कहानी।
5: दादी जी।
6: अरे आशीष, दीपिका आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो। दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
7: हाँ पूछो।
6: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
7: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है, जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
6: अच्छा।
7: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
6: अच्छा।
7: यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
8: अच्छा।
7: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
6: मंगल पांडे।
7: हाँ, मंगल पांडे 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
8: अच्छा।
7: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ।

0: देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था।
1: बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
2: ऐसा क्यों?
1: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
4: दादी फिर क्या हुआ?
1: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
1: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
4: फिर क्या हुआ दादी?
1: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
2: अच्छा?
1: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
4: उसके बाद क्या हुआ?
1: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
5: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे।
6: नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं।
5: भले ही हमें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े।
1: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
5: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
1: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
7: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
8: मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
1: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉर्म आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
3: ए मंगल पांडे वो चाहिए।
1: सारी छावनी में खलबली मच गई।
2: उसके बाद क्या हुआ दादी?
1: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
7: अरेस्ट करो!
3: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे।
2: दादी जी, फिर क्या हुआ?
1: कर्नल व्हीलर वहाँ से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग दी। और मंगल पांडे जमीन पर गिर पड़ा।

0: को ठीक होना मांगता है, तुरंत अस्पताल भेजो।
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूँ।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
4: अच्छा।
2: इस कविता में क्रांति वीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
5: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल,
6: बलिया का मंगल पांडे के बल बेदी से ललकार भैल,
5: मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मशहूर चलल, गुरनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भैल, जननी के भेंट परान भैल, आजादी का बल बेदी पा, मंगल पांडे बलिदान भैल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
4: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
2: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
4: अच्छा।
2: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए और उन्होंने अंग्रेज अफसर को गोली मार दी, स्वाधीनता का बिगुल बजाया और देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। क्रांति के पुजारी की चिता की राख से निकली चिंगारी आग का शोला बनकर निकली और चारों ओर फैल गई। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: बहादुर कशिका।
2: काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
3: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
2: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
3: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
2: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
3: अच्छा माँ।
4: माँ, माँ।
3: लो, देवेंद्र भी आ गया।
4: दीदी, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
2: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
3: ठीक है माँ।
4: नाश्ता नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
3: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
5: ये बातचीत दिल्ली के किंग्सवे कैंप में रहने वाले भाटिया परिवार के बीच की है। पिताजी की किताबों की दुकान है, माँ घर में ही रहती हैं। पुत्री कशिका 8वीं कक्षा में और पुत्र देवेंद्र 6ठी कक्षा में पढ़ता है। 12 अप्रैल 1997 को इस घर में एक ऐसी घटना घटी जिससे कशिका भाटिया को हम हमेशा याद करेंगे। आइए सुनते हैं।
4: ये देखो दीदी, ये मारा।
3: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
4: अरे ये मारा।
6: अच्छा, तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
4: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
3: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
4: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
2: लगता है कोई आया है। काशु बेटी, देखो दरवाजे पर कौन है।
3: अच्छा माँ, कौन? आप लोग कौन? कहिए किससे मिलना है? अरे
7: हमें अंदर आने दो।
3: अरे क्यों?
8: ए लड़की, रास्ते से हट जा।
3: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
7: लड़की हट।
3: माँ,
7: ये चाकू देख रही है ना?
8: ज्यादा होशियारी मत दिखा।
3: अरे
8: वरना इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा। हट रास्ते से।
3: क्या हुआ?
2: देखो जल्दी आओ। ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
7: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
3: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
7: ये चाकू देख रही है ना?
3: छोड़ दो, मुझे मत मारो, कुछ मत करो।
2: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम,
7: जल्दी,
2: याद नहीं कहाँ रखी है, छोड़ दो।
8: बहाने बाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
2: अरे मेरे माँ को छोड़ो,
3: मेरी माँ को छोड़ो।
7: चुप चुप, आवाज निकाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
8: सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
2: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
3: देवेंद्र।
4: हाँ दीदी।
3: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
4: हाँ।
3: पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र, तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
4: अच्छा।
3: हेलो।
9: हाँ बेटा बोलो।
3: पापा पापा
9: हाँ, बोलो।
3: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
10: कौन घुसा है?
3: माँ को बहुत मार रहे हैं।
10: अच्छा तुम घबरा नहीं, नहीं तुम ऐसा करो, पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
3: अब देवेंद्र, मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
4: अच्छा।
7: घर में चोर घुसाए हैं क्या?
2: मदद करो,
5: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की।

मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया रेडियो 90.8 आवाज।
1: हड़प्पा संस्कृति, ये एक काल्पनिक कथा है जो ऐतिहासिक सूत्रों और संदर्भों के आधार पर नाटक प्रारूप में निर्मित की गई है।
2: तो आनंद लीजिए इस हड़प्पा संस्कृति का।
1: जी हाँ,

आज से कोई 4000 साल पहले हमारे देश के पश्चिमी हिस्से में कुछ बड़े बड़े नगर बसे हुए थे। इन्हीं में से एक प्रमुख नगर था मोइन जोदड़ो। मोइन जोदड़ो यानी मुर्दों का टीला।

जाहिर है कि जिस समय ये नगर फल फूल रहा था तब इसका नाम मोहनजोदड़ो नहीं रहा होगा, कुछ और ही रहा होगा। पर यहाँ की चौड़ी सड़कें, विशाल अन्न भंडार और सरोवर ऐसे ही रहे होंगे। यहाँ के रहने वालों का व्यापार दूर विदेशों तक फैला था। वे शांति प्रिय और कलात्मक रुचि के लोग थे। उनकी लिपि अभी तक सर्वमान्य ढंग से पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन उनके अनेक नगरों की विस्तृत खुदाई की गई है, जिससे वहाँ के जनजीवन पर काफी प्रकाश पड़ता है। उसी आधार पर प्रस्तुत है एक काल्पनिक कथा का।

0: क्या यही प्रसिद्ध व्यापारी शिमुक की दुकान है?
1: जी हाँ, यही है और मैं ही हूँ शिमुक।
0: जी
1: कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
0: जी मैं लोथल नगर का एक व्यापारी हूँ, उदंग। रुई बेचने यहाँ आया था। मैंने सुना था आपके पास धातु की बनी एक से एक सुंदर वस्तुएं हैं, बस देखने के लोभ से चला आया।
1: आज्ञा कीजिए, क्या दिखाऊं? धातु के हथियार, औजार या फिर मूर्तियां, आभूषण?
0: कोई सुंदर सी मूर्ति दिखाइए।
1: हाँ हाँ, ये देखिए।
0: हाँ।
1: कांसे की बनी हुई नर्तकी, कमर पर हाथ रखे ऐसे खड़ी है मानो नाचते नाचते पल भर के लिए रुक गई हो।
0: हाँ, अच्छी तो है मगर।
1: अच्छा, इसे छोड़िए, ये हार देखिए।
0: हाँ।
1: अभी दो दिन पहले ही बनकर तैयार हुआ है। सोने की पत्तियों के बीच कीमती पत्थर के कितने सुंदर फूल गढ़े हैं कारीगर ने।
0: वाकई बहुत सुंदर है।
1: तो ठीक है, इसे ले जाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से दिलमन तक ऐसा सुंदर हार किसी और व्यापारी के पास नहीं होगा।
0: वो तो ठीक है, पर ये तो काफी महंगा होगा। दरअसल मैंने अपनी रुई बेचकर उसके बदले आपके नगर से अनाज खरीद लिया है। अब मेरे पास इस हार को खरीदने लायक रकम नहीं है।
1: तो क्या हुआ, आप तो इधर आते रहते होंगे।
0: जी हाँ।
1: तो फिर आप ये हार ले जाइए, इसकी कीमत अगली बार दे दीजिएगा।
0: मगर।
1: अब इसमें अगर मगर की क्या बात है, आपके पास आपकी मोहर तो होगी ही।
0: जी हाँ, वो तो मैं हमेशा अपने कमरबंद में रखता हूँ।
1: तो फिर ठीक है, अपने इस सौदे की बाबत मिट्टी की पाटी पर लिखवा कर अपनी अपनी मोहर लगा देते हैं। जब आप अगली बार यहाँ आए तो रकम चुका दीजिएगा।
0: ठीक है, मुझे मंजूर है।
1: चुप्पन, अरे ओ चुप्पन।
2: आया माले। जी माले।
1: देखो चुप्पन, ये लोथल नगर के बड़े व्यापारी हैं उदंग, इन्होंने ये सोने का हार खरीदा है, पर इसकी कीमत ये अगली बार देंगे। अब तुम झटपट मिट्टी की पाटी तैयार कर, उस पर इस सौदे की बावत लिखो और उस पर ये मेरी मोहर और ये इनकी मोहर लगा कर ले।
2: अच्छा वाले।
1: आइए उदंग जी, आप जब तक यहाँ आराम से बैठिए।
0: क्या पार्टी तैयार करने में देर लगेगी?
1: हाँ कुछ देर तो लगेगी, क्या आप जल्दी में हैं?
0: नहीं, कोई विशेष जल्दी तो नहीं है, मेरा जहाज अन्न भंडार के पास रुका हुआ है, अनाज की लदाई चल रही है। मैं इस बीच नगर घूमने निकला था, सोचा था सरोवर तक जाऊंगा, देश विदेश के समाचार मिल जाएंगे, पर सामने आपकी दुकान देखकर रुक गया। हमारे लोथल तक भी आपकी दुकान की सुंदर वस्तुओं की बड़ी ख्याति है।
1: अच्छा, तो सरोवर देखने के लिए जा रहे हैं?
0: देखा तो पहले भी है, पर हर बार देखना अच्छा लगता है ना।
1: हाँ भाई, हमारे नगर की धड़कन है ये सरोवर, युवक युवतियों के मिलने जुलने की जगह। आज पूरे चंद्रमा की रात है, विशेष पर्व है। आज तो वहाँ न जाने कितने विवाह तय होंगे, कितने व्यापारिक सौदे तय होंगे। मेरी पत्नी और बेटी भी वहीं गई हुई हैं।
0: जी
1: चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ।
0: हाँ चलिए।

0: माँ आज पानी बड़ा ठंडा था माँ।
1: हाँ, जाकर कपड़े बदल लो बोधा, नहीं तो ठंड लग जाएगी।
0: जाती हूँ माँ, कोई कोठरी भी तो खाली हो। माँ माँ वो देखो पिताजी आ रहे हैं।
2: अरे उनके साथ वो सुंदर युवक कौन है, पहले तो कभी नहीं देखा।
1: हल्लो कोठरी खाली हो गई, अब तुम पहले कपड़े बदलाओ, सुंदर युवक को बाद में देख लेना।
0: माँ जाती हूँ।
3: इधर से आइए गंग जी।
4: जी
3: आइए आइए
4: जी,
3: इनसे मिलो, ये मेरी पत्नी है और ये है उदंग, लोथल के एक बड़े व्यापारी।
5: नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: बोधा नहीं दिखाई दे रही, क्या अब तक नहा रही है?
1: नहीं, कपड़े बदलने गई है, आ रही होगी।
3: और सुना यहाँ के क्या समाचार है, कौन कौन आया है?
1: मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी एक सहेली का बेटा बहुत अच्छा कारीगर है, ऊपरले शहर के कई बड़े बड़े मकान और हवेलियाँ उसकी निगरानी में बने हैं।
3: हाँ हाँ याद आया,
1: वो भी यहाँ है, मैं उसे बुला कर लाती हूँ, आप स्वयं बात कर लीजिए।
3: हाँ हाँ ठीक है बुला ला।
5: आप क्या कोई हवेली बनवा रहे हैं?
3: हाँ इरादा तो है, अभी तक हम लोग व्यापारियों और कारीगरों की निचली बस्ती में रहते आए हैं, अब मैंने ऊपरले शहर के एक पुराने धनी व्यापारी की हवेली खरीद ली है और उसे अपनी इच्छा अनुसार फिर से बनवाना चाहता हूँ।
5: जी
1: हाँ बेटा
3: जी,
1: ये मेरे पति हैं व्यापारी शिमुख।
5: नमस्कार।
3: प्रसन्न रहो। अरे भाई तुम्हारी उम्र तो बहुत कम है, इतनी छोटी सी उम्र में ही तुमने कारीगर के रूप में बड़ी ख्याति अर्जित कर ली है।
5: जी सब मातृ देवी की कृपा है।
3: अच्छा देखो स्थान तो तुम्हारा देखा भला ही है।
5: जी
3: उसमें आंगन का कुआं बिल्कुल टूट फूट गया है, उसे पक्का करवाना है।
5: जी
3: उसके अलावा मवेशियों के लिए मुझे एक और प्रवेश द्वार चाहिए जिससे मुख्य द्वार पर गंदगी न हो।
5: जी
3: मवेशियों के रहने की जगह भी पक्का फर्श बिछवाना है, ऊपर की मंजिल पर कम से कम 2 नहान घर बनवाने हैं जिनके फर्श और नालियां पक्की ईंटों के बने हुए हों।
0: और पिताजी मेरे कमरे में बड़ी बड़ी खिड़कियां होनी चाहिए जिनसे मुख्य सड़क दिखती हो।
3: लो भाई हमारी लाडली बेटी की फरमाइश का भी ध्यान रखना, बंद कमरे में इसका दम घुटता है।
5: जी मैं समझ गया, काम कब से शुरू करना है?
3: जब से तुम चाहो, कल मेरी दुकान पर आकर आवश्यक सामान लिखवा देना, 2-4 दिन में ही सब मंगा दूंगा, बस फिर तुम काम भी शुरू कर देना।
5: जी बहुत अच्छा, मैं कल सवेरे दुकान पर आ जाऊंगा। अच्छा नमस्कार।
3: नमस्कार,
0: नमस्कार। पिताजी आपने अपने इन मेहमान से मेरा परिचय नहीं करवाया।
3: अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया भाई उदंग, ये मेरी बेटी है बोधा, और बोधा ये लोथल नगर के व्यापारी हैं उदंग।
5: नमस्कार।
0: नमस्कार। लोथल में ही तो वो जहाजों की गोदी बनाई गई है ना? सुना है समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसका पानी गोदी में भर जाता है और बड़े बड़े जहाज भी अंदर चले जाते हैं।
5: हाँ ये तो ठीक ही सुना है आपने,
0: पर एक बात बताइए, जब ज्वार के बाद भाटा आता है तब तो पानी घट जाता है, तो वो जहाज कीचड़ में धस नहीं जाते?
5: नहीं गोदी में पानी को रोके रखने की व्यवस्था है, ज्वार का पानी अंदर आने के बाद उसके बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया जाता है।
0: ओह।
5: तभी भाटे के समय पानी कम हो जाने पर भी जहाज काफी पानी में सुरक्षित खड़े रहते हैं।
0: तो ये गोदी बनवाने का ख्याल आप लोगों को कैसे आया?
5: दरअसल हमारे शहर का व्यापार के क्षेत्र में इतना नाम तो था नहीं कि दूर देश के व्यापारी वहां तक आते, हमारे यहाँ सिंधु जैसी चौड़ी और गहरी नदी भी नहीं है कि उसमें बड़े जहाज चल सकते, लेकिन हमारे यहाँ कपास की खेती बहुत अच्छी होती है।
0: अच्छा।
5: हमारे कारीगर मिट्टी के बर्तन भी बहुत अच्छे बना लेते हैं, फिर उत्तर पूर्व में खेतड़ी से अच्छा तांबा भी निकलता है, इसलिए लोथल के लोगों ने मिलजुल कर ये गोदी बनवाई जिससे हम भी व्यापार में प्रगति कर सके।
0: और क्या क्या है आपके लोथल में?
3: मेरी बेटी को दूर शहरों के बारे में जानने की बड़ी लालसा रहती है।
5: ये तो बड़ी अच्छी बात है।
1: जरा सुनिए।
3: क्या बात है?
1: आपके मित्र ने बोधा के लिए जिस लड़के की बात कही थी वो भी आज यहाँ आया हुआ है, उससे मिलेंगे नहीं?
3: हाँ हाँ, लेकिन उदंक
1: वो तो बोधा से बात कर रहे हैं। चलिए इतने हम लोग उसे देख आते हैं।
3: अच्छा बोधा।
0: जी पिताजी।
3: मेरे मेहमान का ध्यान रखना, मैं और तुम्हारी माँ अभी आते हैं। हाँ
0: ठीक है पिताजी, आइए हम उधर चलकर बैठते हैं।
5: हाँ चलिए।
0: अच्छा लोटल में तो

0: रखते हैं।
1: अच्छा, तो आपका लोथल भी साफ सुथरा शहर है?
2: हाँ, आपके शहर जैसा भव्य तो नहीं है, लेकिन चौड़ी सड़कें हैं, पक्की नालियां हैं, और नालियों के बीच बीच में कूड़ा जमा करने के लिए गहरे गड्ढे भी हैं।
1: अच्छा,
2: इस मामले में दिलमन बिल्कुल उल्टा है।
1: क्या आप दिलमन भी गए हैं?
2: हाँ, व्यापार के सिलसिले में गया था। वहाँ के लोग सफाई का जरा भी ध्यान नहीं रखते।
1: काश मैं भी दूर दूर देशों की यात्रा कर सकती, व्यापार के तौर तरीके सीख सकती, लेकिन माँ कहती है ये सब तेरे काम नहीं है।
2: क्यों? अगर आपकी व्यापार में रुचि है तो इसमें बुराई क्या है? आपके पिता तो स्वयं एक बड़े व्यापारी हैं, आपको सब सिखा सकते हैं।
1: लेकिन वो तो बस इसी कोशिश में है कि कोई उपयुक्त वर तलाश करके मेरा विवाह कर दे।
2: ओ, हो सकता है विवाह के बाद आपको यात्रा करने और व्यापार सीखने का अवसर मिल जाए।
1: क्या मालूम।
3: बोधा, अरे बोधा, तुम यहाँ हो? हम तुम्हें सरोवर के निकट ढूंढ रहे थे।
2: वो हम लोग बात करते करते इधर निकल आए।
3: अच्छा अच्छा, आप मात्री देवी के दर्शन करना चाहते हो तो चले।
2: आपकी बेटी कह रही थी कि उनकी व्यापार में बड़ी रुचि है, फिर आप।
3: अरे छोड़िए भी, व्यापार करना भी कोई लड़कियों का काम है।
2: नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने दूर देशों की यात्रा की है, कई देशों में स्त्रियां इस तरह के काम करती हैं।
3: क्यों आप इस चिलफिरी लड़की का दिमाग खराब कर रहे हैं?
1: पिताजी,
3: ये सब करेगी तो फिर इसका विवाह कैसे होगा?
2: आप ऐसा वर तलाश कीजिए जो इन्हें ये सब करने की स्वतंत्रता दे।
3: फिर तो हो चुका विवाह। अरे ऐसा वर कहाँ मिलेगा?
2: अब ये इतना कठिन भी नहीं है। देखिए, मुझे ही लीजिए। मैं बहुत दिनों से ऐसी पत्नी की तलाश में हूँ जो अपने गहनों कपड़ों के अलावा भी कुछ सोचती समझती हो।
3: यानी आप विवाहित नहीं है?
2: नहीं।
3: तो फिर वो हार आपने किसके लिए लिया है?
2: वो अपनी भावी पत्नी के लिए।
3: अच्छा अच्छा
2: जी, यदि आपको आपत्ति ना हो तो मैं आपकी बेटी से।
3: आप ये निर्णय कुछ जल्दी में नहीं ले रहे हैं?
2: जी नहीं, जल्दी नहीं करूंगा तो शायद देर हो जाएगी।
3: क्यों बेटी, तुम्हारा क्या विचार है?
1: पिताजी।
3: अरे बोधा की माँ, इधर सुनो तो।
1: क्या बात है?
3: उदंक लोथल के बड़े व्यापारी हैं और अविवाहित हैं।
1: हाँ हाँ, ये सब आप मुझे बता चुके हैं।
3: ये अपनी बोधा से विवाह करना चाहते हैं।
1: क्या सच? क्यों बोधा?
3: लगता है बोधा को अपना मनपसंद साथी मिल गया है।
1: मातृ देवी की कृपा है। चलिए हम सब चलकर उनके दर्शन करें। आओ बोधा। चलो माँ। आओ बेटा, आइए।

कल्पित कथा में दो स्थानों का उल्लेख किया गया है, लोथल और दिलमन। ये दोनों स्थान कल्पित नहीं है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अलावा और भी बहुत से नगर प्रकाश में आए हैं, जिनमें रूपड़, कालीबंगा, रंगपुर, लोथल, भगतराव आदि प्रमुख हैं। गुजरात के लोथल नामक स्थान की खुदाई से ये पता चलता है कि यहाँ गोदी थी, जहाँ समुद्री जहाज आकर रुकते थे। यहाँ एक ऐसे जलमार्ग का प्रबंध किया गया था जहाँ ज्वार के समय समुद्र का पानी भर जाता था। उसके बाद फाटक बंद करके उस पानी को वहीं रोक लिया जाता था, जिससे बड़े जहाज भी इस गोदी में लंगर डाले खड़े रह सके। इस तरह लोथल व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। जिन दिनों भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति का विस्तार हो रहा था, उन्हीं दिनों मेसोपोटामिया में सुमेर सभ्यता पनप रही थी। खुदाई में ऐसी व्यापारिक मोहर मिली है जिनसे पता चलता है कि मेसोपोटामिया से हमारे व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया में एक राजा था जिसकी राजधानी अक्काद थी। वहां दिलमन

0: से
1: ये है मुझे परेशान करने की सजा।
2: माँ के आते ही गया दोनों का ध्यान भटक।

0: तभी तपाक से बोली पहेली।
1: हाँ, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का तो है मुझे पता,
2: बाकी के नाते मुझे आप ही दो हमें बता।
1: माँ बोलती, इससे पहले बूझो ने पहेली पर तंज कसा
0: और हंसते हुए बोला, भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है वसा।
1: दोनों की तनातनी देख माँ ने प्यार से दोनों को समझाया।
0: चलो सभी साथ में समझते हैं जो तुम दोनों ने अभी नहीं बतलाया।

0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
3: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
2: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं। और जैसा कि आपने बताया, इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
3: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
2: यानी कि आपके कहने के आधार पर क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे

0: शरीर में आ जाती है फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती है?
1: एक बार जब विसंगति आ जाती है, जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है, इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है।
0: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
1: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूर होता है उससे।
0: जी डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
1: हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्यकर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
0: जी बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर, सबके मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
1: जी, ये दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है, और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
2: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति ही खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
0: जी बताइए।
1: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब की तरफ से ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की खोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है?
1: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभाव से रोका जा सकता है, और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
0: तो दोनों को ही खानी।
1: हाँ, और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
0: अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं।
1: जी,
0: और डॉक्टर साहब, एक
3: क्या फाइलेरिया की दवाई बार खा लेने से साल में पूरे साल इससे बचा जा सकता है?
1: जी नितिन जी, ये एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
0: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
1: ये जब अभियान चलता है हम सभी यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें, जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
0: जी, और डॉक्टर साहब, एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
1: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु हैं वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, या विशेषता इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं। अच्छा। तो जब किसी का कोई भी अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
0: अच्छा। जी रात के 10 बजे से 2 बजे तक
1: वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
4: जी। और मेरे डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फिलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
0: जी बताइए।
1: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहाँ पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
0: जी
5: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज पर।
6: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
7: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।
8: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। खेतीबाड़ी कार्यक्रम में हम अपने किसान साथियों को खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं हमारे झाबुआ जिले के जो भी किसान साथी हमें सुनते हैं उनको एक उपयुक्त जानकारी उन तक पहुंचे, जिससे हमारे किसान साथी अपनी खेती में बदलाव कर सकें। क्योंकि हम और आप देखते हैं कि किसान साथियों के पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं खेती करने के, लेकिन हमारे किसान साथी सिर्फ 3-4 अपनी फसलों को करते हैं और उससे ही अपना घर का और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। और खास तौर पर यह देखा गया है कि यहाँ के किसानों को अगर देखा जाए तो वो खेती करने के बाद दूसरे राज्य में अपने पलायन कर जाते हैं और मजदूरी करते हैं, वहां से कमा के आते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि बस 2-3 फसलें हमारी हो जाती हैं, यानी 3 फसलें जो करते हैं उससे उनका पालन पोषण नहीं हो पाता है, ऐसा हमारे किसानों का कहना है। लेकिन हमारे किसान साथियों को बता देना चाहते हैं कि जो भी हमारे किसान साथी, चूंकि अब झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM जब से खुला है तब से हम किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियों पर अवगत कराते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं, साथ साथ में मौसम की जानकारी भी देते हैं। मौसम आधारित हमारे किसान साथी खेती कर सकते हैं, नई नई किस्में जो रहती हैं उसका भी चयन कर सकते हैं, बोनी से पहले हमारे किसान साथी किस तरीके से बीजों का उपचार करना चाहिए इस पर भी हम बातचीत करते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आज हम जो टैगिंग रहती है जीआई टैगिंग, जिसे कहते हैं बाजार में जब हम किसान अपना माल बेचते हैं तो जीआई टैगिंग लगाया जाता है, क्या होता है आखिरकार, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उस चर्चा से पहले आइए हम जान लेते हैं झाबुआ जिले के लिए मौसम आधारित जानकारी। ये जानकारी आपको दी जा रही है राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय से, और आपको बता देना चाहते हैं कि आने वाले 5 दिनों में आसमान में मध्यम घने से मध्यम छिटपुट बादल रहने की संभावना है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान 37 डिग्री से 43 डिग्री व 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। साथ में हवा दक्षिण पश्चिमी से पश्चिम दिशा से 12.7 से 22.9 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना बताई जा रही है। आगामी 5 दिनों में वर्षा 8 मिलीमीटर होने की संभावना बताई जा रही है। अभी तक अगर बरसात की बात करें, बरसात देखी जाए तो 22 जून को 1 मिलीलीटर वर्षा हुई थी, 23 जून को 4 मिलीलीटर वर्षा हुई थी, 24 को 3 और 25 को 0 मिलीमीटर वर्षा हुई है, 26 को 0 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना ऐसा बताया जा रहा है। उच्च तापमान अगर देखा जाए तो 22 को यानी कल 37 डिग्री सेल्सियस 23 को 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना बताई जा रही है। साथ में 24 को 41 डिग्री सेल्सियस और 25 को 43 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना बताई जा रही है। अब हमारे किसान साथियों को जो वैज्ञानिक सलाह देते हैं, क्या परामर्श है, उसको भी हम एक नजर डाल लेते हैं। जिले में मौसम पूर्वानुसार आगामी 5 दिनों में आसमान में मध्यम घने से छिटपुट बादल छाए रहने की संभावना बताई जा रही है। तापमान सामान्य से अधिक व वर्षा 8 मिलीमीटर होने की संभावना बताई जा रही है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वो ग्रीष्मकालीन फसलों की कटाई के बाद खेतों की सफाई कर लें व खरीफ फसलों की खेती हेतु खेत अपने तैयार कर लें। फसलों के बीज की बुवाई के समय उर्वरक व बीज को मिलाकर बुवाई कभी न करें। फसलों की बुवाई के पूर्व बीज उपचार अवश्य करें। इस हेतु बीज उपकरण, कल्चर और फफूंद नाशक दवाओं की व्यवस्था भी साथ में कर लें। खरीफ की फसलों की बुवाई 3 से 4 इंच वर्षा होने के बाद ही बुवाई करें। स्वयं के तैयार बीज की सफाई कर लें, उसके अंकुरण प्रतिशत की जांच कर लें। अंकुरण प्रतिशत यदि 70% है तो सही है, यदि 70% से कम होने पर नए बीज की व्यवस्था भी अवश्य कर लें। हमारे किसान साथी खरीफ फसलों की खेती हेतु आवश्यक जो खादों की व्यवस्था भी साथ में कर लें। पौधा रोपण भी कर सकते हैं हमारे किसान साथी, समय है क्योंकि बरसात कुछ हो गई है। हमारे झाबुआ जिले की अगर बात करें तो हमारे किसान साथी अब तैयारी में जुट जाएं और जैसे ही अच्छी बरसात होगी तैसे ही अपने बीज अपने खेतों में लगा सकते हैं। मक्का की अगर बात करें, मक्का में जो किसान को सलाह दी जाती है वो मक्का की खेती हेतु उपयुक्त किस्म जो है JBM 421, HPQM 1, JM 216 या मध्यम अवधि के संकर किस्म की जो बीज रहते हैं उनकी व्यवस्था अवश्य कर लें। सोयाबीन की अगर बात करें, क्योंकि सोयाबीन बोया जाता है तो सोयाबीन की खेती होती है उपयुक्त किस्में जो है JS 20 और 69, JS 20 98, RS 24, JS 2029, RVS 2001-4 आदि की व्यवस्था कर लें। अगर उड़द की बात करें, क्योंकि उड़द भी बोई जाती है तो उड़द की उन्नत किस्में जो है उत्तरा JU 66, PU 31, प्रताप उड़द 1 की व्यवस्था कर लें। ये अच्छी बीज है जो वैज्ञानिक बताते हैं, अच्छे बीज बताते हैं, उनकी व्यवस्था कर लें और जैसे ही पानी अच्छा बरसे और उनको अपने खेतों में लगाना शुरू कर दें। कपास होता है, कपास की उन्नत किस्में जो है DCH 32, BT 2 और कपास की किस्में हैं, इनकी भी अपन व्यवस्था कर लें। अगर हमारे किसान साथी ने फल वृक्ष लगाए हैं तो उनको क्या करना चाहिए, पूर्व में कलकायन हेतु काटे गए बेर के पुराने व देसी पेड़ में निकली शाखाओं में से 3 से 4 शाखाओं को छोड़कर शेष शाखाओं को काटकर अलग कर दें। नया बगीचा लगाने हेतु उचित दूरी किए गए गड्ढे शीघ्रता से बालू, मिट्टी या गोबर या बर्मी कंपोस्ट खाद से भर दें। उन्नत किस्म के फलदार पौधे की व्यवस्था भी कर लें। सब्जियों की बात करें तो नर्सरी के पौधों में पत्ती खाने वाली इल्ली को रोकथाम के लिए प्रोफेनेफस दवा जो रथ है वो 3.0 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव अवश्य कर दें। परामर्श क्या देना चाहते हैं कि अदरक व हल्दी की खेती हेतु प्रकंद की बुवाई करें। बुवाई पूर्व प्रकंद को डाइथेन एम 45 व कार्बोडाइजिम 2.0 ग्राम प्रति लीटर के घोल में बनाकर और इसको 20 से 30 मिनट तक डुबो कर रखें और बरसात की सब्जियों की रोपण में जल निकासी की उचित व्यवस्था भी कर ले हमारे किसान साथी। बरसात की सब्जियों की खेती हेतु मेड़ नाली पद्धति से खेत तैयार कर लें। पशु पक्षियों की अगर बात करें तो मुर्गी घर में जो खिड़कियां हैं व दरवाजे हैं पर्दे लगा दें, उसमें पशुओं को एग्रेशन गलघोंटू और लंगड़ी बुखार जैसा प्रकोप देखा जाएगा तो ऐसे में अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से सलाह लेकर उनको टीका अवश्य लगवाएं। ग्रीष्मकालीन

हरे चारे हेतु ज्वार की चरी के समय पर कटाई कर पशुओं को खिलाएं। दुधारू पशुओं को हरा चारा 25 किलोग्राम प्रति पशु प्रति दिन व आहार संतुलित आहार जो रहता है व मिनरल की आपूर्ति हेतु 50 ग्राम प्रति पशु प्रतिदिन मिनरल मिक्सचर की खुराक अवश्य दें। तो ये जानकारी जो आपको दी जा रही थी वो झाबुआ जिले के किसान साथियों के लिए दी जा रही थी। ये जानकारी आपको उपलब्ध कराई जा रही है वो राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय झाबुआ से कराई जा रही है। तो साथियों ये जो जानकारी आपको दे रहे थे उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। किसान साथी सोच के समझ के अपने खेतों में बुवाई करें क्योंकि अब बरसात का मौसम आने वाला है। पेड़ पौधे भी आसपास लगा सकते हैं, बागवानी भी कर सकते हैं। बागवानी के साथ साथ जो फलदार वृक्ष रहते हैं उनका भी हम लगा सकते हैं और अपनी बाग को अच्छा, बगीचा को अच्छा कर सकते हैं। उससे भी अपनी आय में वृद्धि हमारे किसान साथियों की हो सकती है। चूंकि काफी बातचीत हो गई है यहाँ पर हम एक गीत के साथ मनोरंजन करते हैं, सुन लेते हैं एक वीली गीत को। इसके साथ साथियों आपकी मुलाकात, हम एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की है वो है किसान मार्केटिंग यानी GI मार्केटिंग जो टैग लगती है वो क्या है आखिरकार, इस पर भी हम आपको रेडियो रिपोर्ट साझा करेंगे। तो आइए इसी भी सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: टैग या पहचान उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक में वहाँ की स्थानीय खूबियाँ मौजूद होती हैं। दरअसल GI टैग लगे किसी उत्पाद को खरीदते वक्त ग्राहक उसकी विशिष्टता और गुणवत्ता को लेकर आश्वस्त रहते हैं। भौगोलिक संकेत टैग का मूल उद्देश्य दूसरे लोगों द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेत के अनधिकृत उपयोग को रोकना है। GI टैग के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया में नयापन लाने वाले लोगों को इस बात की सुरक्षा दी जाती है कि उनके उत्पाद की नकल कोई और व्यक्ति या संस्थान ना करे। देश में इसके लिए बाकायदा कानून है। ये कानून आश्वासन धोखाधड़ी के खिलाफ कानूनी सुरक्षा देता है। यानी अगर कोई मलिहाबाद के नाम से बेचा जा रहा आम अगर मलिहाबादी नहीं है तो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही धोखाधड़ी करने वाले पर कार्रवाई कर सकते हैं और इस कानून के अंतर्गत किसी उत्पाद का पंजीकरण भौगोलिक उपदर्शन या संकेत कहलाता है। खेती के मामले में इसका फायदा किसानों को मिलता है। उपभोक्ता मशहूर जगह की असली कृषि उपज को ज्यादा भाव देने में गुरेज भी नहीं करते क्योंकि वहाँ की माटी का स्वाद, वहाँ की जलवायु की विशेषता और स्वाद की विशिष्टता इसमें समाहित होती है। इतना ही नहीं, ये टैग स्थानीय फसलों के संरक्षण का भी रास्ता साफ करता है। GI टैग मुख्य रूप से कृषि उत्पादों, प्राकृतिक उत्पादों, हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान के लिए दिया जाता है। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के नाते भारत ने GI टैग यानी भौगोलिक संकेतक के रूप में उत्पादों का पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 को मंजूरी दी। ये अधिनियम 2003 से अमल में आया है। भारत में साल 2004-05 में दार्जिलिंग चाय से शुरू हुआ GI टैग का सफर करीब 370 उत्पादों तक जा पहुंचा है। आपको बता दें कि 370 में से 130 उत्पाद कृषि और खाद्य क्षेत्र के हैं जिन्हें GI टैग मिला है। अगर राज्यवार बात करें तो असम की तेजपुरी लीची, जोहार चावल, असम कार्बी एंगलोंग अदरक, बिहार का कतरनी चावल, भागलपुरी जरदालू, मगही पान और शाही लीची को GI टैग मिला है। छत्तीसगढ़ के जीरा फूल, गुजरात के गिर केसर आम, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय व हिमाचली काला जीरा और राजस्थान की बीकानेरी भुजिया को GI टैग मिला हुआ है। GI टैग वाले उत्पादों से दूर दराज के क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था लाभान्वित हो रही है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैगिंग ने तब से और भी अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है जब से सरकार का ध्यान वोकल फॉर लोकल की ओर स्थानांतरित हुआ है और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है।
1: तो अभी हम सब ने एक खास रिपोर्ट देखी GI टैगिंग यानी कि भौगोलिक पहचान के बारे में, थोड़ा बहुत तो जान लिया। तो फिर आइए इसके बारे में हमारे विशेषज्ञों से भी चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत करना चाहेंगे डॉक्टर बजाज से यहाँ पर। GI टैगिंग की जब हम बात करते हैं, भौगोलिक पहचान की हम बात करते हैं, तो ये है क्या और इसकी जरूरत क्यों है, इसके बारे में आप सबसे पहले जानकारी दें।
2: बहुत अच्छा सवाल पूछा आदिति आपने कि सबसे पहले GI यानी भौगोलिक पहचान की बात करते हैं। और शुरू में आपने कहा ही था कि असम की चाय और बनारस की साड़ियां, ये सब चीजें इतनी मशहूर होती हैं, जब भी कोई जाता है तो वो सोचता है कि इसको मैं जरूर खरीदूंगा या अगर खाने पीने की चीज है तो इसका जरूर खाकर या उसका टेस्ट करके पता करूंगा कि ऐसा खास क्या है उसमें, और वाकई खास होता है। तो GI एक प्रोडक्ट, ये जो एक टैगिंग है, ये उरुग्वे राउंड के बाद जब ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ था तब आर्टिकल 22 और 24 के तहत, तब ये कहा गया कि भाई हर भौगोलिक क्षेत्र की एक विशेष पहचान है, उस उत्पाद से जुड़ी हुई उसकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, उसकी एक खास विशेषता जुड़ी हुई है, तो उसको हमें रिकॉग्नाइज करना है, उसकी हमें उस पहचान को जो है वो बनाए रखना है कि हाँ ये जो उत्पाद है ये इस क्षेत्र का है और विशेष है, इसकी एक अपनी प्रतिष्ठा है। तो ये एक WTO के तहत एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत हुआ। अब उदाहरण जैसे आपने दिए, हमारे यहां अभी 415 के करीब GI टैग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए हमारा मलियाबादी आम है, केसर आम है, बैंगनपल्ली आम है, अल्फेंजो आम है, चाय है और इस तरह शाही लीची है बिहार की। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि 415 के लगभग आज की डेट में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिसमें से 140 जो है वो कृषि उत्पाद है।
1: जी, तो 140 कृषि उत्पाद हम कह सकते हैं कि इनकी जीआई टैगिंग हो चुकी है। तो ऐसे में राजेंद्र कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे ये जीआई टैगिंग करता कौन है, इसके बारे में भी तो हमारे किसानों को पता होना चाहिए।
3: ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस की ब्रांच है
1: जी,
3: और वहां पर एप्लीकेशन फाइल करने के लिए अंडर द एक्ट, अंडर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट, कोई भी एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स या बॉडी जो रिकग्नाइज्ड बाय लॉ है वो अप्लाई कर सकती है, लेकिन उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। यानी कि हम एप्लीकेशन लेके चले गए और रजिस्ट्रार जो है उसको रजिस्टर कर देगा, उसके लिए अंडर द एक्ट काफी रिगरस रिक्वायरमेंट्स हैं। और एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, जो भी बॉडी जीआई रजिस्ट्री के सामने जाएगी वो एक न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, वो नॉन ट्रेडिंग न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, और दूसरी वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होनी चाहिए। यानी कि एक एसोसिएशन है जिसके कुछ मेंबर्स रिकग्नाइज करते हैं उसको और कुछ नहीं करते हैं। फिर उसके बाद एक इंस्पेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए। इंस्पेक्शन मैकेनिज्म सर्टिफाई करेगा कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी, जैसे डॉक्टर बजाज ने बताया, एट्रीब्यूटेबल टू दैट रीजन है या नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं प्रोडक्ट्स जो लुक अलाइक होते हैं लेकिन वो उस रीजन से आते नहीं है, तो उसके लिए इंस्पेक्शन बॉडी जरूरी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जरूरी है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। अब जब हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करते हैं तो हम पब्लिक राइट्स की बात करते हैं, वो राइट्स जो कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। जैसे हम कोई ट्रेडमार्क या प्राइवेट राइट्स की बात करते हैं वो प्राइवेट ट्रेडर्स की होती हैं, लेकिन जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिए जाते हैं वो कम्युनिटी को दिए जाते हैं, और ये जो बॉडीज जो होती हैं ये कस्टोडियंस होती हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फाइल होने के बाद उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, और अंडर द एक्ट एक टेक्निकल कमिटी है, उसका प्रोविजन है जो उसको एनालाइज करती है, जो उसको देखती है कि ये जो जीआई प्रोडक्ट है वर्दी ऑफ प्रोटेक्शन है या नहीं, उसकी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो वाकई में ऑथेंटिक है या नहीं। वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स उस फील्ड से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद फिर एप्लीकेशन एडवर्टाइज होती है, 4 महीने का टाइम दिया जाता है, कोई भी एग्रीड पर्सन वहां पर अपोज कर सकता है, और उसके बाद फिर अगर कोई ऑपोजिशन नहीं होती है तो वो रजिस्टर हो जाता है, वो जीआई रजिस्टर हो जाता है। अगर नहीं होगा तो ऑपोजिशन जो है वो चलती है। तो इस तरह से ये जीआई प्रोसेस कंप्लीट होता है।
1: जी, तो पूरी प्रक्रिया इस तरह से होती है, इन बातों को जरूर ध्यान में यहाँ पर रखने की जरूरत हो जाती है। तो अब मैं रुख करना चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, धान हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की बहुत प्रमुख फसल है, और उसकी बासमती की हम बात करें तो पहचान है हमारे देश से, बहुत ही अच्छे स्तर पर निर्यात भी होता है। तो ऐसे में बासमती के लिहाज से जीआई टैगिंग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, अगर हमारे किसान और इसकी ओर बढ़ना चाहे तो?
4: देखिए अदिति, धान जैसा आपने भी कहा और पूरे विश्व में ये जानकारी है कि धान भारत के लिए विशेष तौर पर बासमती धान बहुत महत्वपूर्ण है। इसका महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है
1: जी।
4: इसके लिए हमारे किसान जो हैं वो विशेष तौर पर इसके लिए जिम्मेदार हैं
1: जी।
4: लेकिन चूंकि धान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो उसकी उपज से लेकर और उसके निर्यात तक
1: जी,
4: उसके लिए हमें विशेष प्रयास करने होते हैं।

0: जरूरत है कि हम कैसे ये जीआई टैगिंग को हम भारत से निकलकर बाहर जहां जहां हमारा हम करीब करीब 170 देशों में बासमती एक्सपोर्ट करते हैं
1: बिल्कुल
0: और उन सभी देशों में जाएं और अपने इस जीआई टैग को वहां भी रजिस्टर करें
1: जी
0: जिससे हमारे किसानों को सीधा सीधा उस बात का फायदा मिले उसका लाभ मिले क्योंकि जितना हम निर्यात करेंगे उतना ही हमारे किसानों को उसका लाभ मिलेगा।
1: देखो तो जीआई टैगिंग के बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह का बदलाव आपने एक्सपोर्ट में देखा है निर्यात में किस तरह का बदलाव आया है जब से जीआई टैगिंग हुई है।
0: देखिए जीआई टैगिंग से एक बहुत बड़ा लाभ जो उस उत्पादक उत्पाद का जो मालिक है उसको मिलता है जीआई टैग का जैसे कि अभी बजाज साहब ने भी बताया जीआई टैग अपने आप में एक विशेष उत्पाद है तभी उसको जीआई टैग मिलेगा और जब उत्पाद विशेष है तो स्वाभाविक है उसका मूल्य भी विशेष मिलेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कारण है कि बासमती के उत्पाद से हम बहुत लाभ पूरा देश और हमारे देश के पूरे किसान इस बात का लाभ उठाते हैं और पूरे संसार में हम लोगों को बासमती खिलाते हैं इसके लिए श्रेय हमारे किसानों को जाता है।
1: बिल्कुल इसका पूरा श्रेय जो है हमारे किसानों को जाता है और हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो है कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन भी रहा है और हमारे किसानों का ही इसमें बहुत बड़ा हाथ है सहयोग है। बढ़ना चाहेंगे आगे डॉक्टर बजाज आपके पास हम यहां पर आना चाहेंगे। आपने बताया कि 140 के करीब कृषि उत्पाद है जिनको जीआई टैगिंग मिल चुकी है लेकिन अगर हमारे किसान या फिर कहें कि और संगठन वगैरह अलग अलग उपज की जीआई टैगिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कहां आवेदन करना होगा क्या प्रक्रिया रहती है उसकी।
2: बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जैसे अभी कहा कि केवल 140 ऐसे उत्पाद हैं जो कि अभी जीआई रजिस्टर हुए हैं और हमारे तो हिंदुस्तान में बहुत सी जो उत्पाद हैं जो कि विशेषता रखते हैं इसलिए तो हम कहते हैं भारत की अतुल्य भारत की अमूल्य निधि ये कहा जाता है। तो बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जो कि उस क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र विशेष की प्रतिष्ठा लिए हुए हैं तो उनको रजिस्टर कराने के लिए जैसा अभी राजेंद्र जी ने कहा था कि एक व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता क्योंकि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। जैसे बासमती चावल है वो हर उस किसान का हकदार है जो बासमती उगाता है तो इसीलिए जो उत्पाद है उसको एक कोई एजेंसी जो है चाहे वो सरकारी एजेंसी हो या गैर सरकारी संस्था हो जो कि सच में हकदार है उसका कस्टोडियन बनने की उसको लेकर वो रजिस्ट्री में जाकर रजिस्टर करा सकते हैं और उसका फिर पूरा प्रोसेस है रजिस्टर कराने के लिए जैसा भी राजेंद्र जी ने बताया था कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए और उसके बाद कस्टोडियन बनना भी आसान नहीं है। मैं अगर एक उसका जीआई का कस्टोडियन बन गया तो उसकी पहरेदारी भी करनी है मेरे को जैसे हम बासमती की पहरेदारी भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं दुनिया में कोई जो है वो बासमती ना कहलाए हम कहते हैं जैसे ट्रेडमार्क का प्रोटेक्शन होता है ना कि मेरे ट्रेडमार्क को दूसरा ना इस्तेमाल कर ले इसी तरह जब एक जीआई रजिस्टर हो जाता है तो उसका एक पहरेदारी भी करनी पड़ती है प्रोटेक्शन भी करना पड़ता है भाई दूसरे को तुम नाजायज हम उसका बगैर हमारी मर्जी के हम उसे इस्तेमाल नहीं करने देंगे क्योंकि ये एक विशेष अधिकार है। और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जिसका वो उत्पाद है उसको हम प्रीमियम मिलता है दूसरे उत्पाद में उसको पता होता है कि ये जो भी खरीद रहा है उसको मालूम है कि ये एक विशेष चीज है जो मैं खरीद रहा हूं और इससे मुझे जो है एक अच्छा जो है वो और कहीं नहीं मिलता दुनिया के कोने में एक यहीं पर ये चीज मिलती है और उसका एक प्रीमियम भी उनको दिया जाता है। तो इसीलिए इसका जो है वो रजिस्टर संस्था कर सकती है चाहे सरकारी या गैर सरकारी हो और फिर उसका कस्टोडियन भी बनना पड़ता है।
1: बिल्कुल तो आपने कहा कि एक संस्था यहां पर जीआई टैगिंग के लिए आवेदन आगे बढ़ा सकती है तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या फायदा लाता है ये जीआई टैगिंग किस तरह से फायदेमंद साबित होता है राजेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे आप हमारे किसानों के लिए जीआई टैगिंग कितना फायदेमंद है।
3: मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा दार्जिलिंग टी दार्जिलिंग टी का प्रोटेक्शन 1986 से फॉर्मल ढंग से स्टार्ट हुआ क्योंकि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट है ये 2003 में आया 15 सितंबर 2003 में उससे पहले भी इंडिया में स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन रही और दार्जिलिंग टी जो है एक सर्टिफिकेशन मार्क है। तो 2018 में वर्ल्ड बैंक और एफएओ ने एक स्टडी स्पॉन्सर की थी जिसमें सिक्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वर्ल्ड वाइड से सिलेक्ट किए गए थे, उसमें दार्जिलिंग टी भी थी। और उस स्टडी का फोकस था कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्शन से क्या फायदा होता है,

0: तो उसमें दार्जिलिंग टी के बारे में ये बताया गया कि जब से दार्जिलिंग टी की प्रोटेक्शन स्टार्ट हुई है तो उसका बेनिफिट जो वहां पे स्टेट्स हैं, जैसे हमारे किसान भाइयों को पता होगा कि दार्जिलिंग टी सिर्फ 87 टी गार्डन्स में ही प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि सारा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ही दार्जिलिंग टी प्रोड्यूस करता है। सिर्फ 87 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे दार्जिलिंग टी होती है और वहां पर मेजॉरिटी ऑफ वर्क फोर्स वो विमेन है, तो उनका एम्पावरमेंट जब जीआई प्रोटेक्शन से होता है तो उनके लिए स्कूल्स, हर टी गार्डन ओनर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं वो गार्डन में देता है। तो उस स्टडी का कंक्लूजन ये निकला कि दार्जिलिंग टी की वैल्यू टुडे इन कंपैरिजन टू जो ऑर्डिनरी टी है वो इतनी ज्यादा है जीआई प्रोटेक्शन की वजह से। और दार्जिलिंग टी वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्टेड है, उसको जो है यूरोपियन कमीशन ने भी जीआई टैग दिया था और वो जीआई टैग मिलने के बाद हमारे एक्सपोर्ट्स ऑफ दार्जिलिंग टी बढ़ गए हैं। और जैसे ही एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे उसका जो बेनिफिट जो है ग्रास रूट्स पर जो वर्कर्स हैं जो वहां पे काम करते हैं उन पे होता है। ऐसा ही बासमती राइस पे भी होगा। इनफैक्ट बासमती राइस का प्रोटेक्शन भी जो है उसकी भी बहुत लंबी स्टोरी है और अब जो है बासमती राइस जो है वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट होता है, जैसे डॉक्टर शर्मा जी ने बताया, और उसका प्रोटेक्शन भी उसी लेवल पे चल रहा है जो दार्जिलिंग टी का है।
1: जी बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर फायदे तो अनेक हैं अगर हम जीआई टैगिंग करते हैं। रुक करना चाहेंगे अब डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, आपने कहा कि अब यहाँ पर कवायदे चल रहे हैं, कोशिशें चल रहे हैं कि अलग अलग देशों में भी जीआई टैगिंग हो सके हमारे बासमती चावल की, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जीआई टैगिंग किस तरह से काम करता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
2: देखिए अदिति, जैसा कि हमारे घरेलू सिस्टम में एक जीआई रजिस्ट्रार है, उसको हर किसी कोई भी प्रोडक्ट को रजिस्टर करने का एक तरीका है
1: जी।
2: इसी तरीके से अगर हम विदेशों में जाते हैं, बाहर जाते हैं, वहां भी लगभग वैसे ही तरीके सामने आते हैं हमारे। और अगर हम वहां अपने जीआई टैग प्रोडक्ट को अगर वहां नहीं कराते हैं रजिस्टर, तो हो सकता है वहां कोई हमारे चीज के नाम को का दुरुपयोग करके वहां वो बेचता रहे। इसलिए यदि हमें अपने जीआई प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना है, उसको संभाल कर रखना है, तो ये जरूरी है कि हम अपने उस उत्पाद को जहां भी हमारा मार्केट है, हमारा जो मुख्य मार्केट है, उस मार्केट के उन देशों में जाएं और अपने उस उत्पाद को वहां भी रजिस्टर करें। इसी कड़ी में अपीडा ने एक बड़ी पहल की बासमती के लिए, क्योंकि बासमती हमारे लिए बहुत बड़ा उत्पाद है
1: जी।
2: अगर मैं दो दशक की बात करूं, 2002-03 के लगभग बासमती का जो एक्सपोर्ट था वो करीब करीब 7 मिलियन के करीब था, आज वो बढ़कर करीब 45-46 मिलियन टन हो गया। तो इस बड़े उत्पाद को, जिसका कि पूरा का पूरा लाभ और श्रेय हमारे किसानों को जाता है, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसलिए हम विदेशों में जो हमारे ग्राहक जो देश है, उन सभी देशों में प्रयासरत हैं कि हम बासमती को जैसा हमने भारत में रजिस्टर कराया एक जीआई प्रोडक्ट, उसी तरीके से हम विदेशों में भी जाएं और अपने इस बासमती को एक जीआई टैग के तहत वहां भी रजिस्टर कराएं। और इस कड़ी में हम करीब करीब 20 के करीब देशों में हमारी एप्लीकेशन जो है, हमारे प्रार्थना पत्र वहां चले हुए हैं, और इस कड़ी में करीब करीब 8 देशों में हम ऑलरेडी या तो जीआई ले चुके हैं या बासमती का हमारा एक लोगो है, या तो हमने लोगो को रजिस्टर कराया है। तो ये रजिस्टर कराने से क्या होगा कि हमारा उस देश में भी हमारा बासमती प्रोटेक्ट रहेगा, कोई और उसकी नकल नहीं कर सकता, उस नाम को मिसयूज नहीं कर सकता, और हमारे जो किसान है, हमारे किसानों द्वारा पैदा किया हुआ जो बासमती है वो धड़ल्ले से वहां बिकेगा और उसका पूरा लाभ उनको मिलेगा।
1: हमारे किसानों ने जो कड़ी मेहनत से बासमती यहां पर तैयार किया है, उसकी पहचान बनी रहेगी, बरकरार रहेगी, कोई भी उसका दुरुपयोग, उसके नाम का दुरुपयोग यहां पर नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर बजाज, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जब किसी भी कृषि उत्पाद को यहां पर जीआई टैगिंग मिलती है तो ऐसे में जो आसपास के क्षेत्र के किसान हैं या फिर उसी क्षेत्र के हम किसानों की बात करें तो उन्हें किस तरह से फायदा मिलता है इसका?
3: सभी को फायदा मिलता है
1: जी।
3: जब जीआई टैगिंग हो जाता है तो जैसे ये कहा कि ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है
1: जी।
3: अब बासमती जीआई टैग हुआ तो जहां जहां बासमती उगाया जाता है वो उसका सबको लाभ मिल रहा है, ये नहीं है कि किसी एक व्यक्ति विशेष का लाभ रह गया। जो अपने उस क्षेत्र को जो कि आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं उस आइडेंटिफाइड क्षेत्र से अगर वो अपना उत्पाद लेकर आता है तो वो उसका वही उत्पाद है और उसको वो उसका जो प्रीमियम है वो क्लेम कर सकते हैं। खाली बासमती की हम बात कर रहे हैं, इसी तरह बहुत से जैसा मैंने कहा अभी दार्जिलिंग चाय की बात करी, आम है, हमारे अंगूर हैं, शाही लीची है और भी बहुत से ऐसे उत्पाद और प्रोसेस फूड हैं जैसे रसगुल्ला है, बहुत से ऐसे खास जो उत्पाद हैं हर क्षेत्र के जुड़े हुए, तो उनके जो उत्पाद हैं जो जो उन उत्पादों को उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं सदियों से उसका उत्पादन कर रहे हैं उनको लाभ मिलता है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बेचने में आसानी है क्योंकि खरीददार को पता है कि ये विशेष है, मैं जाता हूं वहां जाएंगे। आप छोटी सी बात समझिए, आप भी कहीं जाते हैं बोले फलां के फलां खाने की चीज बड़ी मशहूर है, तो आप चाहे थोड़ी दूर ही क्यों ना जाना चाहे वहां जाते हैं और वहां जाके एक जरूर खाते हैं और बार बार जाते हैं। इसी तरह ये या जाते हैं जब कभी आप किसी राज्य में जा रहे हैं किसी जगह पे जाते हैं तो बोलते हैं कि वहां की एक खास चीज है, जैसे मैंने कहा बनारस की साड़ियां बहुत मशहूर हैं तो आप चाहते हैं कि मैं जरूर वहां खरीदूं और उसका जो है वो मुझे भी लाभ मिले।
1: बिल्कुल, कश्मीर जा रहे हैं तो शॉल लेना है,
3: केसर खरीदेंगे वहां का,
1: तो ये दक्षिण में जा रहे हैं तो यहाँ का सिल्क बहुत मशहूर है। बिल्कुल,
3: तो बेचना आसान है और दूसरा ये कि उसका फिर उसको प्रीमियम भी मिलता है क्योंकि खरीददार को भी मालूम है कि मैं जो खरीद रहा हूँ वो एक विशेष चीज है, ये आम चीज नहीं है जो मैं खरीद रहा हूँ, ये मुझे सिर्फ इसी क्षेत्र से इसी व्यक्ति विशेष से इसी जो है वो एरिया से मिलती है, तो इसलिए एक उसको भी एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि हाँ एक यूनिक प्रोडक्ट को मैं खरीद रहा हूँ।
1: बिल्कुल, तो डॉक्टर बजाज आप कह रहे हैं कि एक प्रीमियम मिलता है कस्टोडियन को, तो ये प्रीमियम कौन देता है और इससे फायदा क्या होता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
3: खरीदार देता है ना प्रीमियम, वो खरीदार जो है वो जाता है उसको एक तो उसको पता है कि धान, जब उदाहरण जब आपने दिया बासमती का ही, तो बासमती के जो खरीदार है वो जो रेट देगा और दूसरे जो धान है उसमें फर्क तो रहता ही है
1: जी।
3: तो बासमती का सबसे महंगा चावल बहुत सी वजह है, उनमें से एक वजह तो ये भी है कि वो जीआई टैग है और दुनिया भर में बासमती को हम ठीक दाम पर बेचते हैं, लोग इसको जो है एक्सपोर्ट में हमें प्राइसेस भी अच्छे मिलते हैं जिसका ऑफकोर्स किसानों को लाभ भी मिलता है, तो इसी वजह से क्योंकि ये जीआई टैग है। और भी बहुत सी बातें हैं उसकी विशेषता है, लेकिन विशेषता ये भी है क्योंकि ये जीआई टैग है, एक खास भौगोलिक पहचान है इसकी।
1: बिल्कुल, जीआई टैगिंग मिल गई है तो विश्व भर में उसकी पहचान हो गई है, विश्व की नहीं अपने देश की बात कर ले तो पहचान हो गई है, जब भी कभी वहां उस क्षेत्र में जाते हैं तो हम उसका स्वाद या फिर उस चीज को लेना जरूर पसंद करते हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि हम कोई भी उत्पाद यहां पर तैयार कर रहे हैं तो उसकी जीआई टैगिंग जरूर करवा लें। फायदे अनेक हैं, हर एक को इससे फायदा मिल सकता है, और किस तरह से फायदेमंद साबित हो सकता है जीआई टैगिंग और इसकी जो प्रक्रिया है उसमें क्या किसी तरह की कोई समस्या भी आती है, इस पर भी हमारी चर्चा को हम जारी रखेंगे।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भी 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: कृषि उत्पादों की भौगोलिक पहचान के बारे में। जी हाँ, जीआई टैगिंग पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। क्या होती है ये, किस तरह की इसकी प्रक्रिया रहती है, इसके बारे में तो हमने जान लिया और इससे फायदे क्या क्या होते हैं इसके बारे में भी विशेषज्ञों ने हमें विस्तार से बताया है। लेकिन जब हम इस प्रक्रिया में जाते हैं तो कुछ समस्याएं तो जरूर आती होंगी, जिसके बारे में मैं जानना चाहूंगी राजेंद्र कुमार जी से कि जब हम जीआई टैगिंग पर जाते हैं तो कुछ समस्या तो आती होंगी। हमारी एजेंसियों को या संगठनों की बात करें तो उन पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जब जीआई एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के सामने जाती है तो एक समस्या होती है कि जब एग्जामिनेशन होता है उसका, उसके टेक्निकल एक्सपर्ट्स जब उसको एनालाइज करते हैं तो उनका मेन फोकस होता है कि ये स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं ये साइंटिफिकली एक्यूरेट है या नहीं, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो ऑथेंटिक है या नहीं। क्योंकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी ऐसा होता है जैसे कोई इंटरनेट से कोई डॉक्यूमेंट्स लगा दिए और वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के तौर पे जो है पास ऑफ किए गए, वो ऑथेंटिक सोर्स बहुत जरूरी है। और उसके बाद जरूरी होता है कि इंस्पेक्शन मैकेनिज्म्स कि जो बॉडी रजिस्ट्रेशन के लिए जारी है उसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस प्रोडक्ट को एनालाइज करने का, क्योंकि अल्टीमेटली जो कंज्यूमर्स होते हैं वो एसोसिएट करते हैं उस प्रोडक्ट को उस रीजन के साथ, और जब तक वो इंस्पेक्शन मैकेनिज्म उसका उसके पीछे नहीं होगा तो कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कश्मीरी कारपेट्स
0: जी।
1: अब कश्मीरी कारपेट्स की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने के लिए जो बॉडी जिसने रजिस्टर कराया है कश्मीरी कारपेट एज ए जीआई, उन्होंने क्यूआर कोडिंग की है। जब आप कारपेट लेने जाते हैं तो उसमें क्यूआर कोडिंग है और कोई भी स्मार्टफोन से किसी भी डिवाइस से उस क्यूआर कोड से ये मालूम कर सकता है कि ये कहां किस रीजन से है, किस वीवर ने इसको वीव किया है। तो इसलिए जब कभी भी मार्केट में कश्मीरी कारपेट बिकता है तो उसके ऊपर जो क्यूआर कोड लगाता है उससे कस्टमर जो है वो मालूम कर सकता है कि ये जेन्युइन कश्मीरी कारपेट है। तो ये जो सिस्टम है वो रजिस्ट्रार ऑफ जीआईज एग्जामिन करता है। और उसके बाद एक और मुद्दा आता है कि रिप्रेजेंटेटिव नेचर ऑफ द बॉडी कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए जाती है, कि कभी कभी जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ बॉडीज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो उस पूरे प्रोड्यूसर्स को रिप्रेजेंट नहीं करती। बहुत एग्जांपल्स आते हैं, हैदराबाद बिरयानी का एग्जांपल बड़ा फेमस है जिसमें वो जब रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो जो बॉडी थी वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी और उन्होंने जो है वो अपना टाइटल प्रूव नहीं कर पाए तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का होना, इंस्पेक्शन मैकेनिज्म का होना, ट्रेसिबिलिटी का होना और फिर जो है जो ओवरऑल सुपरविजन है उसके बाद फिर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है। और जैसे मैंने पहले समझाया उसके बाद कोई भी अपोज भी कर सकता है एप्लीकेशन, और ये अपोजिशन कहीं से भी आ सकती है, हिन्दुस्तान से ही नहीं, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और
0: जैसे आपने कहा कि उसके विरोध में भी यहां पर सवाल उठाए जा सकते हैं, ऑपोजिशन हो सकता है, तो ऐसे में फिर उसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है, उसका जस्टिफिकेशन किस तरह से दिया जाता है?
1: उसका जस्टिफिकेशन रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के सामने जो कि क्वेजाई जुडिशियल बॉडी है, जैसे कोर्ट्स होते हैं तो उसमें वो एविडेंस एग्जामिन होता है, जिसे दूसरी बॉडी ये कहती है जो अपोज करती है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटीज ये नहीं है
0: जी,
1: ये होनी चाहिए, या इसका एरिया इतना बड़ा नहीं है, ये छोटा होना चाहिए। तो इस टाइप की ऑपोजिशन आती हैं और उसको भी जो है थ्रू प्रॉपर जुडिशियल माइंड एग्जामिन किया जाता है कि ये सच है या नहीं। इनफैक्ट ये जो प्रोसेस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रिप्स एग्रीमेंट डॉक्टर बजाज ने बताया, उसमें एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 24.9, वो ये कहता है कि अगर कोई जीआई डोमेस्टिकली प्रोटेक्टेड नहीं है तो किसी कंट्री के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसलिए यहां पर उसकी जो स्क्रूटनी होती है उसका एग्जामिनेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे बासमती का एग्जांपल दिया, दार्जिलिंग टी का एग्जांपल दिया, ये डोमेस्टिकली रजिस्टर्ड है
0: जी।
1: और इसीलिए जो है बाहर की कंट्रीज बाहर के कोर्ट्स उसको रिकग्नाइज करते हैं कि हमने हिन्दुस्तान में उसको प्रोटेक्ट किया।
0: बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ यहां पर समझाया है राजेंद्र जी लेने हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अब यह अगर आप जीआई टैगिंग के लिए जाएंगे तो आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अब आप पूरी तैयारी के साथ जाएंगे कि किस तरह से आपको कौन कौन से हम कह सकते हैं दस्तावेजों की जरूरत है, किस किस चीज की जरूरत है जिससे आप जीआई टैगिंग कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अब हम डॉक्टर शर्मा के पास आना चाहेंगे। डॉक्टर शर्मा, जब हम किसी कृषि उत्पाद की जीआई टैगिंग की बात करते हैं तो उससे हमारे किसानों को ही फायदा नहीं होता बल्कि फसलों को भी उससे काफी फायदा होता है। फसल संरक्षण की हम बात करें तो उससे भी काफी मजबूती मिलती है, तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि फसल संरक्षण किस तरह से और बेहतर तरीके से किया जा सकता है अगर हम जीआई टैगिंग कर लेते हैं तो।
2: देखिए अदिति, बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग कोई भी उत्पाद का जीआई टैग ले लेते हैं, लेकिन ये उससे भी महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए कि उस जीआई टैग को हम कैसे संभाल कर रखें
0: जी,
2: और कैसे उस उत्पाद के साथ आगे बढ़ें। क्योंकि यदि हम उस टैग का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा टैग लेने का कोई विशेष लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है

0: जैसे हमने बासमती का जीआई टैग लिया, हम पूरे विश्व में बासमती चावल जो है लोगों को खिलाते हैं और लोग पसंद करते हैं। उसमें विशेष अरोमा है, उसकी एक अपनी लेंथ है, उसकी एक ब्रेड्थ है, उसमें जो बायोकेमिकल जो बासमती के साथ जुड़े हुए हैं, जो कुदरती रूप में जैसे जैसे जिन जिन इलाकों में बासमती होता है उनमें वो होगा ही होगा। तो हमें ये भी पक्का सुनिश्चित करना है कि वो सारी जो क्वालिटी, वो जो मानक जिनको हम कहते हैं या स्टैंडर्ड हम कहें, वो स्टैंडर्ड बासमती उत्पाद जो हमारा निकले, हमारे किसानों द्वारा पैदा किया हुआ बासमती, वो सारे के सारे मानक उसमें पूरे हों। यदि वो मानक पूरे नहीं होंगे तो अगर मान लीजिए कल को हमने कोई बासमती के नाम पर हमने चावल भेज दिया यूके में और वहां लोगों ने देखा, या जो हमारे कंज्यूमर हैं वो बड़े समझदार हैं, कंज्यूमर को अगर कल को पता लगेगा नहीं ये तो बासमती जैसा नहीं है, तो इसलिए हमारे किसान भाइयों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब वो कोई भी उत्पाद, वो बासमती हो या कोई अन्य जीआई टैग उत्पाद हो, जब वो उसका उत्पादन करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम मानक के अनुरूप उत्पादन करें
1: जी।
0: पर यदि हम मानक के अनुरूप उत्पादन करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसका एक अच्छा मूल्य मिलता है, अच्छा भाव मिलता है, उसके एक्सपोर्ट करने में कोई समस्या नहीं आती है
1: जी।
0: और किसानों के रूप में अगर हम बात करें तो हमारे लिए सब अच्छा ही अच्छा है, माला माल है।
1: बिल्कुल, तो मानक के अनुरूप यहाँ पर उत्पादन करना बहुत जरूरी है। ऐसे में ही उपभोक्ता जो है ज्यादा से ज्यादा उस हम कह सकते हैं उत्पाद का खरीदेंगे या फिर सेवन भी करेंगे। तो ऐसे में डॉक्टर बजाज आपसे जानना चाहेंगे, जीआई टैगिंग हो गई है लेकिन उन मानकों के अनुरूप उसका उत्पादन नहीं हो रहा है, इस अवस्था में क्या होगा?
2: बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा दीदी, क्योंकि जीआई टैग लेना ही खाली जी काफी नहीं है। अब उसके बाद जैसे बासमती तो चलो उदाहरण हम बार बार दे रहे हैं, दार्जिलिंग चाय का भी उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि पहले से ही बहुत वॉल्यूम में उसकी उपलब्धता है
1: जी।
2: ऐसे कई उत्पाद हैं जिनकी हमारे पास है तो सही, जीआई टैग भी ले लिया हमने, लेकिन उतना जो है उसकी वॉल्यूम में उपलब्धता नहीं है और उपलब्धता अब उसकी होनी चाहिए। तो इसलिए जरूरी है कि हम सब एक, जो भी उस क्षेत्र के जो किसान हैं वो अब एकजुट हों, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब इसका जो है एक भौगोलिक पहचान हो गई है उत्पाद की, तो उसके साथ जुड़े किसान या किसान जो उनके साथ हैं जो प्रोसेसिंग में भी जा रहे हैं, क्योंकि खाली फसलों का ही या उन्हीं का ही जीआई टैग नहीं होता, जो प्रसंस्कृत उत्पाद हैं उनका भी जीआई टैग होता है, तो उनके साथ जो जुड़े हुए हैं वो एक क्लस्टर अप्रोच में चले जिससे कि वो मिलकर एक वॉल्यूम दे सके, क्योंकि जब तक वॉल्यूम नहीं आएगा थोड़े थोड़ी चीज से उसका कोई लाभ नहीं होगा। कई ऐसे उत्पाद हैं जो महीने में साल में एक महीना होते हैं और उसको बेच दिया और 12 महीने उसको खत्म हो गया, उसको कोई लाभ नहीं है। तो सबको मिलकर क्लस्टर अप्रोच लेके चलना है और एक एफपीओ बनाकर, एफपीसीज बनाकर उसको कोशिश करनी है कि हम लोग वॉल्यूम दें, जिससे कि वॉल्यूम होने से क्या फायदा होगा, एक तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, दूसरा हम वॉल्यूम होने से हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट थोड़ा थोड़ा एक्सपोर्ट नहीं होता, एक्सपोर्ट के लिए वॉल्यूम चाहिए, उसको हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे और अपने घरेलू बाजार में भी हम बेच पाएंगे। उससे जब कॉस्ट कम आएगी, ज्यादा हमारा बिक्री होगी, तो उसका लाभ जो है वो नीचे तक जाएगा। बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने वॉल्यूम को बढ़ाएं, कॉस्टिंग को ध्यान रखें और अपनी जो एक विशेष पहचान है उसको बनाए रखें। उसके अलावा जो हमारी जो जीआई टैग को अगर इन्फ्रिंज करने की कोशिश कर रहा है उसको भी बचाने की पूरी कोशिश करें। ये एक तरह का ट्रेडमार्क है आपका, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये मेरी चीज है जिसको मैं या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे।
1: बिल्कुल, तो इस बात का भी जरूर यहां पर ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, राजेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपने बताया कि ऑथेंटिसिटी यहां पर हो जाती है जब हम जीआई टैगिंग कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी उपभोक्ताओं के मन में ये सवाल रहता है कि क्या ये सच में कश्मीर का शॉल है, क्या ये सच में लखनऊ का आम है? ऐसे में क्या कह सकते हैं आप हमारे उपभोक्ताओं को कि किस तरह से ऑथेंटिसिटी यहां पर प्रूव हो?
3: जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कश्मीरी कारपेट्स में क्यूआर कोडिंग
1: जी,
3: एक वन ऑफ द मींस चूज किया गया है जिससे कंज्यूमर अपने आप ही ऑथेंटिकेट कर सकता है कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है या नहीं।
1: जी।
3: ये प्रॉब्लम आती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, जैसे दार्जिलिंग टी है या बासमती राइस है या अल्फोंसो मैंगोज है, उसमें ऑथेंटिसिटी का प्रूफ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, जैसे एरोमेटिक राइसेस हैं, एरोमेटिक राइसेस एक जैसे ही लगते हैं, और ये समस्या जो है हमारे सामने आई थी 1998 में। एक यूएस की कंपनी राइस टेक, उसने पेटेंट लिया और उस पेटेंट में ये कहा गया कि बासमती राइस जो है कोई नेचर का गिफ्ट नहीं है, इसको कहीं भी रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। तो उन्होंने एक राइस अपने हाइब्रिडाइजेशन से बनाया, उसकी क्वालिटी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही थी जैसे बासमती राइस की होती है, एरोमेटिक लॉन्ग ग्रेन, और उन्होंने कहा कि ये राइस जो है हम यूएस में ही ग्रो करेंगे। तो उस पेटेंट से हिंदुस्तान काफी रैटल्ड हो गया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें एपीडा और सीएसआईआर का बहुत रोल था, उन्होंने वो एप्लीकेशन फाइल की, रेवोकेशन की यूएसपीटीओ के सामने।
1: हाँ।
3: और ये प्रूव किया कि ये जो प्रोडक्ट है बासमती राइस, ये यही प्रोड्यूस हो सकता है, इसमें कुछ क्वालिटीज हैं जो नेचर ने दी है और उसको जो है कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, और इस एफर्ट की वजह से वो पेटेंट जो है रिवोक हो गया। वहां की अथॉरिटी ने, वहां के कोर्ट ने उसको रिवोक कर दिया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो प्रोटेक्शन है उसको इस तरह से डिफाइन करें कि हम एनफोर्स भी कर सकें। टर्मरिक पाउडर का एग्जांपल आता है, उसमें भी ऐसे ही हुआ था, यूएस कंपनी ने उसको पेटेंट किया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको जो है रिवोक किया। तो उसमें ट्रेडिशनल नॉलेज की जरूरत पड़ी हमें, हमें ये प्रूव करना पड़ा कि जो टर्मरिक पाउडर है हमारा, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन का पार्ट है, ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, और उसको कोई भी जो है उसको पेटेंट नहीं ले सकता।
1: बिल्कुल, तो ये सब हम कह सकते हैं कि ऑथेंटिसिटी प्रूफ यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर जीआई टैगिंग जो करवाते हैं उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि मानकों का ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़े। अब हम निर्यात की यहाँ पर फिर से एक बार बात कर रहे हैं, डॉक्टर बजाज आपके पास आना चाहेंगे, हम एपिडा की बात करते हैं, तो कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए शीर्ष संस्थान माना जाता है। जीआई टैगिंग होने के बाद निर्यात में किस तरह का बदलाव देखते हैं आप लोग, इस पर क्या कहेंगे हमारे किसान, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस ओर बढ़ सके, इसके लिए हम जानना चाहेंगे।
2: अब एपिडा पूरा निरंतर प्रयासरत है कि जो भी जो जीआई टैग है, जो भौगोलिक पहचान के उत्पाद हैं, उनका अधिक से अधिक निर्यात किया जा सके, और निर्यात बढ़ भी रहा है। वैसे मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं, हम लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं, दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में निर्यात हो रहा है, और लगभग हर साल ये निर्यात जो है वृद्धि की ओर ही जा रहा है। पिछले साल तो हमने करीब 29% की वृद्धि दी इसमें।
1: बिल्कुल, तो बहुत ही बड़ा बदलाव हम कह सकते हैं, सकारात्मक बदलाव यहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल, बताएं क्या कह रहे थे आप।
2: तो भौगोलिक पहचान के जो उत्पाद हैं उसके लिए हम लोगों ने एक विशेष अभियान चलाया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि जो भौगोलिक पहचान के हमारे उत्पाद हैं, जैसा मैंने कहा अतुल्य भारत की अमूल्य निधि है ये हमारी, तो इसका लाभ जो है वो जो उसके हकदार हैं उन तक मिलना चाहिए, और जो उपभोक्ता हैं उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए कि वो भी इसका उपयोग कर सके। तो एक विशेष अभियान चलाया हम लोगों ने, हम बायर सेलर मीट कर रहे हैं, क्रेता विक्रेता सम्मेलन कर रहे हैं, हम यहां से जो है उत्पादों को ले जाकर उनका विशेष जो है वो प्रमोशन कर रहे हैं दुनिया भर में, जिससे कि लोगों को बताएं कि ये जो विशेष जो उत्पाद है ये सिर्फ हिंदुस्तान में एक विशेष क्षेत्र का ही उत्पाद है, हर जगह से नहीं मिल सकता है। तो एक अच्छी एक जो है वो खरीदार को भी अच्छा लगता है उसको खरीदने में, और उसका लाभ भी उसको मिलता है। विशेष अभियान चल रहा है, बहुत प्रमोशन हो रहा है, और बैकवर्ड लिंकेज जैसे मैंने कहा उस तरफ हम काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसका वॉल्यूम मिले, उत्पादन हो, और बहुत जरूरी है कि उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो बनी रहे, इस तरफ भी ध्यान रखते हैं, और बहुत जरूरी है कि अगर जीआई ले लिया तो उसका प्रोटेक्शन भी रखना है। ये ना हो कि मैं तो जीआई लेके बैठ गया और दूसरा कोई जो है उसी उत्पाद को जो है उसी नाम से बेच रहा है, ये भी नहीं होने देना, इसको भी हम लोग प्रयास रहे।
1: बिल्कुल, तो अतुल्य भारत की अमूल्य निधि है, बिल्कुल इस ओर हमें बिल्कुल ध्यान देना है। निर्यात लगातार बढ़ रहा है, जैसा कि डॉक्टर बजाज ने बताया है कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, फायदा हो रहा है हमारे देश को, हमारे देश की एक अलग पहचान बन रही है विश्व स्तर पर। तो ऐसे में हम सभी को इस ओर भी खास ध्यान रखते हुए आगे अपने कदम बढ़ाने होंगे। हम भी फिलहाल बढ़ते हैं आगे, और यहां पर मैं डॉक्टर शर्मा का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर शर्मा, अगर हम पूरे देश की बात करते हैं तो जीआई टैगिंग बहुत सारे उत्पादों की हुई है, लेकिन खास तौर पर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में ज्यादा ऐसे उत्पाद देखने को मिलते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी के क्षेत्र के जो किसान हैं, जो लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा?
0: देखिए, ये निश्चित रूप से आदित्य आपकी बात सही है, और हमारे उत्तर भारत के जो किसान हैं उनको भी ये जरूरत है कि वो भी जैसे हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड है, वहाँ छोटे छोटे कई ऐसी उत्पाद हैं जिनको आगे लाके उनको जीआई टैगिंग करा के उनके उत्पादन को बढ़ा के और उनको एक बड़ा बाजार दिया जा सकता है। और उसके लिए ये जरूरी है कि वहाँ जो छोटे समूह हैं, हमारे जो किसान समूह जिनको आजकल पूरे भारत सरकार और पूरी राज्य सरकार भी जिनको पूरा महत्व देते हैं और उनके माध्यम से किसानों तक पहुंचने का एक प्रयास है, तो ये किसान समूह एक बहुत बड़ा रोल इसमें कर सकते हैं, जो हमारे किसानों को बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर लाके, और जो हमारी इस तरह की जो छोटी छोटी प्रोडक्ट है उनको, जैसे कि बजाज साहब ने कहा कि इसमें जल्दी से अपना ये प्रयास करें किसान लोग, अगर कोई उत्पाद उनके आसपास के एरिया में, उनके जिले में, उनके तहसील में, या कोई जरूरी नहीं है, कुछ हो सकता है कुछ 10-12 गांव ही हो जहां पे वो विशेष रूप से वो कोई उत्पाद होता है, वो उत्पाद फल का हो सकता है, वो उत्पाद किसी सब्जी का हो सकता है, वो उत्पाद किसी अन्न का हो सकता है। जैसे अगर आप आपकी सूचना के लिए मैं बताऊं, एक भालिया गेहूं है, अब वो भावनगर जिले के थोड़े से कुछ एरिया में भालिया गेहूं के नाम से उसका बहुत बड़ा महत्व है, उसकी जो क्वालिटी है वो बड़ी अलग है। तो ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए हमें कोई बहुत बड़ा, हाँ बाद में अगर हमें उसको एक्सपेंड करना है, उसका निर्यात करना है, तो वाकई में हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादकता को ज्यादा लाना पड़ेगा, लेकिन जीआई करने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने आसपास हमारे किसान भाई खासतौर पर और जो हमारे किसान समूह है वो ये सुनिश्चित करें अपने आसपास के एरिया में यदि कोई विशेष उत्पाद है तो उसको जीआई के लिए आगे लेकर आए, ताकि कालांतर में आने वाले समय में वो उसका पूरा लाभ उठा सके।
1: बिल्कुल, तो जैसे आपने अभी उदाहरण दिया कि भावनगर का एक भालिया गेहूं है, अगर हमारे किसान उस छोटे से क्षेत्र में ही, उस दायरे में ही ना रहकर विश्व स्तर पर उसे बढ़ाना चाहते हैं तो जीआई टैगिंग की ओर बढ़ सकते हैं। देखिए, इससे ना केवल आपके क्षेत्र को एक पहचान मिलेगी, पूरे विश्व स्तर पर हम कह सकते हैं कि हमारे देश को एक अलग पहचान मिलेगी, और साथ ही साथ फायदा पूरे देश को होगा, आपको भी होगा। तो जीआई टैगिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अब हमारे किसानों को ये समझने की जरूरत है।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भी 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।
1: जीआई टैगिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपके क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरे देश को विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलवा सकती है। इसके लिए अब हम सभी को आगे बढ़ना होगा। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, हमारे विशेषज्ञ यहां पर उपस्थित हैं, आइए उनसे और जान लेते हैं। ऐसे में हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैं जानना चाहूंगी यहां पर डॉक्टर बजाज से। डॉक्टर बजाज, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि जीआई टैगिंग जो है प्रसंस्कृत उत्पादों की भी की जा सकती है। अभी तक किसान अलग अलग उपज की यहां पर जीआई टैगिंग कर रहे थे, लेकिन अगर प्रसंस्कृत उपज यहां पर लेकर आते हैं, उत्पाद लेकर आते हैं, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया कोई अलग है या फिर वही प्रक्रिया रहेगी?
2: वही प्रक्रिया
1: जी,
2: जैसे मिठाइयां हैं, कई हमारी विशेष मिठाइयां हैं, उनका जीआई टैग है। बहुत सी ऐसी मिठाइयां जिनका तो जीआई टैग हुआ ही नहीं है, और बहुत सी जरूरत है, क्योंकि ऐसी विशेष जगह चीजें हैं जिनका हम लोग अब जानते हैं, हम रोजमर्रा में बात करते हैं कि उस जगह की ये चीज बड़ी मशहूर है, वहां जाके हम लोग जरूर खाएंगे, टेस्ट करेंगे। तो ऐसी बहुत सी मिठाइयां हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि उस क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई हैं, उसकी प्रतिष्ठा है, अलग से प्रतिष्ठा है, उनको जो है वो जीआई टैग की आवश्यकता है। और जब जीआई टैग हो जाता है तो सबसे पहली तो एक मेरे को एक सेटिस्फेक्शन होगी कि अब ये उत्पाद मेरे ही क्षेत्र का, हमारे ही क्षेत्र का है, और उसको जो है वो जो भी आएगा हम कह सकते हैं कि ये हमारा उत्पाद है, इसी क्षेत्र विशेष से मिलता है। तो जो भी उपभोक्ता आ रहा है वो उस चीज को खरीदने में उसे भी सेटिस्फेक्शन होगी और हमें बेचने में आसानी होगी। और उसके बाद जो है वो हम लोग उसका प्रमोशन कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं कि ये उत्पाद इस जगह का है, विशेष जीआई उत्पाद है।
1: जब एक अलग पहचान मिल जाएगी तो उसके दाम भी काफी अच्छे मिलेंगे, तो इससे फायदा ही फायदा हमें सामने नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में कई तरह के कुछ बाधाएं भी होती हैं, तो राजेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, उपभोक्ताओं के साथ अगर किसी भी तरह का कोई धोखाधड़ी हो जाए या फिर ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो ऐसे में क्या किसी तरह का कोई कानूनी प्रावधान भी है?
3: बिल्कुल, हमारी जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट के अंदर सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज दोनों हैं
1: जी।
3: उसमें जो जीआई ओनर होता है, जो कस्टोडियन होता है, उसको राइट दिया गया है कि वो कोर्ट में जाके एक इन्फ्रिंजमेंट एक्शन फाइल करे, और उसमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बड़ा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट माना जाता है। और इन्फ्रिंजमेंट के भी काफी फॉर्म्स होती हैं कि एक प्रोडक्ट जो कि जीआई प्रोडक्ट नहीं है वो मार्केट में पास ऑफ कर रहा है एज ए जीआई प्रोडक्ट। तो वो जैसे बनारसी साड़ी का एग्जांपल है, बनारसी साड़ी जैसे मेड इन चाइना हिंदुस्तान में बिक रही है, लेकिन बनारसी वो जो है बनारसी साड़ी के जीआई का इंफ्रिंजमेंट होगा, और उसमें जो है सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और क्रिमिनल रेमेडी भी जो है अंडर द एक्ट काफी स्ट्रिक्ट है, इसको कॉग्निजिबल ऑफेंस मानी गई है। उसमें जो है पुलिस जो है विदाउट एनी एनेबलिंग पावर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट वो अरेस्ट भी कर सकती है, इसमें ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है। तो हमारा जीआई एक्ट काफी स्ट्रांग है और काफी मॉडर्न है, और उसमें जो प्रोविजंस हैं अगर जीआई ओनर उनको एनफोर्स करे तो हमारे कोर्ट जो हैं काफी फोर्थ राइट है। इनफैक्ट एक एग्जांपल दूंगा, स्कॉच विस्की एसोसिएशन हिंदुस्तान में 1980 से इंफ्रिंजमेंट एक्शन फाइल कर रही है, और उन्होंने जो है एक तरह से बॉडी ऑफ केस लॉ बनाई है। अगर हम जीआई लॉ के बारे में हिंदुस्तान में देखते हैं तो एसडब्ल्यूए स्कॉच विस्की एसोसिएशन ने जो कंट्रीब्यूट किया है केस लॉ, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो आज तक बहुत यूजफुल रहा है।
1: जी बिल्कुल, तो काफी यहाँ पर देखिए कानूनी प्रावधान भी हैं, अगर किसी भी तरह का कोई ऐसा धोखाधड़ी भी हो रही है तो आपको यहाँ पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल सहयोग के लिए हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। बिल्कुल, जीआई टैगिंग लगातार हम आपको बता रहे हैं कि फायदेमंद साबित हो सकती है हमारे संगठनों के लिए, हमारे किसानों के लिए, एक क्षेत्र की एक नई पहचान बनाने के लिए। तो अंतिम सवाल मैं तीनों से ही एक बार लेना चाहूंगी, उनकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। डॉक्टर शर्मा, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, किसानों की आय को दोगुना करने में ये जीआई टैगिंग किस तरह से फायदेमंद साबित होगी?
0: देखिए अदिति, ये बहुत ही अच्छी बात आपने उठाई, क्योंकि भारत सरकार विशेष रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बार बार इस बात को इंगित करते हैं कि हमें किसानों की आय को बढ़ाना है
1: जी।
0: उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी उत्पाद वो करें वो एक सिस्टमेटिक तरीके से हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो
1: जी,
0: और अगर वो जीआई टैग है तो निश्चित रूप से उनकी आय में वृद्धि होगी होगी
1: जी।
0: लेकिन किसी भी जीआई उत्पाद का जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके मन में, उनके दिमाग में उस जीआई उत्पाद के बारे में सही बात बैठना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: और इसके लिए मैं कहूंगा कि हमारा जो ट्रेसिबिलिटी सिस्टम है
1: जी,
0: वो एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान करता है। किसी भी उत्पाद का अगर हम हमारे कंज्यूमर तक
1: जी,
0: उसको ट्रेसिबिलिटी से बता पाए कि देखिए ये उत्पाद है, ये यहां से चला, यहां पैदा हुआ
1: जी,
0: और उसके बाद यहां गया और उसका यहां प्रोसेसिंग हुई, यहां पैकिंग हुई और यहां जाके वो कंज्यूमर के तक पहुंचा, अगर हम ये निश्चिंतता अगर हम अपने कंज्यूमर को दे पाए तो निश्चित रूप से
1: वो खरीदेगा ही और लाभ सीधा हमारे किसानों को मिलेगा। बिल्कुल राजेंद्र जी, आपसे भी हम टिप्पणी लेना चाहेंगे, किसानों की आय को दोगुना करने में जीआई टैगिंग किस तरह से फायदेमंद साबित होगा?
3: मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि जो प्रोडक्शन है अगर हम इंक्रीज करने पे फोकस करेंगे उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना की जाए, क्योंकि जीआई प्रोडक्ट्स जो हैं हिंदुस्तान की इमेज है वर्ल्ड में। अगर हम क्वांटिटी के पीछे भागेंगे और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो बदनाम हमारे देश का ही होता है। इसलिए दोनों क्वांटिटी एंड क्वालिटी को साथ साथ चलना बहुत जरूरी है, और इसीलिए जो है जीआई प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन इतनी हाई नहीं होती क्योंकि उनका रीजन लिमिटेड होता है,
1: पर क्वालिटी यहां पर बहुत ज्यादा मायने रखती है। गुणवत्ता अगर अच्छी है आपके उत्पाद की तो निश्चित तौर पर आपको यहां पर अच्छा दाम मिलेगा ही मिलेगा, और जीआई टैगिंग हो गई है तो ये सोने पर सुहागा साबित हो जाता है। डॉक्टर बजाज, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे हमारे किसानों के लिए क्या संदेश है आपका?
2: सबसे पहले आपको उदाहरण दे दें, जैसे एक बलिया गेहूं की बात की गई जो घरेलू बाजार में बिकता है, प्रीमियम पे बिकता है, हमने एक्सपोर्ट किया और वो भी प्रीमियम पे किया। क्यों? क्योंकि वो जीआई टैग था, और जब प्रीमियम में बिका तो उसका लाभ जो है नीचे तक भी गया, सबको मिला, जो उसके उत्पादन कर रहे थे उनको भी उसका लाभ मिला। तो एक इसी तरह उदाहरण है, जीआई टैग होने पर उसका बेचना आसान है, हमें प्रीमियम मिलता है और एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ मैं जो एक चीज उगा रहा हूँ ये विशेष है, ये दुनिया के और किसी कोने में ऐसी चीज उगती नहीं है या बनती नहीं है, ये हम ही हैं इसके निर्माता या इसको उगाते हैं, तो एक संतुष्टि भी मिलती है। आने वाली जनरेशन को भी हम कह सकते हैं कि ये चीज हमारी जनरेशन ने हमें दी है और हम आगे आपको जनरेशन को देने जा रहे हैं। प्रीमियम मिलता है, आय में वृद्धि तो अवश्य होती है,
1: यहाँ पर
2: इसीलिए इसका बड़ा प्रमोशन करने की बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, तो जीआई टैगिंग देखिए कुल मिलाकर काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, आय में वृद्धि, एक विशेष पहचान, और अगर हम क्वालिटी पर ध्यान देते हैं तो और भी ज्यादा हमारे लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। बिल्कुल, तो देखिये जीआई टैगिंग की ओर आप अपने कदम जरूर बढ़ा सकते हैं, हमारी सरकार की ओर से भी यहां पर आपको पूर्ण सहयोग देने के लिए सभी तैयार बैठे हैं।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भी 90.8 एफएम। आपड़ू रेडियो, आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पूरी परिचर्चा, कितनी बड़ी परिचर्चा इस कार्यक्रम के माध्यम से, खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से हमने सुनी है और जाने हैं कि किस तरीके से जीआई टैगिंग की जाती है और किस तरीके फसलों में जीआई टैगिंग की जाती है, कौन कौन सी फसलें हैं जिसमें जीआई टैगिंग और किस तरीके से कानून क्या कहता है, सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने प्रस्तुत की है। हमें आशा है कि हमारे किसान साथियों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और इसका लाभ जरूर लेंगे, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से हम जीआई टैगिंग से लाभ ले सकते हैं आने वाले समय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो ये सारी बातें हम कार्यक्रम खेतीबाड़ी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं, कोशिश करते हैं वो छोटी छोटी बातें हमारे किसान साथियों तक पहुंचे जो उनके लिए बेहद जरूरी है। तो यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे किस्ती विस्तार अधिकारी साथ साथ में केबीके में जाकर वहां पर संपर्क कर सकते हैं। साथियों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम। आपड़ू रेडियो, आपड़ी बातें।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज की इस शाम में आपका दिल से स्वागत है SN रेडियो पर। मैं हूं आपकी तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये है

0: मेरा पहला काम था कि छोटे छोटे बच्चों को हम शुरुआत से ही उनको एकदम शुरुआत से ही उनको हम नैतिक शिक्षा दें तो एक अच्छा इंसान बनेंगे बड़े होके। वही एक
1: बिल्कुल
0: समय होता है जब बच्चा सब कुछ ग्रैस्प कर लेता है, उसकी
1: जी
0: ग्रैस्पिंग बहुत अच्छी होती है उस समय। तो
1: अच्छा
0: वह जो 3 से 5 तक के बच्चे थे उनको मैंने काफी साल पढ़ाया और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उस दौरान मैंने इतनी नई नई कृतियां लिखी, छोटे बच्चों की कहानियां भी लिखी और कविताएं भी लिखी। अच्छा, बड़े बच्चों के लिए मैंने एनुअल फंक्शन की स्क्रिप्ट लिखी। अब बड़े बच्चों के लिए नाटक लिखेंगे तो आपके स्क्रिप्ट तो लोग सुनते हैं, मेच्योर लोग सुनते हैं, तो वो उसी पे और जो सोशल प्रॉब्लम थी उन पे मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी मोस्टली। जैसे
1: बहुत
0: तो हाँ उनके और उनका निर्देशन भी किया मैंने, कितने बच्चों को
1: जी
0: सेलेक्ट करना है, उनकी वॉइस ओवर, ये सब सब काम मेरे जिम्मे था। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एज अ टीचर। मैं एक बहुआयामी लेखिका और कवित्री बनी जो कि शायद मैं गृहिणी होती तो नहीं बन पाती। तो मैंने अध्यापिका होने के कारण मैं स्वयं को एक बहुत बहुआयामी लेखिका बना पाई, इसके लिए मैं ऊपर वाले की बहुत धन्यवाद देती हूँ।
1: जी हम भी ऊपर वाले का धन्यवाद देते हैं कि हमारे साथ आप जैसी एक कवयित्री, एक लेखिका, एक टीचर, एक इतनी सुंदर शख्सियत हैं और आज हम आपको होस्ट कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन, और
0: थैंक
1: बहुत
0: यू तनुजा,
1: नेचुरली।
0: आपका
1: जी
0: प्यार है ये तो।
1: जी मैम, मैम आप डिजर्व करते हैं सब कुछ, और आपने बहुत नेचुरली बताया कि कैसे एक टीचर की जर्नी हर एपिसोड में बाय एंड लार्ज मेरी ये बातचीत रहती है, क्योंकि ज्यादातर जिनको मैंने इंटरव्यू किया है अभी तक उनका कहीं ना कहीं गाइडेंस से, मेंटोरशिप से, टीचिंग से कनेक्शन रहा है। ये संयोग की बात है, तो हर एपिसोड में मैं ये बात रिइंफोर्स करती हूँ कि कैसे एक टीचर, एक गाइड, एक मेंटोर आपके जीवन को शेप कर सकता है, क्योंकि आप सच कह रहे हैं बच्चे बिल्कुल कच्ची कच्ची मिट्टी जैसे होते हैं, तो उनको जिस तरह से आप
0: बिल्कुल
1: ढालना चाहें अच्छा सिखाएंगे, उनको नैतिक शिक्षा देंगे, एक एक यंग एज से उनको सिखाएंगे, छोटी छोटी बातें प्रीच करके नहीं बट एग्जाम्पल से, खेल खेल में, तो वो बहुत जल्दी सीखते हैं, तो बहुत इम्पैक्ट होता है टीचर का। एंड आई एम सो थैंकफुल कि हमारे देश में आप जैसे टीचर्स हैं, और ऐसे टीचर्स हैं जिनको मैं आज तक इंटरव्यू करके आई हूँ। बहुत बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अब आगे चलते हैं, हमारा सफर आगे लेके चलते हैं। आपने लिखने की जो आपकी शुरुआत थी वो आपकी आदत थी कि बस किताब लिया, अपनी नोटबुक ली और फटाफट कुछ लिख लिया, या ओवर टाइम ये शौक डेवलप हुआ, या पढ़ने से ये आदत ज्यादा डेवलप हुई? क्योंकि मैं अपने अपने श्रोताओं को ये बताना चाहती हूँ कि लेखन की जो जर्नी होती है वो जरूरी नहीं है कि बहुत यंग एज से शुरू हो। कई बार आप एक पड़ाव पे आके भी जीवन के रियलाइज करते हैं कि कुछ बातें हैं जो आप भी जीवन में लोगों से कहना चाहते हैं, और वहीं कई कुछ लोग होते हैं जो बचपन से पढ़ते आते हैं और उनकी वो जर्नी वहीं से शुरू हो जाती है। तो जैसे आपने कहा बचपन में लाइब्रेरी जाते थे, वहां टाइम स्पेंड करते थे, तो कैसे आपकी लेखन की आदत शुरुआत हुई, मतलब इसका इसकी रूट कॉज क्या थी, और कहाँ से आपकी पहली शुरुआत हुई, ये अगर आप हमें थोड़ा बताएं।
0: आप शायद माने ना माने पर मैं बहुत छोटी थी जब मैं लिखना शुरू किया तो हमको दो दो शब्द राइमिंग वर्ड सिखाया करते थे स्कूल में, वेरी यंग। तो राइमिंग वर्ड्स लिखती थी और फिर मैं उनके साथ साथ टू लाइनर्स भी लिखती थी, स्लेट पे लिखती थी और मिटा मम्मा को कहती थी मम्मा मेरे देखो ये लिखी, मम्मा कहती बहुत बढ़िया, मम्मा बिजी रहती थी अपने काम में। तो मैं कहती और लिखो बेटा बहुत अच्छा लिखा, तो मैं कहती हूँ स्लेट में तो जगह ही नहीं है। मामा कहती उसको आप कितना इजी होता है स्लेट में, तो आप उसको मिटाओ और फिर नया लिख दो। तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी है ही नहीं उस समय की, क्योंकि अगर शायद इतनी समझ होती कि मैं आगे तक भी कभी लिखूंगी तो उनको मैं संभाल के रखती, तो पता लगता कि एक 5-6 साल का बच्चा लिख भी सकता है। खैर वो देखिए उसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, पर मैंने खुद से खुद को लिखने के शौक से लेखन शुरू किया और अब वो आदत सी बन गई है। मेरे को कुछ भी विचार आते हैं तो मैं लिख लेती हूँ, कभी कभी मेरे पास बाध्यता होती है कि इस टॉपिक पर लिख के आपको देना है, एक दिन में देना है या 2 घंटे में देना है, तो तब उस बाध्यता में भी लिखती हूँ और मैं अपने शौक से भी लिखती हूँ। कोई मेरा के लिखने में एक आदत बन चुकी है।
1: जी, जब लिखना प्रेशर नहीं रहता, एक एहसास बन जाता है, एक फीलिंग बन जाता है, तभी वर्ड्स एक्चुअली जिंदा लगते हैं, वो आपको फील होते हैं, आपको टच करते हैं। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, बहुत सही कहा आपने।
0: एक छोटी सी बात और कहना
1: जी
0: चाहूंगी,
1: जी
0: पढ़ना बहुत जरूरी है, कोई भी
1: जी
0: टॉपिक पे आप

0: जरूर पढ़िए। जिसको भी
1: हाँ
0: लिखने का शौक थोड़ा भी है तो ऐसे नहीं लिखेंगे कि किसी का सुना पढ़ा और खुद ने लिख दिया, नहीं, आप उस टॉपिक पे पढ़िए। मैं तो इन लोग बच्चों के लिए कह रही हूँ जो कि लिखने के शौकीन होते हैं पर समझ नहीं आता कि क्या लिखें,
1: जी
0: तो हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहिए उनको, मैं ऐसा
1: जी
0: समझती हूँ।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, रीड रीड रीड एंड रीड टिल मोर एंड तो ही देन दैट यू कैन राइट। बहुत फेमस एक कोट है, तो इससे ये बातों का सफर हमारा चलता रहेगा। बट दोस्तों, इसी सफर को थोड़ा और सुंदर, थोड़ा और गहरा और थोड़ा और हसीन बनाने के लिए एक सॉफ्ट सा सुकून से भरा गीत आप सभी के लिए। वेलकम
0: हाँ
1: बैक
0: जी
1: कल्पना
0: बोलिए।
1: जी।
0: हाँ जी बोलिए।
1: जी कल्पना जी, आपकी लिखी हुई किताबें आपकी जर्नी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रही हैं, आई एम श्योर वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आपकी सोलो पोएट्री कलेक्शन परिचय कल्पना से और बच्चों के लिए लिखी हुई नर्सरी राइम मीठे बोल, इन
0: हाँ जी
1: दोनों को लिखने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा टच कर पाए तो हमें बताए मैम।
0: जी बिल्कुल। मैंने कविताएं तो बचपन से लिखी और बहुत कविताएं लिखी, समय समय पर, हर त्योहार पर, हर ओकेजन पर, मतलब सुख में दुख में, किसी घर वाले के लिए, किसी के जन्मदिन पर, किसी के विवाह की वर्षगांठ पर, मैंने बहुत कविताएं लिखी। पर कुछ मेरी खास पसंद की जो कविताएं थी या जो मेरे को लोगों ने जिनकी बहुत सराहना की थी, उन कविताओं को मैंने फिर सोचा संकलित करवा देती हूँ। तो मैंने उसका संकलन करवाया और जब वो पुस्तक के रूप में मेरे सामने आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप खुद समझ सकती हैं, कभी आपने भी अपना कुछ प्रिंट करवाया हो, छपवाया हो, तो आपको उतनी ही खुशी होती है जैसे कोई हमारा नया बेबी आया है दुनिया में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और छोटे बच्चों की जो मैंने मीठे बोल लिखी थी वो विद्यालय के लिए ही थी, तो क्योंकि उसको बाहर प्रिंट कराने की मुझे अनुमति नहीं थी स्कूल से, क्योंकि मैं

0: कराई हैं अपने बच्चों को, तो अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी लिखी हुई बात और छपी हुई बात आई थिंक यूनिवर्स को चली जाती है सीधा, क्योंकि वो इटर्नल हो जाती है इन टाइम। और कभी भी वो बुक जब कोई भी इंसान, कोई भी पीढ़ी का इंसान उसको उठा के पढ़ता है तो वो वही एहसास फील करता है जो कभी हमने लिखने के समय उससे फील किया हो। तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ मैम कि बहुत ही आपके दिल के करीब है ये बुक, क्योंकि हर लेखक की पहली लेखनी, पहली क्या, मेरे हिसाब से हर लेखनी लेखक के लिए बहुत स्पेशल होती है, बट पहली तो बिल्कुल बच्चे जैसी होती है क्योंकि तो मैं समझती हूँ मैम बिल्कुल। आप कविता, गीत, कहानी, नाटक का जैसे आपने बताया सब जॉनर्स में लिखा है आपने, इतनी वेरिड फॉर्म्स ऑफ राइटिंग की आपकी कैपेबिलिटीज हैं, तो क्या लिखने से पहले कोई प्लानिंग रहती है या फिर आप मन से ज्यादा अफेक्टेड होते हैं कि जो मन में आया वो लिखना है, या कोई एक प्रोसेस है आपका लिखने का, अब जाके इस स्टेज पे आके क्या कोई प्रोसेस है आपका लिखने का, या इट्स जस्ट फ्री फ्लोइंग की मतलब जो विचार आए वैसा लिखा, कैसा क्या प्रोसेस है मैम आपके लिखने का, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स में आप लिखते हो, सब फॉर्म्स में अलग एक टेक लेना पड़ता है आपको लिखने से पहले, चाहे कहानी हो, चाहे नाट्य शास्त्र हो, चाहे कविता हो, चाहे गीत हो।
0: जी बिल्कुल, जैसे एक तो जो आजकल की जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की हैं, या जो इतना पेड़ कट रहे हैं उससे है, मतलब जो समसामयिक विषय होते हैं, समसामयिक विषय मतलब जो अभी एट प्रेजेंट जो घटित हो रहा है सब आज के जमाने में, उन पे किसी पे भी मेरा मन करता है तो मैं लिख लेती हूँ। मेरे पे उसकी बाध्यता नहीं होती कि आप इस पे लिखिए, पर मैं अपनी मन से लिख लेती हूँ। लेकिन कभी कभी जब मैं बच्चों के लिए लिखा करती थी तो मेरे पे बाध्यता होती थी कि बच्चों को इस टॉपिक, मैं खुद ही सजेस्ट करती थी टॉपिक कि इस टॉपिक पे इस बार लिखेंगे। जैसे बच्चे पटाखे और होली और इनके साथ खेलते तब तक तो ठीक है, पर वो अपने आप को नुकसान भी बहुत पहुंचा लेते हैं, पतंग उड़ाते हैं तो हाथ पाथ कट जाते हैं कभी बच्चे, और मतलब बहुत घायल हो जाते हैं। दीपावली पर भी बच्चे घायल हो जाते हैं पटाखों से, और होली के रंग में भी बहुत कुछ मिला देते हैं जिससे, तो ये एक सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ मैं
1: जी।
0: तो इस तरह की चीजें लिखती हूँ जब मेरे पास खुद ही बाध्य हो जाती हूँ कि मुझे इस पे लिखना है, तो मैं उससे संबंधित सारा लिखती हूँ। और जब अपने मन से लिखती हूँ तो मैं किसी भी टॉपिक पे लिखती हूँ, और मेरे को खुशी देता है लिखना। आप भी सोचेंगे इतनी खुशी देती है लिखना तो आप इतनी फेमस कवित्री क्यों नहीं हुई।
1: अरे मैम उसका कोई, मैं नहीं मानती कि उसका कोई मेजरमेंट होता है मैम, सच में होता है जी, जी।
0: आज सब प्रेमचंद को पढ़ते हैं, महादेवी वर्मा को पढ़ते हैं, तो मैं कभी कभी इनको कहती, मेरे हस्बैंड को कहती हूँ कि देखिए मैं कितना अच्छा लिख लेती थी, अब पुराना अपना देखती हूँ संग्रह तो, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इन लोगों की तरह से फेमस हो जाऊँ। लेकिन अब इस उम्र के इस पड़ाव पे आके लगता है कि मैं ऐसा कर सकती थी। ठीक है, जो जिसका जो रहता है ना
1: जी, जी बिल्कुल,
0: कुछ है बहुत आप जैसे प्यारे प्यारे लोग।
1: नहीं, हम तो बहुत पसंद करते हैं और हम चाहेंगे कि आप बहुत सारा और लिखें, और अभी भी बहुत समय है आपके पास वहां तक पहुंचने का, मैं तो ये मानती हूँ।
0: मैं तो जीवन पर्यंत लिखना चाहती हूँ मैं तो,
1: बिल्कुल मैम, और हम पढ़ने के लिए रेडी हैं, हम सारे, हम सब पढ़ने के लिए आपके लिए उत्सुक हैं। आप जो लिखें और लिखते चले, और आपकी लिखाई वहां तक पहुंचे जहां आप चाहते हैं, उस शिखर पर आप पहुंच पाए। मैम कुछ है जो आप हमारे लिए पढ़ सकते हैं अभी, अगर आप पढ़ना चाहें तो कुछ छोटा सा, एनीथिंग?
0: मैं एक छोटा सा तो नहीं, थोड़ा सा
1: बिल्कुल बिल्कुल, समय है हमारे पास मैम, आप पढ़ें।
0: मैं एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ। देखिए आजकल बच्चे सुसाइड कर रहे हैं बहुत ज्यादा।
1: जी जी,
0: वैसे तो मेरे पास बहुत बड़ा संग्रह है, लेकिन मैं इसको स्पेशली पढ़ना चाहती हूँ ताकि बच्चे सुने, बड़े सुने, जिसको भी तकलीफ है, जो भी तकलीफ में है
1: जी,
0: आयु कोई भी हो, कभी कभी परिस्थिति मन वांछित नहीं होती
1: जी,
0: अपने अथवा किसी अन्य की भूल के कारण हम किसी भी विपदा में गिर जाते हैं, तब किसी पर भी विश्वास करने से डरते हैं, किंतु कोई भूल इतनी बड़ी नहीं होती कि माता पिता क्षमा न करें या हमें संबल न दें। यह विशेषतः उन विद्यार्थियों के लिए है जो भावुकतावश और दुर्भाग्यपूर्ण जो भावुकतावश घोर दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य करने की ठान लेते हैं, उलट सुसाइड कर लेते हैं और भी बहुत गलत कर देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो मैं उसके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत बहुत जरूरी है जी।

0: सकती है, किसी को नौकरी में तकलीफ हो सकती है, तो मैं बताती हूँ।
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल जी।
0: मेरी कविता है, तू जिसे मन की कहेगा, तू विवल अथवा विकल हो विरुद्ध सब तू विफल हो, बेवचन तू न डिगेगा, भाव सब वश में करेगा, साथी छोड़े साथ तेरा, सामने हो तम घनेरा, सपने क्या तू न बुनेगा, यत्न सारे छोड़ देगा, यह परीक्षा की घड़ी है और चुनौती भी बड़ी है, तो क्या कुंठित हो रहेगा, लक्ष्य से मुख मोड़ लेगा, संभवतः आज भाग्य अस्त होगा, मार्ग कल प्रशस्त होगा, कठिनाइयों को जीत लेगा, विश्वास जब स्वयं पर रखेगा, ऋण है तुझ पर माँ पिता का, पथ देखना मत तू चिता का, असफलता से डरेगा तो सफल कैसे बनेगा, तेरा निर्णय हो न घाती, तू किसी की भी है थापी, आत्ममंथन जब करेगा तू जनक से जा कहेगा, अपने पिता से कहेगा, जनक मतलब पिता
1: जी,
0: जिसने सृजन तेरा किया है, रूप रंग जिसने दिया है, अपनी व्यथा से जब थकेगा, जननी से तू मन की कहेगा, जो है तेरे पथ प्रदर्शक, भाई बंधु गुरु शिक्षक, इनसे दुख साझा करेगा, तू अकेला न सहेगा, मत समझ कोई नहीं है, तेरे सब अपने यही हैं, संशय उन्हें अपने कहेगा, उनकी कही भी तू सुनेगा, नेह का रस तिक्त घट वह, दया के सागर का तट वह, वह हृदय की सब सुनेगा, प्रभु से तू मन की कहेगा, इनका विकल्प तू ढूंढना मत, मस्तक रहे इनके लिए नत, इनके लिए ही सब रहेगा, देवचन तू न डिगेगा, रिक्त कर अपना मनस्तु, छोड़ सारे प्रश्न वस्तु, तिमिर जब मन का छटेगा, पथ तुझे उज्जवल दिखेगा, देवचन तू न डिगेगा, देवचन तू न डिगेगा। थैंक यू।
1: बहुत बहुत बहुत सुंदर मैम, और ये मतलब इतना सही और इतना रेलेवेंट है ये इस समय के लिए, क्योंकि हाल ही में बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं, जयपुर में बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं, और हम ये समझें कि हमारा जीवन सिर्फ हमारा नहीं है, सच में उसमें ऋण है, और उस ऋण बंधक से अगर हम इस जन्म में मुक्त होने की कोशिश करेंगे तो अगले जन्म हम फिर वही सहेंगे और उससे और ज्यादा पीड़ा सहनी पड़ सकती है। तो अपने आप को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, अपने जीवन को एक एक गिफ्ट समझें जो सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपसे बंधे हुए बहुत सारे लोग जुड़े हैं उस जीवन से। तो ऐसे स्टेप्स उठाने से पहले प्लीज प्लीज ऐसे प्रेरणात्मक कवियों को सुने और अपने जीवन को थोड़ा सा सीरियसली लें, क्योंकि वो सिर्फ आपका नहीं है, आपका ऋण है सब लोगों के लिए। बहुत ही सुंदर कविता मैम, थैंक यू सो मच।
0: मुझे लगा मैं शेयर करूं कि नहीं करूं, पर मुझे लगा ये संदेश रेडियो के थ्रू बच्चों तक बड़ों तक पहुंचना चाहिए, ऐसा मुझे लगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम। अब हम एक गीत की तरफ चलते हैं, बहुत सुंदर बातों का सफर चल रहा है, आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग, एक खूबसूरत सा गीत इन खूबसूरत बातों के बीच में जो सिंप्लिसिटी और पॉजिटिविटी से भरा है।

0: वेलकम बैक कल्पना मैम।
1: हाँ जी
0: जी, हमारी बातों के सफर को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। आपका जो सफर है वो सिर्फ लिखने तक सीमित नहीं है, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को सोशल वर्क से भी बहुत जोड़ा है और काफी एक्टिव रही हैं। तो आपका लिखना और आपकी समाज सेवा, इन दोनों के बीच का जो गहरा रिश्ता है, क्योंकि मैं जानती हूँ लेखक एक बहुत ही सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग होता है और वो लिखना तभी शुरू करता है जब कहीं ना कहीं उसको समाज की चीजें अफ्लिक्ट करती हैं। पहले तो जर्नी शुरू होती है पर्सनल राइटिंग से और फिर वो पर्सनल से और इम्पर्सनल होके समाज तक पहुंचती है। तो क्योंकि आपको कोई चीज लगी है, कुछ जैसे अभी आपने अपनी कविता पढ़ी सुसाइडल अटेम्प्ट के ऊपर, तो उसी तरह कैसे आपके लिखने से जो समाज सेवा का सफर है वो कनेक्ट हुआ और उससे आप अपने लेखन से बाहर निकल के एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर चेंज लेके आ सके, इसके बारे में अगर आप हमें बताएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल अनिशा जी, जो समाज सेवा के अनुभव होते हैं वो लेखन को प्रामाणिक बनाते हैं। मतलब मेरे जो भी अनुभव हुए मुझे समाज सेवा, और समाज सेवा मैं आपको बताना चाहती हूँ सिर्फ इतना ही नहीं है कि जिनके पास वस्त्र नहीं है या जो 2 समय का भोजन नहीं कर सकते उनको भोजन देना या वस्त्र देना, मैं इसको समाज सेवा में नहीं मानती, क्योंकि उसके लिए तो सरकार भी बहुत सारी स्कीम्स चलाती है। समाज सेवा है कि उन डिप्राइव्ड लोगों को या उन कम पढ़े लिखे लोगों को जागरूक बनाए, मैं उसको समाज सेवा मानती हूँ। तो मैं लोगों को जागरूक बनाने के लिए क्या है कि जो जिनको नीड है, जिनको आवश्यकता है, जिनको जरूरत है, उनको उनकी आवश्यकताएं और उन जरूरतें पूरी कौन करेगा, जो बाकी का समाज है, जो जिसके पास जो समृद्ध है। तो जो ये समाज सेवा में ये भी आता है कि हम समृद्ध लोगों को उन लोगों की परेशानियों से अवगत कराएं, शोषित वर्ग की पीड़ा से अवगत अवगत कराते हैं हम अपनी रचनाओं द्वारा। मैं जितना कर सकती हूँ अपनी रचनाओं द्वारा उनको बताती हूँ पीड़ा, और उससे बहुत फर्क पड़ता है, लोग आगे आते हैं, मदद करते हैं। तो समाज सेवा में एक बहुत बड़ा मतलब क्राउड जुड़ जाता है। तो समाज सेवा में लेखन और समाज सेवा मेरी तो हैंड इन हैंड चलती है, मतलब साथ साथ चलते हैं। लेखन और समाज सेवा दोनों ही समाज को बेहतर बनाने के सशक्त माध्यम है, दोनों ही मिलकर जागरूक बनाते हैं,
0: बिल्कुल
1: जागरूकता बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि
1: आपको
0: कैसे
1: ठीक लग रहा
0: लेखन से भी, जी लेखन से भी फंड रेजिंग होती है, लेखन से भी
1: जी?
0: लोग उस पूरे आपके ऑब्जेक्टिव से जुड़ सकते हैं और आगे चल सकते
1: बिल्कुल
0: हैं, और कैसे
1: बिल्कुल
0: वर्ड्स जब एक्शन से जुड़ते हैं तो इम्पैक्ट और स्ट्रांग हो सकता है। तो ये सब बिल्कुल सही है, लेखन की पावर एक अलग ही पावर है, कलम की पावर एक अलग ही पावर है अगर सही यूज की जाए। जी
1: और ये
0: आप
1: तभी, सॉरी सॉरी,
0: जी, नहीं
1: ये
0: नहीं
1: तभी, ये
0: मैं
1: लेखन में ताकत तभी आएगी जब आपने ग्राउंड लेवल पे कुछ काम किया होगा। अगर आपने सचमुच जो शोषित वर्ग की तकलीफें देखी होंगी तभी आप लिख पाएंगे। तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: इसलिए मैं सोचती हूँ कि समाज सेवा और लेखन मेरे तो साथ साथ चले हैं,
0: जी
1: और मुझे लगा कि कुछ उसका असर भी हुआ है।
0: जी जी बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। इस थॉट से ही आई थिंक कहीं ना कहीं यूनिवर्स को मैसेज जाता है कि आपकी वाइब्रेशंस चेंज होती हैं, और उस थॉट से ही इतना चेंज आ जाता है, और फिर आप तो इतना कुछ कर रहे हैं इतने सालों से, और उसी करने के से चलते आपको कई अवार्ड समय समय पर मिले हैं मैम, कई रिकॉग्निशंस मिले हैं, जैसे कि
1: जी
0: जी राजस्थान वुमेन्स अवार्ड, पारिक
1: जी
0: प्राइड अवार्ड, और वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़े हुए कई सम्मान। तो ये अवार्ड आपके लिए क्या मायने रखते हैं, इतने इस जीवन के सफर में यहाँ तक पहुंचने के बाद क्या लगता है आपको कि आपने ये सब पाया? अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आप सोचते हैं कि वहां नहीं पहुंचे प्रेमचंद जी एंड विनोद कुमार शुक्ल जी, बट इतना आपको जो सम्मान और प्लेटफॉर्म मिला है, ये आपको कैसा फील होता है और क्या आपको अनुभव करते हैं आप इस यहाँ तक पहुंच के?
1: हाँ तनुषा जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। अवार्ड मिलने का मतलब आपके कार्य को पहचान मिली,
0: जी
1: तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला। मुझे चुना गया कि आप तो इतना अच्छा गाती हैं, इतना अच्छा लिखती हैं, मैं आपको, आपका नाम मेरे को भेजिए, आपका परिचय, और इस बार आपको अवार्ड दिलाएंगे हम। कहीं कोई आउट ऑफ द ब्लू कोई हमें मिल गए और उन्होंने पहचान लिया, मैंने तो कभी ये प्रयास भी नहीं किया था, पर हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद तो देखिए, जब आपको सम्मान मिल जाता है तो लोगों की आपके प्रति, उनका भी सम्मान बढ़ जाता है आपके प्रति।
0: जी
1: सभी सम्मान देने लगते हैं। ये एक ये ऐसी कड़ी है जो एक के बाद एक जुड़ती जाती है, और मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगा कि मैं जो करती हूँ वो लोगों को पसंद आता है, लोग उसकी सराहना करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि हम अपने काम में खरे उतरे। अवार्ड तो ले लिया, हम बड़े खुश हैं, लेकिन हम उससे ये ना हो कि हम अपने पथ से थोड़े विचलित हो जाएं। हम अपना अच्छा कार्य करते रहें और अपने काम में हमेशा खरे उतरे, मैं ऐसा सोचती हूँ, ऐसा सोचती हूँ। और समाज में प्रतिष्ठा मिलना तो सभी को अच्छा लगता है।
0: जी जी, जैसे कहते हैं कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इट्स ट्रू। एंड मैम, अगर आपने बताया आप गाते भी हैं, जैसे हमने पढ़ा भी कि आप गीत भी लिखते हैं, तो कोई गीत, अगर मैं ज्यादा फरमाइश कर रही हूँ, बट अगर कोई गीत हो जो आप हमारे साथ गुनगुनाएं और हमारे श्रोताओं को सुनाएं, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। छोटा सा कोई भी पंक्ति।
1: तनिषा, दो पंक्तियां सुना दूंगी, तीन चार पंक्तियां, लेकिन मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ कि मुझे लरिंजाइटिस, बिकॉज मैं टीचर थी
0: जी,
1: तो टीचर थ्रोट बहुत कॉमन है।
0: बिल्कुल,
1: बहुत अच्छा गाया करती थी मैं, अपनी कॉलेज की और स्कूल की स्टार सिंगर थी
0: जी,
1: पर ये लरिंजाइटिस होने के बाद मैं 20 साल तक गा नहीं सकी। बहुत तकलीफ में रहा मेरा गला और मेरा मन भी, क्योंकि मैं बचपन से गाने की शौकीन थी। तो मैं आज आपको, अब मैं थोड़ी सी बेटर हुई हूँ
0: जी,
1: मैं अपने इस जैसे भी गले में मैं आपको दो पंक्तियाँ सुनाती हूँ।
0: थैंक यू सो मच मैम।
1: जी चाहता है गुनगुनाना कोई तराना, सॉरी,

0: आगे बैठी रहूं।
1: सॉरी तनुषा, आप इसको बिल्कुल मिटा देना क्योंकि मुझसे
0: नहीं
1: नहीं गाया जा
0: नहीं
1: रहा।
0: बहुत सुंदर है, मैं इसको बिल्कुल नहीं मिटाऊंगी क्योंकि इतना सुंदर गला और इतनी सरलता, इतनी सच्चाई आपकी आवाज में मैम, बहुत ही सुंदर लगा मुझे गीत, बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच कि आपने माते गाया, बहुत बहुत थैंक यू मैम।
1: थैंक यू,
0: अगर सिंप्लिसिटी की आवाज होती तो वो आपकी होती।
1: थैंक यू
0: जी, आगे चलते हैं। आज के युवा को लिखना बहुत पसंद है, सब लिखना चाहते हैं, सब सोशल मीडिया से अफ्लिक्टेड हैं, देखते हैं, सबको कुछ ना कुछ, सबके पास अपनी एक आवाज है, पर कहीं ना कहीं कोई डाउट्स रहते हैं लोगों को कि हम क्या अच्छे लेखक बन पाएंगे, या क्या हमें हमारी मन की बात शेयर करनी चाहिए, लोगों का जजमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि आप चिल्ड्रन हार्ट, बच्चों के दिल से, चिल्ड्रंस हार्ट इससे जुड़ते हैं, आप युवा से जुड़ते हैं, तो आप ऐसे बच्चों के लिए जो लिख तो सकते हैं, लिखना चाहते हैं, बट थोड़ा डरते हैं, थोड़े डाउट में रहते हैं, उनके लिए अगर कुछ कहना चाहें, कोई मैसेज तो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो युवा लिखना चाहते हैं या जो बच्चे लिखना चाहते हैं, मैं उन्हें कहूंगी कि जिस विषय पर लिखने का मन है उसके बारे में जानकारी हासिल करें, पढ़ें, बहुत पढ़ें और अपनी वोकैबुलरी बढ़ाएं। लेखन के लिए आपको बहुत सारे शब्द आने भी आवश्यक हैं, है ना? और अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं तो उर्दू शब्दों का प्रयोग करें, और हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी शब्दों का प्रयोग करें। आपको नहीं आते तो आप डिक्शनरी देखिए, नहीं तो गूगल सर्च कर लीजिए, क्योंकि राइमिंग वर्ड्स हर जगह मिलते हैं और कविताएं हैं वो उसमें अधिकतर राइमिंग वर्ड्स का ही प्रयोग होता है, तो आप उसमें से देख के सीख सकते हैं। थोड़ी मेहनत यहाँ करनी पड़ेगी आपको, जो कि बहुत लंबा समय नहीं लेती है अगर आपका आपकी लगन है लिखने के प्रति, और आप अपनी भाषा को परिष्कृत करके जब आप अपनी नॉलेज के साथ लिखेंगे तो मैं कहूंगी कि आप बेधड़क लिखें, क्योंकि सच्चा प्रयास जो होता है वो हमेशा सराहा जाता है।
0: बिल्कुल,
1: अगर आप लिखें खुद ही आपको, हमको है ना, हम खुद ही अपने जज सबसे अच्छे होते हैं, हमें पता लग जाता है कि ये हमने सही लिखा, अच्छा लिखा या नहीं लिखा। तो जब आप खुद जज बनते रहेंगे ना तो आप परिष्कृत होते चले जाएंगे और आपकी दुनिया भी बहुत सराहना करेगी। मेरा तो ये मैसेज है बच्चों के लिए।
0: बहुत बहुत सही और सटीक मैसेज है मैम, कि बहुत सिंपल यात्रा नहीं है ये, प्रयास करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी जो लेखनी आएगी उसमें वो रस आएगा, जो आप भी पढ़े तो आपको अच्छा लगे और दुनिया पढ़े तो खैर आपका मैसेज पहुंचे। और ये बहुत सिंपल यात्रा नहीं है, बट बहुत सिंपल हो सकती है अगर आप अपने मन से इससे जुड़े और थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा परिश्रम करें। कुछ भी चीज परिश्रम के बिना नहीं मिलती। बहुत ही सटीक और सुंदर बात कही आपने। अब इसी से कभी कभी कुछ बातें मेरे दिल को इतना छू जाती हैं। इसी फीलिंग के साथ अब हम सुनते हैं एक गीत जो होप और भरोसे से भरा हो।
2: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना कोई,

0: वेलकम बैक कल्पना जी.
1: हाँ जी
0: जी, आगे चलते हैं हम, हमारे सफर को थोड़ा और आगे ले चलते हैं. जब आप पीछे मुड़कर आज अपनी जर्नी को देखते हैं मैम, तो आप सबसे ज्यादा खुशी और सबसे ज्यादा रिग्रेट, इन दोनों बातों को अगर आप हमें बताएं कि सबसे ज्यादा खुशी किस बात की होती है और रिग्रेट किस बात का होता है, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा.
1: जी तनिषा, मैं कह नहीं सकती कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब हुई.
0: जी,
1: अलग अलग समय पर बहुत सी बातों से मुझे बेहद खुशी हुई. पत्नी बनने की, माँ बनने की, लेखिका, अध्यापिका और बहुत कुछ बनने की, पारितोषिक मिलने की,
0: जी.
1: नानी बनने की.
0: जी.
1: और ऐसे बहुत से मौके आए जब मैं बेहद खुश थी.
0: जी.
1: तो मैं गिना नहीं सकती आपको कि मैं कब बेहद खुश थी. और रिग्रेट तो देखिए, हम लाइफ में शायद दिन में कभी ना कभी हम रिग्रेट, ओह हमने ये नहीं किया, उसका देखो उसने मुझे कहा था हेल्प करने के लिए, मैं भूल गई. तो हम छोटी छोटी रिग्रेट्स की बात करें तो रहती है हमारे जीवन में लगातार, और खुशियां भी लगातार रहती हैं. तो कोई बहुत बड़ी रिग्रेट तो मुझे लगता है कभी मैंने किसी स्टूडेंट का दिल दुखाया हो. मैं हमेशा मन में सोचती हूँ, ऊपर वाले से मैं माफी भी मांगती हूँ. कोई स्टूडेंट का मैंने अनजाने में ऐसा सबके सामने डांट दिया हो, जो कि बहुत भावुक किस्म का बच्चा हो और मुझे मैंने ध्यान ना दिया हो और उसका दिल दुखा हो, तो वो शायद मैं उसके लिए रिग्रेट कभी कभी जरूर करती हूँ कि अगर मैंने कर दिया हो. मेरे नॉलेज में तो नहीं है, टीचर कर सकती है. देखिए
0: आपका हर जवाब मुझे इस यकीन की तरफ ले जाता है कि आप कितनी सुंदर, कितनी सरल और कितनी सुलझी हुई शख्सियत है मैम. बहुत बहुत अच्छा एहसास है कि कोई इतना सोचे, और बहुत बहुत अच्छा लगा ये जवाब सुन के. बहुत ही प्यारा जवाब था आपका. अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. जो लोग लाइफ के किसी भी फेज में थक गए हैं, रुक गए हैं, अपने आप से परेशान हैं, उनके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जो उन्हें बाहर नहीं आने दे रहे किसी एक समस्या से, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत सेंसिटिव हैं जैसा मैंने आपको समझा है, और आप ह्यूमन माइंड, ह्यूमन साइक को समझते हैं. बच्चों के साथ डील किया है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंसान कैसे कभी कभार ऐसी जगह में फंस जाता है जहां से कोई रास्ता नजर नहीं आता. तो ऐसे लोगों के लिए अगर आपका कोई मैसेज है मैम.
1: मेरे पास बिल्कुल मैसेज है. अभी तो मैंने आपको एक कविता सुनाई थी पढ़कर, उसमें तो बहुत भरपूर मैसेज था. और दूसरी बात ये कि कभी हारिए मत, आपको जीवन मिला है, वो अद्वितीय चीज है. जो मतलब एक बार जब जीवन मिला है तो उसको पूरा जी के जाइए, बीच में मत छोड़िए. आपके बहुत सारे काम हैं जो आप खुद के लिए नहीं तो दूसरे

0: सकते हैं, तो आप ये क्यों नहीं सोच सकते कि मैं बहुत सबल हूं, मुझे भगवान ने हाथ पैर आंख नाक सब इतना पूरा बनाया है, मैं पूर्ण हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ लोगों की तकलीफें, मैं जैसे मैं दुखी हूँ मेरा कोई नहीं सुन रहा, तो मैं जाके किसी की तकलीफ भी सुन सकता हूँ। आप वृद्धाश्रम में जा सकते हैं, आप अपना मन लगा सकते हैं, और इसके आपको तरीके खुद ढूंढने पड़ेंगे। तकलीफ सबके जीवन में आती है, लेकिन सब अपने मन को समझाते हैं और उन तकलीफों से बाहर निकलते हैं। जीवन को समाप्त करना कोई मैं सोचती हूँ कोई जी बिल्कुल हमारे ये जवाब नहीं है हमारी समस्याओं का, ये समाधान नहीं है। तो हमें कुछ भी करना, सोशल सर्विस कीजिए, लिखिए, बहुत तकलीफ में कोई सुन नहीं रहा, आपके माँ बाप भी कहते तुम गलत हो, आपके फ्रेंड्स भी कहते तुम गलत हो, तो मान लो ना कभी उनकी कि तुम गलत हो
1: जी।
0: ऐसा थोड़ी है कि तुम इतने तुमको पूर्ण बनाया है तो तुम्हारी बुद्धि भी पूर्ण है
1: जी।
0: नहीं होता ऐसा, तो आदमी को खुद सोचना पड़ता है, लड़की हो, आदमी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, बैठ के चिंतन मनन करें और अपने आप को सोचे मुझे ईश्वर ने कितना अच्छा बनाया है, मैं दुनिया का एक अनोखी वस्तु हूँ, अनोखी चीज हूँ जो मैं इस धरती पे हूँ
1: जी।
0: नहीं तो देखिए डॉग्स भी घूम रहे हैं, कैट्स भी घूम रही हैं, गाय भी घूम रहे हैं, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं मनुष्य हूँ,
1: ये
0: बहुत बड़ी चीज है। अगर जिस दिन ये समझ में आ जाएगी ना, उसको ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि मैं अब क्या करूँ, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ ही लेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मंथन करें, आत्म मंथन करें, अपने साथ बैठे,
0: बिल्कुल आत्म मंथन करें,
1: रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिले,
0: बिल्कुल मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसी पंक्ति है जो आजकल हर बच्चा बच्चा बोलता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत सुंदर, बहुत ही हौसले से भरे शब्द थे आपके। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हमने सिर्फ एक राइटर से बात नहीं की, हमने एक सोच, एक सफर और एक सच्ची जिंदगी को महसूस किया। कल्पना पुरोहित जी जैसे लोग ये याद दिलाते हैं कि लिखाई सिर्फ शब्द नहीं होती, वो इंसान को इंसान से जोड़ने का जरिया होती है। कल्पना जी आपका दिल से शुक्रिया, इतनी प्यारी, इतनी सीधी, इतनी गहरी बातें हमसे शेयर करने के लिए।
0: थैंक यू तनुषा, धन्यवाद, शुक्रिया, मैं क्या बोलूं, आप इतनी प्यारी हैं कि आपको सभी अच्छे लगते हैं।
1: नहीं मैम, आप सच में बहुत प्यारे हैं और मैं बहुत लुक फॉरवर्ड करती हूं आपसे पर्सनली मिलने का इस एपिसोड के बाद। इतनी प्यारी बातें हमने की तो मैं आपको थोड़ा और जान पाई, थोड़ा और झांक सकी आप में, और बहुत ही सुंदर एक शख्सियत मुझे नजर आई। तो थैंक यू सो मच मैम।
0: थैंक यू तनुषा।
2: जिंदगी के रंग हजार। दोस्तों जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा। छोटी सी हमारी कायनात बन गई।
3: हूँ से आरजे भावना, आप पर हंगला भाइयों नू घरों घरों स्वागत करिए से आपरा झाबुआ ना सामुदायिक रेडियो स्टेशन

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टैंटिया भी रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम
1: से आरजे भावना आपण हंगला भाइयों नु घरु घरु स्वागत करिए से आपरा झाबुआ ना सामुदायिक रेडियो स्टेशन

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा रेडियो शो जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है संगीत की दुनिया का सरगमी रंग। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज का एपिसोड बेहद खास है और बेहद संगीतमय है, क्योंकि हमारी स्टूडियो गेस्ट हैं डॉक्टर शिखा कुलश्रेष्ठ, एक ऐसी प्रतिभाशाली कलाकार जिनका सफर संगीत, शिक्षा और क्रिएटिविटी, इन तीनों का एक खूबसूरत संगम है। डॉक्टर शिखा ने न सिर्फ पीएचडी इन म्यूजिक वोकल है, जिनका शोध राजस्थानी मांड गायकी पर केंद्रित रहा, बल्कि प्रयाग संगीत समिति से संगीत प्रभाकर, दयालबाग से पोस्ट ग्रेजुएशन और विक्रम यूनिवर्सिटी से एमएड जैसी उपाधियां इन्होंने अपने नाम की हैं। वो एक बेहतरीन स्टेज परफॉर्मर भी है, कई कॉम्पिटिशन में टॉप रैंक हासिल कर चुकी है और कई सिंगिंग इवेंट्स में जज के रूप में भी अपनी पहचान बना चुकी है। साथ ही मिलेनियम टीटी कॉलेज अकलेरा में सीनियर लेक्चरर के रूप में यंग माइंड्स को शेप कर रही है। आज हमसे हम जानेंगे उनका बचपन, उनकी म्यूजिकल जर्नी, उनके फेवरेट सिंगर, और हाँ, बीच बीच में हम उनसे खूब खूबसूरत लाइंस भी सुनेंगे, लता जी से लेकर आशा जी और उनके फेवरेट मेल सिंगर तक। तो तैयार हो जाइए सुरों, यादों और इंस्पिरेशन से भरी एक सोलफुल मुलाकात के लिए। शिखा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार आलोक जी, सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शिखा कुलश्रेष्ठ आप सभी को अपना प्यार भरा नमस्कार करती हूँ।
1: तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले शिखा जी, थोड़ा सा अपने श्रोताओं को अपना छोटा सा परिचय दें, आपकी शुरुआती जिंदगी कैसी थी, कहाँ आपकी पैदाइश है, अभी आप कहाँ रह रही हैं, कुछ अपने बारे में हल्का फुल्का बताइए शुरुआत के दिनों के बारे में।
2: हाँ जी, मेरा जन्म हुआ था अलीगढ़ में, यूपी में अलीगढ़ शहर है, वहां पर मेरा जन्म हुआ था। हाँ जी, हाँ। और क्या है कि मेरे फादर जो है वो रेलवे में थे, तो उनकी पोस्टिंग तो कहीं अलग अलग शहरों में होती रहती थी, ट्रांसफर होते रहते थे, तो मैं कई जगह रही हूँ, इसीलिए एमपी, राजस्थान, यूपी, सब जगह, सारे मतलब कई जगह पर रह चुकी हूँ मैं। तो मेरी जो सबसे पहले नागदा में ही मेरी एजुकेशन शुरू हुई थी, मैंने मतलब नर्सरी में मैं नागदा थे हम लोग। उसके बाद में फिर डैडी का ट्रांसफर हुआ, तो हम लोग बयाना, फिर भरतपुर आए। भरतपुर में हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम रुके, 10 साल के करीब हम लोग रुके थे। फिर उसके बाद मेरे डैडी का ट्रांसफर हो गया आगरा में, फिर हम लोग, मेरी पूरी एजुकेशन फिर आगरा में हुई। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई, मैं कोटा आ गई, अभी मैं कोटा में ही हूँ।
1: बहुत खूबसूरत, अलीगढ़ तो बड़ा फेमस जगह है, और मुझे तो इसलिए बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप अलीगढ़ की पैदाइश है, क्योंकि शायद आपको नहीं पता होगा मेरी भी अलीगढ़ की पैदाइश है।
2: अच्छा,
1: तो मुझे बहुत मजा आया, हालांकि हम राजस्थान में रहे ज्यादा।
2: हाँ जी, मेरी मेरी दादी का घर वही है।
1: ओके ओके,
2: हाँ, मेरी दादी का घर वही है, तो इसलिए मैं, मेरी पैदाइश वही की है।
1: चलिए बहुत बढ़िया, ये तो अलीगढ़ से शुरुआत हो गई अपनी बातचीत की, से अच्छी बात ही क्या है। अच्छा, तो शिखा जी अब ये बताइए कि क्या आपके परिवार में संगीत का माहौल था, या ये लगाव आपने अपने आप विकसित हुआ, ये कैसे हुआ धीरे धीरे, कभी फैमिली का माहौल भी?
2: हाँ, मेरी फैमिली में संगीत का माहौल था। मेरी मदर बहुत अच्छा गाना गाती है।
1: अच्छा।
2: और शायद मैंने उनसे ही सीखा था बचपन से,

0: हाँ, तो वेलकम बैक शिखा जी। आपकी शैक्षणिक उपलब्धियां भी काफी प्रभावशाली है। सबसे पहले हमें बताइए कि संगीत में आपकी औपचारिक या फॉर्मल एजुकेशन किस तरह से शुरू हुई, क्या क्या किया आपने?
1: जैसे कि मुझे म्यूजिक का शौक बचपन से ही था, तो फिर उसको देखकर मेरे मदर फादर ने सोचा कि उसको कुछ म्यूजिक में ही कराया जाए। तो सबसे पहले मैंने ये प्रभाकर में ही मुझे एडमिशन दिलवाया था। कोई डिस्टेंस कोर्स होता है ये, तो हाँ, तो इसमें जैसे होता है सर कि पहले जूनियर डिप्लोमा होता है, सीनियर डिप्लोमा, फिर प्रभाकर की डिग्री होती है। तो इस तरह से मेरा स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद मैंने 11th 12th में ही म्यूजिक लिया, फिर आगे फिर चलता गया। फिर मैंने DMA म्यूजिक लिया था, MA म्यूजिक वोकल से किया मैंने, उसके बाद PhD किया।
0: अच्छा, PhD भी म्यूजिक से ही किया आपने?
1: जी
0: ओके, ग्रेट।
1: जी म्यूजिक से PhD किया मैंने, म्यूजिक वोकल से।
0: अच्छा, वंडरफुल। तो आपका ये जो PhD का रिसर्च टॉपिक है शायद राजस्थानी मांड गायकी,
1: जी
0: तो ये
1: जी
0: क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। आपने क्या किया, किस तरह से PhD ने इस पे काम किया?
1: जैसे मैं आपको बताया कि मैं भरतपुर में रही थी छोटी से, हम लोग जो है, तो मुझे शुरू से ही राजस्थानी लोकगीतों का बहुत शौक था, बहुत लगाव था उससे मुझे। फिर जब मैं MA में आई ना, तो हमारे हमारे एक सेमेस्टर जो होता था वो डिजर्टेशन का होता था। तो डिजर्टेशन में हम लोगों को टॉपिक लेना था, तो मैंने अपनी मैम से पूछा, मैम क्या टॉपिक ले सकते हैं मैम? तो मैम ने कहा बताओ तुम्हें कोई किसी किसी चीज में इंटरेस्ट है, कोई म्यूजिक में? तो मैंने बोला कि मैम मुझे राजस्थानी लोक संगीत में है इंटरेस्ट। तो फिर मैम ने बोला कि राजस्थानी लोक संगीत का पूरा ना लेके कोई एक शैली लेते हैं। मैंने कहा मैम आप सजेस्ट करिए क्या ले सकते हैं। तो मैम ने मुझे ये सजेस्ट किया मांड गायकी पर आप कुछ करो। फिर मैंने उस टाइम पे डिजर्टेशन वर्क किया था उस पर, फिर उसी को मैंने आगे PhD में भी कंटिन्यू किया।
0: मांड गायकी पे जब आप ये PhD वगैरह का काम कर रही थी, तो आप इसमें कुछ फील्ड में जाके मांड गायकों से मिलती थी,
1: जी
0: कुछ उनसे
1: जी
0: बात बात करती थी?
1: जी
0: कैसे
1: जी
0: होता है, कैसे करते हैं काम?
1: मुझे बहुत पहले तो रिसर्च वैसे ही करते हैं कि अपनी बुक्स वगैरह देख के, अपना लाइब्रेरी जाना, ये करना, कई जगह की बाहर बाहर जाके भी लाइब्रेरी में गई, जोधपुर गई मैं, जयपुर भी गई थी। और फिर वहां पर ही जो लोकल वहाँ के सिंगर्स थे उनसे मिलकर, उनका इंटरव्यू लेकर, उनसे मतलब उस टाइप से मैंने पूरा ये PhD का काम किया था। और उस टाइम मेरी डॉटर बहुत छोटी सी थी, एक साल
0: अच्छा,
1: की भी नहीं थी तब, मैं उसको छोड़ के जाना पड़ता था मुझे।

0: अजमेर ही गई थी मैं।
1: तो बड़ी सिंसियरली आपने पीएचडी का काम किया, और जब बच्चे छोटे होते हैं और शादी हो जाती है तो इस तरह का आना जाना बड़ी दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो ये दिखाता है आप बहुत सिंसियर हैं संगीत के प्रति। तो अब जैसे ये बताइए कि क्या आपकी जो ट्रेनिंग है क्लासिकल रही है या लाइट म्यूजिक की है, या दोनों को आप समान रूप से आपका इंक्लिनेशन है सबकी तरफ, कैसे क्या खास बात है?
0: मैंने क्लासिकल भी सीखा है और लाइट म्यूजिक में मेरा शुरू से रुझान रहा है, तो लाइट म्यूजिक को भी मैंने समान रूप से ही सीखा है।
1: तो चलिए, ये चूंकि म्यूजिक की इतनी क्लासिकल लाइट म्यूजिक की बात चल रही है, तो हम यहाँ रुक के एक अच्छा सा कोई लाइट म्यूजिक का गाना सुन लेते हैं और फिर आगे बातचीत को जारी रखते हैं।

0: अच्छा शिखा जी, आप एक स्टेज परफॉर्मर भी हैं। स्टेज पर थोड़ा सा याद कीजिए, अपनी यादों में गोता लगाइए कि पहला परफॉर्मेंस कैसा रहा था, कौन सा था, कहाँ था, कुछ उसके बारे में बताइए।
1: पहला परफॉर्मेंस मेरा था, मैं HKG में थी तब हमारे जो
0: ओके।
1: स्कूल में जो प्रोग्राम होते हैं ना उसमें परफॉर्म किया था। तो जो ग्रुप सॉन्ग होते हैं अपने उसमें किया था सबसे पहली बार मैंने परफॉर्म। जी
0: अच्छा
1: जी उसके
0: अच्छा
1: थोड़े से मुझे शायद बोल भी याद है, ऐसे
0: अरे वाह,
1: था
0: अच्छा
1: कुछ। हाँ
0: अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा तब तो
1: ऐसे
0: आप
1: कुछ
0: बहुत
1: था
0: छोटी
1: कि
0: होंगी।
1: हाँ बहुत छोटी सी थी मैं। और तो उसके बोल पे जैसे उधर

0: आपको
1: तरह
0: बड़ा,
1: का
0: चलिए आपको बड़ा
1: था।
0: HKG की में आपने जो गाना गाया
1: हाँ
0: होगा तो उस टाइम तो आप 5 6 7 साल की होंगी मुश्किल से। सही
1: हाँ
0: बात है।
1: पांच
0: तो कहाँ थी आप HKG में, कौन से शहर में थी?
1: मैं भरतपुर में थी, मैं भरतपुर
0: ओके, भरतपुर में थी। ठीक
1: में।
0: है। आपने कई सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में भी भाग लिया है और आपको इनाम और अवार्ड्स भी मिले हैं, तो कोई मेमोरेबल या प्राउड मोमेंट जब जो आप भी आपको याद आता हो, आपके दिल में बसा हो, कुछ उसके बारे में बताइए।
1: जी, सबसे पहली बार जब मैंने सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, मैं 5th क्लास में थी तब। तो
0: अच्छा,
1: जी, तो ये हमारा था डिस्ट्रिक्ट लेवल का कॉम्पिटिशन था, उसमें मैं फर्स्ट आई थी। बहुत खुशी हुई थी उस टाइम मुझे, मतलब तो मुझे लगता नहीं, लग नहीं रहा था कि मेरा कुछ ऐसे नंबर आएगा, पर उस टाइम मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ।
0: अरे बहुत अच्छा।
1: और एक बार मैं स्टेज परफॉर्मेंस दे रही थी, और तो उस टाइम हमारे आगरा के जाने माने एक संगीतज्ञ थे, उनका नाम सरतार सिंह जी, जो इंडियन
0: अच्छा,
1: आइडल में भी आए हैं। हाँ जी, नहीं इंडियन आइडल में सर वो था
0: सारे गामा, सारे गामा,
1: जी, तो
0: सारे
1: उसमें
0: गामा।
1: आए थे वो। तो
0: अच्छा अच्छा
1: उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस को सुना, तो आए मेरे पास और मुझे 100 का नोट देकर बोले, बहुत बहुत बढ़िया गाया आपने। तो वो चीज तो मतलब मेरे लिए हमेशा याद रहती है, वो यादगार लम्हा है, नहीं उस
0: अरे
1: चीज को मैं
0: सही,
1: भूल नहीं पाती।
0: नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ, तो इस तरह का जो कंपटीशन में कभी कोई जाना माना शख्सियत आके आपको एनकरेज करता है, आपको
1: जी
0: अप्रिशिएट करता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और
1: जी
0: वो यादें कभी दिल से जाती नहीं है।
1: जी बिल्कुल।
0: अच्छा, अब चलिए थोड़ा सा आपको एक अजीब सा सवाल पूछते हैं कि ये तो अप्रिसिएशन की बातें हुई, क्या कभी ऐसा कोई एम्बेरसिंग मोमेंट भी आया है स्टेज पर के आप बताना चाहें, जैसे आप कभी लाइन भूल जाते हैं, कभी फंबल हो जाता है, कभी म्यूजिक साथ, ऐसा कोई, ऐसे गड़बड़ भी हुई है स्टेज पे क्या?
1: मैं ऐसा तो कोई भी मोमेंट मुझे याद नहीं है, बस
0: चलिए चलिए, बहुत।
1: एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहती हूँ,
0: हाँ
1: वो
0: हाँ बताइए।
1: भी मेरे बचपन का ही किस्सा है। वो ऐसे म्यूजिक से रिलेटेड तो नहीं है, पर हाँ परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। तो
0: जी,
1: मुझे ये एक बार रामायण वाला जो रामलीला टाइप से स्कूल में कोई प्ले हो रहा था, तो
0: अच्छा
1: टीचर ने मुझे बोला कि सीता जी बनाएंगे तुम्हें। ठीक,
0: अच्छा
1: मैं बन गई, और
0: अच्छा
1: जिस दिन हमारी परफॉर्मेंस थी, उसी दिन किसी बच्चे ने मुझे बोल दिया कि सीता सीता जी को रावण चुरा के ले जाता है।
0: अच्छा
1: हाँ, तो उसको बता, उस बात को सुनकर मुझे इतना डर लगा कि मैं स्टेज पर गई नहीं, मुझे रावण चुरा के ले जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने वो परफॉर्म किया नहीं तो किया ही नहीं।
0: अच्छा,
1: हाँ बिल्कुल
0: डर लग गया आपको, बिल्कुल।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा, जैसे आप स्टेज शो वगैरह में जाती हैं सिंगिंग करने, तो आप ये कराओके सिंगिंग ज्यादा करती हैं, लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ भी रेगुलरली परफॉर्म करती हैं, ये किस तरह से है आपका?
1: ये मैंने दोनों ही किया है। अभी फिलहाल थोड़ा सा लाइव वाला कम हो गया, कराओके का ज्यादा है अभी, मेरा लाइव का कम हो गया है। पहले
0: अच्छा,
1: लाइव भी चलता था मेरा, अभी कराओके का ज्यादा है।
0: तो चलिए आपकी स्टेज परफॉर्मेंस के नाम पे रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर
1: जी
0: आगे बातचीत को जारी रखते
1: जी
0: हैं।

0: तो शिखा जी अब ये बताइए, हम थोड़ा सा आपके फेवरेट सिंगर्स के बारे में बात करेंगे और चीजों के बारे में बात करेंगे, तो आपके फेवरेट फीमेल सिंगर्स कौन हैं? लता जी, आशा जी में से किसकी गायकी आपको ज्यादा इंस्पायर करती है? कुछ इसके बारे में बताइए खुल के हमें।
1: लता जी, आशा जी दोनों ही मेरी फेवरेट सिंगर्स हैं। और उसके अलावा मुझे कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक जी और साधना सरगम जी, इनके गाने भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्रभावित करते हैं इनके गाने भी मुझे। जी
0: अच्छा,
1: जी जी
0: गीता
1: गीता
0: दत्त कैसी लगती हैं आपको?
1: दत्त, ओहो बहुत ही बहुत, मतलब उनकी तो बात ही अलग है।
0: जब अपने जमाने में वो गाती थी तो किसी जमाने में वो भी टॉप की सिंगर थी।
1: जी जी बिल्कुल
0: लता जी उस
1: बिल्कुल
0: टाइम आई आई
1: मैं,
0: थी।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनके गाने भी मैं गाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं गाती हूँ उनके।
0: अच्छा, आप थोड़ा सा सहज हो जाइए, और अगर हमारे श्रोताओं को आप लता जी का कोई दो लाइनें सुनाइए, कोई मुखड़ा सुनाइए, जो भी आपकी इच्छा हो वो सुनाइए, फिर हम आशा जी का भी सुनेंगे आपसे, और सहज होके बिल्कुल आराम से सुनाइएगा।
1: जी जी जी जी बिल्कुल।

साई मुझे घेर लेते हैं बाहों की साई मुझे

0: विलेता जी का था सॉन्ग।
1: हाँ, और सुनाइए कोई आशा जी का सुना दीजिए।
0: आशा जी की गजल, आशा जी की गजल सुनाऊंगी जो,
1: गजल सुनाएंगे। अच्छा, गजल
0: हाँ जो
1: सुनाइए।
0: मेरी
1: और
0: मेरी
1: फिर
0: फेवरेट
1: एक
0: गजल
1: कोई आशा जी का जो आइकॉनिक एनर्जेटिक लाइंस वाला भी
0: है।
1: सुनेंगे
0: जी
1: आपसे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।

சலோ நாம் சலோ நா

0: दूसरा सॉन्ग सुनाती हूँ आपको, आशा गुप्ता ही।
1: हाँ सही है।
0: आई बैठी जमी जो चौक पे
1: बहुत बढ़िया। मुझे पता है आप बिना म्यूजिक के गा रही हैं और साउंड भी थोड़ा ईयरफोन से उतनी मजा नहीं आता, लेकिन बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और अगर ये म्यूजिक के साथ होता तो बस वाह क्या बात होती। लेकिन शिखा जी आप ये बताइए कि आपका आपका फेवरेट मेल सिंगर कौन है, पुराने दौर का हो या नए दौर का हो, और किसी मेल सिंगर का भी कोई फेवरेट गाना हो तो गुनगुनाइए, और भले ही एक बुखड़ा गा दीजिए, एक अंतरा भी गा दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है।
0: जी, मुझे पुराने सिंगर्स में ही रफीज, मोहम्मद रफी जी और किशोर जी, ये दोनों सिंगर्स के सॉन्ग बहुत पसंद है। तो मैं मोहम्मद रफी जी का एक गीत सुनाना चाहूंगी। तुम
1: हाँ बताइए।
0: जो मिल गई हो तो ये लगता है जहां मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है जहां बैठो ना दूर हमसे, देखो खफा ना हो, बैठो ना दूर

0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मजा आ गया, बहुत अच्छा। और रफी जी का तो ये आइकॉनिक सॉन्ग है जिसको सुनने में हम लोगों को बहुत मजा आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड।
1: धन्यवाद धन्यवाद
0: चलिए
1: सर,
0: चलिए, बहुत
1: धन्यवाद।
0: बहुत शुक्रिया आपका। और फिर हम आपकी गायकी बारे में, जरा इंटरव्यू खत्म हो जाए तो हमारे रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर साहब का मैसेज आया है कि हम लोग कुछ आपसे बात भी करना चाहेंगे इसके बारे में। चलिए,
1: जी
0: तो आपके संगीत के सफर में अभी बताइए, फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है? क्योंकि ये एक ऐसा काम है संगीत का, जो डिवोशन का काम होता है संगीत, तो इसमें
1: जी
0: ऐसा नहीं हो सकता कि बिना फैमिली के सपोर्ट के ये आगे बढ़ा पाए। स्टेज पे भी जाना पड़ता है आपको, प्रोग्राम्स पे भी जाना पड़ता है, तो बताइए किस तरह से चलता है सारा काम?
1: बिल्कुल, फैमिली मुझे पूरा सपोर्ट करती है। मेरी मदर इन लॉ भी मुझे पूरा सपोर्ट कर रही है। मेरी बच्चे तो बच्चे भी करीब आए हैं, और हस्बैंड का
0: अच्छा,
1: तो हाँ, हस्बैंड तो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं कि मुझे बाहर भी लेके जाना है कभी कोई परफॉर्मेंस के लिए, तो वो भी जाते हैं मेरे साथ। और जब तक मेरा परफॉर्मेंस रहता है वहां पे, मैं हूँ वहां पर, तब तक मेरे साथ ही रहते हैं, हर जगह मुझे लेके जाते हैं।
0: वेरी
1: और
0: गुड।
1: हाँ, और मदर इन लॉ भी कभी मुझे कभी मना नहीं किया कहीं भी जाने के लिए, किसी भी काम हो कुछ भी हो, मैं चली जाती हूँ आराम से। मुझे मतलब कुछ भी, घर में भी चिंता नहीं होती कि मुझे कुछ काम करना है, नहीं तो दिमाग में अगर कोई ऐसे सपोर्ट करने वाला हो, दिमाग में नहीं रहता है कि आपको घर के भी
0: वाह,
1: काम संभालने हैं, अरे भाई ये काम रह गया ये काम रह गया, उस चीज की मुझे चिंता नहीं रहती है।
0: तो अब ये बता, आपके हस्बैंड भी गाना गाते हैं क्या? ये बताइए, आप दोनों
1: जी
0: मिलके गाना
1: जी
0: गाते हैं क्या?
1: नहीं
0: नहीं नहीं
1: नहीं
0: अच्छा, वेरी गुड। ड्यूट वेट नहीं
1: नहीं नहीं
0: गाते?
1: उनको
0: अच्छा,
1: शौक नहीं है गाने का। हाँ,
0: ओके, सुनने
1: सुनने
0: का
1: का
0: शौक।
1: शौक है। अच्छे श्रोता है वो, श्रोता
0: अच्छा,
1: बहुत
0: श्रोता है।
1: अच्छे हैं,
0: अच्छा
1: श्रोता तो बहुत ही अच्छे हैं।
0: अच्छा वेरी
1: हाँ
0: गुड, वेरी गुड, वेरी
1: जी,
0: गुड, वेरी गुड। तो वो उनका कोई फेवरेट गाना कौन सा, उनको पसंद कौन सा गाना है? कोई फेवरेट गाना है उनका जो आपसे कहते हैं, वही सुनाओ मेरे को, वो गाना सुनाओ आज, तो ऐसा कोई है?
1: ऐसे कोई गाना, हाँ उनको ना पसंद है, तेरे बिना जिया जाएगा,
0: अच्छा
1: वो उनको पसंद
0: अच्छा
1: है।
0: तो गुनगुनाना चाहेंगी? आगे अपन बातचीत जारी
1: जी
0: रखते हैं
1: जी
0: उसके बारे में।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं
0: हाँ,
1: गुनगुनाना चाहती हूँ।
0: सुना दी, सुना दी, सुना दी।

अरे वाह, आपने हस्बैंड के नाम पे तो बड़ा अच्छा गाना सुनाया भाई, बड़े मन से गाया ये गाना। सबसे अच्छा यही गाया। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब इस मोड़ पे रुक के हम मेरे ख्याल में यही गाना देश पे सुन लेते हैं, हमारे रेडियो पे भी चलाते हैं, इसको प्ले करते हैं। चलिए।

0: अच्छा शिखा जी, अब ये बताइए कि संगीत के अलावा आपके और कौन कौन से हॉबीज हैं, किस तरह से रिलैक्स करती हैं और क्या क्या करती हैं, किस तरह से इंस्पायर होती हैं अपना आगे का काम करने के लिए? अच्छा
1: मुझे म्यूजिक के अलावा मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, और हाँ, और मुझे क्राफ्टिंग का भी शौक है। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं जरूर करती हूँ। दोनों काम ऐसे हैं कि मुझे बहुत पसंद है।
0: अच्छा,
1: जी, बिल्कुल।
0: तो कुछ कुकिंग के बारे में बताइए, कौन सी फेवरेट रेसिपी है आपकी, क्या क्या बनाती हैं आप?
1: वैसे तो सभी सारी चीजें ही बना लेती हूँ मैं, लेकिन फेवरेट में आप कहेंगे तो मुझे मतलब लोगों को पसंद है मेरे हाथ के जो सब्जियां या कुछ भी डिश, तो जैसे मेथी मलाई मटर, कटहल की सब्जी, कटहल
0: अरे
1: की
0: वाह
1: सब्जी
0: वाह
1: यार,
0: वाह, कटहल की सब्जी मेरी भी
1: कटहल की सब्जी।
0: फेवरेट
1: जी बिल्कुल, आप आइए कभी तो आपको
0: है।
1: खिलाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कभी आएंगे तो आपके हाथ की खाएंगे। हमारे समीर जी से कहेंगे कि आप चलिए कटहल की
1: जी
0: सब्जी खा
1: जी
0: के आते, ये भी
1: बिल्कुल।
0: यूपी वाले हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, समीर जी भी
1: अच्छा
0: यूपी वाले हैं, तो बिल्कुल
1: यूपी वालों को तो कटहल पसंद है।
0: कटहल पसंद है, बिल्कुल
1: हाँ
0: पसंद
1: जी
0: है,
1: बिल्कुल।
0: सही है। चलिए चलिए, तो बहुत बढ़िया। अच्छा, आजकल थोड़ा सा हम आजकल के जो म्यूजिकल सिनेरियो है स्टेज शोज का, उस पे आते हैं, बातचीत करते हैं। तो आजकल छोटे बड़े शहरों में बड़े सारे म्यूजिकल ग्रुप्स हो गए हैं, कराओके क्लब्स हो गए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आपका ये जो म्यूजिक के प्रति मोहब्बत है, प्यार है लोगों का, इसको कैसे देख रही है आप? क्यों शुरुआत हुई है और इस तरह बढ़ता जा रहा है, क्या होगा इसका, कुछ इसके बारे में क्या सोचती है आप?
1: हाँ, कराओके क्लब और म्यूजिक क्लब्स में क्या होता है कि सब लोग, सारे संगीत प्रेमी जो मिलते हैं आपस में, एक तो सबका मनोरंजन होता ही है, और क्या जो जैसे कभी कोई स्ट्रेस में है या कुछ है तो उससे ना स्ट्रेस फ्री भी हो जाते हैं म्यूजिक से। और जो मतलब जिनके अंदर मन में गाने की इच्छा है बहुत ज्यादा, तो वो है ना अपनी इच्छा को भी वहां पर आकर अपना पूरा कर लेते हैं। और सिंगर्स का ना इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है, बार बार परफॉर्म करते हैं, सीखने को भी मिलता है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, दूसरों से भी सीखने को मिलती है, तो कौन कैसा गा रहा है, हमें किससे किससे क्या चीज सीखनी चाहिए, वो चीज भी हमें मिलती है वहां पर। तो बस मैं मतलब मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज की शुरुआत हो गई है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि सभी तरह के लोग आ जाते हैं फिर गाने के लिए भी ना। ठीक है, जिसको शौक है, बिल्कुल शौक है, ठीक है, शौकिया तौर पर गा ले, वो करते हैं जैसे। और कुछ बहुत अच्छे भी आते हैं, दोनों तरह के ही लोग आते हैं, पर हाँ ये है कि लोगों को एक ना प्लेटफॉर्म मिल गया। अच्छा
0: नहीं, सही बात है। देखिए, वैसे तो मैं अगर इसको देखूं कि म्यूजिक जो है हमारे घरों और बाथरूम से निकल के स्टेज तक पहुंचा दिया है लोगों ने,
1: जी, बिल्कुल
0: जिस
1: बिल्कुल।
0: तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेटेंट सिंगर थे, बिल्कुल दबी हुई प्रतिभाएं थी, वो भी सामने आ
1: हाँ
0: गई हैं।
1: हाँ
0: और लेकिन कभी कभी ये भी लगता है कि कुछ बहुत ज्यादा होता जा रहा है। आज की डेट में जयपुर में 22 तारीख को कम से कम 4 शोज हैं, जितने यहाँ वो है ऑडिटोरियम से, सब में कोई ना कोई शो है और सबके इनविटेशन है। अब बड़ी दिक्कत हो जाती है कि किसमें जाए,
1: कहाँ
0: कैसे
1: जाए।
0: जाए, क्या करें।
1: बिल्कुल
0: तो और कई बार क्या होता है कि सिंगर्स वही घूम फिर के, वही जयपुर के 10 15 20 50 सिंगर्स हैं, वो घूम फिर के कभी इस ग्रुप में गा रहे हैं, कभी उस ग्रुप में गा रहे हैं, तो वही चलता
1: हाँ
0: रहता है। कभी कभार कोई
1: हाँ
0: वो होता है, और फिर ऑनलाइन तो सारे चलते ही रहते हैं। तो
1: मतलब
0: ये है, तो बड़ी बात है। चलो, आप, हाँ आप बताइए, कुछ कह रहे थे आप?
1: दोनों ही चीजें है ना, अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो होते हैं वो दोनों ही चीजें होती हैं हर फील्ड में, वो चीजें होते
0: सही बात है।
1: हैं।
0: तो आप कैसे फ्यूचर में देखती हो, आप अपने सिंगिंग कैरियर को किस डायरेक्शन में जाता हुआ देखती हैं, आप कुछ बताइए इसके बारे में।
1: फ्यूचर में मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा अपनी सिंगिंग को थोड़ा और डेवलप कर लूँ, और परफॉर्मेंस अभी अपने कोटा में देती हूँ, बाहर भी जाकर दूँ, ये चीज सब प्लान कर रहे हैं हम लोग भी।
0: चलिए चलिए, बहुत अच्छा। तो चलिए, आपकी फ्यूचर के सिंगिंग कैरियर की जो ब्राइट कैरियर होने वाला है, उसके लिए रुक के एक गाना सुन लेते हैं और फिर बातचीत को जारी रखते हैं। अब हम करीब करीब आखिरी पायदान पर आ गए हैं।

0: और आखिर में शिखा जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगी यंग सिंगर्स, स्टूडेंट्स और म्यूजिक लर्नर्स के लिए? कोई स्पेशल मैसेज देना चाहें, कुछ उनको संदेश देना चाहें तो बताइए।
1: जी बिल्कुल, मैं संगीत प्रेमियों से और युवा सिंगर से मैं कहना चाहती हूँ कि म्यूजिक को बहुत प्यार करें। तो म्यूजिक को और उसके मतलब म्यूजिक की ऐसी ऐसा फील्ड है कि मतलब आपके स्ट्रेस को भी दूर कर देता है, खुशी भी देता है, हर चीज भी देता है आपको। और म्यूजिक, लेकिन म्यूजिक ना रियाज मांगता है, रियाज को कभी मत छोड़ो, रियाज हमेशा करते रहना चाहिए उसका। और अपनी जो आवाज है उस पर मतलब कहना चाहूंगी कि आत्मविश्वास को बना के रखें अपने ऊपर। और अब जो कभी कुछ गलतियां भी हो जाती हैं अपने से, तो गलतियों से डरे नहीं, उनसे सीखने को मिलता है। जब हम कुछ गलती करते हैं तो उसको सुधार कर उससे कुछ सीखने को ही मिलता है। तो हमेशा ये भी ध्यान रखें और रियाज को कभी भी ना छोड़ें, रियाज करते रहें हमेशा।
0: चलिए, बहुत बढ़िया बात कही आपने। और मैं इसमें ये बात भी जोड़ देता हूँ श्रोताओं, कि जहाँ आपको स्ट्रेस फ्री करता है वो मिलते हैं, आपको इससे नए दोस्त भी मिल जाते हैं,
1: जी
0: बहुत
1: बिल्कुल,
0: जान
1: दोस्ती
0: पहचान
1: मिलते
0: आपकी
1: हैं।
0: बढ़ती है, आपकी
1: हाँ
0: एरिया बहुत बढ़ जाता है। जब
1: बिल्कुल
0: आप कंपटीशंस में जाते हैं या स्टेज शोज में जाते हैं तो नए सिंगर्स मिलते हैं, फिर उनसे बहुत अच्छी अच्छी दोस्ती हो जाती है, प्यारे प्यारे लोग मिलते हैं। और सब लोग चूंकि सब ये संगीत के दीवाने होते हैं, तो उनमें एक आपस में एक भावनात्मक जुड़ाव भी हो
1: जुड़ाव हो
0: जाता
1: जाता है,
0: है,
1: जुड़ाव हो
0: जुड़ाव
1: जाता है,
0: होता
1: वो
0: है, एक
1: बिल्कुल
0: बड़ा
1: हो जाता
0: प्यारा
1: है।
0: होता है। और दूसरा है,
1: जी
0: और एक ये भी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स कह रहा हूं, कि जब हम संगीत के बारे में बातें हैं, जो दुनिया में नेगेटिव चीजें हैं, जो नकारात्मक चीजें हैं, एक दूसरे की बुराई करना, भलाई वो करना,
1: हाँ
0: वो सबसे भी हम दूर होते जाते हैं।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: संगीत अपने आप में इतना प्योर है, इतना जेनुअन चीज है, कि जब हम संगीत की बात करते हैं या संगीत से जुड़े रहते हैं, तो हम दुनिया की हर नेगेटिव एनर्जी से दूर हो जाते हैं। तो श्रोताओं, संगीत के नाम पे बस यही है कि शिखा जी, आज बहुत बातें करके आपसे मजा आया, तो हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो वाह, क्या खूबसूरत बातचीत रही आज। डॉक्टर शिखा कुलश्रेष्ठ जी ने न सिर्फ अपने संगीत सफर की झलकियां हमारे साथ बांटी, बल्कि अपनी मधुर आवाज से हमारा दिल भी जीत लिया। शिखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर हमारे श्रोताओं के साथ ये म्यूजिकल जर्नी शेयर की।
1: जी
0: हम दिल से कामना करते हैं कि आपकी सुरों की ये यात्रा यूं ही आगे बढ़ती रहे और आप आने वाली जनरेशन की को भी इसी तरह से इंस्पायर करती रहे। दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे एक नई पर्सनैलिटी, एक नई कहानी और कुछ नई धुनों के साथ। तब तक सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो शो जिंदगी के रंग गीतों के संग। नमस्कार।
2: मगर अब जो आना तो धीरे से आना।
3: और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ जिंदगी के रंग गीतों के संग के इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार है बस अभी पता चलता है।

हेलो दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम में हम बात करेंगे अलीशा चिनाई की। 1965 में गुजरात के अहमदाबाद में जन्मी अलीशा का असली नाम सुजाता चिनाई था। 1985 में उनका पहला एल्बम जादू आया था, लेकिन उन्हें असली पहचान तो मेड इन इंडिया गाने से मिली। आइए दोस्तों, सुनते हैं इन्हीं का ये शानदार गीत।

0: बेचारे चाहो चाहो धर।
1: दिल से दिल की बात कर,
0: चुप भी कर बैठो उधर।
1: क्यों खफा है इस बदल,
0: आ गई मेरा सर।
1: देखो मैं तो रो पड़ूंगी, हाँ हाँ हाँ हाँ।
0: अरे रे मेरे पीछे क्यों पड़ी,
1: कुछ भी मैं

कितने ही गाने आएंगे जाएंगे, लेकिन 90 के पॉपुलर सॉन्ग मेड इन इंडिया को लोग कभी नहीं भुला पाएंगे। 1995 में आए इस गाने को अलीशा चिनाय ने गाया था। इस गाने से ही अलीशा रातों रात संगीत की दुनिया की स्टार बन गई थी। अलीशा की गायकी की वजह से लोग उन्हें क्वीन ऑफ इंडी पॉप कहकर बुलाने लगे थे। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं इनका यही मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग।

हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में अलीशा चिनाई की करियर की शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि वो सिंगिंग की दुनिया से गायब हो गई। कोई बात नहीं, लेकिन अपने पीछे वो इतने सुंदर सुंदर गाने छोड़ गई हैं जिनका मजा दुनिया हमेशा लेती रहेगी। लीजिए, पेश खिदमत है एक और फड़कता हुआ गीत।

उनके गीत दिल ये कहता है, डूबी डूबी कांटे नहीं कटते, रुक रुक रुक और कजरारे जैसे सुपरहिट गाने हमेशा ही सबकी जुबान पर रहेंगे। लीजिए पेश खिदमत है एक और बहुत प्यारा सा गीत।

कहा जाता है कि अलीशा को हिंदी सिनेमा में लाने का श्रेय बप्पी लहरी का था। बप्पी दा के साथ मिलकर उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में कई हिट गाने दिए। यही नहीं, अलीशा चिनाई ने अनु मलिक के साथ भी कई हिट सॉन्ग्स दिए। लीजिए सुनते हैं उनका एक और हिट सॉन्ग।

2005 में अलीशा चिनाई का करियर सबसे ऊंचाई पर रहा जब उन्होंने कजरारे बंटी और बबली के लिए गाया। तो हो जाए इनका यही गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार है बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों, आज की गायिका है अलका याग्निक। जी हाँ, अलका याग्निक का जन्म 20 मार्च 1966 को कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ था। उनकी माता का नाम शोभा याग्निक था। अलका ने अपनी पढ़ाई मॉडर्न हाई स्कूल फॉर गर्ल्स कोलकाता से की। घर में संगीत का माहौल था तो बस अलका की रुचि भी संगीत की ओर हो चली। चलिए सुनते हैं उनका गाया हुआ ये गीत।

0: अलका ने अपनी करियर की शुरुआत 6 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी, जब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए एक भजन गाया। उसके बाद 10 साल की उम्र में वो अपनी माँ के साथ बॉम्बे आई। बॉम्बे में निर्माता निर्देशक राज कपूर से उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने उनकी आवाज से प्रभावित होकर उन्हें संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मिलने की सलाह दी। तो हो जाए उनकी आवाज का ये प्यारा सा गीत।
1: जा!

1980 में अलका ने अपना पहला गाना गाया पायल की झनकार। बतौर सिंगर अलका याग्निक के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि जब उन्होंने गायन को अपना करियर चुना तो उनके सामने भारत के सुर कोकिला लता मंगेशकर और आशा भोसले थी। लेकिन अलका ने भी इन सब के बीच अपने आप को प्रसिद्ध करने की ठान ली। तो हो जाए इनकी आवाज का एक और नगमा।

अलका ने अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म लावारिस में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है गाया, जो बहुत जबरदस्त हिट हुआ। लगभग 8 साल तक मुंबई में संघर्ष करने के बाद 1988 में फिल्म तेजाब में अपने गीत 1, 2, 3 की सफलता के बाद वो पार्श्व गायिका के रूप में सफल हो गई। तो आइए दोस्तों, हो जाए यही गीत।

0: का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे

सन 1989 में अलका ने फिल्म कयामत से कयामत तक में उदित नारायण के साथ ऐ मेरे हमसफर, अकेले हैं तो क्या गम है, गजब का है ये दिन, सोचो जरा जैसे सुपर हिट युगल गाने गाए। इन फिल्मों की

1999 में प्रदर्शित फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए भी उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने कई भाषाओं की 700 से ज्यादा फिल्मों में करीब 20,000 गाने गाए। तो लीजिए उन्हीं की आवाज का ये गाना।

2012 में हिंदी सिनेमा के 100 सालों के दौरान फिल्म ताल के गीत ताल से ताल मिला को देसी मार्टिनी, हिंदुस्तान टाइम्स, फीवर 104 के द्वारा किए गए एक पोल में उनको सबसे ज्यादा वोट्स मिले। तो ये लीजिए, पेशे खिदमत है उनकी आवाज में एक और गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

दोस्तों आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ 90.8 FM रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज पर। तो दोस्तों लीजिए शुरू करते हैं गजलों का ये महकता हुआ प्रोग्राम आज शाम

0: गजलों के साथ के प्रोग्राम में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज शाम गजलों के इस महकते हुए प्रोग्राम में जो शायर हमारे साथ हैं उनका नाम है मुकेश कुमार जी। बाकी की बातचीत हम मुकेश कुमार जी से ही करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। मुकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, थोड़ी सी जानकारी दीजिए अपने बारे में।
1: जी मैं मुकेश कुमार सिंह, सरकारी महकमे में एक मुलाजिम हूँ और मैं रहने वाला हूँ भिलाई छत्तीसगढ़ का। तो मेरी पोस्टिंग यहीं पर है, नागपुर में ही हूँ मैं।
0: तो मुकेश जी आप किस तरह के कलाम या गजल या नज़में लिखते हैं?
1: मैं गजलें ही लिखता हूँ और कि मतलब फिलॉसफी पे ज्यादा बेस्ड रहता है मेरी गजलें।
0: बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पहली गजल हमको और हमारे श्रोताओं को सुनाए।
1: जी बिल्कुल। गजल का मतलब है कि इश्तिहारों की तरह ही वक्त की दीवार पर, इश्तिहारों की तरह ही वक्त की दीवार पर हर सजा लिखी हुई है जुर्म के आधार पर। इश्तिहारों की तरह ही वक्त की दीवार पर हर सजा लिखी हुई है जुर्म के आधार पर। पहले तो लहरों की हसरत को समझना चाहिए, पहले तो लहरों की हसरत को समझना चाहिए, फिर यकीन अपना जताएं नाव और पतवार पर। जीतना हर बात पे है क्यों जरूरी ये बता, जीतना हर बात पे है क्यों जरूरी ये बता, क्यों हमें अफसोस हो जाता है अपनी हार पर। और खुद बखुद गुस्ताखियां किरदार सब करने लगे, खुद बखुद गुस्ताखियां किरदार सब करने लगे, दोष हम मरते रहे जब जब कहानीकार पर। और मुत्तफिक हो आप हमको देते हैं जितनी खुशी, मुत्तफिक हो आप हमको देते हैं जितनी खुशी, टूटता है दिल भी उतना आपके इनकार पर।
0: बहुत खूब, बहुत खूब,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो मुकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यारी प्यारी सी गजल के लिए। कई शब्द और कई अल्फाज तो इस तरह के थे कि मैं बीच में वाह वाह करना चाहता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि आपके फ्लो को ना रोकूं और बस कहने दूं आपको, तो इसलिए शांत रहा, चुप रहा। बहुत ही खूबसूरत गजल।
1: थैंक यू सर।
0: तो अब अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई एक गजल हमें बताएं जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं।
1: जी जी बिल्कुल। जगदीश सिंह जी की आवाज में है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है।
0: क्या बात है, क्या बात है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है,
1: वक्त तो लगता है।
0: आइए दोस्तों मुकेश जी की फरमाइश पर जगजीत सिंह जी का गाई हुई इस गजल को सुनते हैं।

0: बहुत बढ़िया मुकेश भाई, थैंक यू सो मच आपकी फरमाइश के लिए, आपकी चॉइस के लिए। तो अगला सवाल मैं छोटा सा पूछना चाहूंगा कि
1: जी बिल्कुल,
0: आपकी हॉबीज क्या हैं? आप जब भी खाली वक्त होता है तो क्या करते हैं उसमें?
1: इसके अलावा मैं थोड़ा सिंगिंग में भी हाथ आजमाते रहता हूँ, सीखा कहीं से नहीं है मगर घर में ही कोशिश करते रहता हूँ।
0: जी
1: और एक YouTube पर मेरा चैनल भी है,
0: जी
1: उसमें मैं छत्तीसगढ़ी गानों को मतलब रिकॉर्ड करके वीडियो बना के उसका डालता हूँ, तो अभी 3-4 गाने हो गए हैं
0: बहुत
1: उसमें,
0: खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर।
1: खुद ही कंपोज करता हूँ, खुद म्यूजिक करवाता हूँ, फिर या तो खुद गाता हूँ या किसी सिंगर से गवाता हूँ गाने को अकॉर्डिंग।
0: अरे वाह, क्या बात है, ये तो काफी ज्यादा क्रिएटिव काम है, बहुत बहुत बढ़िया। तो मुकेश जी, मैं आपकी तारीफ करूंगा कि अपनी अगली गजल हमें सुनाएं।
1: अगली गजल के तौर पे मेरी एक छोटी बहर की गजल है। गजल का मतलब है कि गमों को यूं सताया कर हमेशा मुस्कुराया कर, गमों को यूं सताया कर हमेशा मुस्कुराया कर, करे तनकीद गर कोई, तनकीद कहते हैं आलोचना को,
0: जी
1: कि करे तनकीद गर कोई दिल अपना मत दुखाया कर, करे तनकीद गर कोई दिल अपना मत दुखाया कर, तू रख किरदार ही सारे मगर जिम्मा उठाया कर, कोई गर आजमाता है तो बाजी हार जाया कर, अगर अपना बनाना है, अगर अपना बनाना है भरोसा भी जताया कर, अगर होना है रोशन तो, अगर होना है रोशन तो अंधेरों से निभाया कर, वो जो पत्थर उठाता है उसे शीशा दिखाया कर,
0: क्या बात,
1: और बहाए अश्क जब कोई जरा सा भीग जाया कर, भाई अश्क जब कोई जरा सा भीग जाया कर, गमों को यूं सताया कर हमेशा मुस्कुराया कर। ये गजल थी।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही प्यारी गजल।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया सर।
0: तो मुकेश जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने पसंद के किसी गजल गायक की कोई एक गजल बताएं हमें।
1: जी सर बिल्कुल, गुलाम अली साहब की गाई हुई गजल है ये, कभी आह लब पे मचल गई,
0: कभी आह लब पे मचल गई,
1: मचल गई।
0: बहुत खूब, गुलाम अली साहब की ये गजल। आइए दोस्तों सुनते हैं।

0: वहां से किसी किताब में पढ़ लिया था मैंने कि ऐसे गजल होती है, ऐसे मतलब और ये होता है करके, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया था, मैं अपने आप से लिखता था। फिर बाद में लोगों ने 2017 में मुझे किसी ने पूछा भाई कि आपकी ये गजल किस मीटर पे है, तो मुझे समझ में नहीं आया कौन सी बहर पे, वो पूछा उन्होंने, तो मुझे बहर शब्द ही पहली बार सुना था मैंने। तो मैंने फिर गूगल में सर्च किया बहर क्या होती है, फिर बहर जब गूगल ने बताया 32 प्रकार की हैं ये, तो फिर वहां से मैंने थोड़ी जानकारी इकट्ठा की और फिर जिसने पूछा था उनसे ही मैंने कहा, सरेंडर कर दिया उन्होंने कि मुझे नहीं आता है सब कुछ, पद कुछ भी नहीं मालूम है मुझे, आप सिखा दीजिए अगर आप चाहते हैं कि मैं सीख जाऊं। तो फिर उन्होंने मुझे सिखाया और 2017 से ही मैं प्रॉपर मीटर में लिखना सीखा मैंने, मतलब।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मुकेश जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना अगला कलाम हमें सुनाएं।
0: जी बिल्कुल, अब मैं जो भी सुना रहा हूं सब मीटर में ही है उनके हिसाब से।
1: जी।
0: गजल का मतलब है कि वक्त से सीखिए खामोश गुजरने का हुनर, वक्त से सीखिए खामोश गुजरने का हुनर, सीखिए दर्द से जख्मों में उतरने का हुनर, वक्त से सीखिए खामोश गुजरने का हुनर, सीखिए दर्द से जख्मों में उतरने का हुनर, आप अल्फाज के काबू में रवानी को रखें,
1: जी
0: आप अल्फाज के काबू में रवानी को रखें, भूल जाएं न यूं जज्बात उभरने का हुनर,
1: क्या बात है,
0: आप अल्फाज के काबू में रवानी को रखें, भूल जाएं न यूं जज्बात उभरने का हुनर, और सांस रोके हुए जीने का हुनर आ तो गया, सांस रोके हुए जीने का हुनर आ तो गया, सांस लेते हुए आया नहीं मरने का हुनर,
1: वाह,
0: और खूब खूबसूरत भी वही लोग हुआ करते हैं, खूबसूरत भी वही लोग हुआ करते हैं, आईना जिनको बताता है संवरने का हुनर, और कैसे घुलती है हवाओं में बिछड़ कर गुल से, कैसे घुलती है हवाओं में बिछड़ कर गुल से, कौन खुशबू को सिखाता है बिखरने का हुनर, जो वक्त से सीखिए खामोश गुजरने का हुनर, सीखिए दर्द से जख्मों में उतरने का हुनर।
1: बेहद खूब, बेहद खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही
0: बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत
1: बढ़िया।
0: शुक्रिया।
1: मुकेश जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगली गजल का हुक्म करें। कौन से गायक की कौन सी गजल हम सुनवाएं?
0: एक उस्ताद मोहम्मद हुसैन अहमद हुसैन की गजल है ये,
1: जी
0: मैं हवा हूं कहां वतन मेरा।
1: जी आइए दोस्तों, मुकेश जी के आदेश पर, मुकेश जी के हुक्म पर यही गजल हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: मुकेश जी, अगला एक सवाल पूछना चाहूंगा इस प्रोग्राम को,
1: बिल्कुल
0: थोड़ा सा
1: जी जी
0: ट्विस्ट देते हुए, थोड़ा सा प्रोग्राम को बदलते हुए, जिससे कि आपको भी मजा आए और सुनने वालों को भी मजा आए, क्योंकि जी आप लफ्जों के खिलाड़ी हैं, लफ्जों से खेलना आता है आपको। तो सवाल मेरा यह है कि अगर फर्ज कीजिए आपको आपकी तीन इच्छाएं पूरी करने वाला एक जिन्न कहीं से मिल जाए, तो क्या तीन ख्वाहिशें मांगेंगे आप उससे?
1: ऐसी बात तो ऐसी है सर कि ख्वाहिश एक यही है, मेरी सबसे पहली ख्वाहिश यही है
0: जी,
1: वो मैं बता नहीं सकता कि गजल में ही मतलब एक बड़ा एक मुकाम है जो हासिल करना चाहता हूं मैं
0: जी,
1: और इसी के बारे में सोचता रहता हूं हमेशा कि वो वहां तक कैसे पहुंचना है मुझे, कौन आगे रास्ता दिखाएगा या कौन मेरी उंगली थामेगा। तो वो एक जो है, और साथ में ये भी है कि एक वहां तक पहुंचने के लिए अच्छा लिखना भी होगा, तो वो सारे अनुभव जो जिंदगी से मिलता है उन्हें याद रखना और दिमाग में रखना और उनको शायरी में ढालना कैसे है, ये सब कोशिश करते रहता हूं मैं। तो बस मेरी मतलब ख्वाहिश एक ही है मेरी, बाकी और तो कुछ इच्छा है नहीं मेरी, मतलब मैं कुछ और नहीं सोचता हूँ, मतलब बस अपनी नौकरी जो है उसको ईमानदारी से कर लूं, ये ख्वाहिश रहती है कि बस ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करूं जो जिसकी मैं तनख्वाह लेता हूं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मुकेश जी, मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी अगली गजल हमें सुनाएं।
1: जी जी बिल्कुल, गजल मैं अपनी सुना रहा हूं आपको
0: जी।
1: इसे मैंने मुंबई में सुनाया था एक प्रोग्राम में, तो वहां पर लोगों ने इसे बहुत पसंद किया था। हम पर यूं एतबार भी अच्छा नहीं लगा, हम पर यूं एतबार भी अच्छा नहीं लगा, हद से ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं लगा, हम पर यूं एतबार भी अच्छा नहीं लगा, हद से ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं लगा, कुछ हैं शिकायतें मेरी लेकिन खुदा मुझे, कुछ हैं शिकायतें मेरी लेकिन खुदा मुझे, सांसों पे इख्तियार भी अच्छा नहीं लगा। इख्तियार मतलब कंट्रोल, नियंत्रण जो है
0: जी, जी,
1: कि कुछ है शिकायतें मेरी लेकिन खुदा मुझे, सांसों पे इख्तियार भी अच्छा नहीं लगा, और हमने नहीं कहा कोई हमसे मिले मगर, हमने नहीं कहा कोई हमसे मिले मगर, करना यूं दरकिनार भी अच्छा नहीं लगा, और खुशियों के दौर में किया दुश्मन को भी मुआफ, खुशियों के दौर में किया दुश्मन को भी मुआफ, गम में तो गमगुसार भी अच्छा नहीं लगा। गमगुसार मतलब हमदर्द जो अपना होता है वो, कि खुशियों के दौर में किया दुश्मन को भी मुआफ, गम में तो गमगुसार भी अच्छा नहीं लगा, और हमने किसी से भीख तो मांगी नहीं मगर, हमने किसी से भीख तो मांगी नहीं मगर, लेते हुए उधार भी अच्छा नहीं लगा।
0: अच्छा जी।
1: और हम पर यूं एतबार भी अच्छा नहीं लगा, हद से ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं लगा।
0: वाह वाह,
1: क्या बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बड़ी प्यारी गजल। तो मुकेश जी, आपसे गुजारिश करूंगा कि अगली गजल का हुक्म करें, कौन सी गजल हम अपने सुनने वालों को सुनवाएं।
1: जी बिल्कुल, एक फिल्म में इसमें है, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है।
0: बहुत प्यारी, बहुत प्यारी गजल। आइए दोस्तों, यही गजल सुनते हैं मुकेश जी के आदेश पर।

0: बहुत बढ़िया मुकेश जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बचपन में क्या बनना चाहते थे आप?
1: बचपन से मैं सोचता था कि एक मतलब मैं रेलवे में ही नौकरी करना चाहता था। मैं आपको मैं बताऊं तो मेरे दिमाग में, मैं छोटे से गांव से हूं
0: जी
1: तो है ना, तो मैं वहां जब भी ट्रेन से जाता था तो टीसी लोग को देखता था ना काले कोट में, बहुत अच्छा सा बढ़िया, तो मुझे लगा तो मैं भी यही बनूंगा एक दिन। बहुत बड़ी, बहुत बड़ा ख्वाब नहीं था मेरा,
0: जी
1: लेकिन इत्तेफाक से मेरी जितनी भी नौकरियां लगी मेरे रेलवे में ही लगी।
0: अरे वाह,
1: मतलब तीन चार नौकरियां मैं रेलवे की छोड़ के अभी जो है वो कर रहा हूँ, रेलवे में ही कर रहा हूँ।
0: तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी अगली गजल हमें सुनाएं।
1: मेरी एक गजल है, इसका मतलब है कि एक हम है सितारों को मनाने में लगे हैं, एक हम है सितारों को मनाने में लगे हैं, कुछ लोग चिरागों को बुझाने में लगे हैं। एक हम है सितारों को मनाने में लगे हैं, कुछ लोग चिरागों को बुझाने में लगे हैं। माना नहीं हमने तो मुसीबत को मुसीबत, माना नहीं हमने तो मुसीबत को मुसीबत, हम जिंदगी आसान बनाने में लगे हैं।
0: वाह वाह वाह,
1: ये बात समंदर को पता है कि नहीं है, ये बात समंदर को पता है कि नहीं है, लहरों को किनारे ही छुपाने में लगे हैं। ये बात समंदर को पता है कि नहीं है, लहरों को किनारे ही छुपाने में लगे हैं। होता है हवाओं को भी तूफान से खतरा, होता है हवाओं को भी तूफान से खतरा, यूं ही नहीं वो शोर मचाने में लगे हैं। और नादान परिंदों को जो दाना हूं मैं अक्सर, नादान परिंदों को जो दाना हूं मैं अक्सर, तो तय है इन्हें लोग फंसाने में लगे हैं। एक हम है सितारों को मनाने में लगे हैं,
0: बहुत
1: कुछ लोग चिरागों को बुझाने में लगे हैं।
0: बहुत प्यारी गजल, बहुत
1: जी शुक्रिया।
0: प्यारी गजल मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत प्यारी गजल के लिए। मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी पसंद के गजल गायक की कोई गजल हमें बताएं।
1: गुलाम अली साहब की है, हंगामा है क्यों बरपा।
0: ओहो क्या बात है, बड़ी ही खूबसूरत बड़ी ही प्यारी गजल, हंगामा है क्यों बरपा। आइए दोस्तों, पेशे खिदमत है ये गजल।

0: मुकेश जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, अपनी गजलें हमें सुनाई। आपसे बातचीत करके बहुत मजा आया और हमारे श्रोताओं को भी आपकी गजलें और आपके पसंद की गजलें सुनकर बहुत मजा आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर बुलाने के लिए आपके प्रोग्राम में।
2: मैं भी शुक्रगुजार हूँ आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।
3: ये जाम भी शाम के वक्त ही क्यों याद आता है।

दोस्तों आज शाम गजलों के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल नई गजलें लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। खेतीबाड़ी कार्यक्रम में हम अपने किसान साथियों को खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं हमारे झाबुआ जिले के जो भी किसान साथी हमें सुनते हैं उनको एक उपयुक्त जानकारी उन तक पहुंचे, जिससे हमारे किसान साथी अपनी खेती में बदलाव कर सकें। क्योंकि हम और आप देखते हैं कि किसान साथियों के पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं खेती करने के, लेकिन हमारे किसान साथी सिर्फ 3-4 अपनी फसलों को करते हैं और उससे ही अपना घर का और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। और खासतौर पर यह देखा गया है कि यहाँ के किसानों को अगर देखा जाए तो वो खेती करने के बाद दूसरे राज्य में अपने पलायन कर जाते हैं और मजदूरी करते हैं, वहां से कमा के आते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि बस 2-3 फसलें हमारी हो जाती हैं, यानी 3 फसलें जो करते हैं उससे उनका पालन पोषण नहीं हो पाता है, ऐसा हमारे किसानों का कहना है। लेकिन हमारे किसान साथियों को बता देना चाहते हैं कि जो भी हमारे किसान साथी, चूंकि अब झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM जब से खुला है तब से हम किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियों पर अवगत कराते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं, साथ साथ में मौसम की जानकारी भी देते हैं। मौसम आधारित हमारे किसान साथी खेती कर सकते हैं, नई नई किस्में जो रहती हैं उसका भी चयन कर सकते हैं, बोनी से पहले हमारे किसान साथी किस तरीके से बीजों का उपचार करना चाहिए इस पर भी हम बातचीत करते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आज हम जो टैगिंग रहती है जीआई टैगिंग, जिसे कहते हैं बाजार में जब हम किसान अपना माल बेचते हैं तो जीआई टैगिंग लगाया जाता है, क्या होता है आखिरकार, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उस चर्चा से पहले आइए हम जान लेते हैं झाबुआ जिले के लिए मौसम आधारित जानकारी। ये जानकारी आपको दी जा रही है राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय से। और आपको बता देना चाहते हैं कि आने वाले 5 दिनों में आसमान में मध्यम घने से मध्यम छिटपुट बादल रहने की संभावना है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान 37 डिग्री से 43 डिग्री व 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। साथ में हवा दक्षिण पश्चिमी से पश्चिम दिशा से 12.7 से 22.9 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना बताई जा रही है। आगामी 5 दिनों में वर्षा 8 मिलीमीटर होने की संभावना बताई जा रही है। अभी तक अगर बरसात की बात करें, बरसात देखी जाए तो 22 जून को 1 मिलीलीटर वर्षा हुई थी, 23 जून को 4 मिलीलीटर वर्षा हुई थी, 24 को 3 और 25 को 0 मिलीमीटर वर्षा हुई है, 26 को 0 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना ऐसा बताया जा रहा है। उच्च तापमान अगर देखा जाए तो 22 को यानी कल 37 डिग्री सेल्सियस, 23 को 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना बताई जा रही है। साथ में 24 को 41 डिग्री सेल्सियस और 25 को 43 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना बताई जा रही है। अब हमारे किसान साथियों को जो वैज्ञानिक सलाह देते हैं, क्या परामर्श है, उसको भी हम एक नजर डाल लेते हैं। जिले में मौसम पूर्वानुसार आगामी 5 दिनों में आसमान में मध्यम घने से छिटपुट बादल छाए रहने की संभावना बताई जा रही है। तापमान सामान्य से अधिक व वर्षा 8 मिलीमीटर होने की संभावना बताई जा रही है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वो ग्रीष्मकालीन फसलों की कटाई के बाद खेतों की सफाई कर लें व खरीफ फसलों की खेती हेतु खेत अपने तैयार कर लें। फसलों के बीज की बुवाई के समय उर्वरक व बीज को मिलाकर बुवाई कभी न करें। फसलों की बुवाई के पूर्व बीज उपचार अवश्य करें। इस हेतु बीज उपकरण, कल्चर और फफूंद नाशक दवाओं की व्यवस्था भी साथ में कर लें। खरीफ की फसलों की बुवाई 3-4 इंच वर्षा होने के बाद ही बुवाई करें। स्वयं के तैयार
बीज की सफाई कर लें, उसके अंकुरण प्रतिशत की जांच कर लें। अंकुरण प्रतिशत यदि 70% है तो सही है, यदि 70% से कम होने पर नए बीज की व्यवस्था भी अवश्य कर लें हमारे किसान साथी। खरीफ फसलों की खेती हेतु आवश्यक जो खादों की व्यवस्था भी साथ में कर लें। पौधा रोपण भी कर सकते हैं हमारे किसान साथी, समय है क्योंकि बरसात कुछ हो गई है। हमारे झाबुआ जिले की अगर बात करें तो हमारे किसान साथी अब तैयारी में जुट जाएं और जैसे ही अच्छी बरसात होगी तैसे ही अपने बीज अपने खेतों में लगा सकते हैं। मक्का की अगर बात करें, मक्का में जो किसान को सलाह दी जाती है वो मक्का की खेती हेतु उपयुक्त किस्म जो है JBM 421, HPQM 1, JM 216 या मध्यम अवधि के संकर किस्म की जो बीज रहते हैं उनकी व्यवस्था अवश्य कर लें। सोयाबीन की अगर बात करें, क्योंकि सोयाबीन बोया जाता है तो सोयाबीन की खेती होती है उपयुक्त किस्में जो है JS 20 और 69, JS 20 98, RS 24, JS 20 29, RVS 2001-4 आदि की व्यवस्था कर लें। अगर उड़द की बात करें, क्योंकि उड़द भी बोई जाती है तो उड़द की उन्नत किस्में जो है उत्तरा JU 66, PU 31, प्रताप उड़द 1 की व्यवस्था कर लें। ये अच्छी बीज है जो वैज्ञानिक बताते हैं, अच्छे बीज बताते हैं, उनकी व्यवस्था कर लें और जैसे ही पानी अच्छा बरसे और उनको अपने खेतों में लगाना शुरू कर दें। कपास होता है, कपास की उन्नत किस्में जो है DCH 32, BT 2 और कपास की किस्में हैं, इनकी भी अपन व्यवस्था कर लें। अगर हमारे किसान साथी ने फल वृक्ष लगाए हैं तो उनको क्या करना चाहिए, पूर्व में कलकायन हेतु काटे गए बेर के पुराने व देसी पेड़ में निकली शाखाओं में से 3 से 4 शाखाओं को छोड़कर शेष शाखाओं को काटकर अलग कर दें। नया बगीचा लगाने हेतु उचित दूरी किए गए गड्ढे शीघ्रता से बालू मिट्टी या गोबर या बर्मी कंपोस्ट खाद से भर दें। उन्नत किस्म के फलदार पौधे की व्यवस्था भी कर लें। सब्जियों की बात करें तो नर्सरी के पौधों में पत्ती खाने वाली इल्ली को रोकथाम के लिए प्रोफेनेफस दवा जो रथ है वो 3.0 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव अवश्य कर दें। परामर्श क्या देना चाहते हैं कि अदरक व हल्दी की खेती हेतु प्रकंद की बुवाई करें। बुवाई पूर्व प्रकंद को डाइथेन एम 45 व कार्बोडाइजिम 2.0 ग्राम प्रति लीटर के घोल में बनाकर और इसको 20 से 30 मिनट तक डुबो कर रखें और बरसात की सब्जियों की रोपण में जल निकासी की उचित व्यवस्था भी कर लें हमारे किसान साथी। बरसात की सब्जियों की खेती हेतु मेड़ नाली पद्धति से खेत तैयार कर लें। पशु पक्षियों की अगर बात करें तो मुर्गी घर में जो खिड़कियां हैं व दरवाजे हैं पर्दे लगा दें, उसमें पशुओं को एग्रेशन गलघोंटू और लंगड़ी बुखार जैसा प्रकोप देखा जाएगा तो ऐसे में अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से सलाह लेकर उनको टीका अवश्य लगवाएं। ग्रीष्मकालीन हरे चारे हेतु ज्वार की चरी के समय पर कटाई कर पशुओं को खिलाएं। दुधारू पशुओं को हरा चारा 25 किलोग्राम प्रति पशु प्रति दिन व आहार संतुलित आहार जो रहता है व मिनरल की आपूर्ति हेतु 50 ग्राम प्रति पशु प्रतिदिन मिनरल मिक्सचर की खुराक अवश्य दें। तो ये जानकारी जो आपको दी जा रही थी वो झाबुआ जिले के किसान साथियों के लिए दी जा रही थी, ये जानकारी आपको उपलब्ध कराई जा रही है वो राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय झाबुआ से कराई जा रही है। तो साथियों ये जो जानकारी आपको दे रहे थे
उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। किसान साथी सोच के समझ के अपनी खेतों में बुवाई करें, क्योंकि अब बरसात का मौसम आने वाला है, पेड़ पौधे भी आसपास लगा सकते हैं, बागवानी भी कर सकते हैं, बागवानी के साथ साथ जो फलदार वृक्ष रहते हैं उनका भी हम लगा सकते हैं और अपनी बाग को अच्छा, बगीचा को अच्छा कर सकते हैं, उससे भी अपनी आय में वृद्धि हमारे किसान साथियों की हो सकती है। चूंकि काफी बातचीत हो गई है, यहाँ पर हम एक गीत के साथ मनोरंजन करते हैं, सुन लेते हैं एक वीली गीत को। इसके साथ साथियों आपकी मुलाकात, हम एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो है किसान मार्केटिंग यानी GI मार्केटिंग, जो टैग लगती है वो क्या है आखिरकार, इस पर भी हम आपको रेडियो रिपोर्ट साझा करेंगे। तो आइए इसी भी सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: जीआई टैग या पहचान उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक में वहाँ की स्थानीय खूबियाँ मौजूद होती हैं। दरअसल जीआई टैग लगे किसी उत्पाद को खरीदते वक्त ग्राहक उसकी विशिष्टता और गुणवत्ता को लेकर आश्वस्त रहते हैं। भौगोलिक संकेत टैग का मूल उद्देश्य दूसरे लोगों द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेत के अनधिकृत उपयोग को रोकना है। जीआई टैग के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया में नयापन लाने वाले लोगों को इस बात की सुरक्षा दी जाती है कि उनके उत्पाद की नकल कोई और व्यक्ति या संस्थान ना करे। देश में इसके लिए बाकायदा कानून है। ये कानून आश्वासन धोखाधड़ी के खिलाफ कानूनी सुरक्षा देता है। यानी अगर कोई मलिहाबाद के नाम से बेचा जा रहा आम अगर मलिहाबादी नहीं है तो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही धोखाधड़ी करने वाले पर कार्रवाई कर सकते हैं। और इस कानून के अंतर्गत किसी उत्पाद का पंजीकरण भौगोलिक उपदर्शन या संकेत कहलाता है। खेती के मामले में इसका फायदा किसानों को मिलता है। उपभोक्ता मशहूर जगह की असली कृषि उपज को ज्यादा भाव देने में गुरेज भी नहीं करते, क्योंकि वहाँ की माटी का स्वाद, वहाँ की जलवायु की विशेषता और स्वाद की विशिष्टता इसमें समाहित होती है। इतना ही नहीं, ये टैग स्थानीय फसलों के संरक्षण का भी रास्ता साफ करता है। जीआई टैग मुख्य रूप से कृषि उत्पादों, प्राकृतिक उत्पादों, हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान के लिए दिया जाता है। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के नाते भारत ने जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक के रूप में उत्पादों का पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 को मंजूरी दी। ये अधिनियम 2003 से अमल में आया है। भारत में साल 2004-05 में दार्जिलिंग चाय से शुरू हुआ जीआई टैग का सफर करीब 370 उत्पादों तक जा पहुंचा है। आपको बता दें कि 370 में से 130 उत्पाद कृषि और खाद्य क्षेत्र के हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है। अगर राज्यवार बात करें तो असम की तेजपुरी लीची, जोहा चावल, असम कार्बी एंगलोंग अदरक, बिहार का कतरनी चावल, भागलपुरी जरदालू, मगही पान और शाही लीची को जीआई टैग मिला है। छत्तीसगढ़ के जीरा फूल, गुजरात के गिर केसर आम, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय व हिमाचली काला जीरा और राजस्थान की बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग वाले उत्पादों से दूर दराज के क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था लाभान्वित हो रही है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैगिंग ने तब से और भी अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है जब से सरकार का ध्यान वोकल फॉर लोकल की ओर स्थानांतरित हुआ है और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है।
1: तो अभी हम सब ने एक खास रिपोर्ट देखी जीआई टैगिंग यानी कि भौगोलिक पहचान के बारे में, थोड़ा बहुत तो जान लिया। तो फिर आइए इसके बारे में

0: जब ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ था तब आर्टिकल 22 और 24 के तहत तब ये कहा गया कि भाई हर भौगोलिक क्षेत्र की एक विशेष पहचान है, उस उत्पाद से जुड़ी हुई उसकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, उसकी एक खास विशेषता जुड़ी हुई है, तो उसको हमें रिकॉग्नाइज करना है, उसकी हमें उस पहचान को जो है वो बनाए रखना है कि हाँ ये जो उत्पाद है ये इस क्षेत्र का है और विशेष है, इसकी एक अपनी प्रतिष्ठा है। तो ये एक WTO के तहत एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत हुआ। अब उदाहरण जैसे आपने दिए, हमारे यहाँ अभी 415 के करीब GI टैग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, हमारा मलियाबादी आम है, केसर आम है, बैंगनपल्ली आम है, अल्फेंसो आम है, चाय है, और इस तरह आशाही लीची है बिहार की, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि 415 के लगभग आज की डेट में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिसमें से 140 जो है वो कृषि उत्पाद है।
1: जी, तो 140 कृषि उत्पाद हम कह सकते हैं कि इनकी GI टैगिंग हो चुकी है। तो ऐसे में राजेंद्र कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे, ये GI टैगिंग करता कौन है, इसके बारे में भी तो हमारे किसानों को पता होना चाहिए।
2: ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री
1: जी,
2: ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस की ब्रांच है
1: जी,
2: और वहां पर एप्लीकेशन फाइल करने के लिए अंडर द एक्ट, अंडर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट, कोई भी एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स या बॉडी जो रिकग्नाइज्ड बाय लॉ है वो अप्लाई कर सकती है, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। यानी कि हम एप्लीकेशन लेके चले गए और रजिस्ट्रार जो है उसको रजिस्टर कर देगा, उसके लिए अंडर द एक्ट काफी रिगरस रिक्वायरमेंट्स हैं। और एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, जो भी बॉडी GI रजिस्ट्री के सामने जाएगी वो एक न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, वो नॉन ट्रेडिंग न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, और दूसरी वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होनी चाहिए। यानी कि एक एसोसिएशन है जिसके कुछ मेंबर्स रिकग्नाइज करते हैं उसको और कुछ नहीं करते हैं। फिर उसके बाद एक इंस्पेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए। इंस्पेक्शन मैकेनिज्म सर्टिफाई करेगा कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी, जैसे डॉक्टर बजाज ने बताया, एट्रीब्यूटेबल टू दैट रीजन है या नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं प्रोडक्ट्स जो लुक अलाइक होते हैं लेकिन वो उस रीजन से आते नहीं है, तो उसके लिए इंस्पेक्शन बॉडी जरूरी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जरूरी है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। अब जब हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करते हैं तो हम पब्लिक राइट्स की बात करते हैं, वो राइट्स जो कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। जैसे हम कोई ट्रेडमार्क या प्राइवेट राइट्स की बात करते हैं वो प्राइवेट ट्रेडर्स की होती हैं, लेकिन जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिए जाते हैं वो कम्युनिटी को दिए जाते हैं, और ये जो बॉडीज जो होती हैं ये कस्टोडियंस होती हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फाइल होने के बाद उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, और अंडर द एक्ट एक टेक्निकल कमिटी है, उसका प्रोविजन है, जो उसको एनालाइज करती है, जो उसको देखती है कि ये जो GI प्रोडक्ट है वर्दी ऑफ प्रोटेक्शन है या नहीं, उसकी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो वाकई में ऑथेंटिक है या नहीं। वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स उस फील्ड से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद फिर एप्लीकेशन एडवर्टाइज होती है, 4 महीने का टाइम दिया जाता है, कोई भी एग्रीड पर्सन वहां पर अपोज कर सकता है, और उसके बाद फिर अगर कोई ऑपोजिशन नहीं होती है तो वो रजिस्टर हो जाता है, वो GI रजिस्टर हो जाता है। अगर नहीं होगा तो ऑपोजिशन जो है वो चलती है। तो इस तरह से ये GI प्रोसेस कंप्लीट होता है
1: जी। तो पूरी प्रक्रिया इस तरह से होती है, इन बातों को जरूर ध्यान में यहाँ पर रखने की जरूरत हो जाती है। तो अब मैं रुख करना चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, धान हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की बहुत प्रमुख फसल है, और उसकी बासमती की हम बात करें तो पहचान है हमारे देश से, बहुत ही अच्छे स्तर पर निर्यात भी होता है। तो ऐसे में बासमती के लिहाज से GI टैगिंग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, अगर हमारे किसान और इसकी ओर बढ़ना चाहे तो?
3: देखिए दीदी, धान जैसा आपने भी कहा और पूरे विश्व में ये जानकारी है कि धान भारत के लिए विशेष तौर पर बासमती धान बहुत महत्वपूर्ण है। इसका महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि इसको GI टैग भी मिला हुआ है
1: जी।
3: इसके लिए हमारे किसान जो हैं वो विशेष तौर पर इसके इसके लिए जिम्मेदार हैं
1: जी।
3: लेकिन चूंकि धान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो उसकी उपज से लेकर और उसके निर्यात तक
1: जी,
3: उसके लिए हमें विशेष प्रयास करने होते हैं। अब धान के लिए भारत सरकार ने विशेष प्रयास किए, अपीडा को इसका अधिकार दिया कि वो बासमती को GI टैगिंग करे, और इसी परिणाम स्वरूप 2016 में हमें बासमती धान, बासमती चावल का GI टैग जो जैसा अभी राजेंद्र जी ने बताया चेन्नई जो रजिस्ट्रार है

0: रजिस्ट्रार ऑफिस से उसका अधिकार अपीडा को मिला
1: जी।
0: उसके बाद से अब तक पूरे जोर शोर से अपीडा इस प्रयास में कार्यरत है, इस प्रयासरत है कि हम कैसे ये जीआई टैगिंग को हम भारत से निकलकर बाहर जहां जहां हमारा हम करीब करीब 170 देशों में बासमती एक्सपोर्ट करते हैं
1: बिल्कुल,
0: और उन सभी देशों में जाएं और अपने इस जीआई टैग को वहां भी रजिस्टर करें
1: जी,
0: जिससे हमारे किसानों को सीधा सीधा उस बात का फायदा मिले, उसका लाभ मिले, क्योंकि जितना हम निर्यात करेंगे उतना ही हमारे किसानों को उसका लाभ मिलेगा।
1: बिल्कुल, तो जीआई टैगिंग के बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह का बदलाव आपने एक्सपोर्ट में देखा है, निर्यात में किस तरह का बदलाव आया है जब से जीआई टैगिंग हुई है।
0: देखिए, जीआई टैगिंग से एक बहुत बड़ा लाभ जो उस उत्पादक उत्पाद का जो मालिक है उसको मिलता है
1: जी।
0: जीआई टैग का, जैसे कि अभी बजाज साहब ने भी बताया, जीआई टैग अपने आप में एक विशेष उत्पाद है, तभी उसको जीआई टैग मिलेगा, और जब उत्पाद विशेष है तो स्वाभाविक है उसका मूल्य भी विशेष मिलेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कारण है कि बासमती के उत्पाद से हम बहुत लाभ, पूरा देश और हमारे देश के पूरे किसान इस बात का लाभ उठाते हैं, और पूरे संसार में हम लोगों को बासमती खिलाते हैं, इसके लिए श्रेय हमारे किसानों को जाता है।
1: बिल्कुल, इसका पूरा श्रेय जो है हमारे किसानों को जाता है, और हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो है कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन भी रहा है, और हमारे किसानों का ही इसमें बहुत बड़ा हाथ है, सहयोग है। बढ़ना चाहेंगे आगे डॉक्टर बजाज, आपके पास हम यहां पर आना चाहेंगे। आपने बताया कि 140 के करीब कृषि उत्पाद हैं जिनको जीआई टैगिंग मिल चुकी है, लेकिन अगर हमारे किसान या फिर कहें कि और संगठन वगैरह अलग अलग उपज की जीआई टैगिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कहां आवेदन करना होगा, क्या प्रक्रिया रहती है उसकी?
2: बहुत से ऐसे उत्पाद हैं, जैसे अभी कहा कि केवल 140 ऐसे उत्पाद हैं जो कि अभी जीआई रजिस्टर हुए हैं
1: जी,
2: और हमारे तो हिंदुस्तान में बहुत सी जो उत्पाद हैं जो कि विशेषता रखते हैं, इसलिए तो हम कहते हैं भारत की अतुल्य, भारत की अमूल्य निधि ये कहा जाता है। तो बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जो कि उस क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र विशेष की प्रतिष्ठा लिए हुए हैं, तो उनको रजिस्टर कराने के लिए जैसा अभी राजेंद्र जी ने कहा था कि एक व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। जैसे बासमती चावल है वो हर उस किसान का हकदार है जो बासमती उगाता है, तो इसीलिए जो उत्पाद है उसको एक कोई एजेंसी जो है, चाहे वो सरकारी एजेंसी हो या गैर सरकारी संस्था हो, जो कि सच में हकदार है उसका कस्टोडियन बनने की, उसको लेकर वो रजिस्ट्री में जाकर रजिस्टर करा सकते हैं, और उसका फिर पूरा प्रोसेस है रजिस्टर कराने के लिए, जैसा भी राजेंद्र जी ने बताया था
1: जी,
2: कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, और उसके बाद कस्टोडियन बनना भी आसान नहीं है। मैं अगर एक उसका जीआई का कस्टोडियन बन गया तो उसकी पहरेदारी भी करनी है मेरे को, जैसे हम बासमती की पहरेदारी भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं दुनिया में कोई जो है वो बासमती ना कहलाए, हम कहते हैं जैसे ट्रेडमार्क का प्रोटेक्शन होता है ना कि मेरे ट्रेडमार्क को दूसरा ना इस्तेमाल कर ले, इसी तरह जब एक जीआई रजिस्टर हो जाता है तो उसका एक पहरेदारी भी करनी पड़ती है, प्रोटेक्शन भी करना पड़ता है, भाई दूसरे को तुम नाजायज, हम उसका बगैर हमारी मर्जी के हम उसे इस्तेमाल नहीं करने देंगे, क्योंकि ये एक विशेष अधिकार है। और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जिसका वो उत्पाद है उसको हम प्रीमियम मिलता है, दूसरे उत्पाद में उसको पता होता है कि ये जो भी खरीद रहा है उसको मालूम है कि ये एक विशेष चीज है जो मैं खरीद रहा हूं, और इससे मुझे जो है एक अच्छा जो है वो और कहीं नहीं मिलता दुनिया के कोने में, एक यहीं पर ये चीज मिलती है, और उसका एक प्रीमियम भी उनको दिया जाता है। तो इसीलिए इसका जो है वो रजिस्टर एक संस्था कर सकती है, चाहे सरकारी या गैर सरकारी हो, और फिर उसका कस्टोडियन भी बनना पड़ता है।
1: बिल्कुल, तो आपने कहा कि एक संस्था यहां पर जीआई टैगिंग के लिए आवेदन आगे बढ़ा सकती है, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या फायदा लाता है ये जीआई टैगिंग, किस तरह से फायदेमंद साबित होता है? राजेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप, हमारे किसानों के लिए जीआई टैगिंग कितना फायदेमंद है?
3: मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा।
1: जी बिल्कुल,
3: दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग टी का प्रोटेक्शन 1986 से फॉर्मल ढंग से स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट है ये 2003 में आया, 15 सितंबर 2003 में, उससे पहले भी इंडिया में स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन रही, और दार्जिलिंग टी जो है एक सर्टिफिकेशन मार्क है, तो 2018 में वर्ल्ड बैंक और एफएओ ने एक स्टडी स्पॉन्सर की थी जिसमें सिक्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वर्ल्ड वाइड से सिलेक्ट किए गए थे, उसमें दार्जिलिंग टी भी थी। और उस स्टडी का फोकस था कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्शन से क्या फायदा होता है। तो उसमें दार्जिलिंग टी के बारे में ये बताया गया कि जब से दार्जिलिंग टी की प्रोटेक्शन स्टार्ट हुई है तो उसका बेनिफिट जो वहां पे स्टेट्स हैं, जैसे हमारे किसान भाइयों को पता होगा कि दार्जिलिंग टी सिर्फ 87 टी गार्डन्स में ही प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि सारा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ही दार्जिलिंग टी प्रोड्यूस करता है। सिर्फ 87 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे दार्जिलिंग टी होती है और वहां पर मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स वो विमेन है। तो उनका एम्पावरमेंट जब जीआई प्रोटेक्शन से होता है तो उनके लिए स्कूल्स, हर टी गार्डन ओनर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं वो गार्डन में देता है। तो उस स्टडी का कंक्लूजन ये निकला कि दार्जिलिंग टी की वैल्यू टुडे इन कंपैरिजन टू जो ऑर्डिनरी टी है वो इतनी ज्यादा है जीआई प्रोटेक्शन की वजह से। और दार्जिलिंग टी वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्टेड है, उसको जो है यूरोपियन कमीशन ने भी एक जीआई टैग दिया था और वो जीआई टैग मिलने के बाद हमारे एक्सपोर्ट्स ऑफ दार्जिलिंग टी बढ़ गए हैं। और जैसे ही एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे उसका जो बेनिफिट जो है ग्रास रूट्स पर जो वर्कर्स हैं जो वहां पे काम करते हैं उन पे होता है। ऐसा ही बासमती राइस पे भी होगा। इनफैक्ट बासमती राइस का प्रोटेक्शन भी जो है उसकी भी बहुत लंबी स्टोरी है। और अब जो है बासमती राइस जो है वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट होता है, जैसे डॉक्टर शर्मा जी ने बताया, और उसका प्रोटेक्शन भी उसी लेवल पे चल रहा है जो दार्जिलिंग टी का है।
1: जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर फायदे तो अनेक हैं अगर हम जीआई टैगिंग करते हैं। रुक करना चाहेंगे अब डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, आपने कहा कि अब यहाँ पर कवायदें चल रही हैं, कोशिशें चल रही हैं कि अलग अलग देशों में भी जीआई टैगिंग हो सके हमारे बासमती चावल की। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जीआई टैगिंग किस तरह से काम करता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
0: देखिए अदिति, जैसा कि हमारे घरेलू सिस्टम में एक जीआई रजिस्ट्रार है, उसको हर किसी कोई भी प्रोडक्ट को रजिस्टर करने का एक तरीका है
1: जी।
0: इसी तरीके से अगर हम विदेशों में जाते हैं, बाहर जाते हैं, वहां भी लगभग वैसे ही तरीके सामने आते हैं हमारे। और अगर हम वहां अपने जीआई टैग प्रोडक्ट को अगर वहां नहीं कराते हैं रजिस्टर, तो हो सकता है वहां कोई हमारे चीज के नाम को का दुरुपयोग करके वहां वो बेचता रहे। इसलिए यदि हमें अपने जीआई प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना है, उसको संभाल कर रखना है, तो ये जरूरी है कि हम अपने उस उत्पाद को जहां भी हमारा मार्केट है, हमारा जो मुख्य मार्केट है, उस मार्केट के उन देशों में जाएं और अपने उस उत्पाद को वहां भी रजिस्टर करें। इसी कड़ी में अपीडा ने एक बड़ी पहल की बासमती के लिए, क्योंकि बासमती हमारे लिए बहुत बड़ा उत्पाद है
1: जी।
0: अगर मैं दो दशक की बात करूं, 2002-03 के लगभग बासमती का जो एक्सपोर्ट था वो करीब करीब 7 मिलियन के करीब था। आज वो बढ़कर करीब 45-46 मिलियन टन हो गया। तो इस बड़े उत्पाद को, जिसका कि पूरा का पूरा लाभ और श्रेय हमारे किसानों को जाता है, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसलिए हम विदेशों में जो हमारे ग्राहक जो देश है, उन सभी देशों में प्रयासरत हैं कि हम बासमती को जैसा हमने भारत में रजिस्टर कराया एक जीआई प्रोडक्ट, उसी तरीके से हम विदेशों में भी जाएं और अपने इस बासमती को एक जीआई टैग के तहत वहां भी रजिस्टर कराएं। और इस कड़ी में हम करीब करीब 20 के करीब देशों में हम हमारी एप्लीकेशन जो है, हमारे प्रार्थना पत्र वहां चले हुए हैं। और इस कड़ी में करीब करीब 8 देशों में हम ऑलरेडी या तो जीआई ले चुके हैं या बासमती का हमारा एक लोगो है, या तो हमने लोगो को रजिस्टर कराया है। तो ये रजिस्टर कराने से क्या होगा कि हमारा उस देश में भी हमारा बासमती प्रोटेक्ट रहेगा, कोई और उसकी नकल नहीं कर सकता, उस नाम को मिसयूज नहीं कर सकता। और हमारे जो किसान है, हमारे किसानों द्वारा पैदा किया हुआ जो बासमती है वो धड़ल्ले से वहां बिकेगा। और उसका पूरा लाभ उनको मिलेगा।
1: हमारे किसानों ने जो कड़ी मेहनत से बासमती यहाँ पर तैयार किया है उसकी पहचान बनी रहेगी, बरकरार रहेगी, कोई भी उसका दुरुपयोग, उसके नाम का दुरुपयोग यहाँ पर नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर बजाज, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जब किसी भी कृषि उत्पाद को यहाँ पर GI टैगिंग मिलती है तो ऐसे में जो आसपास के क्षेत्र के किसान हैं या फिर उसी क्षेत्र के हम किसानों की बात करें तो उन्हें किस तरह से फायदा मिलता है इसका?
2: सभी को फायदा मिलता है
1: जी।
2: जब GI टैगिंग हो जाता है तो जैसे ये कहा कि ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है
1: जी।
2: अब बासमती GI टैग हुआ तो जहां जहां बासमती उगाया जाता है वो उसका सबको लाभ मिल रहा है, ये नहीं है कि किसी एक व्यक्ति विशेष का लाभ रह गया। जो अपने उस क्षेत्र को जो कि आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं, उस आइडेंटिफाइड क्षेत्र से अगर वो अपना उत्पाद लेकर आता है तो वो उसका वही उत्पाद है और उसको वो उसका जो प्रीमियम है वो क्लेम कर सकते हैं। खाली बासमती की हम बात कर रहे हैं, इसी तरह बहुत से, जैसा मैंने कहा अभी दार्जिलिंग चाय की बात करी, आम है, हमारे अंगूर हैं, शाही लीची है, और भी बहुत से ऐसे उत्पाद और प्रोसेस फूड हैं जैसे रसगुल्ला है, बहुत से ऐसे खास जो उत्पाद हैं हर क्षेत्र के जुड़े हुए, तो उनके जो उत्पाद हैं जो जो उन उत्पादों को उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सदियों से उसका उत्पादन कर रहे हैं, उनको लाभ मिलता है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बेचने में आसानी है, क्योंकि खरीददार को पता है कि ये विशेष है, मैं जाता हूं वहां जाएंगे। आप छोटी सी बात समझिए, आप भी कहीं जाते हैं, बोले फला खाने की चीज बड़ी मशहूर है, तो आप चाहे थोड़ी दूर ही क्यों ना जाना चाहे, वहां जाते हैं और वहां जाके एक जरूर खाते हैं और बार बार जाते हैं। इसी तरह ये या जाते हैं जब कभी आप किसी राज्य में जा रहे हैं या किसी जगह पे जाते हैं, बोलते हैं कि वहां की एक खास चीज है, जैसे मैंने कहा बनारस की साड़ियां बहुत मशहूर हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं जरूर वहां खरीदूं और उसका जो है वो मुझे भी लाभ मिले।
1: बिल्कुल, कश्मीर जा रहे हैं तो शॉल लेना बहुत जरूरी है,
2: केसर खरीदेंगे वहां का,
1: तो ये दक्षिण में जा रहे हैं तो यहाँ का सिल्क बहुत मशहूर है। बिल्कुल,
2: तो बेचना आसान है और दूसरा ये कि उसका फिर उसको प्रीमियम भी मिलता है, क्योंकि खरीददार को भी मालूम है कि मैं जो खरीद रहा हूँ वो एक विशेष चीज है, ये आम चीज नहीं है जो मैं खरीद रहा हूँ, ये मुझे सिर्फ इसी क्षेत्र से, इसी व्यक्ति विशेष से, इसी जो है वो एरिया से मिलती है, तो इसलिए एक उसको भी एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि हाँ एक यूनिक प्रोडक्ट को मैं खरीद रहा हूँ।
1: बिल्कुल, तो डॉक्टर बजाज आप कह रहे हैं कि एक प्रीमियम मिलता है कस्टोडियन को, तो ये प्रीमियम कौन देता है और इससे फायदा क्या होता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
2: खरीदार देता है ना प्रीमियम, वो खरीदार जो है वो जाता है, उसको एक तो उसको पता है कि धान, जब उदाहरण जब आपने दिया बासमती का ही, तो बासमती के जो खरीदार है वो जो रेट देगा और दूसरे जो धान है उसमें फर्क तो रहता ही है
1: जी।
2: तो बासमती का सबसे महंगा चावल, बहुत सी वजह है, उनमें से एक वजह तो ये भी है कि वो GI टैग है और दुनिया भर में बासमती को हम ठीक दाम पर बेचते हैं, लोग इसको जो है एक्सपोर्ट में हमें प्राइसेस भी अच्छे मिलते हैं, जिसका ऑफकोर्स किसानों को लाभ भी मिलता है, तो इसी वजह से, क्योंकि एक GI टैग है। और भी बहुत सी बातें हैं उसकी विशेषता है, लेकिन विशेषता ये भी है क्योंकि ये GI टैग है, एक खास भौगोलिक पहचान है इसकी।
1: बिल्कुल, GI टैगिंग मिल गई है तो विश्व भर में उसकी पहचान हो गई है, विश्व की नहीं अपने देश की बात कर ले तो पहचान हो गई है, जब भी कभी वहां उस क्षेत्र में जाते हैं तो हम उसका स्वाद या फिर उस चीज को लेना जरूर पसंद करते हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि हम कोई भी उत्पाद यहां पर तैयार कर रहे हैं तो उसकी GI टैगिंग जरूर करवा लें। फायदे अनेक हैं, हर एक को इससे फायदा मिल सकता है, और किस तरह से फायदेमंद साबित हो सकता है GI टैगिंग और इसकी जो प्रक्रिया है उसमें क्या किसी तरह की कोई समस्या भी आती है, इस पर भी हमारी चर्चा को हम जारी रखेंगे।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भी 90.8 FM। आपनू रेडियो, आपड़ी बातें।

0: कृषि उत्पादों की भौगोलिक पहचान के बारे में। जी हाँ, जीआई टैगिंग पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। क्या होती है ये, किस तरह की इसकी प्रक्रिया रहती है, इसके बारे में तो हमने जान लिया और इससे फायदे क्या क्या होते हैं इसके बारे में भी विशेषज्ञों ने हमें विस्तार से बताया है। लेकिन जब हम इस प्रक्रिया में जाते हैं तो कुछ समस्याएं तो जरूर आती होंगी, जिसके बारे में मैं जानना चाहूंगी राजेंद्र कुमार जी से कि जब हम जीआई टैगिंग पर जाते हैं तो कुछ समस्या तो आती होंगी। हमारी एजेंसियों को या संगठनों की बात करें तो उन पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जब जीआई एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के सामने जाती है तो एक समस्या होती है कि जब एग्जामिनेशन होता है उसका, उसके टेक्निकल एक्सपर्ट्स जब उसको एनालाइज करते हैं तो उनका मेन फोकस होता है कि ये स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं ये साइंटिफिकली एक्यूरेट हैं या नहीं, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो ऑथेंटिक है या नहीं। क्योंकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी ऐसा होता है जैसे कोई इंटरनेट से कोई डॉक्यूमेंट्स लगा दिए और वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के तौर पे जो है पास ऑफ किए गए, वो ऑथेंटिक सोर्स बहुत जरूरी है। और उसके बाद जरूरी होता है कि इंस्पेक्शन मैकेनिज्म कि जो बॉडी रजिस्ट्रेशन के लिए जारी है उसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस प्रोडक्ट को एनालाइज करने का, क्योंकि अल्टीमेटली जो कंज्यूमर्स होते हैं वो एसोसिएट करते हैं उस प्रोडक्ट को उस रीजन के साथ, और जब तक वो इंस्पेक्शन मैकेनिज्म उसका उसके पीछे नहीं होगा तो कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कश्मीरी कारपेट्स
0: जी।
1: अब कश्मीरी कारपेट्स की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने के लिए जो बॉडी जिसने रजिस्टर कराया है कश्मीरी कारपेट एज ए जीआई, उन्होंने क्यूआर कोडिंग की है। जब आप कारपेट लेने जाते हैं तो उसमें क्यूआर कोडिंग है और कोई भी स्मार्टफोन से किसी भी डिवाइस से उस क्यूआर कोड से ये मालूम कर सकता है कि ये कहां किस रीजन से है, किस वीवर ने इसको वीव किया है। तो इसलिए जब कभी भी मार्केट में कश्मीरी कारपेट बिकता है तो उसके ऊपर जो क्यूआर कोड लगाता है उससे कस्टमर जो है वो मालूम कर सकता है कि ये जेन्युइन कश्मीरी कारपेट है। तो ये जो सिस्टम है वो रजिस्ट्रार ऑफ जीआईज एग्जामिन करता है। और उसके बाद एक और मुद्दा आता है कि रिप्रेजेंटेटिव नेचर ऑफ द बॉडी कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए जाती है, कि कभी कभी जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ बॉडीज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो उस पूरे प्रोड्यूसर्स को रिप्रेजेंट नहीं करती। बहुत एग्जांपल्स आते हैं, हैदराबाद बिरयानी का एग्जांपल बड़ा फेमस है जिसमें वो जब रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो जो बॉडी थी वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी और उन्होंने जो है वो अपना टाइटल प्रूव नहीं कर पाए तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का होना, इंस्पेक्शन मैकेनिज्म का होना, ट्रेसिबिलिटी का होना और फिर जो है जो ओवरऑल सुपरविजन है उसके बाद फिर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है। और जैसे मैंने पहले समझाया उसके बाद कोई भी अपोज भी कर सकता है एप्लीकेशन, और ये अपोजिशन कहीं से भी आ सकती है, हिंदुस्तान से ही नहीं, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और
0: जैसे आपने कहा कि उसके विरोध में भी यहां पर सवाल उठाए जा सकते हैं, अपोजिशन हो सकता है, तो ऐसे में फिर उसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है, उसका जस्टिफिकेशन किस तरह से दिया जाता है?
1: उसका जस्टिफिकेशन रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के सामने जो कि क्वेजाई जुडिशियल बॉडी है, जैसे कोर्ट्स होते हैं तो उसमें वो एविडेंस एग्जामिन होता है, जिसे दूसरी बॉडी ये कहती है जो अपोज करती है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटीज ये नहीं है
0: जी,
1: ये होनी चाहिए, या इसका एरिया इतना बड़ा नहीं है, ये छोटा होना चाहिए। तो इस टाइप के ऑपोजिशंस आती हैं और उसको भी जो है थ्रू प्रॉपर जुडिशियल माइंड एग्जामिन किया जाता है कि ये सच है या नहीं। इनफैक्ट ये जो प्रोसेस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रिप्स एग्रीमेंट डॉक्टर बजाज ने बताया, उसमें एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 24.9, वो ये कहता है कि अगर कोई जीआई डोमेस्टिकली प्रोटेक्टेड नहीं है तो किसी कंट्री के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसलिए यहां पर उसकी जो स्क्रूटनी होती है, उसका एग्जामिनेशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जैसे बासमती का एग्जांपल दिया, दार्जिलिंग टी का एग्जांपल दिया, ये डोमेस्टिकली रजिस्टर्ड है
0: जी।
1: और इसीलिए जो है बाहर की कंट्रीज, बाहर के कोर्ट्स उसको रिकग्नाइज करते हैं कि हमने हिन्दुस्तान में उसको प्रोटेक्ट किया।
0: बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ यहां पर समझाया है राजेंद्र जी ने। हम उम्मीद करते हैं कि अब भी अगर आप जीआई टैगिंग के लिए जाएंगे तो आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अब आप पूरी तैयारी के साथ जाएंगे कि किस तरह से आपको कौन कौन से हम कह सकते हैं दस्तावेजों की जरूरत है, किस किस चीज की जरूरत है जिससे आप जीआई टैगिंग कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अब हम डॉक्टर शर्मा के पास आना चाहेंगे। डॉक्टर शर्मा, जब हम किसी कृषि उत्पाद की जीआई टैगिंग की बात करते हैं तो उससे हमारे किसानों को ही फायदा नहीं होता बल्कि फसलों को भी उससे काफी फायदा होता है। फसल संरक्षण की हम बात करें तो उससे भी काफी मजबूती मिलती है, तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि फसल संरक्षण किस तरह से और बेहतर तरीके से किया जा सकता है अगर हम जीआई टैगिंग कर लेते हैं तो।
2: देखिए अदिति, बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग कोई भी उत्पाद का जीआई टैग ले लेते हैं, लेकिन ये उससे भी महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए कि उस जीआई टैग को हम कैसे संभाल कर रखें
0: जी,
2: और कैसे उस उत्पाद के साथ आगे बढ़ें। क्योंकि यदि हम उस टैग का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा टैग लेने का कोई विशेष लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जैसे हमने बासमती का जीआई टैग लिया, हम पूरे विश्व में बासमती चावल जो है लोगों को खिलाते हैं और लोग पसंद करते हैं। उसमें विशेष अरोमा है, उसकी एक अपनी लेंथ है, उसकी एक ब्रेड्थ है, उसमें जो बायोकेमिकल जो बासमती के साथ जुड़े हुए हैं, जो कुदरती रूप में जैसे जैसे जिन जिन इलाकों में बासमती होता है उनमें वो होगा ही होगा। तो हमें ये भी पक्का सुनिश्चित करना है कि वो सारी जो क्वालिटी, वो जो मानक जिनको हम कहते हैं या स्टैंडर्ड हम कहें, वो स्टैंडर्ड बासमती उत्पाद जो हमारा निकले, हमारे किसानों द्वारा पैदा किया हुआ बासमती, वो सारे के सारे मानक उसमें पूरे हों। यदि वो मानक पूरे नहीं होंगे तो अगर मान लीजिए कल को हमने कोई बासमती के नाम पर हमने चावल भेज दिया यूके में और वहां लोगों ने देखा, या जो हमारे कंज्यूमर हैं वो बड़े समझदार हैं, कंज्यूमर को अगर कल को पता लगेगा नहीं ये तो बासमती जैसा नहीं है, तो इसलिए हमारे किसान भाइयों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब वो कोई भी उत्पाद, वो बासमती हो या कोई अन्य जीआई टैग उत्पाद हो, जब वो उसका उत्पादन करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम मानक के अनुरूप उत्पादन करें
0: जी।
2: और यदि हम मानक के अनुरूप उत्पादन करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसका एक अच्छा मूल्य मिलता है, अच्छा भाव मिलता है, उसके एक्सपोर्ट करने में कोई समस्या नहीं आती है और किसानों के रूप में अगर हम बात करें तो हमारे लिए सब अच्छा ही अच्छा है, मालामाल है।
0: बिल्कुल, तो मानक के अनुरूप यहाँ पर उत्पादन करना बहुत जरूरी है। ऐसे में ही उपभोक्ता जो है ज्यादा से ज्यादा उस हम कह सकते हैं उत्पाद का खरीदेंगे या फिर सेवन भी करेंगे। तो ऐसे में डॉक्टर बजाज आपसे जानना चाहेंगे, जीआई टैगिंग हो गई है लेकिन उन मानकों के अनुरूप उसका उत्पादन नहीं हो रहा है, इस अवस्था में क्या होगा?
3: बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा दी थी, क्योंकि जीआई टैग लेना ही खाली जी काफी नहीं है। अब उसके बाद जैसे बासमती, तो चलो उदाहरण हम बार बार दे रहे हैं, दार्जिलिंग चाय का भी उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि पहले से ही बहुत वॉल्यूम में उसकी उपलब्धता है
0: जी।
3: ऐसे कई उत्पाद हैं जिनकी हमारे पास है तो सही, जीआई टैग भी ले लिया हमने, लेकिन उतना जो है उसकी वॉल्यूम में उपलब्धता नहीं है और उपलब्धता अब उसकी होनी चाहिए। तो इसलिए जरूरी है कि हम सब एक, जो भी उस क्षेत्र के जो किसान हैं वो अब एकजुट हों, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब इसका जो है एक भौगोलिक पहचान हो गई है उत्पाद की, तो उसके साथ जुड़े किसान या किसान जो उनके साथ हैं जो प्रोसेसिंग में भी जा रहे हैं, क्योंकि खाली फसलों का ही या उन्हीं का ही जीआई टैग नहीं होता, जो प्रसंस्कृत उत्पाद हैं उनका भी जीआई टैग होता है, तो उनके साथ जो जुड़े हुए हैं वो एक क्लस्टर अप्रोच में चलें जिससे कि वो मिलकर एक वॉल्यूम दे सके, क्योंकि जब तक वॉल्यूम नहीं आएगा थोड़े थोड़ी चीज से उसका कोई लाभ नहीं होगा। कई ऐसे उत्पाद हैं जो महीने में, साल में एक महीना होते हैं और उसको बेच दिया और 12 महीने उसको खत्म हो गया, उसको कोई लाभ नहीं है। तो सबको मिलकर क्लस्टर अप्रोच लेके चलना है और एक एफपीओ बनाकर, एफपी

0: भी हम बेच पाएंगे, उससे जब कॉस्ट कम आएगी, ज्यादा हमारा बिक्री होगी, तो उसका लाभ जो है वो नीचे तक जाएगा। बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने वॉल्यूम को बढ़ाएं, कॉस्टिंग को ध्यान रखें और अपनी जो एक विशेष पहचान है उसको बनाए रखें। उसके अलावा जो हमारी जो जीआई टैग को अगर इन्फ्रिंज करने की कोशिश कर रहा है उसको भी बचाने की पूरी कोशिश करें। ये एक तरह का ट्रेडमार्क है आपका, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये मेरी चीज है जिसको मैं या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे।
1: बिल्कुल, तो इस बात का भी जरूर यहां पर ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, राजेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपने बताया कि ऑथेंटिसिटी यहां पर हो जाती है जब हम जीआई टैगिंग कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी उपभोक्ताओं के मन में ये सवाल रहता है कि क्या ये सच में कश्मीर का शॉल है, क्या ये सच में लखनऊ का आम है। ऐसे में क्या कह सकते हैं आप हमारे उपभोक्ताओं को कि किस तरह से ऑथेंटिसिटी यहां पर प्रूव हो?
2: जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, कश्मीरी कारपेट्स में क्यूआर कोडिंग एक वन ऑफ दी मींस चूज किया गया है, जिससे कंज्यूमर अपने आप ही ऑथेंटिकेट कर सकता है कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है या नहीं। ये प्रॉब्लम आती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, जैसे दार्जिलिंग टी है या बासमती राइस है या अल्फोंसो मैंगोज है, उसमें ऑथेंटिसिटी का प्रूफ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, जैसे एरोमेटिक राइसेस हैं, एरोमेटिक राइसेस एक जैसे ही लगते हैं, और ये समस्या जो है हमारे सामने आई थी 1998 में। एक यूएस की कंपनी राइस टेक, उसने पेटेंट लिया और उस पेटेंट में ये कहा गया कि बासमती राइस जो है कोई नेचर का गिफ्ट नहीं है, इसको कहीं भी रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। तो उन्होंने एक राइस अपने हाइब्रिडाइजेशन से बनाया, उसकी क्वालिटी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही थी जैसे बासमती राइस की होती है, एरोमेटिक लॉन्ग ग्रेन, और उन्होंने कहा कि ये राइस जो है हम यूएस में ही ग्रो करेंगे। तो उस पेटेंट से हिंदुस्तान काफी रैटल्ड हो गया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें एपीडा और सीएसआईआर का बहुत रोल था, उन्होंने वो एप्लीकेशन फाइल की, रेवोकेशन की यूएसपीटीओ के सामने। और ये प्रूव किया कि ये जो प्रोडक्ट है बासमती राइस, ये यहीं प्रोड्यूस हो सकता है, इसमें कुछ क्वालिटीज हैं जो नेचर ने दी है और उसको जो है कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, और इस एफर्ट की वजह से वो पेटेंट जो है रिवोक हो गया, वहां की अथॉरिटी ने, वहां के कोर्ट ने उसको रिवोक कर दिया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो प्रोटेक्शन है उसको इस तरह से डिफाइन करें कि हम एनफोर्स भी कर सकें। टर्मरिक पाउडर का एग्जांपल आता है, उसमें भी ऐसा ही हुआ था, यूएस कंपनी ने उसको पेटेंट किया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको जो है रिवोक किया। तो उसमें ट्रेडिशनल नॉलेज की जरूरत पड़ी हमें, हमें ये प्रूव करना पड़ा कि जो टर्मरिक पाउडर है हमारा, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन का पार्ट है, ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, और उसको कोई भी जो है उस पर पेटेंट नहीं ले सकता।
1: तो बिल्कुल, तो ये सब हम कह सकते हैं कि ऑथेंटिसिटी प्रूफ यहां पर होता है, लेकिन यहां पर जीआई टैगिंग जो करवाते हैं उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि मानकों का ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़े। अब हम निर्यात की यहां पर फिर से एक बार बात कर लेते हैं, डॉक्टर बजाज आपके पास आना चाहेंगे। हम एपिडा की बात करते हैं, तो कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए शीर्ष संस्थान माना जाता है। जीआई टैगिंग होने के बाद निर्यात में किस तरह का बदलाव देखते हैं आप लोग, इस पर क्या कहेंगे हमारे किसान ताकि ज्यादा से ज्यादा इस ओर बढ़ सके, इसके लिए हम जानना चाहेंगे।
0: अब एपिडा पूरा निरंतर प्रयासरत है कि जो भी जो जीआई टैग है, जो भौगोलिक पहचान के उत्पाद हैं, उनका अधिक से अधिक निर्यात किया जा सके, और निर्यात बढ़ भी रहा है। वैसे मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं, हम लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं, दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में निर्यात हो रहा है, और लगभग हर साल ये निर्यात जो है वृद्धि की ओर ही जा रहा है। पिछले साल तो हमने करीब 29% की वृद्धि दी इसमें।
1: बिल्कुल, बहुत ही बड़ा बदलाव हम कह सकते हैं, सकारात्मक बदलाव यहां पर हो रहा है। बिल्कुल, बताएं क्या कह रहे थे आप।
0: तो भौगोलिक पहचान के जो उत्पाद हैं उसके लिए हम लोगों ने एक विशेष अभियान चलाया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि जो भौगोलिक पहचान के हमारे उत्पाद हैं, जैसा मैंने कहा तुल्य भारत की अमूल्य निधि है ये हमारी, तो इसका लाभ जो है वो जो उसके हकदार हैं उन तक मिलना चाहिए, और जो उपभोक्ता हैं उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए कि वो भी इसका उपयोग कर सके। तो एक विशेष अभियान चलाया हम लोगों ने, हम बायर सेलर मीट कर रहे हैं, क्रेता विक्रेता सम्मेलन कर रहे हैं, हम यहां से जो है उत्पादों को ले जाकर उनका विशेष जो है वो प्रमोशन कर रहे हैं दुनिया भर में, जिससे कि लोगों को बताएं कि ये

0: विशेष जो उत्पाद है ये सिर्फ हिंदुस्तान में एक विशेष क्षेत्र का ही उत्पाद है, हर जगह से नहीं मिल सकता है। तो एक अच्छी एक जो है वो खरीदार को भी अच्छा लगता है उसको खरीदने में, और उसका लाभ भी उसको मिलता है। विशेष अभियान चल रहा है, बहुत प्रमोशन हो रहा है, और बैकवर्ड लिंकेज जैसे मैंने कहा उस तरफ हम काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसका वॉल्यूम मिले, उत्पादन हो, और बहुत जरूरी है कि उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो बनी रहे, इस तरफ भी ध्यान रखते हैं। और बहुत जरूरी है कि अगर जीआई ले लिया तो उसका प्रोटेक्शन भी रखना है, ये ना हो कि मैं तो जीआई लेके बैठ गया और दूसरा कोई जो है उसी उत्पाद को जो है उसी नाम से बेच रहा है, ये भी नहीं होने देना, इसको भी हम लोग प्रयास रहे।
1: बिल्कुल, तो अतुल्य भारत की अमूल्य निधि है, बिल्कुल इस ओर हमें बिल्कुल ध्यान देना है। निर्यात लगातार बढ़ रहा है, जैसा कि डॉक्टर बजाज ने बताया है कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, फायदा हो रहा है हमारे देश को, हमारे देश की एक अलग पहचान बन रही है विश्व स्तर पर। तो ऐसे में हम सभी को इस ओर भी खास ध्यान रखते हुए आगे अपने कदम बढ़ाने होंगे। हम भी फिलहाल बढ़ते हैं आगे, और यहां पर मैं डॉक्टर शर्मा का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर शर्मा, अगर हम पूरे देश की बात करते हैं तो जीआई टैगिंग बहुत सारे उत्पादों की हुई है, लेकिन खास तौर पर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में ज्यादा ऐसे उत्पाद देखने को मिलते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी के क्षेत्र के जो किसान हैं, जो लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा?
2: देखिए, ये निश्चित रूप से आदित्य आपकी बात सही है, और हमारे उत्तर भारत के जो किसान हैं उनको भी ये जरूरत है कि वो भी जैसे हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड है, वहाँ छोटे छोटे कई ऐसी उत्पाद हैं जिनको आगे लाके उनको जीआई टैगिंग करा के उनके उत्पादन को बढ़ा के और उनको एक बड़ा बाजार दिया जा सकता है। और उसके लिए ये जरूरी है कि वहाँ जो छोटे समूह हैं, हमारे जो किसान समूह जिनको आजकल पूरे भारत सरकार और पूरी राज्य सरकार भी जिनको पूरा महत्व देते हैं, और उनके माध्यम से किसानों तक पहुंचने का एक प्रयास है, तो ये किसान समूह एक बहुत बड़ा रोल इसमें कर सकते हैं, जो हमारे किसानों को बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर लाके, और जो हमारी इस तरह की जो छोटे छोटे प्रोडक्ट है उनको, जैसे कि बजाज साहब ने कहा कि इसमें जल्दी से अपना ये प्रयास करें किसान लोग, अगर कोई उत्पाद उनके आसपास के एरिया में, उनके जिले में, उनके तहसील में, या कोई जरूरी नहीं है, कुछ हो सकता है कुछ 10-12 गांव ही हो जहां पे वो विशेष रूप से वो कोई उत्पाद होता है, वो उत्पाद फल का हो सकता है, वो उत्पाद किसी सब्जी का हो सकता है, वो उत्पाद किसी अन्न का हो सकता है। जैसे अगर आप आपकी सूचना के लिए मैं बताऊं, एक भालिया गेहूं है, अब वो भावनगर जिले के थोड़े से कुछ एरिया में भालिया गेहूं के नाम से उसका बहुत बड़ा महत्व है, उसकी जो क्वालिटी है वो बड़ी अलग है। तो ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए हमें कोई बहुत बड़ा, हाँ बाद में अगर हमें उसको एक्सपेंड करना है, उसका निर्यात करना है, तो वाकई में हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादकता को ज्यादा लाना पड़ेगा, लेकिन जीआई करने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने आसपास हमारे किसान भाई खास तौर पर और जो हमारे किसान समूह है वो ये सुनिश्चित करें अपने आसपास के एरिया में यदि कोई विशेष उत्पाद है तो उसको जीआई के लिए आगे लेकर आए, ताकि कालांतर में आने वाले समय में वो उसका पूरा लाभ उठा सके।
1: बिल्कुल, तो जैसे आपने अभी उदाहरण दिया कि भावनगर का एक भालिया गेहूं है, अगर हमारे किसान उस छोटे से क्षेत्र में ही, उस दायरे में ही ना रहकर विश्व स्तर पर उसे बढ़ाना चाहते हैं तो जीआई टैगिंग की ओर बढ़ सकते हैं। देखिए, इससे न केवल आपके क्षेत्र को एक पहचान मिलेगी, पूरे विश्व स्तर पर हम कह सकते हैं कि हमारे देश को एक अलग पहचान मिलेगी, और साथ ही साथ फायदा पूरे देश को होगा, आपको भी होगा। तो जीआई टैगिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अब हमारे किसानों को ये समझने की जरूरत है।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
4: आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।
1: जीआई टैगिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपके क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरे देश को विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलवा सकती है। इसके लिए अब हम सभी को आगे बढ़ना होगा। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, हमारे विशेषज्ञ यहां पर उपस्थित हैं, आइए उनसे और जान लेते हैं। ऐसे में हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैं जानना चाहूंगी यहां पर डॉक्टर बजाज से। डॉक्टर बजाज, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि जीआई टैगिंग जो है प्रसंस्कृत उत्पादों की भी की जा सकती है। अभी तक किसान अलग अलग उपज की यहां पर जीआई टैगिंग कर रहे थे, लेकिन अगर प्रसंस्कृत उपज यहां पर लेकर आते हैं, उत्पाद लेकर आते हैं, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया कोई अलग है या फिर वही प्रक्रिया रहेगी?
0: वही प्रक्रिया
1: जी।
0: जैसे मिठाइयां हैं, कई हमारी विशेष मिठाइयां हैं, उनका जीआई टैग है। बहुत सी ऐसी मिठाइयां जिनका तो जीआई टैग हुआ ही नहीं है, और बहुत सी जरूरत है, क्योंकि ऐसी विशेष जगह चीजें हैं जिनका हम लोग अब जानते हैं। हम रोजमर्रा में बात करते हैं कि उस जगह की ये चीज बड़ी मशहूर है, वहां जाके हम लोग जरूर खाएंगे, टेस्ट करेंगे। तो ऐसी बहुत सी मिठाइयां हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि उस क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई हैं, उसकी प्रतिष्ठा है, अलग से प्रतिष्ठा है, उनको जो है वो जीआई टैग की आवश्यकता है। और जब जीआई टैग हो जाता है तो सबसे पहली तो एक मेरे को एक सेटिस्फेक्शन होगी कि अब ये उत्पाद मेरे ही क्षेत्र का, हमारे ही क्षेत्र का है, और उसको जो है जो भी आएगा हम कह सकते हैं कि ये हमारा उत्पाद है, इसी क्षेत्र विशेष से मिलता है। तो जो भी उपभोक्ता आ रहा है वो उस चीज को खरीदने में उसे भी सेटिस्फेक्शन होगी और हमें बेचने में आसानी होगी। और उसके बाद जो है वो हम लोग उसका प्रमोशन कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं कि ये उत्पाद इस जगह का है, विशेष जीआई उत्पाद है।
1: जब एक अलग पहचान मिल जाएगी तो उसके दाम भी काफी अच्छे मिलेंगे, तो इससे फायदा ही फायदा हमें सामने नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में कई तरह के कुछ बाधाएं भी होती हैं, तो राजेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। उपभोक्ताओं के साथ अगर किसी भी तरह का कोई धोखाधड़ी हो जाए या फिर ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो ऐसे में क्या किसी तरह का कोई कानूनी प्रावधान भी है?
4: बिल्कुल, हमारी जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट के अंदर सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज दोनों हैं
1: जी।
4: उसमें जो जीआई ओनर होता है, जो कस्टोडियन होता है, उसको राइट दिया गया है कि वो कोर्ट में जाके एक इन्फ्रिंजमेंट एक्शन फाइल करे, और उसमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बड़ा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट माना जाता है। और इन्फ्रिंजमेंट के भी काफी फॉर्म्स होती हैं कि एक प्रोडक्ट जो कि जीआई प्रोडक्ट नहीं है वो मार्केट में पास ऑफ कर रहा है एज ए जीआई प्रोडक्ट। तो वो जैसे बनारसी साड़ी का एग्जांपल है, बनारसी साड़ी जैसे मेड इन चाइना हिंदुस्तान में बिक रही हैं, लेकिन बनारसी वो जो है बनारसी साड़ी के जीआई का इन्फ्रिंजमेंट होगा, और उसमें जो है सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और क्रिमिनल रेमेडी भी जो है अंडर द एक्ट काफी स्ट्रिक्ट है, इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस मानी गई है। उसमें जो है पुलिस जो है विदाउट एनी एनेबलिंग पावर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट वो अरेस्ट भी कर सकती है, इसमें ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो हमारा जीआई एक्ट काफी स्ट्रांग है और काफी मॉडर्न है, और उसमें जो प्रोविजंस हैं अगर जीआई ओनर उनको एनफोर्स करे तो हमारे कोर्ट्स जो हैं काफी फोर्थ राइट है। इनफैक्ट एक एग्जांपल दूंगा, स्कॉच विस्की एसोसिएशन हिंदुस्तान में 1980 से इन्फ्रिंजमेंट एक्शन फाइल कर रही है, और उन्होंने जो है एक तरह से बॉडी ऑफ केस लॉ बनाई है। अगर हम जीआई लॉ के बारे में हिंदुस्तान में देखते हैं तो SWA स्कॉच विस्की एसोसिएशन ने जो कंट्रीब्यूट किया है केस लॉ, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो आज तक बहुत यूजफुल रहा है।
1: जी बिल्कुल, तो काफी यहाँ पर देखिए कानूनी प्रावधान भी हैं, अगर किसी भी तरह का कोई ऐसा धोखाधड़ी भी हो रही है तो आपको यहाँ पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल सहयोग के लिए हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। बिल्कुल, जीआई टैगिंग लगातार हम आपको बता रहे हैं कि फायदेमंद साबित हो सकती है हमारे संगठनों के लिए, हमारे किसानों के लिए, एक क्षेत्र की एक नई पहचान बनाने के लिए। तो अंतिम सवाल मैं तीनों से ही एक बार लेना चाहूंगी, उनकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। डॉक्टर शर्मा, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, किसानों की आय को दोगुना करने में ये जीआई टैगिंग किस तरह से फायदेमंद साबित होगी?
2: देखिए अदिति, ये बहुत ही अच्छे बात आपने उठाई, क्योंकि भारत सरकार विशेष रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बार बार इस बात को इंगित करते हैं कि हमें किसानों की आय को बढ़ाना है
1: जी।
2: उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी उत्पाद वो करें वो एक सिस्टमेटिक तरीके से हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो
1: जी,
2: और अगर वो जीआई टैग है तो निश्चित रूप से उनकी आय में वृद्धि होगी होगी
1: जी।
2: लेकिन किसी भी जीआई उत्पाद का जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके मन में, उनके दिमाग में उस जीआई उत्पाद के बारे में सही बात बैठना बहुत जरूरी है
1: जी।
2: और इसके लिए मैं कहूंगा कि हमारा जो ट्रेसिबिलिटी सिस्टम है
1: जी,
2: वो एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान करता है। किसी भी उत्पाद का अगर हम हमारे कंज्यूमर तक
1: जी,
2: उसको ट्रेसिबिलिटी से बता पाएं कि देखिए ये उत्पाद है, ये यहां से चला, यहां पैदा हुआ
1: जी,
2: और उसके बाद यहां गया और उसका यहां प्रोसेसिंग हुई, यहां पैकिंग हुई और यहां जाके वो कंज्यूमर के तक पहुंचा, अगर हम ये निश्चिंतता अगर हम अपने कंज्यूमर को दे पाए
1: बिल्कुल,
2: तो निश्चित रूप से
1: वो खरीदेगा ही, लाभ सीधा हमारे किसानों को मिलेगा। बिल्कुल राजेंद्र जी, आपसे भी हम टिप्पणी लेना चाहेंगे, किसानों की आय को दोगुना करने में जीआई टैगिंग किस तरह से फायदेमंद साबित होगा।
4: मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि जो प्रोडक्शन है अगर हम इंक्रीज करने पे फोकस करेंगे
1: जी,
4: उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज न की जाए
1: जी,
4: क्योंकि जीआई प्रोडक्ट्स जो हैं हिंदुस्तान की इमेज है वर्ल्ड में, अगर हम क्वांटिटी के पीछे भागेंगे और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो बदनाम हमारे देश का ही होता है। इसलिए दोनों क्वांटिटी एंड क्वालिटी को साथ साथ चलना बहुत जरूरी है, और इसीलिए जो है जीआई प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन इतनी हाई नहीं होती क्योंकि उनका रीजन लिमिटेड होता है,
1: पर क्वालिटी यहां पर बहुत
4: क्वालिटी
1: मायने रखती है।
4: गुणवत्ता
1: अगर अच्छी है आपके उत्पाद की तो निश्चित तौर पर आपको यहां पर अच्छा दाम मिलेगा ही मिलेगा, और जीआई टैगिंग हो गई है तो ये सोने पर सुहागा साबित हो जाता है। डॉक्टर बजाज, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे हमारे किसानों के लिए क्या संदेश है आपका।
0: सबसे पहले आपको उदाहरण दे दें, जैसे एक बलिया गेहूं की बात की गई जो घरेलू बाजार में बिकता है, प्रीमियम पे बिकता है, हमने एक्सपोर्ट किया और वो भी प्रीमियम पे किया, क्यों? क्योंकि वो जीआई टैग था, और जब प्रीमियम में बिका तो उसका लाभ जो है नीचे तक भी गया, सबको मिला, जो उसके उत्पादन कर रहे थे उनको भी उसका लाभ मिला। तो एक इसी तरह उदाहरण है, जीआई टैग होने पर उसका बेचना आसान है, हमें प्रीमियम मिलता है और एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ मैं जो एक चीज उगा रहा हूं ये विशेष है, ये दुनिया के और किसी कोने में ऐसी चीज उगती नहीं है या बनती नहीं है, ये हम ही हैं इसके निर्माता या इसको उगाते हैं, तो एक संतुष्टि भी मिलती है। आने वाली जनरेशन को भी हम कह सकते हैं कि ये चीज हमारी जनरेशन ने हमें दी है और हम आगे आपको जनरेशन को देने जा रहे हैं। प्रीमियम मिलता है, आय में वृद्धि तो अवश्य
1: होती है,
0: इसीलिए इसका बड़ा प्रमोशन करने की बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, तो जीआई टैगिंग देखिए कुल मिलाकर काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, आय में वृद्धि, एक विशेष पहचान, और अगर हम क्वालिटी पर ध्यान देते हैं तो और भी ज्यादा हमारे लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। बिल्कुल, तो देखिए जीआई टैगिंग की ओर आप अपने कदम जरूर बढ़ा सकते हैं, हमारी सरकार की ओर से भी यहां पर आपको पूर्ण सहयोग देने के लिए सभी तैयार बैठे हैं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भी 90.8 FM।
5: आपनो रेडियो आपड़ी बातें,
3: रेडियो टांटिया भी 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पूरी परिचर्चा, कितनी बड़ी परिचर्चा इस कार्यक्रम के माध्यम से, खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से हमने सुनी है और जाने हैं कि किस तरीके से जीआई टैगिंग की जाती है और किस तरीके फसलों में जीआई टैगिंग की जाती है, कौन कौन सी फसलें हैं जिसमें जीआई टैगिंग और किस तरीके से कानून क्या कहता है, सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने प्रस्तुत की है। हमें आशा है कि हमारे किसान साथियों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और इसका लाभ जरूर लेंगे, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से हम जीआई टैगिंग से लाभ ले सकते हैं, आने वाले समय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो ये सारी बातें हम कार्यक्रम खेतीबाड़ी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं, कोशिश करते हैं वो छोटी छोटी बातें हमारे किसान साथियों तक पहुंचे जो उनके लिए बेहद जरूरी है। तो यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे कृषि विस्तार अधिकारी साथ साथ में केबीके में जाकर वहां पर संपर्क कर सकते हैं। साथियों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का, आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
6: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
5: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
6: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
5: आपनो रेडियो आपड़ी वाते।
7: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

0: कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अब हमारे किसान साथी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अब हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो गई है और मध्यम गति से ये बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम विभाग क्या कहता है इस पर नजर डालेंगे। साथ साथ में साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज हम काफी विषयों पर बातचीत करने जा रहे हैं, जैसे कि कपास की खेती। चूंकि अगर देखा जाए झाबुआ जिले को देखा जाए तो यहाँ पर कपास की खेती का विशेष ध्यान दिया जाता है, किसान विशेष तौर पर इस खेती को करते हैं, कौन सा बीज होना चाहिए, कैसे इसको करना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। साथ साथ में मधुमक्खी पालन एक अच्छा व्यवसाय है तो हमारे किसान साथी इसको भी, मधुमक्खी पालन भी हमारे किसान साथी कर सकते हैं। साथ साथ में सफल किसान की कहानी पर भी हम एक नजर डालेंगे। लेकिन इन बातों से पहले हम साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि भारत का मौसम विभाग इस बार का क्या कहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जिसकी उत्तरी सीमा पोरबंदर बड़ौदा शिवपुरी रीवा चक्र से होकर गरज रही है और प्रदेश के चंबल संभाग के जिले तथा ग्वालियर दतिया नीमच मंदसौर रतलाम झाबुआ उज्जैन आगरा जिलों को छोड़कर प्रदेश के शेष जिलों में आ चुका है मानसून। आज अगर बात करें कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के नर्मदापुरम और भोपाल संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर शहडोल जबलपुर सागर ग्वालियर एवं उज्जैन संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर रीवा इंदौर एवं चंबल संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है। वर्षा के प्रमुख आंकड़े अगर देखा जाए तो छपारा गोहरगंज नागदा पचौर और परसवाड़ा अनूपपुर बहोरीबंद देवेंद्रनगर गुलाबगंज रायसेन खाचरोड और नर्मदापुरम में 5 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान ग्वालियर संभाग के जिलों में काफी गिरे और शेष संभागों में जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। ग्वालियर संभागों के जिलों के सामान से विशेष रूप से कम है और सागर संभागों के जिलों में सामान्यता काफी कम, इंदौर और उज्जैन संभागों में सामान्य, रीवा शहडोल और जबलपुर संभागों के जिलों में सामान से कम और शेष संभागों में जिलों में सामान्य वर्षा हो रही है। आपको बता देना चाहते हैं कहां पर किस तरीके की बरसात होने की संभावना बताई जा रही है, मौसम विभाग क्या कहता है। वर्षा या गरज चमक के साथ बौछार किन किन स्थानों पर होनी है। रीवा शहडोल सागर जबलपुर भोपाल नर्मदापुरम ग्वालियर चंबल इंदौर एवं उज्जैन संभागों के जिलों में संभावित है। आगामी 24 घंटों में भारी और मध्यम वर्षा कहां कहां होने वाली है। कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना बताई जा रही है, जहां पर डिंडोरी आएगा, बैतूल बालाघाट राजगढ़ रायसेन धार उज्जैन अनूपपुर मंडला एवं सिवनी जिलों में, और कहीं कहीं गरज के साथ बिजली चमकने और गिरने के अल्पकालीन तेज हवा की संभावना, उसमें रीवा शहडोल सागर जबलपुर भोपाल नर्मदापुरम ग्वालियर चंबल इंदौर एवं उज्जैन संभागों के जिले इसमें आते हैं। तो ये थी हमारे जानकारी जो अभी आप सुन रहे थे मौसम की। अगर झाबुआ जिले की बात करें तो अधिकतम तापमान आज का जो रहा है वो 37.1 डिग्री सेल्सियस रहा है, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। वर्षा अभी तक नहीं हुई है, बहुत कम हुई है। 1 जून से अभी तक जो वर्षा कुल आंकी गई है वो 15.9 मिलीमीटर आंकी गई है। तो ये मौसम आधारित जानकारी आपको हम दे रहे थे क्योंकि इस आधार से हमारे किसान साथी चुनाव कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें फसलों का चयन करना है। कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए हम कार्यक्रम में जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी कपास की खेती कर सकते हैं, साथ साथ में जानेंगे किस तरीके से हमारे किसान साथी मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। तो आइए इस रेडियो रिपोर्ट को हम सुनते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटा भील 90.8 FM, आप लो रेडियो अपनी बात है।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटा भील 90.8 FM, आप लो रेडियो अपनी बात है।
2: खेती किसानी में हम आपको बताएंगे कपास की खेती के बारे में। जी हाँ, कपास की अगर हम बात करें तो व्यवसायिक दृष्टि से इसका काफी महत्व है और इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। लेकिन कई तरह की बातें जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि कपास की अच्छी पैदावार हमारे किसानों को प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट।
3: कपास नकदी फसल है जो हमारे देश में सफेद सोना कहा जाता है। भारत में कपास की सबसे ज्यादा खेती गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में की जाती है। हमारे देश में देसी और बीटी दोनों ही कपास की खेती की जाती है। हालांकि बेहतर मुनाफे के लिए किसान आजकल बीटी कपास ज्यादा लगा रहे हैं। बीटी कपास में भी कई प्रजातियां लोकप्रिय हैं, जो स्थान विशेष के हिसाब से रोग और कीट प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं। इसकी खेती के बारे में विस्तार से बात करें तो इसकी बुवाई पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था होने पर मई माह में की जाती है। यदि सिंचाई का अभाव है तो किसान मानसूनी बारिश शुरू होने पर ही कपास की बुवाई करें। बुवाई से पहले मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरा कर लेना चाहिए। बुआई के लिए उन्नत जातियों का 2.5 से 3 किलोग्राम बीज जबकि संकर व बीटी जातियों का 1 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से ठीक रहता है। बुआई करते समय कतार से कतार और पौध

0: संकर किस्मों की बात करें तो 150 किलो नत्रजन, 75 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटाश, 25 किलो गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। इसके अलावा सड़ी हुई गोबर की खाद 7 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए अंकुरण के 15 से 20 दिन के अंदर डोरा चलाकर खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कृषि विशेषज्ञ की सलाह से खरपतवार नाशी का छिड़काव भी किया जा सकता है। फसल में सिंचाई की बात करें तो शाखाएं निकलने की अवस्था व 45 से 50 दिन पर, फूल व फल बनने के दौरान 75 से 85 दिन पर, इसके बाद 95 से 105 दिन की फसल होने पर और 115 से 125 दिन की फसल होने पर सिंचाई करनी चाहिए। यदि किसान टपक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो करीब 70% पानी की बचत की जा सकती है, साथ ही खरपतवारों और कीटों पर नियंत्रण भी आसान हो जाता है। कपास की फसल में चुनाई का काम बहुत विशेष होता है। देसी व उन्नत जातियों की चुनाई खासकर नवंबर से जनवरी फरवरी तक, संकर जातियों की अक्टूबर नवंबर से दिसंबर जनवरी तक, बीटी किस्मों की चुनाई अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है। कपास की चुनाई करते समय किसान इस बात का ध्यान रखें कि चुनाई ओस सूखने के बाद ही करें, गीले घेटों की चुनाई ना करें। चुनाई करते समय कपास के साथ सूखी पत्तियां, डंठल ना आए। चुनाई के बाद कपास को धूप में सुखा लेना चाहिए। कपास को सुखाकर ही भंडारित करें, क्योंकि नमी होने पर कपास पीला पड़ जाएगा व फफूंद भी लग सकती है, लेकिन कुछ जरूरी सावधानी अपनाकर कपास का बेहतर उत्पादन कर मुनाफा कमाया जा सकता है।
1: ये हमारा पशुधन पर, पशुधन में आज हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। जी हाँ, सरकार भी मधुमक्खी पालन को काफी प्रोत्साहित कर रही है और आज के समय में युवाओं के बीच में भी काफी लोकप्रिय हो रहा है। खास बात यह है कि मधुमक्खी पालन से न सिर्फ किसानों की आय में वृद्धि होती है बल्कि साथ ही साथ उनकी फसलों में भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो कैसे करें मधुमक्खी पालन और कौन कौन सी विशेष बातें जिसका ध्यान रखना जरूरी है, आइए डालते हैं नजर।
0: हमारे देश में मधुमक्खी पालन के कई फायदे हैं। इससे जहां परागण में सहायता मिलती है वहीं अतिरिक्त आय भी होती है। हाल के कुछ वर्षों में मधुमक्खी पालन में खासी दिलचस्पी बढ़ी है, जिससे भूमिहीन किसानों के सामने रोजगार के कई अवसर पैदा हुए हैं। मुनाफे की ओर ले जाने वाले इस व्यवसाय में मधुमक्खी पालकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो लाभ के साथ साथ मधुमक्खी का भी ख्याल रखें, जिससे उनकी घटती संख्या में कमी लाई जा सके। मौजूदा समय में तापमान में हो रही बढ़ोतरी के साथ कुछ खास प्रबंधन करने होते हैं, जिससे मधुमक्खियों को अनुकूल वातावरण मिल सके। तो इस समय कौन से हैं वो खास बिंदु, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की राय।
2: गर्मियों का मौसम है, मधुमक्खी पालक के लिए जरूरी है कि कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखे ताकि मधुमक्खी पालक अच्छे से मधुमक्खियों का देखभाल कर सके और अच्छे से उनको लाभ मिल सके। सबसे जरूरी है क्योंकि गर्मी का समय है, इस समय जो तापमान है वो 40 के ऊपर है, तो इसलिए जरूरी है कि मधुमक्खी पालक जो मधुमक्खियां हैं उनको ऐसे स्थान पर रखें जहां फूल यानी के फ्लोरा हो। इसके लिए इस समय जो है सीसम, जहां सीसम हो, नीम हो, जामुन हो, यूकेलिप्टिस हो या इसके अलावा मल्टी फ्लोरा हो, तो वहां मधुमक्खी को अपने उस स्थान पर रखना चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि गर्मी का समय है तो पीने के पानी, स्वच्छ पीने का पानी मधुमक्खी के लिए जरूर होना चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि ऐसे स्थान पर मधुमक्खी को रखें जहां छाया हो, क्योंकि इस समय लू और गर्मी ज्यादा है तो उससे बचाव के लिए जरूरी है कि उनको ऐसे स्थान पर रखें जहां ऊपर पेड़ पौधे उसके आसपास हो। और इसके लिए जरूरी है कि कहीं कहीं अब इस समय फ्लोरा की कमी है तो उनको भोजन के रूप में आर्टिफिशियल भोजन दें। इसके लिए एक भाग पानी और एक भाग चीनी दोनों का घोल बनाकर एक चाशनी तैयार कर लें। उस चाशनी को ठंडा होने के उपरांत फीडर की सहायता से किसान भाई यानी कि मधुमक्खी पालक आदि मधुमक्खियों में इस भोजन को दें। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि गर्मी का मौसम थोड़ा और भी बढ़ सकता है, टेम्परेचर और भी बढ़ सकता है, तो जो टाट के बोरे होते हैं उन टाट के बोरे को जो बॉक्स है मधुमक्खी के उसके ऊपर डाल देना चाहिए। साथ ही साथ दो या तीन बार उनको गीला करना चाहिए दिन में, ताकि जो बॉक्स का तापमान है वो सामान्य बने रहे और मधुमक्खी को ज्यादा दिक्कत ना हो। साथ ही साथ ये भी जरूरी है, ये भी ध्यान रखें कि इस समय मधुमक्खी पालक को मधुमक्खी का विभाजन नहीं करना चाहिए।

0: चाहिए। अगर कमजोर मधुमक्खी है, बॉक्स कमजोर है, परिवार भोग कम है, तो ऐसे समय पर उनको विभाजन नहीं करना चाहिए।
1: गर्मी के मौसम में पर्याप्त फूल नहीं होते, जिससे मधुमक्खियों को भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में मधुमक्खी पालकों को चाहिए कि उनके कृत्रिम भोजन की व्यवस्था करें। इसके लिए क्या करें, जानते हैं विशेषज्ञ से।
0: तो स्थान का चुनाव करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखना है मधुमक्खी पालक को।
1: ये तो बात हो गई मधुमक्खियों के भोजन की, अब बात कर लेते हैं उनकी सुरक्षा की। इस समय अन्य कीटों से उन्हें कैसे सुरक्षा दी जाए, आइए जानते हैं।
0: मधुमक्खी पालक ये देख ले कि ऐसे स्थान का चुनाव इस समय करे कि जहां फूल यानी कि फ्लोरा हो, वैसे स्थान पर मधुमक्खियों का स्थानांतरण कर दे। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि पहले से वहां स्थान आपका होना चाहिए कि पानी वहां है, अच्छा पीने के लिए स्वच्छ पानी है, आसपास जो है कोई हाईवे रूट तो नहीं है, साथ ही साथ कोई किसी तरह की पेस्टिसाइड, क्योंकि आजकल जो फसलें हैं अधिकतर किसान भाई पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, तो ये भी देख लें कि अधिकतर वहां ज्यादातर किसान कीटनाशियों का अधिक प्रयोग ना करते हो, और करते भी हो तो ये भी शोध कर ले कि किस कीटनाशी या फंजीसाइड का किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब मक्खी होती है तो वो फूल के पास जाएगी, उससे फूल से रस चूसेगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो केमिकल होता है उसका इफेक्ट मधुमक्खी के में आएगा, वो धीरे धीरे उससे उसकी जो है मोर्टिलिटी होने की भी संभावना बनी रहती है।
1: इस तरह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर किसान और मधुमक्खी पालक उनकी सुरक्षा भी कर सकते हैं और उनकी संख्या में इजाफा भी। HS और BQ टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डीवॉर्मिंग कर देनी चाहिए। ऐसा करने से टीकाकरण प्रभावी हो जाता है। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में लगाई गई ज्वार फसल पशुओं को ना दें, इस समय ये हानिकारक हो सकता है। बरसात के मौसम में हरे चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार व मक्का की बुआई करें। हरे चारे की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करें। जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसीलिए पशु के लिए अलग से शेड बनाएं। इस समय पशु को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन दें। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। यदि पिछले माह भेड़ के ऊन कतरने का कार्य ना किया हो तो इस माह कर लें।

0: किसानों को पशुओं की खरीद और बिक्री में मदद मिले और किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हो, इसके लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना लागू किया, जिसके तहत गाय और भैंस की महत्वपूर्ण नस्लों के दुग्ध उत्पादन का रिकॉर्ड करके पशु पंजिका में लिखा जाता है। इस कार्यक्रम में उन्नत नस्ल के पशुओं के प्रमाणीकरण और पशुओं के उत्पादन का लेखा जोखा लिखा जाता है। पशु पंजीकरण योजना के उद्देश्य इस प्रकार है। पंजीकरण के माध्यम से बेहतर जर्म प्लाज्म यानी उच्च कोटि की आनुवांशिकी का पता लगाना, प्रजनन क्षेत्र में पशुओं का व्यवस्थित दुग्ध अभिलेखन शुरू करना, पशु चुनाव के लिए दुग्ध अभिलेखन कार्य को बढ़ावा देना, सभी पंजीकृत किए हुए पशुओं के इकट्ठे किए हुए आंकड़ों को प्रकाशित करना ताकि पशु पालकों का मार्गदर्शन हो और पशुओं को खरीदने व बेचने में इसका योगदान मिले। पशुओं की खरीद बिक्री और आयात निर्यात को नियंत्रित करना ताकि उनकी गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सके तथा आयात व निर्यात के लिए स्तर निर्धारित किया जा सके। पशु पालकों को योजना के बारे में जागृत करना और जानकारी देना ताकि पशुओं के सुधार में उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना में पशु पंजीकरण पुस्तक होती है, इसमें उन पशुओं की सूची रखी जाती है जो कि पशु पंजीकरण पुस्तक के नियम व नियमावली पर खरे उतरते हैं। इस पंजीकरण के तहत पंजीकृत पशु पालकों को प्रोत्साहन राशि तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं, जो पशु पालकों को पशु खरीदने तथा बेचने में मदद करते हैं। अब सवाल ये है कि इस योजना के तहत सुविधा का लाभ कैसे उठाया जाए। ये सुविधा देसी गाय व भैंसों के लिए है। इस सुविधा का लाभ गौशाला और अभिलेखन केंद्र के आसपास के पशु झुंड उठा सकते हैं। पंजीकृत पशुओं का ब्यौरा कंप्यूटरीकृत होता है। पशु पालकों तक योजना को आसानी से पहुंचाने के लिए दुग्ध अभिलेखन केंद्र पशु चिकित्सालय पर रखा जाता है। खास बात ये है कि पशु पंजीकरण इकाइयां दुग्ध अभिलेखन योजना को समयबद्ध विस्तार के लिए प्रशिक्षण भी देती है। गौरतलब है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हरियाणा में गाय और मुर्रा भैंस के लिए संयुक्त रूप से एक यूनिट 1962 में रोहतक में स्थापित की गई। ये इकाई हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों में संचालित है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गिर व कांकरेज गाय और सूरती भैंस के लिए एक इकाई अहमदाबाद में स्थापित की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंत में दो और इकाइयां एक आंध्र प्रदेश में और एक राजस्थान में स्थापित की गई। इस प्रकार चार इकाइयां रोहतक हरियाणा, अहमदाबाद गुजरात, पोंगल आंध्र प्रदेश और अजमेर राजस्थान में चल रही है। पशु पालक स्थानीय केवीके या कृषि विभाग से संपर्क कर केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भी 90.8 FM।
2: आप लो रेडियो आपड़ी बातें।
3: अब नई चीज हम जान लेते हैं क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों को हम वही चीजें बताते रहते हैं, वही बातें सुनाते रहते हैं। आज कुछ नया करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अब कि सीप की खेती, जो मोतियों की खेती रहती है, वो किस तरीके से होती है। ये भी एक व्यवसाय है हमारे किसान साथियों के लिए, नई चीज है। आइए जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मोतियों का खेती कर सकते हैं। लेकिन साथियों, इनसे बातचीत करने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं प्यारे से गीत को।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और साथियों, अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी मोतियों की खेती कर सकते हैं, कैसे इसका प्रशिक्षण, कहाँ प्रशिक्षण मिलेगा, इसकी सारी जानकारी इस सेगमेंट में सुनते हैं।
1: भारत में मोतियों का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे हम सरल भाषा में सीप पालन या मोती की खेती कहते हैं। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप में बनता है। जब सीप में कोई बाहरी पार्टिकल जैसे मिट्टी के कण या कोई सूक्ष्म जीव चला जाता है, तो वो उसे बाहर निकालने के लिए एक तरल छोड़ती है। ऐसे ही धीरे धीरे उस कण पर सीप परत दर परत एक चमकदार कोटिंग बना देती है और फिर एक निश्चित समय बाद यही मोती बन जाता है। सीप पालन को शुरू करने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन करना होता है, जहां सीप को आसानी से पाला जा सके। सीप को छोटे स्तर से घर में पाला जा सकता है, जबकि बड़े स्तर पर पालने के लिए तालाब की जरूरत होती है। इसके बाद किसान को सीप खरीद कर सीपों को खुले पानी में 2 दिन के लिए रखते हैं, जिससे धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती है। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दे। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है, तो वो उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है, जो मोती में बदल जाता है। सीपियों के प्रकार: लेमिनेनिस मार्जिलेनिस, लेमिनेनिस कोरियनस, पाइरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10x10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर यानी 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ पीठ के चारों ओर जमने लगता है, जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 माह बाद सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण की जानकारी ली जा सकती है।
0: अभी आपने हमारे किसान साथियों ने सुना कि किस तरीके से मोतियों का हम खेती कर सकते हैं, यानी हम मोतियों का जो खेती रहती है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे प्रशिक्षण लिया जाता है, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से जानी है। और भी बातें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम, यानी लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बनी रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बातें।

जब किसान की मेहनत सार्थक होती है तो खेतों में खुशी की तरंगे बिखरने लगती है और बंजर जमीन भी हरियाली की चुनर ओढ़ लेती है। वैसे तो राजस्थान की धरती को मरुभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के किसान प्रकृति का सीधा सामना करते हुए सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने कृषि का शायद ही कोई क्षेत्र छोड़ा हो जिसमें कामयाबी ना पाई हो। जयपुर राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर जहां देश के हर हिस्से से पर्यटक पहुंचते हैं। यहां से करीब एक घंटे की दूरी और 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आता है कालख गांव, जो पहचाना जाता है किसान गंगाराम सेपट के नाम से, जो सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म का संचालन करते हैं। उनके यहाँ जितनी भी पैदावार ली जाती है वो सभी जैविक तरीके से ली जाती है। गंगाराम कृषि के साथ साथ बहुत कुछ करते हैं, जैसे जैविक खेती, पॉली हाउस में खेती, पशुपालन, मछली पालन, जल संचय करना और सोलर पैनल लगाकर बिजली का इस्तेमाल कर खेती के हर कार्य को संपन्न कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आज वो जिस मकाम पर है उसके पीछे उनकी व उनके परिवार की मेहनत तो है ही, साथ ही सरकार का पूरा

0: सहयोग भी रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गंगाराम ने अपने कार्य क्षेत्र में इजाफा किया। आज उनके खेतों में हर तरह की फसलें लहलहा रही है, जिसमें विदेशी सब्जियां भी शामिल है। उनके खेतों की सब्जियां बड़े शहरों तक पहुंचाई जाती है, जिससे परिवार को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है।
1: ये राजस्थान में पानी की काफी कमी है, रेगिस्तान है, और इस वजह से हम लोग बरसात का एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। मेरे पास में पॉली हाउस है, पॉली हाउसों के ऊपर जितनी भी बारिश होती है उन सबको मैं पाइप के द्वारा मेरे फार्म पॉन्ड के अंदर लेके आता हूँ। फार्म पॉन्ड में जो साइज है मेरी 50x50 मीटर का, लगभग 75 लाख लीटर पानी इसके अंदर हम बरसात का पूरा पानी इकट्ठा करते हैं, और इसी के आधार पर पूरे साल भर हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके फार्म पॉन्ड के जो है भारत सरकार का जो स्कीम है NHM और NHB दोनों के द्वारा 50% सब्सिडी मिलती है। इसमें मेरे जो है इस फार्म पॉन्ड बनाने में 8,35,000 रुपया खर्चा हुआ था तथा सब्सिडी के रूप में मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। साथ ही फार्म पॉन्ड से जो पानी की सिंचाई करने के लिए मेरे पास में सोलर पैनल है, सोलर पैनल पे भी मैंने सब्सिडी ली है। 3 HP का इसमें भी मैंने कनेक्शन ले रखा है, और जिसमें 67,000 रुपए मेरे फार्मर शेयर के लगे हैं। साथ ही इसमें 1,32,000 रुपए मेरे अनुदान प्राप्त हुआ है। इस फार्म पॉन्ड के अंदर मैंने 7 प्रकार की मछलियां डाल रखी, जिसमें 3 प्रकार की देसी मछलियां हैं और 4 प्रकार की विदेशी मछलियां हैं, जो अलग अलग लेयर में अपना भोजन करती है। और देसी मछलियों में कटला है, रोहू है और मरगला है, और विदेशी में कॉमन कॉर्प है, गोल्डन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प है। इन मछलियों को हमारे पास में विशेष प्रकार के कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे खेत में जो भी विशेष पदार्थ होता है हम लोग मछलियों के लिए डाल देते हैं। इसके अलावा जो हमारे और भी कई बार क्या होता है, वेस्टेज पदार्थ कम होता है तो हम बाजरे का दाना और सरसों की खली मिलाकर इनको भिगोकर देते हैं, और जो मछलियों का वेस्टेज है वो हमारे खेत के लिए, हमारी फसल के लिए उर्वरक शक्ति बढ़ाने का काम करता है। और साथ ही हमारा जो पानी का EC और PH है वो मेंटेन करने का काम है। इसके अंदर अगर मछलियां नहीं डालेंगे तो इसके अंदर एल्गी आ जाती है, जो हमारे फिल्टर पंप को चोक कर देती है, इस वजह से इसको मछलियां डाली गई है। साथ ही मछलियों का जो है एक्स्ट्रा इनकम के बेचने पर हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी, तो ये हमारे साथ में इंटीग्रेट फार्मिंग का एक अच्छा उदाहरण है। मैं सभी युवा साथियों से सलाह देना चाहता हूं कि अपने फार्म खेत के अंदर बरसात के पानी को इकट्ठा करें, उसमें पॉन्ड बनाएं, मछली पालन कर सकते हैं, साथ में खेती कर सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। किसी भी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, जैसे पॉली हाउस लगा सकते हैं, ड्रिप सिंचाई यंत्र है, सोलर सिस्टम है, इन सबका उपयोग करके अपने अच्छे से आप नई तकनीकी के द्वारा खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो, आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से कार्यक्रम खेती बाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, अभी आपने इन सफल किसानों की कहानी को सुना और जाना कि किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है, यानी खेती के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने योजनाओं का लाभ लिया है, उन्होंने आधुनिक पद्धति से खेती की है, उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट पर जोर दिया है, तो तमाम प्रकार की उन्होंने योजनाओं का लाभ लेते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि सफल किसान के नाम से उनको जाना जाता है राजस्थान में। तो साथियों, हमें आशा है कि ऐसे ही हमारे किसान साथी अब सोच रहे होंगे कि हम भी एक उन्नतशील किसान बन सकते हैं, तो इसके लिए आपको हमें वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए आप समय समय पर कृषि विस्तार अधिकारी अपने झाबुआ जिले में बैठे हुए हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, खासतौर पर जो KBK रहता है उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो नई नई पद्धति से और नई नई योजनाओं के साथ लाभ लेकर आप एक अच्छी पद्धति से खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं, यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। मित्रों, अब हमारा समय होता है आज के कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारे फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें।

0: आज के कलाकार का एक और बहुत ही खूबसूरत एपिसोड लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज जो कलाकार हमारे साथ हैं, जो टैलेंट हमारे साथ हैं, वो हैं अरुण पंडित जी। और मुझे बहुत खुशी है पर्सनली कि वे उदयपुर राजस्थान से हैं, क्योंकि मैंने भी 35 साल राजस्थान में गुजारे हैं दोस्तों। तो चलिए मैं स्वागत करता हूं अरुण पंडित जी का। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत है सा, और आइए हमारे दोस्तों से बात कीजिए। मैं खुद आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चाहूंगा कि आप ही उनको बताएं आप कौन हैं, क्या करते हैं, कब से हैं राजस्थान में, बताइए ना।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण पंडित। जैसा कि समीर जी ने शुरुआत में कुछ आप सभी को बताया, उसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाते हुए आप सभी से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और रेडियो एसएन का और टीम एसएन का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत अगर मैं करता हूं तो बाय बर्थ तो मैं एमपी से हूं, लेकिन पिछले 30 सालों से मेरा राजस्थान में रहना हुआ, और यहाँ पे ही फिर मन रच बस गया, और फिलहाल तो मैं यहीं से हूँ। और उदयपुर बेहद ही खूबसूरत शहर है, और आप सभी यहाँ आएंगे तब आपको भी महसूस होगा कि ये प्राचीन धरोहर वाला ऐतिहासिक शहर, पहाड़ियों से घिरा, झीलों से घिरा खूबसूरत शहर, शायद यहाँ आके आपका भी कुछ गुनगुनाने का मन करने लगे। और जैसा कि आगे समीर जी और भी बताते जाएंगे, मेरी जो समीर जी से बात हुई है उसके मुताबिक इन्होंने भी राजस्थान में काफी लंबा समय गुजारा है, तो आज इनसे बातचीत का सिलसिला मुझे लगता है शायद बहुत ही दिलचस्प होने वाला है।
0: जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ सा, बिल्कुल अमेजिंगली ब्यूटीफुल इट इज गोइंग टू हैपन। तो बहुत खूब दोस्तों, आपने जाना मेरे दोस्त अरुण पंडित जी, उदयपुर बहुत ही खूबसूरत शहर है, वहां रहते हैं और वहीं से गायकी करते हैं। तो चलिए शुरू करें अरुण जी के इस प्रोग्राम को उन्हीं के गाए हुए इस प्यारे से गीत से।

0: बहुत बढ़िया अरुण भाई। अरुण भाई, आपने बताया कि यूं तो आपका जन्म जो था वो मध्य प्रदेश में हुआ, पढ़ाई लिखाई भी आपकी मध्य प्रदेश में हुई?
1: जी हाँ, पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई
0: बहुत
1: जी।
0: बढ़िया। नहीं, मध्य प्रदेश में कहां से, कौन से शहर से?
1: मध्य प्रदेश में रतलाम के पास एक छोटा सा कस्बा हुआ करता है, जावरा,
0: ओ
1: वहां से
0: वेरी नाइस,
1: जी।
0: बहुत बढ़िया। रतलाम की सेब बहुत मशहूर है साहब, काली मिर्च वाली। जितने भी फूडीज हैं, ज्यादातर लोग फूडीज ही होते हैं, उनको पता भी होगा, नहीं पता है तो बता रहा हूं। एनीवेज, मुद्दा ये है अरुण भाई। जी
1: जी जिस तरह से मधुर संगीत कानों में गूंजता रहता है और उसका जायका दिल से दिमाग से नहीं निकलता, वैसी ही रतलामी नमकीन भी होती है, उसका जायका जबान से जाता नहीं। मैं आप सभी से
0: वाह,
1: रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी आप यहाँ आइए, मैं आपको
0: क्या
1: रतलामी नमकीन का मजा
0: बात है,
1: दूंगा।
0: क्या बात है, क्या ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड। तो दोस्तों, मैं यहां पर दरअसल अरुण जी से ये पूछना चाह रहा था कि उनका पहला गीत हमने सुन लिया। अरुण जी, जिस वक्त आप छोटे बच्चे थे, आई मीन यू वर इन योर चाइल्डहुड,
1: जी
0: ओरिजिनली क्या बनना चाहते थे आप, और फिर इवेंचुअली क्या बन गए? वो तो हम देख ही रहे हैं दैट यू हैव बिकम अ मेडिसिनल केमिस्ट्री प्रोफेशनल, बट बचपन में क्या
1: जी
0: बनना चाहते थे आप?
1: सर, मतलब जिस तरह से आजकल का जो बचपन होता है ना, कि सोशल मीडिया से बच्चे काफी कुछ सीख जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हमारा बचपन बहुत

0: एक तरह से प्राकृतिक वातावरण में गुजरा है,
1: जी
0: जहां आभासी दुनिया या वर्चुअल वर्ल्ड नहीं था वहां पे। और चूंकि छोटे शहर में पला बड़ा था इसके, और काफी बड़ा परिवार था, बड़े भाई बहन काफी थे, तो मेरा सपना हर दिन बदलता रहता था।
1: ओके ओके ओके, नहीं नहीं आई एग्री, ये तो सब हम सबके साथ हुआ है बॉस। हम लोग
0: मतलब
1: कभी
0: कोई पिक्चर देख रहा हूं मैं, तो किसी को अगर मैंने देखा है कि जैसा कि होता है आज, तब भी और आज भी बच्चन साहब मेरे फेवरेट हीरो थे, ठीक है, तो बच्चन साहब को किसी पिक्चर में इंस्पेक्टर में के रोल में देख लिया, मैंने कहा यार इंस्पेक्टर बनने में ही मजा है जीवन का, तो यार बाकी तो सब बेकार है। उसके बाद किसी को अच्छा ना, आपको सुन के हंसी आएगी कि कुछ फिल्मों में मैंने कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन देखा कि यार डाकू भी बड़ा मस्त है, बहुत शानदार वाला डाकू है यार, ये तो गरीबों की मदद करता है और देखो गाना आना गाता है, डांस करता है, तो मैंने सच बताऊं तो डाकू बनने का भी सोचा था एक आध बार।
1: अरे यार आई स्वेयर अरुण भाई, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, लोगों को बिल्कुल हंसी छूट गई होगी और लोग बाग इस बात से रिलेट भी कर पा रहे होंगे या कि बचपन में तो यार नकाब वकाब लगा के और अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक जुल्म मिटाने को अमिताभ बच्चन निकलते हैं। ऐसा तो कुछ हम भी बनना चाहते थे। बहुत बढ़िया, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्यूट, बहुत कूल, मजा आ गया भाई। तो दोस्तों आई एम श्योर आप भी रिलेट कर पाए होंगे, बचपन में ऐसी बड़ी खूबसूरत खूबसूरत चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग में चलती ही रहती हैं। तो चलिए ना आगे बढ़ते हुए एक प्यारे से गीत का मजा भी ले लें अरुण पंडित जी की आवाज में, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: बहुत बढ़िया हुआ अरुण भाई, अमेजिंग। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, जिस वक्त आपने गायकी शुरू की तो थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताइए, कब कब आपको लगा कि आप गायकी में उतर रहे हैं, म्यूजिक ने आपको अपनी तरफ खींच लिया है, आपका गायन अच्छा होने लग गया है, किस वक्त आपको महसूस हुआ, कब शुरू हुए आप?
1: इसमें ऐसा था कि पहले क्या था, रेडियो ही एकमात्र मनोरंजन का साधन हुआ करता था
0: जी,
1: और कुछ रिकॉर्ड प्लेयर जो थे वो हुआ करते थे घर पे, मोहम्मद रफी साहब के, किशोरदा के, इनके गाने बजा करते थे। हमारे बड़े भाई बड़े शौकीन थे गीत संगीत के, और मेरी मदर को लोकगीत गाने का बड़ा शौक था। वो काम करते करते जो एक फोक सॉन्ग होते हैं वो गुनगुनाती रहती थी दिन भर।
0: ओके,
1: तो बस मैं मम्मी की नकल किया करता था और मम्मी की आवाज निकाला करता था।
0: ओके, अरे वाह, ओ माय गॉड।
1: तो हमारे बड़े भाई साहब ने जब मेरी रुचि कुछ इस तरफ देखी तो वो गजल वगैरह के जब भी काफी शौकीन थे, वो मुझे सिखाते थे, बताते थे कि चलो ये तुम ये गा के बताओ, अरे ये तो सही नहीं गाया, फिर से गाओ, अच्छा मैं तुमको इतने पैसे दूंगा, शाम को दोबारा से मुझे ये गाना सुनाना। तो उस तरह से जो सिलसिला चलना शुरू हुआ, और उसके बाद उनके दोस्त लोग शाम को इकट्ठे होते थे तो सारे दोस्तों के बीच में जो है, मतलब मैं छोटा था लेकिन एक सेलिब्रेटर जैसा फील करता था।
0: क्या बात है।
1: तो भाई साहब के दोस्तों के बीच में बैठा हूँ और वो सारे लोग जो है मुझसे गाना सुनने की फरमाइश कर रहे हैं और मैं उनसे बदले में पैसे लेता था। अब ये बात अलग है कि गजल वगैरह सुनाने के 25 पैसे लेता था लेकिन किशोर कुमार का गाना सुनाने का 1 रुपया लेता था।
0: 1 रुपया लेता था, क्या बात है, क्या बात है, वो म्यूजिक दैट्स सो ब्यूटीफुल। मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आपको पता था कि क्या मेहनत का फल क्या होता है। ब्यूटीफुल, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, दिस इज सो ब्यूटीफुल। और देखिए आज मुझे लग रहा है मैं आई हैड स्पोकन टू सो मेनी टैलेंट्स और बहुत प्यारे प्यारे लोगों से मेरी बातचीत हुई, लेकिन आज आप खुल के बिल्कुल दिल की बात बता रहे हैं कि साहब म्यूजिक में आपकी जो है कुदान कैसे हुई, दैट इज सो ब्यूटीफुल। आई मीन आई रियली लव्ड इट।
1: समीर का अर्थ तो आपको पता ही होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रेडियो एसेंस से मंद मंद बहती हुई पवन मुझ तक पहुंच रही है। समीर का मतलब पवन ही होता है ना सर?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही
1: जी।
0: अब आप जी जी जी जी बोलिए बोलिए बोलिए।
1: एक दिलचस्प अर्थ इसका यह भी है सर, अगर अरबी लैंग्वेज में देखा जाए तो समीर का मतलब रात भर जाग कर बातें करने वाला साथी या फिर खुश मिजाज दोस्त।
0: Really?
1: तो आई थिंक रात भर तो मैंने आपसे बात नहीं की है लेकिन आपसे बात करने पर यह एहसास जरूर हुआ है कि आप एक खुश मिजाज दोस्त बन सकते हैं या हैं।
0: मैं 100% हूँ सर, 100% हूँ, आई एम अ कंपनी लविंग पर्सन। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं रात में जाग नहीं पाऊंगा सर। मेरे को रात में सोने का बड़ा प्रॉब्लम है, 8:30 बजे तो लुढ़क जाता हूँ मैं। तो थैंक यू सो वेरी मच, आपका आपकी बात सुन के सर बड़ा घमंड सा हो गया, दैट आई एम अ गुड पर्सन, आई एम अ गुड कंपनी, आई एम अ गुड फ्रेंड, आई लाइक दैट। और बड़ी खूबसूरत बात कही अरुण भाई ने, अरुण भाई के साथ बातचीत ही अपने आप में बड़ी दिलचस्प होती जा रही है बहुत तेजी से। तो चलिए एक मिनट के लिए मुस्कुराना बंद मत कीजिएगा, मुस्कुराते रहिए, अरुण भाई की बातें सोचते रहिए और गाना सुन लीजिए उनका, एंड देन आई विल कम बैक विद मोर मोर इंटरेस्टिंग एंड फनी टॉक्स। थैंक यू।

0: बहुत बढ़िया बात हुई. ओके अरुण भाई, चलिए वो तो आपने बताया, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैड बीन यू नो लविंग द काइंड ऑफ कन्वर्सेशन वी हैड बीन हैविंग. बट आपको और बेहतर समझने के लिए, आपकी गायकी को, आपके संगीत को, प्रतिभा को समझने के लिए, समझ दीजिए ना हमें, अरुण जी कौन है भला? गायकी हम सुन ही रहे हैं, गाने हमने आपके सुने, किस तरीके का म्यूजिक आपको ज्यादा पसंद है? देखिए आप कहोगे सब तरीके का, फिर भी एक इंक्लिनेशन होता है गजल की तरफ, भजन की तरफ, फोक म्यूजिक. आपने बताया आपकी माताजी जो है वो फोक म्यूजिक गाती थी, करेक्ट? सो फिर इसके बाद वेस्टर्न म्यूजिक भी आ जाता है, बहुत सारे तरीके के म्यूजिक्स हैं. सो आपको पर्सनली कौन सा संगीत पसंद है, कौन सा जॉनर उसका पसंद है?
1: सर मुझे हिंदी फिल्म संगीत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है.
0: ठीक है,
1: जिसमें रफी साहब, किशोरदा कुमार, शानू, अमित कुमार, इन सबको सुनना मुझे काफी पसंद है. और कुछ सेमी क्लासिकल आप मान लीजिए कि वो भी पसंद है मुझे. जी
0: सेमी क्लासिकल का मतलब क्या हुआ? हाँ जी,
1: शास्त्रीय संगीत पर आधारित जो हिंदी गीत हैं, जैसे ओ माई रे माँ कैसे कहूँ के, या रेना बीती जाए शाम ना आए, या इस तरह के, ये गाने भी तन्हाई में सुनना बहुत अच्छा लगता है. जी
0: वाओ. दोस्तों आपने कुछ सुना क्या? मुझे सुनाई दिया है, आपने पता नहीं पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, क्योंकि चलिए अभी मैं एक गाना पेश कर रहा हूं अरुण जी की आवाज में, फिर मैंने जो पकड़ा है ना उसके ऊपर बातचीत करने आने वाले हैं हम. और आई एम 200% श्योर अरुण जी भी चौंक जाएंगे, ट्रस्ट मी. आइए पहले गीत सुनते हैं.

0: बहुत बढ़िया। तो अरुण जी, चौंकने के लिए तैयार हैं आप? अभी अभी आपने जी बोले
1: सर, मैं चॉकलेट अभी खाऊंगा तो मैं डायबिटिक हो जाऊंगा, क्योंकि एक तो मीठी बातें और ऊपर से चॉकलेट, तो ये दोहरी, ये दुगुनी शक्कर हो जाएगी सर।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, घबराओ मत सर, मैं चॉकलेट की बात नहीं कर रहा हूँ, चौंकने की बात कर रहा हूँ। अमेज्ड
1: जी, हाँ
0: अमेज्ड,
1: ओके
0: सर। लेकिन आपने मूड खराब कर दिया, अब चॉकलेट जानी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी यार घर में, चॉकलेट का मन हुआ है अब। एनीवेज, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अभी अभी जब जब आपसे मैंने पूछा कि कौन सा म्यूजिक आपको पसंद है, तो आपने जॉनर बताया, फिर आपने कहा सेमी क्लासिकल। मेरे सारे सुनने वालों, मेरे आज के कलाकार के फैमिली मेंबर, सभी लोग ध्यान से सुने, उन्होंने एक गाने का नाम लिया जो कि बहुत बहुत कम सुनाई देता है, और सच यह है कि वो गाना मेरे दिल के बहुत नजदीक है। एंड आई एम नॉट, मुझे पक्का पता नहीं कि अरुण जी को ये गाना क्यों पसंद है और उन्होंने यहां पर उस गाने का नाम क्यों लिया। कौन से गाने का नाम लिया अरुण जी आपने?
1: एक तो रेना बीती जाए, शाम ना आए, और मायरे में कैसे कहूं कि अपने
0: मायरे, मायरी मायरी मायरी, पलाश, डॉक्टर पलाश का गाया हुआ ये गीत है
1: जी।
0: मैं गलत तो नहीं कह रहा सर?
1: ये दस्तक फिल्म में लता जी ने भी गाया, और आई थिंक मदन मोहन जी ने भी गाया है, जहां तक मैंने सुना है।
0: आप गुनगुना के बताएंगे मुझे प्लीज?
1: मायरे,
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ऑलराइट, आई गॉट कंफ्यूज्ड। लेकिन डॉक्टर पलाश का एक गीत है मायरी, उसने अपने दादी के ऊपर गाया है, तो मुझे लगा आप शायद उस गीत के बारे में बात कर रहे हैं। वो भी कुछ सेमी क्लासिकल है और हल्का सा उसमें पंजाबी पुट आता है। आई एम श्योर हमारे सुनने वाले कनेक्ट कर पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने इस गीत को सुना होगा। कुछ ऐसा है, बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलके, आई एम नॉट अ सिंगर गाय, ऐसा कुछ है। इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सॉन्ग, बट आई गॉट एक्साइटेड। तो वेल, बहुत बहुत सारे लोगों को हिंट मिल रहा होगा कि क्यों ना इस गीत को गाने की कोशिश कर ली जाए। फिर अरुण जी, चैलेंज है आपके लिए
1: जी,
0: गा के बताइए इस गीत को। सुनिए कहाँ है ये गीत, सुन के बताइए। मायरी, डॉक्टर पलाश, डॉक्टर पलाश मतलब ही इज ऑर्थोपेडिक सर्जन, दिल्ली एम्स से पढ़े हुए, लेकिन उनको गायकी का शौक था, तो उन्होंने अपना बैंड बनाया। उनके बैंड का नाम था धूम, और धूम पिचक धूम करके उनका जो गाना बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। तो कभी ढूंढ के देखिए, उन्हीं में है एक मायरी, मायरी वो गाना कभी ट्राई करके देखिएगा। चलिए, बात कहीं की कहीं चली गई, लेकिन मजा आ गया। एक चैलेंज भी मुझे मौका मिला आप सब लोगों को देने का, तो दोस्तों ट्राई कीजिएगा। तब तक, जब तक आप ट्राई करें, अरुण जी की ही आवाज में गीत को सुने और फिर आगे बढ़ें।

0: बहुत खूब अरुण भाई, मुझे ये बताइए, कभी स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका मिला? और अगर मिला तो कैसा लगा? डर लगा? कैसे संभाल लिया अपने आप को? क्या एक्सपीरियंस था वो?
1: मैं जहां तक मुझे कुछ ध्यान आता है, जो धुंधली सी याददाश्त, मैं फिर से जब पास्ट में जाता हूँ तो मुझे लगभग 4 या 4.5 साल की उम्र में मेरे बड़े भाई ने स्टेज पे उतार दिया था।
0: ओके।
1: तो तब से मेरे को स्टेज फियर जैसी कोई चीज कभी नहीं रही सर।
0: अरे वाह। ओके ओके।
1: हाँ, तो बहुत बिंदास तरीके से जाता हूँ, जैसा मतलब जो सच है वो सुंदर है, सुना होगा ना आपने, जैसा मैं हूँ उसी तरह से जाता हूँ बस। किसी तरह के मेरी कुछ बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसा संकुचित होके जा रहा हूँ या थोड़ा डर के जा रहा हूँ या नजरें नहीं उठा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस गाने की शुरुआत में मेरी आंखें नीचे रहती है कि मेरा मुझे स्टार्ट सही मिल जाए, उसके बाद में पब्लिक से आंखें मिला के गाता हूँ।
0: क्या बात है, मतलब फिर तो वार्म अप हो जाता है एंड देन यू बिकम कॉन्फिडेंट कि अब तो कर लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है, तो उसके बाद बस चल पड़ता है। वाह क्या बात है। नो दैट ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है बड़े बड़े सारे हमारे जितने भी मित्र हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि एक बार स्टेज पे चल के हल्का सा घबराहट का और स्टेज फ्रेट जिसको बोलते हैं वो होता है, और एक बार आपने स्टेज को ओन कर लिया उस पर, मतलब आपको लगा ये मेरा आधिपत्य है, बस
1: जी
0: उसके बाद तो बस नैया पार हो जाती है, कोई टेंशन ही नहीं है। बहुत बढ़िया, नाउ दैट इज ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। चलो दोस्तों,
1: आपने नैया का जिक्र किया, तो अगर नैया का खेवैया समीर जी जैसा हो तो फिर शायद घूमने वालों को भी मजा आएगा इस सुरीले सफर में।
0: ये मुझे पसंद आई बात बॉस, ये मुझे बिल्कुल पसंद आई। मेरा रोल आपने डिफाइन किया है, आई लव इट। मैं कई बार अपने वैसे भी कहता रहता हूँ कि आई एम जस्ट अ कुरियर, मैं एक संदेश वाहक हूँ, मैं एक ड्राइवर हूँ, एक चैरियटियर हूँ, मैं सिर्फ रथ चला रहा हूँ, अर्जुन तो आप हो, बाण तो आपको ही चलाने हैं साहब। तो चलिए इस प्यारे से गीत का आनंद उठाएं पहले, और फिर अरुण जी के साथ बातचीत, प्यारी सी बातचीत में वापस लौटेंगे। थैंक यू।

0: बहुत खूब हो गया सर, बहुत खूब हो गया, बहुत ही चार्ज्ड प्रोग्राम जा रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ऑलराइट, आज के गायकों के लिए देखिए, आपने कहा कि नहीं, आपने नहीं कहा, मैंने आपसे पूछा ही नहीं, आई एम सो सॉरी। आपके पसंदीदा सिंगर्स कौन कौन हैं? मैं कहूंगा सभी सिंगर्स आप कहेंगे कि अच्छे हैं, फिर भी किसी एक की तरफ हमारा दिल निकल के चला जाता है। जैसे बुरा ना मानिएगा, फॉर एग्जाम्पल, वैसे आई एम नॉट सपोज टू पुट माई चॉइस हियर इन दिस प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम तो आपका है, लेकिन फिर भी मुझे मन्ना डे बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों मेरा दिल उनके लिए चला जाता है। तो आपके पसंदीदा गायक कौन है?
1: जी, मेरा दिल, जान, जिगर, सब कुछ जिधर जाता वो किशोर दा है। तो किशोर कुमार मुझे बचपन से ही काफी पसंद है।
0: ओके।
1: और उनके गाए गानों को मैंने स्टेज पर काफी दोहराया है।
0: ओके।
1: तो नंबर दो, दूसरे गाने, दूसरे सिंगर्स के गाने भी मैंने गाए हैं, जिसमें रफी साहब वगैरह, अमित कुमार, कुमार शानू, ये सारे लोग हैं। तो लेकिन किशोर दा मुझे ऑल टाइम फेवरेट है, सर्वकालिक महान जिसे कह सकते हैं, मैं उन्हें मानता हूँ।
0: जी हाँ, बिल्कुल, आई फुली एग्री विद दिस। ये तो मतलब सत्य है। मैं आज सुबह, बल्कि नितिन जी से बात कर रहा था, तो हम लोग ये बात डिस्कस कर रहे थे कि किशोर कुमार साहब, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इन लोगों की लीगेसी से मुझे ऐसा फील होता है, और नितिन को भी फील हो रहा था, कि हम लोग शायद 100 सालों तक उबर नहीं पाएंगे। इन्होंने जो लीगेसी क्रिएट की है, इन्होंने जो इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, आई एम ना, वी वुड नॉट बी एबल टू कम आउट सो इजीली आउट ऑफ दैट। What do you say, sir?
1: समीर जी, इन लोगों ने इतना कुछ गा दिया है कि मुझे नहीं लगता कि आने वालों के लिए बहुत कुछ बचा है, कुछ ऐसा लगता है मुझे कहीं पर।
0: सही कह रहे हो, सही कह रहे हो सर, सही कह रहे हो। कि लेकिन फिर अब बात ये होती ना सर, कि वी कैन ऑलवेज इम्प्रोवाइज। किशोर दा से, लता मंगेशकर जी से, आशा भोसले जी से, हम यू नो उनको गुरु मानकर, आइडल मानकर, रोल मॉडल मानकर हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। उनको भी खुशी होगी कि हाँ, हमसे आगे कुछ आया। आई मीन इट शुड बी हैपनिंग लाइक दिस ओनली। दोस्तों, आप सोचिए कि हम कैसे और अपने आप को इम्प्रोवाइज करें, इन तीनों लोगों को, चारों लोगों को पूजा करते हुए, इनको आइडल मानते हुए। बहुत खूब, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अरुण जी का ही गाया हुआ इस गीत को लेते हैं पहले।

0: बहुत बढ़िया अरुण जी, आपने मुझे बताया काफी समय से आपकी गायकी चल रही है, सो रियाज प्रैक्टिस के बाद भी आई थी, व्हाट डू यू डू, आपका जो दैनिक रूटीन रहता है गायकी का, या पहली बात तो ये कि आप अपने जीवन में गायकी को बैलेंस कैसे करते हो, मतलब दिन में कब और कितना टाइम, और दूसरे कार्यकलापों के साथ आपका गायन कैसे मैच करता है, और दूसरा आप क्या रूटीन है आपका गायकी को लेकर, हाउ डू यू प्रैक्टिस?
1: आमतौर पर शाम के वक्त ही मैं गा पाता हूँ, या किसी प्रोग्राम में भी जाना हो तो जनरली शाम को ही हुआ करते हैं, और इसके अलावा कुछ म्यूजिक एप्स जो हैं स्टार मेकर वगैरह, इन पे भी अगर मेरा जाना होता है तो मैं शाम के वक्त ही जा पाता हूँ, बट रेगुलर है। और अगर मैं ना भी जाऊं कहीं तो मुझे जो गाने अच्छे लगता है मैं उनको पहले ओरिजिनल गाने को सुन के बाद में गुनगुनाया करता हूँ, उसको रिकॉर्ड करके फिर देखता हूँ कि मैं कहाँ गलतियां कर रहा हूँ। हालांकि असल तो असल है, नकल कभी असल की बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी ऐसा कहते हैं ना कि चिट्ठी पे जहां का पता लिखा हो वहीं पे जाती है,
0: बिल्कुल सही
1: तो
0: बात आ रहे,
1: एटलीस्ट हम जेरोक्स भी

0: टॉक्स भी करें तो इस तरह की करें कि थोड़ा मजा आए लोगों को सुनने में, बस।
1: अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। जेरोक्स भी करे तो कुछ ऐसा करे ना। बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ बड़े सारे हमारी आज के कलाकार फैमिली में ऐसे टैलेंटेड सिंगर्स हैं जिन्होंने बड़ी सारी एक्सपेरिमेंटेशंस की हैं, कॉपीज भी की हैं, लेकिन इतनी प्यारी ढंग से। और उन्होंने कभी मना नहीं किया कि हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उसको बहुत खूबसूरती से पेश किया कि जिनसे कॉपी किया होगा उसको भी अच्छा लगा होगा। जेरोक्स करें तो जरा मजेदार तरीके से करें, क्या बात कही। चलिए दोस्तों, इसी बात का मजा लेते हुए एक प्यारे से गीत का भी मजा उठा ले, फिर आगे बढ़े।

0: बहुत खूब बहुत खूब। अब मुझे ये बताओ सर कि जिस वक्त आप कोई अपने लाखों गाने गा लिए होंगे, जब आप कोई गाना जब आपने कोई गाना चुनते हो, किशोर कुमार जी का कोई भी आप गाना चुनते हो कि चलो इसको गाना है मुझे, तो कैसे चुनते हो? उसकी लिरिक्स, उसकी मेलेडी, उसकी ट्यून। चलो एक बात तो बिल्कुल तय होगी कि किशोर जी हैं तो गाना है, खत्म होगी बात। नेक्स्ट व्हाट? मेलेडी, म्यूजिक, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक्स, क्या चीज आप ध्यान में रखते हो?
1: सारी ही चीजें मायने रखती सर, क्योंकि कोई भी गीत सिर्फ एक चीज से खूबसूरत नहीं बन जाता, ऐसा मेरा अपना सोचना है। उसमें कई बार गायक ने किस तरह से हर शब्द को बोला है, क्योंकि आजकल के गीतों को भी अगर आप सुनते हैं तो आप के ये ज्यादा लंबे समय तक याद रखने वाले नहीं होते। पहले के गीतों में पोएट्री हुआ करती थी, तो गायक को गाना भी उसी तरह से पड़ता था
0: जी।
1: और मेरा ऐसा सोचना है कि जिस अगर एसडी बर्मन या आरडी बर्मन है और किशोर दा है, तो आई थिंक गाना 99% श्योर हूं मैं कि अच्छा ही होगा।
0: ऑलराइट,
1: बाकी ऐसा कुछ नहीं रहता है, गाना किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर का और किसी का भी अच्छा हो सकता है। किशोर दा की जहां तक बात है, तो उसके अलावा मैंने रफी साहब और कुमार शानू और अमित जी को भी काफी दोहराया है, लेकिन जिसमें मुझे सबसे ज्यादा वाहवाही मिली या लोगों ने फीडबैक अच्छा दिया, उसको किशोर दा थे।
0: श्योर। तो बात बहुत आसान है, बहुत साफ है दोस्तों, बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। पहली बात तो यह कि आपके दिल की आवाज किस तरफ जाती है, और फिर जाहिर से बात है आपके रोल मॉडल कौन है और किस पर आपकी आवाज ज्यादा सूट होती है। ये बात थोड़ी सी टिपिकल है, थोड़ी सी सेंसिटिव है, किसी के भी यू नो इमोशंस को, भावनाओं को हम दुख नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन अब जाहिर से बात है आप मेरी आवाज अगर यू नो मुकेश साहब से नहीं मिलती तो मैं जबरदस्ती मुकेश साहब के गाने गाकर सुनने वालों को ही परेशान कर रहा हूं दरअसल। तो आई शुड नॉट डू सो, आई शुड रियलाइज कि मेरी आवाज कहां फिट बैठ रही है। बिल्कुल ठीक बात है, अमेजिंग। चलो आगे बढ़ते हुए दोस्तों, एक और प्यारा सा गीत मुझे पेश करने की इजाजत दीजिए जो अरुण जी ने हमारे लिए तैयार किया।

0: बहुत खूब। अब अरुण भाई, आपकी पर्सनालिटी को काफी देर से हम समझ रहे हैं। यू आर वेरी फनी, यू आर वेरी चार्मिंग, बहुत इलेक्ट्रीफाइंग पर्सनालिटी है आपकी, हमेशा मस्त रहने की कोशिश, और फिर गायकी, सब कुछ एक साथ, इतना बड़ा कॉम्बिनेशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी आपको थोड़ा और बेहतर, आपको टीज करने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप इस सवाल के जवाब में 100% यही कहेंगे कि जी मेरे को तो सब पसंद है, बट आपका पर्सनल एक पसंदीदा गीत बताइए जिसे आप बार बार गाना पसंद करते हैं, बरबस ही वो आपके होठों पर आ जाता है, आप उसको गुनगुनाने लगते हैं, कौन सा गीत है वो?
1: ये किशोर दा ने स्लो मोशन में गाना गाया था, मतलब वो तो आपने सुना ही है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, बराबर। उसका एक अंतरा था, पहले तो हवा इन जुल्फों से खुशबू सी चुरा कर लाती थी, भूले से कभी भूली बिसरी आवाज सी भी आ जाती थी, आवाज से भी महरूम हुए वो, तो वो बड़ा अच्छे से बहुत प्यार से विदाउट म्यूजिक उन्होंने गाया था। तो वो कभी कभी जब मैं घर में अपना कुछ काम कर रहा हूँ या अपनी ही धुन में मस्त हूँ तो अक्सर मेरी जबान पर वो गाना जरूर आता है जी।
0: ओके, अमेजिंग। आई मीन सीरियसली, इस गीत के बारे में बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती है बॉस, कई बार बातचीत क्या मतलब, लोगों के रडार में नहीं है ये गीत, क्योंकि जैसे आपने कहा, अमेजिंग, दैट्स सो ब्यूटीफुल। आई मीन बड़ी गूढ़ गहरी नॉलेज वाली बात है दोस्तों, ये विचार करने की कोशिश कीजिए। जब आप गायकी को पसंद करते हैं तो गायकी की हर चीज पता करिए ना, कौन था म्यूजिक डायरेक्टर, भला कौन किस, जैसे हमारे नितिन जी है, उन्होंने बताया कि मुकेश के ज्यादातर, सॉरी राज कपूर के ज्यादातर गाने का क्या, सारे गाने मुकेश जी ने गाए, लेकिन एक गाना राज कपूर जी के ऊपर ये अपने मोहम्मद रफी साहब ने गाया। नाउ दिस इज अनबिलीवेबल।

0: बहुत बढ़िया अरुण भाई, हम बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन स्टेशन का टाइम थोड़ा सा टाइट हो रहा है। हमें आपसे रिक्वेस्ट करनी होगी कि जो आज आप आपके फैंस बने हैं, फैमिली मेंबर्स हैं आज के कलाकार के, उनसे कुछ बात कीजिए, कुछ मैसेज दीजिए उनको।
1: मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ समीर जी का, नितिन जी का, और इस सुरीले सफर का हम सफर बनाने के लिए अपर्णा अच्युता मैम का, जिन्होंने मुझे रेडियो एसेंस से परिचित करवाया। और जाहिर सी बात है कि जो मुझे सुनते हैं उन्हें मैं प्यार करता ही हूँ, और आप सभी को मेरा तहे दिल से शुक्रिया सलाम है। और मेरे अन्य सारे साथी जो अक्सर मुझे सजेस्ट करते हैं, मेरी खामियां भी बताते हैं, मेरी अच्छाइयां भी बताते हैं, जिनमें हमारे स्टार मेकर के ही बहुत सारे साथी हैं, जैसे पिंकुल सुजाता वगैरह या और भी मेरे दोस्त हैं दूसरे, ये सारे लोग, तो उनकी मदद से ही शायद इस कुछ अच्छे गीतों का चयन हो सकता है, और जहां जहां मेरी कमियां हैं मैं दूर कर पाता हूँ।
0: ऑलराइट, दिस इज सो ब्यूटीफुल, बड़ी प्यार से बहुत छोटा सा मैसेज लेकिन बहुत पावरफुल मैसेज अरुण जी ने हम लोगों के लिए दिया है। मैं अपर्णा अच्युत मैडम का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार है, जिन्होंने इतने प्यारे इंसान से आज हमें मिलाया, हमारे फैमिली मेंबर को, हमारी फैमिली को बढ़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया अपर्णा मैम। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मजी आई आपसे बात करके, आपके गीत सुन के। मुझे उम्मीद है हम आपके साथ और भी बहुत सारे प्रोग्राम बनाएंगे।
1: बिल्कुल समीर जी, मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा, और जाते जाते एक दो लाइनें आपके लिए पेश करना चाहूंगा कि तेरे मुस्कुराने से महफिल महक जाती है
0: जी।
1: तेरे मुस्कुराने से महफिल महक जाती है, तेरी एक झलक से दुनिया सज जाती है। तो आप इसी तरह से जो है सभी लोगों को अपने कुशल संचालन से जो है आनंदित करते रहें, और सुरीले सफर को जो है जारी रखें, और कई मधुर गायकों से भी जो है हमको इसी रोचक तरीके से आप मिलवाते रहें। आपके साथ आज का साक्षात्कार या इंटरव्यू जिसे मैं कह सकता हूँ, बहुत ही अच्छा रहा।

0: आप इतनी जल्दी फैमिलियर हो जाते हैं कि मुझे एक मिनट के लिए भी ये नहीं लगा कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूं या मैं किसी अनजान शख्स से पहली बार इतनी बात करने वाला हूं। शायद यही एक अच्छे संचालक की, एक अच्छे एंकर की जो है विशेषता होती है, जो आप में है।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है, आज तो घमंड हो गया। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगा इस जो भी है मेरे अंदर कैपेबिलिटी, उसको और बढ़ाऊं, जिससे मैं और प्यारे प्यारे लोगों से बातचीत कर सकूं। थैंक यू, आप अपना ख्याल रखिएगा।
0: जी समीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत प्यारा रहा आपके साथ बातचीत का सफर, धन्यवाद सर।

दोस्तों, आज के कलाकार के इस सुरीले से सफर में बस यहीं तक। मुझे उम्मीद है आज की ये महफिल आपके दिल में एक मीठी याद छोड़ गई होगी। दोस्तों, कुछ गीत खत्म नहीं होते, बस दिलों में बस जाते हैं और जब भी याद आते हैं तो फिर से मुस्कुराहट बिखेर जाते हैं। तो हम फिर आएंगे नए सुरों और नए कलाकारों के साथ। तब तक अपने दिल को बस यूं ही गुनगुनाने दीजिए।

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों दिव्य दर्शन के इस बहुत ही पवित्र प्रोग्राम में। मैं हमारे मेहमान रवि शंकर साहब का स्वागत करता हूं, इनवाइट करता हूं उनको कि वो आए हमसे आज आध्यात्म के बारे में और तमाम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातचीत करें। तो रविशंकर सर, पहली बात तो आपका आभार, आपका स्वागत। दूसरा, हमारे सुनने वालों के लिए प्लीज अपना परिचय दें, क्योंकि दिव्य दर्शन प्रोग्राम के जो सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। तो आप बताएं, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं सर?
1: ओके, नमस्ते समीर जी। मेरा नाम रविशंकर है, मैं बैंगलोर से हूँ। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बैंगलोर एंड आई एम ए कर्नाटका बाई बर्थ, इवन दो मेरा मदर टंग तेलुगु है। सो वी लॉस्ट अवर मदर वेरी अर्ली एंड वी सेटल डाउन, वी आर माई फादर इज ऑल्सो फ्रॉम बैंगलोर इटसेल्फ। सो हम तो कन्नड़ा बात करते हैं घर में और रिलेटिव से। सो मैं तो बॉर्न कर्नाटका हूँ अब। सो
0: ओके,
1: एंड I did my schooling and all in Bangalore itself, National High School, and up to PU. I studied in National College, which is one of the renowned colleges. And after that, I switched out. Initially, I had PUC in science, that is plus two in science. मेरा तबियत थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए मैं स्विच ओवर हो गया आर्ट्स के लिए। एंड आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशियोलॉजी। मैं लेक्चरर बना सो इमीडिएटली। सो फॉर 30 इयर्स आई टॉट सोशियोलॉजी। देन एज आई हैव मेंशनड, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, इफ यू डोंट चेंज योर डायरेक्शन यू विल हेड वेयर यू आर हेडिंग। सो मैंने डायरेक्शन चेंज किया। मैं कुछ वो भगवान ऐसा रास्ता दिखाता है कि मेरे लिए मेरा तबीयत के लिए भी। एंड आई स्विच्ड ओवर एज ए वेलनेस कंसल्टेंट। आई लर्नड फ्रॉम ए रिनाउंड इंस्टीट्यूट। सो आई एम डीपली इनटू दैट इवन टू दिस डे। आज भी मैं थोड़ा सेशंस करता हूँ, दो तीन सेशंस करता हूँ न्यूट्रिशन एंड वेलनेस के बारे में। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैंने आई एम आउट ऑफ मेडिकेशन फॉर द पास्ट 12 इयर्स नाउ। एंड मैंने आज तक सिंस 2007 मैंने डॉक्टर के पास नहीं गया हूँ एज ए पेशेंट। सो दैट्स माय लिमिटेड बैकग्राउंड। सो I don't want to go on and on.
0: दोस्तों, आपने जाना कि रविशंकर साहब बेंगलुरु से हैं। बेसिकली वो कन्नड़ परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन बहुत ही प्यारे इंसान हैं। उन्होंने हमारे आज के कलाकार जो एक गीतों का प्रोग्राम होता है उसमें भी पार्टिसिपेट किया और आध्यात्म के बारे में आज हमारे से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। तो चलिए सर, मुझे बात आध्यात्म की करनी है, बात स्पिरिचुअलिटी की करनी है। सो रवि सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लेट अस नो व्हाट एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी मींस फॉर यू। आध्यात्म से आपका क्या मतलब है सर?
1: ओके, मैं इट्स एन अननोन एंटिटी। कोई भी आज तक ठीक से उसके बारे में पूरा नहीं समझ गया है, ऐसा है, मैं मानता हूँ।
0: ओके,
1: इट इज लाइक but to have faith in something that gives power, energy and confidence, विश्वास देता है और थोड़ा power भी देता है, मन का वो power देता है। And I feel it gives energy also. It gives better feeling का वो विश्वास देता है हमारे लिए। That's आध्यात्मिक जीवन मेरे मानना है वो।
0: Absolutely, you are absolutely right sir. आध्यात्म का वही मतलब होता है जैसा रविशंकर सर ने बताया। दोस्तों, विचार करने की जरूरत है। ये एक ऐसे सब्जेक्ट है जो बहुत सब्जेक्टिव है, मतलब सबके अपने अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं इस बारे में। जैसे कुछ लोग मानते हैं आध्यात्म का मतलब है आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ अवर ओन सोल, हु आर वी, कौन है हम, उसी तरीके की चीजें। तो थैंक यू सो मच सर। आगे बढ़ते हुए आई विल प्रेजेंट दिस प्यारा सा भजन। इसकी प्रस्तुति है, प्यार से इसको सुनते हैं और मनन करते हैं, सोचते हैं। जरूरी नहीं कि हर समय लबों पर भगवान का नाम आए,
2: वो लम्हा भी भक्ति से कम नहीं जब इंसान इंसान के काम आए।

0: तो रविशंकर सर, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, ये दो शब्द हैं, धर्म और आध्यात्म, सर ये एक ही चीज है या अलग अलग है? इज देयर अ डिफरेंस और आर दे द सेम?
1: I think it's different because I taught sociology, and in sociology we have a definition of religion. So there is a sociologist by the name Emily Durkheim. So he defines religion is belief in the supernatural power. Supernatural power. So religion वो धर्म क्या है? आज जो हम धर्म का रूप देख रहे हैं वो थोड़ा सा अलग सा था वो earlier. जब मानव जात आरंभ हुआ, सिविलाइज सोसाइटी थोड़ा थोड़ा होने लगा. बिफोर तो अनसिविलाइज सोसाइटी था. सो थोड़ा थोड़ा बाद में सिविलाइज बना के वो चेंज करने लगा. सो उसके ऊपर और डेफिनेशन देता है कि इट एनीथिंग दैट इज बिलीफ इन सुपर नेचुरल पावर इज नोन एज रिलीजन. एंड अर्लियर देर वॉज नो गॉड एज सच. सो जो भी एनिमल मिलता था या स्पेशल ट्री होता था, कॉमन ट्री होता था, उसको लोग पूजा करते थे. सो